सोमवार शक संवत 1948 के भाद्रपद की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 सितंबर 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है आज की सभा। इस सभा में आपका स्वागत है।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, ये चलेंगे आपको हमारे दिल्ली केंद्र बस कुछ ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ब्रिक्स देशों में सहयोग की प्रेरणा हो और मानवता की प्रगति के हित में योगदान दे। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले 3 दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाखिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होंगे। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTEL गैया पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव का आज पहला दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब बात करते हैं खेत खलिहानों की, किसान भाइयों की। सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है कीटनाशी छिड़काव में सावधानियां। संकलन एवं वाचन स्वर रेडियो साथी प्रतिमा वर्मा का है।
1: नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में आज बातें कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानियों की। किसान भाइयों, कीटनाशकों के खेतों में प्रयोग करते समय कुछ खास बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जी हाँ किसान भाइयों, फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशकों के छिड़काव के समय अगर सावधानी ना बरती गई तो किसानों की जान तक जा सकती है। ऐसे में किसान कुछ सावधानी बरतकर बचाव कर सकते हैं, जरा सी असावधानी खतरनाक साबित हो सकती है। कीटनाशक रासायनिक और विषैले होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कीटनाशक का प्रयोग करते समय यह देख लेना चाहिए कि उपकरण में लीकेज तो नहीं है। कभी भी कीटनाशक उपकरण पर मुंह लगाकर घोल खींचने का प्रयास ना करें। तरल कीटनाशकों को सावधानी पूर्वक उपकरण में डालना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि यह शरीर के किसी अंग में ना जाए। अगर ऐसा होता है तो तुरंत साफ पानी से कई बार धोना चाहिए। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए उपयुक्त समय सुबह या सायंकाल होता है। इनका प्रयोग करते समय यह ध्यान रखें कि आसपास हवा तेज गति से न चल रही हो। जब आप कीटनाशक को खेत में छिड़काव करने के लिए तैयार कर रहे हो तो उसमें साफ पानी का इस्तेमाल करें। हमेशा अपने हाथ, नाक, आंखें, कान और मुंह को ढक लें। सिर को भी ढक लें। हाथों को ढकने के लिए पॉलिथीन बैग से बने दस्ताने पहने। सिर को ढकने के लिए पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल ना करें। सिर को कैप या तौली से ढकें और चेहरे को रुमाल, साफ कपड़े या मास्क से ढकें। छिड़काव का घोल तैयार करने से पहले कंटेनर के ऊपर जो लेबल लगा हो उसे पढ़ लें। उसमें घोल तैयार करने का तरीका लिखा होता है। सांद्रित कीटनाशक को खोलते समय विशेष सावधानी रखें कि वो आपके हाथ पर ना गिरे। स्प्रेयर टैंक को कभी न सूंघें। स्प्रेयर टैंक को भरते समय ध्यान रखें कि कीटनाशक जमीन पर ना फैले। स्प्रेयर तैयार करते समय खाना पीना वर्जित होता है। उपकरण लीक करने वाला या कहीं से भी खराब उपकरण को छिड़काव करने के लिए प्रयोग में ना लें। नोजल सही होनी चाहिए। कभी भी नोजल को मुंह से फूंक कर साफ ना करें। इसके लिए स्प्रे से बंधे पुराने टूथब्रश का उपयोग करें और पानी से साफ करें। घास फूस नाशक और कीटनाशक को कभी भी एक स्प्रेयर से छिड़काव ना करें। खाली कीटनाशक कंटेनर को किसी भी दूसरे काम में इस्तेमाल ना करें। जी हाँ किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिक द्वारा बताई गई या कीटनाशक के कंटेनर पर लिखी मात्रा में ही छिड़काव करें। बहुत गर्म दिन में या जिस दिन तेज हवा चल रही हो कीटनाशक का छिड़काव ना करें। हमेशा हवा के 90 डिग्री कोण पर छिड़काव करें। जब बारिश होने वाली हो तब या बारिश होने के तुरंत बाद छिड़काव ना करें। हवा के बहाव की विपरीत दिशा में छिड़काव ना करें। नोजल की ऊंचाई करीब 1.5 फुट रखें और इधर उधर ना घुमाएं। किसान भाइयों, कीटनाशक का घोल बनाते समय जिस कंटेनर या बाल्टी का इस्तेमाल करें उसे दोबारा कभी किसी घरेलू काम में उपयोग में ना लाएं। कीटनाशक के छिड़काव के बाद जानवरों या किसी भी व्यक्ति को खेत में ना जाने दें। कभी भी खाली पेट छिड़काव ना करें। कीटनाशक तैयार करते समय शरीर को जिस तरह ढका था उसी तरह उसका छिड़काव करते समय भी ढक लें। छिड़काव के बाद सारे कपड़े गर्म पानी में साबुन से धोएं और साबुन से स्नान भी कर लें। कीटनाशी का छिड़काव करने के बाद बचे हुए कीटनाशक को कभी भी किसी तालाब, कुएं या किसी भी पानी के स्रोत में ना बहाएं, बल्कि कोशिश करें कि इसे ऐसी बंजर जमीन पर फेंकें जहां किसी का आना जाना ना हो। खाली कंटेनर को किसी पत्थर से तोड़कर उसे पानी से दूर कहीं जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें। स्प्रेयर और बाल्टी को इस्तेमाल करने के बाद साबुन से 4 से 5 बार धोएं। किसान भाइयों, घर में कीटनाशक कभी भी ना रखें। इसके असली कंटेनर में ही इसे रखें और कंटेनर को ठीक से बंद करें। दूसरे कंटेनर में कीटनाशक ना डालें। कीटनाशक को ऐसी जगह ना रखें जहां खाना या चारा रखा हो। पानी और सूरज की रोशनी की पहुंच से दूर रखें। कीटनाशक और घास फूस नाशक को एक साथ ना रखें। किसान भाइयों, ये हुई बातें कीटनाशकों के छिड़काव के समय बरती जाने वाली सावधानियों की। इसी के साथ कार्यक्रम से अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
0: खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आपने सुना कीटनाशी छिड़काव में सावधानियां। संकलन एवं वाचन स्वर रेडियो साथी प्रतिमा वर्मा का था। आइए दोस्तों, अब आध्यात्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए सुनते हैं रामचरित मानस गान की कड़ी संख्या 267।
2: एपिसोड नंबर 267। 267।

पवन पुत्र हनुमान सुग्रीव के गुप्तचर के रूप में श्रीराम लक्ष्मण के पास गए थे, किंतु उन्हें अपने इष्ट देव को पहचानने में तनिक भी देर नहीं लगी। सीता हरण की घटना सुनकर वे तुरंत श्रीराम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले। जगत जननी सीता को ढूंढ लेना असंभव नहीं। सुग्रीव ने विलाप करती परवश सीता को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हाराम हाराम कहकर रोती बिलखती सीता का एक वस्त्र वहां गिरा था। श्रीराम को धीरज बंधाते हुए सुग्रीव ने वह वस्त्र खंड उन्हें सौंप दिया। इस प्रकार उन्हें श्रीराम के विश्वास और मैत्री का गौरव प्राप्त हुआ। जब श्रीराम ने सुग्रीव से उनके वन में निवास करने का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी व्यथा कथा सुनाई। अत्यंत स्नेही भाई बाली उनका शत्रु बन बैठा। उसने न केवल उनका राज्य बल्कि पत्नी तक छीन ली। ये सब उस मायावी राक्षस के कारण हुआ जिसका पीछा करते बाली ने यह कहकर गुफा में प्रवेश किया कि यदि वह राक्षस का वध करके 15 दिनों में लौट कर ना आवे तो उन्हें मृत मान लिया जाए। सुग्रीव ने पूरे 1 माह तक भाई की प्रतीक्षा की और गुफा से बाहर आती लहू की धार देखकर यह मान लिया कि बाली की हत्या हो गई।

श्रोताओं, रामचरितमानस गान के बाद अब बारी है चिंतन की। आइए सुनते हैं देश को जोड़ती हिंदी। आलेख एवं वाचन स्वर निर्मला तिवारी का है।

है भव्य भारत की हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, लिपि है नागरी। भाषाएं अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होती हैं। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान भाषाओं के द्वारा ही करता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वह अपनी मातृभाषा स्थानीय भाषा सीख लेता है। यूँ तो हमारे देश में कई प्रांतीय बोलियाँ उपबोलियाँ बोली जाती हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा जनभाषा हिंदी है। यह लोगों को एक सूत्र में जोड़ती है। हिंदी हमारी शान, गौरव, हमारी पहचान है। देश में ही नहीं विदेशों में भी हिंदी लोकप्रिय है। कई राष्ट्रों में हिंदी पढ़ाई जाती है। वहाँ बसे भारतीय हिंदी को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, जो हमारी संस्कृति परंपरा को बढ़ावा देते हैं। भारतीयता की पहचान है हिंदी। हिंदी में समाहित हमारे संस्कार। हिंदी है भारत की शान, है हमारी यह पहचान। हिंदी मधुर सरल सहज भाषा है। इसमें विभिन्न बोलियों का सम्मिश्रण है। यह हमारी सभ्यता संस्कृति का संपोषण करती है। आदिकाल से ही हमारा राष्ट्र विज्ञान साहित्य कला का केंद्र बिंदु रहा है, लेकिन समय के साथ बहुत बदलाव हो गए। हम अपनी विरासत को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हमारी हिंदी भी भौतिकतावादी की आंधी में लुप्त हो रही है। हिंदी भाषी लोग हीन भावना से ग्रसित होकर स्वयं को कमतर आंकते हैं। अंग्रेजी बोलने वालों को स्मार्ट समझा जाता है और उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लोग अपने नन्हे मुन्नों को भी बचपन से ही इंग्लिश के शब्दों का ज्ञान देते हैं। प्रणाम के स्थान पर हेलो बाय सिखाते हैं। हिंदी कविताओं की जगह इंग्लिश पोयम सिखाकर खुश हो जाते हैं। और इस तरह बचपन से ही बच्चा अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर होता जाता है। वह स्थानीय भाषा हिंदी भाषा ठीक से नहीं सीख पाता है और यह चिंतन का विषय है। भाषाओं का ज्ञान होना अच्छी बात है, किंतु अपनी राष्ट्रभाषा जनभाषा मातृभाषा से दूर होना गलत है। जब हम अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर अपने देश का मान कैसे रख पाएंगे? किसी भी राष्ट्र की भाषा के ज्ञान के अभाव में वहाँ की परंपरा संस्कृति को सही तरीके से समझा नहीं जा सकता है। भाषा एक संवाहक का कार्य करती है और इसका सम्मान करना नागरिकों का प्रथम कर्तव्य है। आज हमें हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कारण कहीं ना कहीं इसका अस्तित्व खतरे में है। और यह कड़वा सत्य है कि देश में देश की मूल भाषा हिंदी की जगह अंग्रेजी को महत्व दिया जा रहा है। हम अपने आसपास नजर दौड़ाते हैं तो पाते हैं कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अधिकाधिक होता है। हिंदी तो जैसे दूसरी और तीसरी भाषा के रूप में सिमटती जा रही है और यह चिंता का विषय है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जनमानस की भाषा है, हमारी पहचान है, शान है, फिर इसे बोलने में शर्म कैसी? तो आइए चिंतन के इन क्षणों में हिंदी के विषय में महापुरुषों के विचारों को आत्मसात करें, उनके चिंतन को जानें। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। महात्मा गांधी ने कहा, हिंदी भाषा का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। राष्ट्रीय एकता की कड़ी है हिंदी, बाल कृष्ण शर्मा कहते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा, हिंदी हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है, तो इसे सहेजें, विश्व पटल पर अंकित करें। लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं, हिंदी पढ़ना और पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, उसे हम सबको अपनाना है और हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। हिंदी देश की एकता की कड़ी है, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा। हिंदी के द्वारा समस्त भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है, यह कहते हैं महर्षि स्वामी दयानंद जी। जी हाँ, तो इन चिंतकों के विचारों को हमें आत्मसात करना है और अपनी राष्ट्र भाषा का मान रखना है, इसे ऊंचाई तक पहुंचाना है।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे चिंतन। आइए अब जुड़ते हैं भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम आराधना से। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी डाल्टनगंज केंद्र के एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है आपका अपना आध्यात्मिक कार्यक्रम आराधना। आज का ये विशेष अंक समर्पित है विघ्नहर्ता मंगलकर्ता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को। आज है गणेश चतुर्थी। मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य का आरंभ भगवान गणेश की पूजा से किया जाता है तो कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। गणपति केवल विघ्नों को दूर करने वाला देवता ही नहीं बल्कि बुद्धि, विवेक, ज्ञान और शुभता का भी प्रतीक है। तो आइए

देव शुभ कार्येषु सर्वदा, अर्थात हे विशाल स्वरूप वाले करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान गणेश, हमारे सभी शुभ कार्यों को बिना किसी विघ्न के पूर्ण कीजिए। गणेश चतुर्थी का पर्व हमें यह संदेश भी देता है कि जीवन में आने वाली बाधाओं से घबराने के बजाय बुद्धि, धैर्य और विवेक के साथ उनका सामना

ना करना चाहिए। भगवान गणेश का स्वरूप भी अपने आप में अनेक संदेश समेटे हुए है। बड़ा मस्तक हमें बड़ी सोच रखने की प्रेरणा देता है, बड़े कान अधिक सुनने की सीख देते हैं और छोटी आंखें एकाग्रता का संदेश देती है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं गणपति बाप्पा को समर्पित एक और भक्तिमय प्रस्तुति।

गणपति बप्पा मोरिया, गणेश चतुर्थी का उल्लास महाराष्ट्र से लेकर देश के अनेक हिस्सों तक दिखाई देता है। पूजा पंडालों में गणपति की प्रतिमा स्थापित होती है, घरों में आराधना होती है और भक्त पूरे मन से कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हमारे झारखंड में, हमारे पलामू में, मेदिनीनगर, डाल्टनगंज शहर में भी पर्व त्योहारों की अपनी समृद्ध लोक परंपरा रही है और यहाँ भी चाहे वो कांदू मोहल्ला हो, चाहे वो पचमुहान चौक हो या बेलवाटिकर या फिर रेड़मा, कई जगह गणपति पूजा शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आस्था जब संगीत से मिलती है तो भक्ति का अनुभव और भी मधुर हो जाता है। तो आइए इस भक्ति भाव को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं गणेश जी की स्तुति में एक सुंदर भजन।

रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत सा भक्ति गीत। श्रोताओं, भक्ति के इन स्वरों में जैसे मन की सारी चिंताएं कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। भगवान गणेश को बुद्धि और विवेक का देवता माना गया है। यही कारण है कि विद्यार्थी भी गणेश जी से ज्ञान और एकाग्रता की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, जीवन में सफलता केवल शक्ति से नहीं मिलती, सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि और विवेक भी आवश्यक है। गणेश जी का आशीर्वाद हमें इसी विवेकपूर्ण जीवन की प्रेरणा देता है। आइए जुड़ते हैं आराधना की अगली प्रस्तुति से, गजाननम भूतनादि से।

विश्वास है वहाँ आशा है, और जहाँ आशा है वहाँ आगे बढ़ने की शक्ति भी है। इस गणेश चतुर्थी पर हम भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से सभी विघ्न दूर हो, परिवार में सुख शांति बनी रहे और हर घर में ज्ञान समृद्धि और मंगल का वास हो। और अब समय है दोस्तों आज की आराधना की अंतिम भक्तिमय प्रस्तुति का, तो आइए भगवान गणेश की भक्ति में डूबे इस विशेष आराधना कार्यक्रम को सुने। गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर हमारी आकाशवाणी डाल्टनगंज केंद्र की ओर से यही प्रार्थना है, हे गणपति बप्पा हमारे जीवन के सभी विघ्न हर लीजिए, हमारे मन को सद्बुद्धि दीजिए, हमारे परिवार में सुख शांति और समृद्ध बनाए रखिए। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी विश्वास

0: आइए श्रोताओं, गणेश वंदनाओं पर आधारित आराधना भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुनने के बाद अब जुड़ते हैं स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा से। आज का विषय है शारीरिक जांच क्यों आवश्यक है। भेंटवार्ताकार है डॉक्टर श्वेता शेखर, जबकि उनसे बातें कर रहे हैं रेडियो साथी संजय कुमार मिश्र।
1: स्वागत, मैं हूँ संजय मिश्रा, आपको हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको पैथोलॉजी पे जानकारी दिलवाएंगे। पैथोलॉजी का मतलब तो आप समझते होंगे। शारीरिक जांच कितना महत्वपूर्ण है, क्यों कराया जाता है, क्यों कराना चाहिए, कराने से क्या क्या फायदे हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर के यहाँ इलाज के लिए जब आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको जांच के लिए लिखते हैं कि ये फला फला जांच करा के आप आइए, फिर आपका हम इलाज करेंगे। तो आप समझ लेते हैं कि ये बस मेरी ड्यूटी है कि डॉक्टर साहब ने जो लिखा है वो जांच करा के आएँ, दवा लिखवाएँ और जाएँ। लेकिन आज जांच पे विस्तृत जानकारी दिलवाएंगे। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे डाल्टेंस के जाने माने पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता शेखर। डॉक्टर श्वेता, हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार।
2: धन्यवाद संजय जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये जो पैथोलॉजी की जो बात हम करते हैं, ये पैथोलॉजी क्या सिस्टम है, क्या है जांच?
2: पैथोलॉजी जांच की एक वो है विज्ञान में, जिससे कि हम बता सकते हैं कि अगर आपके शरीर, आपका शरीर कोई संकेत दे रहा है

0: कि वो आपको चोट पहुंची है या आपको बुखार है या आपको आपको खून की कमी है, तो पैथोलॉजी के जांच के द्वारा हम आपको बता सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है और आपको इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकें या आप सही दिशा में अपना इलाज करा सकें। अपने चिकित्सक को ये बता, मतलब जांच करके आपका चिकित्सक समझ सके कि आप उसको कौन सी दवाइयाँ लिखनी हैं या आपको किस तरह से आपका इलाज करना है। तो पैथोलॉजी में ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपका शरीर संकेत दे उसके पहले भी बहुत सारी ऐसे मोड़ आते हैं, जैसे कि फीमेल, जैसे कि औरतें होती हैं 35 साल की उम्र की होने के बाद ऐसे ऐसा वक्त आता है कि उनके शरीर के बहुत सारे बहुत जैसे कि हड्डियाँ या आप कह सकते हैं सर्विक्स बोलते हैं हम लोग, ये सब चीज़ों के लिए हमें कुछ ऐसी जांचें करानी चाहिए जिससे कि जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, इन चीज़ों की जांचें हमें खुद करा लेनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर तो नहीं हो रही हैं या आपको कोई तरह का कैंसर, जैसे कैंसर ऑफ सर्विक्स कहते हैं, ये तो आपको नहीं होने वाला जिसके लिए हम पैप स्मियर करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जाँच हमेशा शरीर के संकेत देने पर ही नहीं बल्कि उसके पहले भी हमें स्क्रीनिंग के तौर पर कि हम खुद जाके समझ लें कि हमारा शरीर अभी किस तरह से हमारा साथ दे रहा है इसका। हाँ
1: जी, जैसे आज के समय में कह सकते हैं कि चिकित्सा विज्ञान जो है, मेडिकल साइंस इतना आगे निकल गया है, इतना डेवलप कर गया है कि किसी भी बात का इलाज के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में, यहाँ तक कि हमारे शहर में वो इलाज संभव है। आप सिर्फ पता करें, जानकारी लेने की आवश्यकता है। तो आज क्या सिर से नख तक जितनी तरह की बीमारियां होती हैं, जो जो शरीर में व्याधियां हैं, परेशानियां हैं, सबों का जांच करके पता किया जा सकता है कि व्यक्ति कितना स्वस्थ है और कितना स्वस्थ रखा जा सकता है, ये क्या संभव है?
0: जी, देखिए हमारा शरीर कुछ इस तरह से बना है कि प्रयोग और इतनी सारी तरह की प्रयोग देश विदेश में हर दिन हमारे शरीर पर हो रही हैं, तो ये तो असंभव तो नहीं है कि हम स्वस्थ रह सकें। हमें पता तो सब कुछ होता है, बस हम उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाते नहीं हैं। तो ये बहुत खाने पीने के तौर तरीके हों जो हमारे बड़े हमें कहते आए हैं, या जांच एक किस तरह की आज के जीवन शैली में इतना ज़रूरी हो गया है हमारे लिए कराना, हेल्थ चेकअप इसको हम लोग कहते हैं, अपने शरीर की हर 6 महीने पे या हर 1 साल पे आप जांच कराएं हर तरह की, जितने भी जैसे कि 6-7 जांचें बहुत ज़रूरी होती हैं हमारे शरीर के लिए, हमारे फेफड़ों की जांच, हमारे अगर किसी को दमे की बीमारी हो गई है या किसी के परिवार में इस तरह की कोई बीमारी है तो वो भी इसकी जांच करके पता कर सकते हैं, या अगर किसी को आंत का कैंसर है, आजकल विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि उसके जो बच्चे हैं वो ये पता लगा सकते हैं कि उनको ये कैंसर हो सकता है कि नहीं, या तो अगर आप कहें स्तन स्तन का जो कैंसर होता है औरतें वो भी पता कर सकती हैं पहले ही जांच कराकर कि क्या हमें आगे कभी ये कैंसर होगा या नहीं होगा। तो इस तरह की बहुत सारी जांचें हैं जो कि आप पहले ही करा के अपने शरीर के बारे में पता कर सकते हैं। एक इसमें मैं और जानकारी देना चाहूँगी जो कि होता है थैलेसीमिया। हमारा देश जो है वो खून की कमी बच्चों में होना इतना ज़्यादा हमारे देश में पाया जा रहा है इस वक्त, इससे बचने के लिए मैं सारे दंपति को एक गुजारिश करना चाहूँगी कि आप लोग शादी करने से पहले ज़रूर एक दूसरे का जो है टेस्ट करा लें, उसको थैलेसीमिया का टेस्ट कहते हैं। आप लोग दोनों ज़रूर अपने, ये सरकार के तरफ से भी उपलब्ध हैं ये टेस्ट, आप जाके ज़रूर कराएं ताकि ये खून की कमी आपके बच्चे में ना हो, उसको बार बार खून चढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। तो जिस तरह से आपने संजय जी कहा कि शरीर से नाक तक हर तरह की जाँच, जी जाँच तो हर तरह की उपलब्ध है मगर ये ज़रूरी है कि हम ये जानकारी सब तक पहुँचा सकें।
1: डॉक्टर श्वेता, आम लोगों की ये आम आदतें हैं कि जब वे बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब उनको लिखते हैं कि आप फला फला जांच कराइए, तब वो जांच कराते हैं, डॉक्टर दवा लिखते हैं, स्वस्थ होकर सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि बगैर डॉक्टर के पास गए, बगैर बीमार हुए भी क्या जांच करवा के खुद को स्वस्थ रखा जा सकता है?
0: जी, कोई भी स्वस्थ इंसान जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि औरतें जो कि 35 साल की उम्र के ऊपर हैं, या जो जेंट्स जो हैं मेल मेंबर्स, वो 40 साल की उम्र के बाद वो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि 6 महीने पर भी अगर संभव ना हो सके तो 1 साल पर तो ज़रूर अपने शरीर का फुल हेल्थ चेकअप, जिसमें कि खून से संबंधित सारी जांचें, स्टूल की जांच जिसको स्टूल की जांच, फिर पेशाब की जांच, हर तरह की जांच वो ज़रूर कराएं, और वो अपने जिस भी लैब पे वो विश्वास करते हैं या वहाँ जाके वो पता कर लें कि किस किस तरह की जांच उनको करानी चाहिए इस उम्र पर। जैसे कि औरतों के लिए पैप स्मियर की जांच, जिसकी जानकारी बहुत कम है हमारे देश में, इसको एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह डेवलप्ड देशों में जैसे कि अमेरिका में ये लोग हर 35 साल की उम्र के बाद अगर इसमें कोई इस जांच में अगर कोई कुछ निकल के नहीं आता है तो फिर हम कहते हैं कि आप फिर अगले साल इस जांच को कराइए। तो हर साल आपको 35 की उम्र के बाद ये जांच करानी चाहिए। इसका नाम है पैप स्मियर, और ये शरीर में होने वाले, औरतों के शरीर में होने वाले कैंसर से आपको बचाएगा, आपको पहले ही बता देगा कि क्या आपके सर्विक्स में कोई कैंसर होने की संभावना है या नहीं। तो फिर अगर आपके शरीर में कोई गिल्टी बन रही है तो उसकी जांच, ये ज़रूर आप उसको नज़रअंदाज करके सिर्फ दवाइयाँ खा के ही रह जाएंगे या खुद आप अपने घर वालों को बताएंगे ही नहीं। औरतों की ये हमारे देश में ये देखा गया है कि वो इस तरह से अपने आप को पीछे रख के अपने घर वालों का ख्याल रखती है। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर कोई इस तरह की चीज़ अगर आपने नोटिस की है तो आप उसका जाँच ज़रूर कराएँ। उसके लिए FNAC नाम की एक जाँच होती है जिससे आपकी गिल्टी की जांच भी कहा जाता है। आप उस गिल्टी का भले ही वो आपके गर्दन में हो, बगल में हो, स्तन में हो या पेट में हो, सबको, महिलाओं को भी और महिलाओं को और पुरुषों को, सबको ये जांच जरूर करानी चाहिए।
1: अच्छा, फिर तो जब सबके जांच की बात कर रहे हैं तो हम बच्चों से शुरू करें श्वेता, कि अगर अपने बच्चों को हम स्वस्थ रखना चाहते हैं, आपने कहा रूटीन चेकअप, तो रूटीन चेकअप में बच्चों की क्या-क्या जांच हमें कराते रहना चाहिए?
0: देखिए, बच्चों को भगवान ने कुछ इस तरह से बनाया है कि एक उम्र तक तो जो प्रकृति है वही उनकी रक्षा कर लेती है। हाँ, मगर ऐसे कुछ बच्चे जिनको अगर खून की कमी लगती है आपको, या वो जल्दी थक जाते हैं, आपको लगता है वो खेल कूद नहीं पा रहे ठीक से, या वो सांस लेने में तकलीफ़ महसूस करते हैं, तो उन बच्चों की जांच आप ज़रूर कराएं।
2: दोस्तों, आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, शारीरिक जांच क्यों आवश्यक। आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से और 6:55 पे सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7 बजे हिंदी समाचार और 7:05 पे अंग्रेजी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
0: प्रैक्टिस में भी

0: दिनद्वयोः जाताभिः मन्त्रणाभिः अयं दृढप्रत्ययः अधिकं पुष्टङ्गतः। श्रीमोदी आशां प्राकटयत् यत् सम्मेलने स्वीकृतं नवदिल्ली घोषणापत्रं प्रकटितदृष्टये आगामिसहकाराय च सुस्पष्टां दिशं निर्दिशेत्। सः सर्वाणि निष्पन्नानि परिणामात्मकलक्ष्याणि समयबद्धकार्येषु परिणमयितुं अन्त्योदयप्रभावं जनयितुं च बलम् अददात्। इतः पूर्वम् उद्घाटनभाषणे प्रधानमन्त्री मोदी न्यरूप्यत यत् ब्रिक्ससमूहे सुदृढतायाः संवर्धने विशेषबलं दत्तमस्ति, यतोहि वैश्विकसङ्क्रमणेन जलवायु आपद्भिः आपूर्तिशृङ्खला विघ्नैश्च स्पष्टीभूतं यत् अद्यतनस्य परस्परसम्बद्धस्य विश्वस्य कोऽपि सङ्कटः केवलम् एकस्मिन्नेव क्षेत्रे सीमितः न तिष्ठति। विदेशमन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् नवदिल्ल्यां सम्पन्नेन 18 ब्रिक्सशिखरसम्मेलनेन बहवः मूर्तविकासोन्मुखपरिणामाः सञ्जाताः। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयता विदेशमन्त्रालयस्य सचिवेन सुधाकर दलेल इत्यमुना न्यरूप्यत यत् विविधेषु विषयक्षेत्रेषु 50 अधिकाः मूर्तपरिणामाः प्राप्ताः। एतामुपलब्धिं सः भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षतायाः महत्या सिद्धित्वेन वर्णितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी नवदिल्ल्यां समनुष्ठिते ब्रिक्सशिखरसम्मेलने उच्चस्तरीयद्विपक्षीयवार्तानां बहूनि उपवेशनानि अकरोत्। विगतेषु 3 दिवसेषु प्रधानमन्त्रिणा विविधदेशानां शासनाध्यक्षैः राष्ट्राध्यक्षैश्च सह 15 द्विपक्षीयोपवेशनानि आचरितानि। एतदतिरिच्य तेन विश्वनेतृभिः अन्ताराष्ट्रियसंस्थानां प्रमुखैश्च सह काश्चन अनौपचारिकाः संक्षिप्तमन्त्रणाः अपि विहिताः। एताभिः मन्त्रणाभिः द्विपक्षीयसम्बन्धानां दृढीकरणाय, परस्परहितसम्बद्धेषु विषयेषु विचारविमर्शाय अथ च क्षेत्रीयवैश्विकघटनाक्रमेषु स्वदृष्टिकोणस्य आदानप्रदानाय महत्वपूर्णः अवसरः समुपलब्धः। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अद्य मुम्बईनगरे 26-अधिक-2000तमस्य हिन्दीदिवसस्य अथ च 6थस्य अखिलभारतीयराजभाषासम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधयिष्यति। कृत्स्ने हि देशे अद्य गणेशचतुर्थीपर्व महता भक्तिभावेन श्रद्धया च आचर्यते। अयं पावनदिवसः ऋद्धिबुद्धिसिद्धीनां प्रतीकभूतस्य भगवतः श्रीगणेशस्य जन्मोत्सवत्वेन आमान्यते। विनायकचतुर्थी उत गणेशोत्सवः इति नाम्ना प्रसिद्धः अयं दिनविशेषः 10 दिवसीयानाम् उत्सवकार्यक्रमाणां शुभारम्भं सूचयति, यस्मिन् भक्ताः स्वकीयगृहेषु मण्डपेषु च भगवतः गणेशस्य मृण्मयीं प्रतिमानं प्रतिष्ठाप्य विधिवत् पूजार्चनं कुर्वन्ति। भारतऋतुविज्ञानविभागेन अद्य गुजरातराज्ये अतितीव्रवृष्ट्यै नारङ्गवर्णपरा सञ्चेतना प्रकाशिता। ऋतुविज्ञानविभागानुसारम् अद्य राष्ट्रियराजधान्यां नवदिल्ल्यां, हरियाणाराज्ये, चण्डीगढ़े, पंजाबे, पूर्वराजस्थाने, असमे, अरुणाचलप्रदेशे च अतिवृष्टिः सम्भाव्यते। गतरात्रौ दुबईनगरे अनुष्ठितायां महिलानां 20-प्रतिविंशतिः एशिया चषक प्रतिस्पर्धायाः अन्तिमस्पर्धायां भारतेन श्रीलंकादलं 270 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का नई दिल्ली में संपन्न हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों का दर्शाने वाला वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग

0: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित रहे। शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का तंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होंगे। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTEL गैया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। यमन की सेना ने लाल सागर के तट के पास ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने लाल सागर तट पर और अधिक सैनिक भेजने का फैसला किया है। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिन तक चलने वाले उत्सव का आज पहला दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। और क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप खिताब अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the leaders of all the BRICS member countries for making the Delhi summit of the grouping productive and outcome-oriented. A video reflecting key moments of the two-day summit was posted on the social media handles of the Prime Minister. In the video, a part of the Prime Minister's summit speech was shown where he said, through BRICS, India has advanced friendship, partnership and cooperation all across.
1: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेनर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने। हमने ब्रिक्स कनेक्ट के माध्यम से स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी, विमेन इन वर्कफोर्स, सोशल सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दिया है।
2: The leaders who attended the summit included Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, Iranian President Masoud Pezeshkian and Abu Dhabi's Crown Prince Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, Vietnamese Prime Minister Lee Min Hung, Indonesian President Prabowo Subianto, Egypt's President Abdel Fattah Al-Sisi, President of the Philippines Ferdinand R. Marcos Jr., Uganda's Vice President Jessica Alupo, besides others, also attended the summit. Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with heads of state and government, besides several pull-aside meetings with world leaders and heads of international institutions. Union Home Minister Amit Shah has said that BJP-led NDA government in 21 states will introduce Uniform Civil Code UCC before 2029. Speaking to reporters in Mumbai, Home Minister said UCC has been introduced in several states and he is confident that it will be introduced in the 21 BJP-NDA ruled states before 2029. Mr. Shah said triple talaq has been abolished, giving Muslim women equal rights. He said the government has strengthened the country's criminal justice system through the Bharatiya Nyaya Sanhita and claimed that several states have recorded a 30% increase in the conviction rate in a single year. Hindi Divas is being celebrated across the country today. It was on this day in 1949 that the Constituent Assembly adopted Hindi, written in Devanagari script, as the official language of the country. Today, Hindi is one of the widely spoken languages in the world and the first language of more than 52 crore people. Union Home Minister Amit Shah will attend the Hindi Divas 2026 program and the 6th All India Rajbhasha Sammelan official language conference in Navi Mumbai today. The two-day conference will bring together scholars, literators, educationists, members of parliament, senior government officials and distinguished personalities from various fields to deliberate on the development of Hindi as the official language, people's language and link language, besides its coordination with other Indian languages. The festival of Ganesh Chaturthi is being celebrated today across the country with great devotion. The day marks the birth of Lord Ganesh, who is a symbol of wisdom, prosperity and good fortune. Also known as Vinayak Chaturthi or Ganesh Utsav, the day marks the beginning of 10-day-long festivities during which people place clay idols of Lord Ganesh at their homes and worship them. The festivities conclude with the grand event of Ganesh Visarjan. India produced a commanding all-round performance to defeat Sri Lanka by 72 runs in the Women's Asia Cup 2026 final in Dubai last night, securing a record-extending 8th Asia Cup title. President Draupadi Murmu has congratulated all the members of the Team India on winning Women's T20 Asia Cup Championship 2026. And that is the end of this news bulletin.

ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूँ आप सभी का रेडियो दोस्त, रेडियो साथी सैकत चटर्जी। आइए दोस्तों जान लेते हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से प्रातकालीन सभा में आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। दोस्तों अब से कुछ ही देर बाद 7:15 पे हम सुनेंगे हमारे केंद्र से प्रसारित लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश। आज के कलाकार होंगे धर्मू नायक एवं साथी तथा शाहबुद्दीन अंसारी एवं साथी। इसके बाद दोस्तों 7:45

पे हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से प्रसारित सुगम संगीत का कार्यक्रम स्वर सरिता सुनेंगे। आज के हमारे स्वर सरिता के कलाकार होंगे रूप कुमार राठौर एवं सोनाली राठौर। दोस्तों 8 बजे हम जुड़ जाएंगे दिल्ली केंद्र से और सुनेंगे समाचार प्रभात, 8:15 पे मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पे रांची केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार सुन पाएंगे। 8:45 पर हम फिर से एक बार वापस आएंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र में एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और सुनेंगे पुराने फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। आज प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक राजकुमार कोहली का जन्मदिन है, उन्हें याद करते हुए स्वरांजलि देंगे हम और सुनेंगे राजकुमार कोहली से संबंधित फिल्म गीतों को। सुबह 9 का समय होगा जोहार पलामू कार्यक्रम से जुड़ने का, जहां हम कई अन्य जानकारी की बातों के साथ सुनेंगे फिल्म निर्देशक जीपी सिप्पी के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम। सुबह 9:30 पे हम जुड़ेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग के साथ और सुनेंगे इसकी कड़ी संख्या 1371। सुबह 10 हम फिर से एक बार जुड़ जाएंगे दिल्ली केंद्र से और सुनेंगे हिंदी समाचार, 10:05 पे अंग्रेजी समाचार और उसके बाद 10:10 पे जुड़ जाएंगे मुंबई केंद्र से, जहां से हम सुनेंगे विविध भारती की प्रस्तुति उजाले उनकी यादों की रंग तरंग यादों की महफिल, और 1 जुड़ जाएंगे दिल्ली केंद्र से जहां से सुनेंगे हिंदी समाचार और 1:05 पे अंग्रेजी समाचार, 1:10 पे रांची केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार। दोस्तों 1:20 का समय होगा विविध भारती से जुड़ने का, जहां से हम सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। इसके बाद शाम 5:30 तक हम लगातार जुड़ते रहेंगे अपने दिल्ली रांची व मुंबई केंद्रों से, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार, प्रादेशिक समाचार और विविध भारती की कार्यक्रम दोपहर सभा, सदाबहार नगमे, सखी सहेली, सेहत नामा और छाया गीत जैसे कार्यक्रमों को। शाम 5:30 पे हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से जुड़ जाएंगे एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर, जहां से हमारे रेडियो साथी आपको बताएंगे सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब समय है लोकगीतों से जुड़ने का। दोस्तों आइए सुनते हैं लोकगीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम पलाश। सबसे पहले आइए सुनते हैं धर्म नायक एवं साथियों से कुछ बेहतरीन लोकगीत और उसके बाद सुनेंगे शहाबुद्दीन अंसारी एवं साथियों से। लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं धर्म नायक एवं साथियों की आवाज़ में यह लोकगीत।

श्रोताओं, पलाश के तहत आप सुन रहे थे धर्मनायक एवं साथियों की आवाज में लोकगीत। आइए अब पलाश कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं शहाबुद्दीन अंसारी एवं साथियों की आवाज में कुछ और।

0: ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे लोकगीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम पलाश। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता। आज के हमारे स्वर सरिता के कलाकार हैं रूप कुमार राठौर एवं सोनाली राठौर।
1: मुझको शायर न कहो मीर कि साहब मैंने दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया।

हमारा कभी बाजार तक नहीं पहुंचा, इश्क था जो कभी इजहार तक नहीं पहुंचा। सौदा हमारा कभी बाजार तक नहीं पहुंचा, इश्क था जो कभी इजहार तक नहीं पहुंचा। यूं तो गुफ्तगू बहुत हुई उनसे मेरी, लेकिन सिलसिला कभी ये प्यार तक नहीं पहुंचा। आइए दोस्तों, स्वर सरिता कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर से सुनते हैं रूप कुमार।

मत पूछ मेरी पहचान कहाँ तक है, मत पूछ मेरी पहचान कहाँ तक है, तू बदनाम कर तेरी औकात जहाँ तक है। हमने तो तुझे अपना समझ कर छोड़ दिया, अब तू आजमा ले तेरा जोर जहाँ तक है। आइए दोस्तों, स्वर सरिता कार्यक्रम में फिर से एक बार सुनते हैं रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर को।

सिक्कों के तराजू में मेरा किरदार नहीं बिकेगा, सिक्कों के तराजू में मेरा किरदार नहीं बिकेगा। महफिलों में भूखा सही पर ये खुददार नहीं बिकेगा। और सजा ले तू अपनी इन झूठी दुकानों को सरे बाजार, इन मतलब की दुनिया में ये वफादार नहीं बिकेगा। दोस्तों, राहत इंदौरी साहब की इस खूबसूरत चंद पंक्तियों के साथ आज हम विदा लेते हैं आपसे इस स्वर सरिता कार्यक्रम से। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहें हमारे साथ। अभी हम चलेंगे दिल्ली केंद्र, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज़, और रांची केंद्र से जुड़कर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। उसके बाद फिर वापस आएंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र में FM के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुनेंगे ढेर सारे कार्यक्रम। तो बने रहें हमारे साथ, दिल्ली केंद्र से जुड़ते चलते हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में 2025-26 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया। धीरज बोमा देवरा ने मैक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बनकर इतिहास रचा। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। दो दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलूपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। भारत ने 12-13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें समूह के 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम तीन दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें भी की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
2: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
0: श्री शाह ने कहा कि तीन तलाक को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को बिना किसी विवाद के हटा दिया गया है।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35A हटाना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है।
0: श्री शाह ने कहा कि सरकार ने 5 दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह अभियान भाजपा, एनडीए के सहयोगी दलों, स्वयंसेवी संगठनों और देश भर के नागरिकों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा से मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवाचे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाएं, सांस्कृतिक और साहित्य परंपरा के साथ हिंदी के जीवंत संबंधों को रेखांकित करना है। उद्घाटन सत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTL गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। भारत ने तनाव को तत्काल कम करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। इसमें होर्मूज जलडमरू मध्य से होकर जहाजों की आवाजाही की व्यवस्था पर चर्चा की जानी थी। ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने कल देर शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सलालाह में होने वाली बैठक को आम सहमति बनाने के क्रम में स्थगित किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार कुछ क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर ईरान और ओमान ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया। यमन की सेना ने लाल सागर के तट पर ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने लाल सागर तट पर और अधिक सैनिक भेजने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह हौसी विद्रोहियों ने महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा और बाब अल मंदेब जलडुमरु मध्य में एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। हमारी संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है।
5: वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि गणेश चतुर्थी का त्योहार आज पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और मोहल्लों में भक्ति गीतों, आरती और गणपति बाप्पा मोरिया के जयघोष के बीच लोग गणपति बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। मुंबई में कई गणेश मंडल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे और बेस्ट ने विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज मनाई जा रही है।
6: लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में 13,000 स्क्वायर फीट का वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां भक्त बैठेंगे और गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331-04-81 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
7: भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व खिलाड़ी बन गए हैं। मैक्सिको में कल उन्होंने जापान के नाकानिशी जूनिया को रोमांचक शूट ऑफ में हराया। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत की ओर से सैफ अली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रन का योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 82 रन बनाए और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
0: इसके अलावा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब भी जीत लिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
8: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने भारत की मेजबानी में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने ब्रिक्स नेताओं का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, जय हो दिल्ली, अब पेचिंग में मिलेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, खनिजों को हथियार न बनाए। अमर उजाला की सुर्खी है, ब्रिक्स का अब साझा लक्ष्य सर्वजन हिताय। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट लिमिटिंग ओवरशूट के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग की पहली लड़ाई हारे, दशकों तक रहेगा ज्यादा गर्मी का दौर। लोकसत्य ने स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे लोगों पर लिखा है, पश्चिमी सपनों पर वीजा की कैंची, भारत लौट रहा टैलेंट। अमरीका, यूके, कनाडा से शुरू हुआ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। दैनिक भास्कर ने सोशल मीडिया अटेंशन पर लिखा है, डिजिटल दौर में शॉक कंटेंट का खेल जिंदगियां बर्बाद कर रहा। हिंदी दिवस पर आज कई समाचार पत्रों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, निबिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश की धड़कन है हिंदी।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Prime Minister Narendra Modi thanks BRICS leaders for making Delhi summit productive and outcome oriented. Union Home Minister Amit Shah says BJP-led NDA governments in 21 states will introduce uniform civil code before 2029. Festival of Ganesh Chaturthi being celebrated across the country today with great devotion. Hindi Divas being celebrated today. Raj Bhasha Awards for 2025-26 to be presented at Mumbai Conference. India condemns attack on merchant vessel off Oman coast. 13 Indian crew members rescued. Dheeraj Boma Devra scripts history by becoming first Indian male recurve archer to win gold medal at World Cup final in Mexico. And in cricket, India thrashed Sri Lanka by 72 runs to win record extending 8th Women's Asia Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the leaders of all the BRICS member countries for making the Delhi summit of the grouping productive and outcome oriented. A video reflecting key moments of the two-day summit was posted on the social media handles of the Prime Minister. In the video, a part of the Prime Minister's summit speech was shown where he said, through BRICS, India has advanced friendship, partnership and cooperation all across.
1: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने। हमने ब्रिक्स कनेक्ट के माध्यम से स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी, विमेन इन वर्कफोर्स, सोशल सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दिया है।
9: The leaders who attended the summit included Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, Iranian President Masoud Pezeshkian and Abu Dhabi's Crown Prince Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, Vietnamese Prime Minister Lee Min Hung, Indonesian President Prabowo Subianto, Egypt's President Abdel Fattah Al-Sisi, President of the Philippines Ferdinand R. Marcos Jr., Uganda's Vice President Jessica Alupo, besides others, also attended the summit. Union Home Minister Amit Shah has said that BJP-led NDA governments in 21 states will introduce Uniform Civil Code, UCC, before 2029. Speaking to reporters in Mumbai, Home Minister said UCC has been introduced in several states and he is confident that it will be introduced in the 21 BJP NDA ruled states before 2029.
2: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड
10: वी इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन सेवरल स्टेट आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी विल इंप्लीमेंट द यूसीसी इन ऑल 21 स्टेट्स गवर्न बाय द बीजेपी लेड एनडीए बिफोर 2019 द भारतीय न्याय संहिता विच हैज बीन क्रिएटेड हैज सर्व्ड टू गिव एन इंडियन फाउंडेशन टू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन मैनी स्टेट्स द कन्विक्शन रेट हैज सीन अ 30% इंक्रीज इन जस्ट अ सिंगल ईयर अ सिस्टम इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड वेयर जस्टिस कैन बी डिलीवर्ड विद इन
2: और तीन साल में न्याय मिल जाए ऐसी एक प्रणाली खड़ी हो रही है।
9: Mr. Shah said triple talaq has been abolished, giving Muslim women equal rights. He said the government has strengthened the country's criminal justice system through the Bharatiya Nyaya Sanhita and claimed that several states have recorded a 30% increase in the conviction rate in a single year. The festival of Ganesh Chaturthi is being celebrated today across the country with great devotion. The day marks the birth of Lord Ganesh, who is a symbol of wisdom, prosperity and good fortune. Ganesh Ganesh Chaturthi is being celebrated across Maharashtra. The 10-day festival will culminate on 25th of September on the occasion of Anant Chaturdashi. Maharashtra government has declared Ganesh Utsav as the state festival. More from our correspondent.
5: The spirit of Ganesh Chaturthi is filling Maharashtra as homes and neighborhoods welcome Ganpati Bappa amid devotional songs, aarti and chants of Ganpati Bappa Morya. Homes and public pandals are beautifully decorated while devotees are offering prayers and seeking blessings of Lord Ganesh, the remover of obstacles and the deity of wisdom and prosperity. Across Mumbai, Ganesh mandals are also organizing cultural and social programs adding to city's festive spirit. Union Minister Amit Shah is scheduled to visit the famous Lal Bagcha Raja today. Security arrangements have been strengthened in view of large gatherings. Railways and VEST have made special arrangements to cater to increased demand of passengers. Prarthana, Akashwani News, Mumbai.
9: Pune is fully prepared for the 10-day Ganesh Utsav, which begins today. Lokmanya Bal Gangadhar Tilak gave a wider public form to the festival in 1893. We have a report.
11: Ganpati Bappa Moriya, Mangalmurti Moriya. The grand and historic Ganesh Utsav in Pune began today after Lokmanya Bal Gangadhar Tilak gave wider public form to the festival in 1893. Pune's Ganesh Utsav became a symbol of faith, social unity and public awareness. The five main Ganpatis along with the famous Srimant Dagdushet Halwai Ganpati and several other Ganesh mandals with attract devotees with beautiful decorations, traditional dhol tasha performances and cultural programs. The city is expected to remain vibrant with devotion and enthusiasm throughout the 10 days festival. Large number of devotees from the across India and abroad also visit Pune during Ganesh Utsav. In view of the expected large crowds, the police have made elaborate security arrangements including CCTV surveillance and traffic management. Madhav Jai Bhai, Akashwani Pune.
9: In Uttar Pradesh, festivities of Ganesh Utsav will start today across the state. Women will also celebrate Kajri Tij. More from our correspondent.
6: Preparations for Ganesh Chaturthi has started in state with small and large pandals being decorated at several places. A grand Ganesh Utsav is set to commence at Lucknow's Jhulelal Vatika on the banks of Gomti River. The pandal of the Utsav has been constructed by artisans from Kolkata, modeled after the Swaminarayan Temple in New Jersey, USA. An air-conditioned waterproof hall spanning approximately 13,000 square feet with a seating area of 6,000 square feet has been constructed where devotees can sit and write letters to Gajanan. Meanwhile, the Kajri Tij festival is being celebrated today in eastern part of Uttar Pradesh. On this day, married women will worship Lord Shiva and Goddess Parvati and observe a fast without water. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
9: President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to the people on the occasion of Ganesh Chaturthi. This is Akashwani giving you the news.
12: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
9: Welcome back to Morning News on Akashwani. Hindi Divas is being celebrated across the country today. It was on this day in 1949 that the Constituent Assembly adopted Hindi, written in Devanagari script, as the official language of the country. Today, Hindi is one of the widely spoken languages in the world and the first language of more than 52 crore people. Union Home Minister Amit Shah will attend the Hindi Divas 2026 program and the 6th All India Rajbhasha Sammelan official language conference in Navi Mumbai today. More from our correspondent.
13: The two-day All India Official Language Conference is being organized in Navi Mumbai, Maharashtra by the Department of Official Language under the Ministry of Home Affairs. The conference aims to highlight the relationship between Hindi and Maharashtra's rich linguistic, cultural and literary traditions. In the inaugural session today, Union Home Minister Amit Shah will present the Rajbhasha Gaurav and Rajbhasha Kirti Awards for 2025-26. A key attraction of this year's conference will be a discussion centered on the national song Vande Mataram. With Prarthana's report from Mumbai, Komudi Parekh, Akashwani News.
9: India has condemned the attack on the commercial vessel MT El Gaya off the coast of Oman yesterday. In a statement, the Indian Embassy in Oman said 13 Indian crew members have been rescued so far, while search and rescue operations are continuing for one missing Indian national. The embassy said it is closely monitoring the situation and coordinating with Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. It also thanked the Omani authorities for their support in rescue the Indian nationals. India reiterated its call for the immediate de-escalation of tensions and for dialogue and diplomacy to restore peace in the region. On to sports. Top-ranked India's Dheeraj Boma Devra scripted history by becoming the first Indian male recurve archer to win gold at the World Cup final, edging Japan's Nakanishi Jr. in a thrilling shoot-off at Centio in Mexico. The 25-year-old world number 10 army man produced a dominant run, powering through the quarterfinals and semifinals before overcoming world number 20 Nakanishi 6-5 in a hard-fought five-setter. He also ended a 16-year wait for an Indian male recurve archer to win a medal in this prestigious event. India produced a commanding all-round performance to defeat Sri Lanka by 72 runs in the Women's Asia Cup 2026 final in Dubai last night, securing a record-extending 8th Asia Cup title. The victory also helped India avenge their defeat to Sri Lanka in the 2024 final. It was India's 6th win over Sri Lanka in an Asia Cup final across the ODI and T20 formats, including the 2004 edition, when India defeated Sri Lanka 5-0 in the two-team tournament. India first posted a formidable 183/5 after opener Shefali Verma and Smriti Mandhana produced a record-breaking 129-run partnership. The bowlers then completed the job by dismissing Sri Lanka for 111 in 19.4 overs, with Sri Charani taking 4 wickets and Deepti Sharma claiming 3. Shefali Verma was declared player of the match. President Draupadi Murmu has congratulated all the members of Team India on winning Women's T20 Asia Cup Championship 2026. Germany's Alexander Zverev has won men's singles title of US Open tennis, beating American Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in New York last night. This marks Alexander Zverev's second major title of 2026 following his French Open victory in June. Ben Shelton's loss keeps the 23-year-old Grand Slam title drought alive for American men, though he became the first black American man to make it to the US Open final since Arthur Ashe in 1972. In our bilingual live phone-in program Public Speak tonight at 9:30 p.m., we will bring an insightful discussion on nutrition and early stimulation for childhood development with Dr. Richa Pandey, nutrition specialist, UNICEF India, and Dr. Surendra Singh Bisht, head of pediatrics and neonatology department, Swami Dayanand Hospital, New Delhi. During the program, listeners can ask questions on the subject. To participate, simply dial the telephone numbers 011-231-0481 and 011-231-4444 from 9:30 p.m. onwards tonight. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 928-909-4044 or post your questions on X with the hashtag AskEIR. And now before... for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
14: Thank you, Anuja. All the dailies have widely covered Prime Minister Modi seeking wider Global South role for BRICS as he holds key 15 bilateral meetings and numerous pull-aside meetings on BRICS sidelines. The Statesman headline says, two big takeaways for India, joint declaration and successful Modi-Xi meeting. Modi flags weaponization of tech critical minerals, headlines Hindustan Times. Delhi declaration adopted by BRICS members backs sovereign Palestinian state, cites the Economic Times. As Modi pitches for startup fund and incubator network, Russia proposes new insurance mechanism and grain market, writes Financial Express. Quoting the Union Home Minister, the Indian Express states 21 NDA rule states to introduce UCC by 2029. And finally, Indian hockey extends Asian dominance with the men's and women's teams defending their twin junior titles and securing qualification for the Junior World Cup, notes the Tribune. And with that, it's back to you, Anuja.
9: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi thanks BRICS leaders for making Delhi summit productive and outcome-oriented. Union Home Minister Amit Shah says BJP-led NDA governments in 21 states will introduce uniform civil code before 2029. Festival of Ganesh Chaturthi being celebrated across the country today with great devotion. Hindi Divas being celebrated today. Raj Bhasha Awards for 2025-26 to be presented at Mumbai Conference. India condemns attack on merchant vessel off Oman coast. 13 Indian crew members rescued. Dheeraj Bomma Devra scripts history by becoming first Indian male recurve archer to win gold medal at World Cup final in Mexico. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
15: आकाशवाणी रांची से अभी आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
16: वेक्टर जनित रोग मलेरिया फाइलेरिया डेंगू चिकनगुनिया कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
17: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
16: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
18: अरे रंथु बेटा, अपनी गाड़ी हमेशा तैयार रखना। अब तुम्हारी भाभी के बच्चा होने का समय निकट आ गया है। इस बार उसे स्वास्थ्य केंद्र ही ले जाऊंगी।
19: घर में प्रसव होने से कई परेशानियां हो सकती हैं।
18: उचित देखरेख और स्वास्थ्य के लिए महिला का प्रसव
19: स्वास्थ्य केंद्र में ही कराएं।
18: गर्भ के दौरान बराबर जाँच कराते रहें।
19: हमेशा सही और ANM से संपर्क में रहें।
18: सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर सरकार BPL परिवार को
19: माँ बच्चे के उचित पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहन राशि भी देती है।
20: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
21: देखिए सरपंच साहिबा, हमारा मकान का नया नक्शा ऐसा बनेगा कि पूरा गांव में नहीं होगा।
22: नक्शा तो ठीक है, पर इसमें शौचालय कहाँ है?
21: अरे उसकी क्या जरूरत, हम तो हमेशा खेत खलियान में जाते हैं।
22: क्या कहा? खुले में मल से खतरनाक कीटाणु फैलते हैं, फिर हमारे हाथ के माध्यम से खाने में आ जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। हमेशा साफ और पक्के शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। शौच के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं।
20: स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
23: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। सीजीएल परीक्षा घोटाले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, देवघर से दुमका पशुपालन विभाग का लिपिक गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को दी बधाई। सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार की कामना की। राज्य के कई हिस्सों में आज से अगले चार दिन बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और 21वीं मेजर ध्यानचंद सीनियर जिला हॉकी चैंपियनशिप में सीओई सिमडेगा ने जीता दोहरा खिताब। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी कर अभ्यर्थियों को पास कराने के मामले में झारखंड सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सीआईडी की 5 सदस्यीय टीम ने देवघर पुलिस के सहयोग से रिखिया थाना क्षेत्र के बंधा बैजनाथपुर में छापेमारी कर पशुपालन विभाग के लिपिक सुधाकर कुमार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सीआईडी की टीम उसे ट्रांजिट रिमांड पर रांची ले गई है, जहां उससे गहन पूछताछ की जाएगी। छापेमारी के दौरान उसके पास से दर्जनों चेकबुक, कई लोगों के महत्वपूर्ण दस्तावेज, नकद रुपए समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत किया है और दावा किया कि कई राज्यों में एक ही वर्ष में दोष सिद्धि दर के आंकड़ों में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। आज देशभर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र के दौरान राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए वर्ष 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिंदी दिवस की राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने हिंदी को जन जन की भाषा बनाने की दिशा में भागीदारी का संकल्प लेने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र सेवा को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जमशेदपुर में एक महीने तक चलने वाले विशेष अभियान की तैयारी की है। इसके तहत अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जमशेदपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश महामंत्री और पूर्व मंत्री अमर बावरी ने अभियान की जानकारी दी।
1: सेवा संकल्प अभियान पूरे एक माह यह चलेगा। 12 प्रकार के कार्यक्रम इस पूरे अभियान के दौरान समस्त देश में चलाए जाने वाले हैं और हम सब लोग उनके इस अहिन्न सेवा के प्रति कृतज्ञता जताते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से इस पूरे एक महीने के कार्यकाल को सेवा के काम के साथ जोड़कर यह चलेगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं। गणेश चतुर्थी का त्यौहार हमारे जीवन में ऊर्जा, ज्ञान और सकारात्मक पहल लाता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर संस्कृत में सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कामना की कि यह पवित्र त्यौहार सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा के आरकेसीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस की छात्राओं काजल कुमारी और महालक्ष्मी केशरी द्वारा रक्षाबंधन पर भेजी गई हस्तनिर्मित राखियों के जवाब में आशीर्वाद पत्र भेजा। इस पत्र में मुख्यमंत्री ने इसे भाई बहन के प्रेम का पावन पर्व बताते हुए छात्राओं के स्नेह के लिए आभार जताया और उनके परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री का पत्र मिलने पर विद्यालय की प्राचार्य ने इसे पूरे विद्यालय और जिले के लिए प्रेरणादायी बताते हुए आभार व्यक्त किया। झारखंड चैंबर कार्यकारिणी चुनाव में टीम तुलसी पटेल के 21 प्रत्याशियों में से 13 ने जीत हासिल की है। दूसरी टीम के 8 प्रत्याशी ही जीते, वहीं तीसरी टीम P21 का एक भी सदस्य नहीं जीत सका। चुनाव जीते रोहित अग्रवाल ने कहा कि तुलसी पटेल ही नए अध्यक्ष होंगे और इसकी औपचारिक घोषणा का इंतजार है।
2: हाँ जी, टीम तुलसी से जीते हैं, अध्यक्ष तुलसी पटेल बनेंगे ऐसा पूरा विश्वास है, क्योंकि ऐसे ही परिपाटी है जिसके 11 से ज्यादा होते हैं। तो इस केस में हमारे 13 है, दूसरी टीम के 8 है, लेकिन ये मैं इंश्योर करता हूँ कि 21 के 21 मिलकर काम करेंगे और चेंबर को अलग लेवल पे लेके जाएंगे।
0: साहिबगंज जिले में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण, राहत एवं बचाव कार्यों को संचालित किया जा रहा है। उपायुक्त दीपक दुबे ने प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक पदाधिकारी और कर्मी जरूरतमंद परिवारों तक आवश्यक राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं।
3: जिला प्रशासन की कई टीमें, एनडीआरएफ की 2 टीम सदर प्रखंड अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में राहत सामग्री का वितरण कर रही है। जन वितरण प्रणाली के डीलरों को निर्देश दिया गया है। इस माह का खाद्यान्न है, तत्काल युद्ध स्तर पर लाभुक है, उनके भी 2 दिन के अंदर वितरण सुनिश्चित किया जाए। जिला प्रशासन सतत प्रयासशील है, जिले में बाढ़ पीड़ित लोगों को आवश्यक सहायता पहुँचती रहे और उनकी समस्या का निराकरण किया जाए।
0: कोडरमा घाटी के मेघातरी कालीमंडा के समीप देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 टेलर के बीच हुई जोरदार टक्कर में एक टेलर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा चालक केबिन में काफी देर तक फंसा रहा। इधर घटना की सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य चलाया गया। और अब मौसम का हाल। झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में 17 सितंबर तक गरज के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, साथ ही लोगों से बारिश में खुले में नहीं जाने की अपील की है। 21वीं मेजर ध्यानचंद सीनियर जिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 में COE सिमडेगा ने दोहरा खिताब जीता। पुरुष वर्ग में लिटिल टाइगर को 5-3 से हराकर लगातार दूसरी बार और महिला वर्ग में COE ए ने STC सिमडेगा को 5-3 से हराकर लगातार तीसरी बार चैंपियन बनी। पुरुष में आदिवासी हॉस्टल ए और महिला में संत जेवियर वरवाडी तीसरे स्थान पर रहे। हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज कोनबेगी ने कहा कि इस प्रतियोगिता में कुल 58 टीमों ने भाग लिया।
4: यह ध्यानचंद प्रतियोगिता लगातार 16 दिनों तक चला। 16 दिनों में कुल 128 मैच महिला पुरुष खेले गए। 58 टीमों के बीच आरत महिला वर्ग में COE सिमडेगा ए टीम ने सिमडेगा को पराजित कर विजेता बनी। पुरुष वर्ग की टीम में COE सिमडेगा की टीम ने सिटी टाइगर टीम को पराजित कर विजेता बनी।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने ब्रिक्स सम्मेलन की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर लिखता है, ब्रिक्स का ऐलान, ताकत नहीं समान नियमों से चलेगी दुनिया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, झारखंड चैंबर चुनाव में टीम तुलसी पटेल ने मारी बाजी, 13-8 से मिली जीत। दैनिक भास्कर ने कतरास में भूधसान की खबर को अपनी पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान के शब्द हैं, रूस यूक्रेन शांति वार्ता में मदद करेंगे भारत और चीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। CGL परीक्षा घोटाले में CID की बड़ी कार्रवाई, देवघर से दुमका पशुपालन विभाग का लिपिक गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को दी बधाई। सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार की कामना की। राज्य के कई हिस्सों में आज से अगले 4 दिन बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और 21वीं मेजर ध्यानचंद सीनियर जिला हॉकी चैंपियनशिप में COE सिमडेगा ने जीता दोहरा खिताब। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: घंटे के भीतर पिलाएं माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध।
6: माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध यानी कोलेस्ट्रम या खिरसा दूध।
5: नवजात

0: बच्चे को पोलियो खुराक पिलवाने।
1: पोलियो खतरनाक बीमारी है जिससे बच्चा जीवन भर के लिए अपाहिज हो सकता है।
2: अचानक हाथ पांव लुंज पुंज हो जाता है या बच्चा चल फिर नहीं सकता।
1: बच्चे को एक साल की उम्र तक पोलियो की 3 खुराकें
2: एक एक महीने के अंतर पर दिलाएं।
1: जानकारी के लिए सहिया स्वास्थ्य कार्यकर्ता से मिलें।
2: पोलियो की खुराक सभी सरकारी अस्पताल
1: डिस्पेंसरी या हेल्थ सेंटर में मुफ्त मिलती है।
2: 2 बूंद जिंदगी के।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी डाल्टनगंज केंद्र के एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है आपका अपना लोकप्रिय कार्यक्रम गीत गुंजन। आज का ये विशेष अंक समर्पित है हिंदी सिनेमा के ऐसे फिल्म निर्देशक को जिन्होंने अपनी फिल्मों में रोमांच, रहस्य, एक्शन, पारिवारिक रिश्तों और सबसे बढ़कर यादगार संगीत को खास जगह दी। हम बात कर रहे हैं राजकुमार कोहली की। भाइयों बहनों, 14 सितंबर 1930 को जन्मे राजकुमार कोहली ने नागिन, जानी दुश्मन, बदले की आग, नौकर बीबी का, राज तिलक, इंसानियत के दुश्मन और इंतकाम जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। उनकी फिल्मों में बड़े सितारों की मौजूदगी के साथ संगीत भी खास आकर्षण रहा। तो आइए उनकी जन्मदिन पर उनकी फिल्मों को यादगार बनाते हुए उनके गीतों के साथ शुरू करते हैं

भाइयो बहनों, आप सुन रहे थे फिल्म जानी दुश्मन का बेहद लोकप्रिय गीत तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां। 1989 में आई जानी दुश्मन राजकुमार कोहली की चर्चित फिल्मों में शामिल रही। फिल्म के कई बड़ी सितारे एक साथ नजर आए और साथ में काम किया। इसका संगीत भी खूब लोकप्रिय हुआ। इसके गीतों में चलो रे डोली उठाओ, ओ मेरी जान ऐसी गीत भी श्रोताओं के बीच खास पसंद किए गए। आइए भाइयों बहनों, अब बढ़ते हैं राजकुमार कोहली की एक और बेहद लोकप्रिय फिल्म की ओर, जिसका नाम है नागिन। 1976 में आई नागिन अपने दौर की चर्चित ब्लॉकबस्टर मल्टी स्टारर फिल्मों में रही और इस फिल्म ने राजकुमार कोहली को एक अलग पहचान भी दिलाई। आइए दोस्तों, सुनते हैं नागिन फिल्म से लता मंगेशकर।

राजकुमार कोहली की फिल्मों की एक खासियत थी, कहानी चाहे रहस्य और रोमांस से भरी हो लेकिन गीत कहानी का हिस्सा बनकर सामने आते थे। उनकी फिल्मों की एक और खासियत थी, उन्होंने हमेशा मल्टी स्टारर फिल्में बनाई, बड़े बड़े सितारों को एक साथ मिलाकर काम किया। उनकी फिल्मों में उस समय सुनील दत्त, धर्मेंद्र, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, रेखा, रीना रॉय जैसे अनेकों बड़े कलाकार नजर आए। आइए भाइयों बहनों, अब सुनते हैं उनकी एक और हिट फिल्म जानी दुश्मन का एक ऐसा गीत जो उस समय सुपर डुपर हिट साबित हुआ था।

भाइयों बहनों, राजकुमार कोहली का सिनेमा केवल एक्शन और रहस्य रोमांच तक ही सीमित नहीं था। नौकर बीबी का जैसी फिल्मों में उन्होंने पारिवारिक और हास्यपूर्ण रंग को भी प्रस्तुत किया। आइए भाइयों बहनों, अब

0: सुनिए उनकी 1983 में आई फिल्म नौकर बीबिका से ये सदाबहार गीत।
1: संभल, अरे लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। अरे तो क्या हुआ।

0: भाइयों बहनों, राजकुमार कोहली की फिल्म गीतों के साथ आज का गीत गुंजन का ये विशेष सफर यहीं समाप्त होता है। 14 सितंबर 1930 को जन्मे राजकुमार कोहली ने हिंदी सिनेमा में कई दशकों तक अपनी अलग पहचान बनाए रखी। नागिन से लेकर जानी दुश्मन, बदले की आग, नौकर बीबी का और राज तिलक तक उनकी फिल्मों ने दर्शकों को रोमांच भी दिया और संगीत की कई यादें भी। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए बस इतना ही कहना है कि फिल्में पर्दे से उतर जाती हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, फिल्में पर्दे से उतर जाती है लेकिन अच्छे गीत हमारी यादों में हमेशा गूंजते रहते हैं। इसी के साथ आज का विशेष गुंजन कार्यक्रम यही होता है खत्म, पर यह सफर जारी रहेगा आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से FM के 103 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

आइए भाइयों बहनों, शुरू करते हैं जोहार पलामू कार्यक्रम को। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आज इस जोहार पलामू कार्यक्रम में प्रस्तुति स्वर है मेरा, यानी कि आप सबका अपना रेडियो साथी सैकत चटर्जी का, जबकि प्रस्तुत करता है प्रशांत गौरव। आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं जानकारी की बात। तो सबसे पहले आपको बताते चले साथियों कि ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 14 सितंबर वर्ष का 257वां दिन है और साल में अभी और 108 दिन शेष बचे हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं उन कहानियों को, उन किस्सों को, उन घटनाओं को जो अपने वजूद के दम पर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। दोस्तों बात

1970 की 14 सितंबर की करें तो उस दिन डेनमार्क में प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता मिली थी और 14 सितंबर 1833 को विलियम बेंटिक भारत में पहला गवर्नर जनरल बनकर आए। 1901 के 14 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम मैकेंजी की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी दोस्तों, और 14 सितंबर 1917 को रूस आधिकारिक तौर पर गणतंत्र घोषित हुआ था। 1959 के 14 सितंबर को लूना 2 चंद्रमा की सतह पर उतरा। यह चंद्रमा की सतह तक पहुंचने वाली मानव निर्मित पहली वस्तु थी। इसने सोवियत संघ और अमेरिका में अंतरिक्ष स्पर्धा की शुरुआत कर दी। 1960 के 14 सितंबर को खनिज तेल उत्पादक देशों ने मिलकर ओपेक की स्थापना की, जबकि 1999 के 14 सितंबर को किरीबाती, नाउरू और टोंगा संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गए। 2000 के 14 सितंबर को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज एमई की लॉन्चिंग की। 2000 के 14 सितंबर को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिकी सीनेट के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया और इसी दिन यानी 2000 के 14 सितंबर को ओलंपिक मशाल सिडनी पहुंची। साथियों, 2003 के 14 सितंबर को गुआना बिसाऊ में सेना ने राष्ट्रपति कुंबा माला सरकार का तख्ता पलट कर दिया। 2003 की ही 14 सितंबर की बात करें साथियों, तो एस्टोनिया यूरोपीय संघ में शामिल हो गया। 2006 के 14 सितंबर को परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर इप्सा से सहमति बनी। इसी दिन तिब्बत के आध्यात्मिक निर्वासित नेता दलाई लामा को संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई और विश्व के सबसे बुजुर्ग जयपुर के निवासी 137 वर्षीय हबीब मियां अस्पताल में भर्ती हुए। 2007 के 14 सितंबर को भाइयों बहनों, जापान ने तानगाशिया स्थित प्रक्षेपण केंद्र पर पहला चंद्र उपग्रह H2A प्रक्षेपित किया। साथियों, बात 2008 की 14 सितंबर करें तो इस दिन रूस के प्रेम क्राई में प्रेम हवाई अड्डे पर एवरफोल्ट विमान 821 के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से विमान में सवार सभी 88 लोग मारे गए। 2009 की 14 सितंबर को भारत ने श्रीलंका को 46 रनों से हराकर त्रिकोणीय सीरीज का कॉम्पैक्ट कप जीत गया। खेल की दुनिया में एक और घटना घटी दोस्तों, इसी दिन 2009 के 14 सितंबर को भारत में लिएंडर पेस व चेक गणराज्य के लुकास डोलोही ने महेश भूपति और मार्क नोल्स की जोड़ी को हराकर यूएस ओपन का पुरुष युगल का खिताब जीता। भाइयों बहनों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार पलामू। जोहार पलामू के तहत आपने सुनी कुछ जानकारी की बातों को। आइए दोस्तों, अब चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में। तो आपको बता दें कि आज 14 सितंबर का दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। आज जयंती है उस दूरदर्शी फिल्मकार की जिन्होंने भारतीय पर्दे पर लार्जर देन लाइफ को, सिनेमा को नई परिभाषा दी। जीपी सिप्पी साहब, मरीन ड्राइव के मुगल कहे जाने वाले जीपी सिप्पी जी ने जब भी कुछ रचा, बेमिसाल रचा। ब्रह्मचारी, सीता और गीता, शोले से लेकर शान और सागर तक सिप्पी कैम के गानों ने पीढ़ियों तक दिलों पर राज किया। आइए दोस्तों, इस सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं 15 अगस्त 1975 को। जी हाँ भाइयों बहनों, सिप्पी साहब के हौसले और बजट के बिना 70 mm और स्टीरियोफोनिक साउंड का ये जादू भारतीय दर्शक शायद कभी नहीं देख पाते। और जब शोले की बात हो तो सबसे पहले याद आती है जय और बीरू की वो मोटरसाइकिल, वो सिक्का और उनकी अटूट यारी। आनंद बख्शी साहब के लफ्ज, पंचमदा का संगीत और किशोर रफी की जुगलबंदी ने दोस्ती को एक नया राष्ट्रगान दे दिया। आइए जीपी सिप्पी साहब को अपनी दिल का स्वरांजलि पेश करते हुए सुनते हैं भारतीय सिनेमा के सबसे बड़ा फ्रेंडशिप एंथम, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़।

आइए दोस्तों अब जान लेते हैं 14 सितंबर को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। तो दोस्तों ओलंपिक के लिए सीधी योग्यता हासिल करने वाले पहले भारतीय तैराक साजन प्रकाश का आज जन्मदिन है। उनका जन्म 14 सितंबर 1993 को हुई थी। दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय महिला जांबाजों में से एक रमुना सैद का जन्म 14 सितंबर 1910 और जैसा कि बताया फिल्म निर्देशक गोपाल दास परमानंद सिप्पी यानी कि जीपी सिप्पी का जन्म 14 सितंबर 1914, फिल्म के निर्माता राजकुमार कोहली का जन्म 14 सितंबर 1930, भारतीय राजनीतिज्ञ इंजीनियर तथा लेखक तथागत राय का जन्म 14 सितंबर 1945, भारतीय क्रिकेटर रोबिन सिंह का जन्म 14 सितंबर 1963, प्रसिद्ध विद्वान और भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक गोपी कुमार पोदीला का जन्म 14 सितंबर 1957, भारत

नाट्यम के अग्रणी प्रस्तावक होने का गौरव प्राप्त अलाम्रिल बल्ली का जन्म 14 सितंबर 1957 भारत के एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 42 यूनिवर्सिटियों में शिक्षा प्राप्त की थी। श्रीकांत जिचकर का जन्म 14 सितंबर 1954 कोमोडोर बबरुभान यादव भारतीय नौसेना में सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था। उनका जन्मदिन 14 सितंबर 1928 भारत के प्रसिद्ध भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ राम जेठमलानी का जन्म 14 सितंबर 1923 कथाकार मोहन थपलियाल का जन्म 14 सितंबर 1921 और भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा अनुसंधानकर्ता ज्ञानचंद्र घोष का जन्म 14 सितंबर 1894 को हुई थी। दोस्तों आइए दोस्तों जानकारी की इन बातों के बाद फिर से एक बार हम चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में और आज मनोरंजन की दुनिया में हम बात कर रहे हैं फिल्म निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी साहब का क्योंकि आज उनका जयंती है। तो अगर बात जीपी सिप्पी साहब के प्रोडक्शन की चल रही हो तो 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी को भला कौन भूल सकता है। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा बल्कि बच्चों और बड़ों सबके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान बिखेर दी। जी हाँ दोस्तों शम्मी कपूर साहब का वो बेफिक्र अंदाज, मोहम्मद रफी साहब की जादुई आवाज, एक खुली गाड़ी, ढेर सारे मासूम बच्चे और जीवन की राह पर बिना रुके आगे बढ़ने जाने का फलसफा। तो दिल थामिए और खो जाइए बचपन की उस बेपरवाह मस्ती में। पेश है सिप्पी साहब के बैनर तले बना ये अमर गीत, चक्के पे चक्का चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी।

दोस्तों हम सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार पलामू। जोहार पलामू के तहत हमने सुनी जानकारी की बातों को, हमने जीपी सिप्पी साहब को उनके जयंती पर स्वरांजलि देते हुए सुने उनके बनाए हुए दो फिल्मों के खूबसूरत गीत। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं 14 सितंबर को निधन हुए व्यक्तियों के बारे में। तो आपको बताते चले दोस्तों कि हिंदी के कालिदास के रूप में प्रसिद्ध कविवर चंद्र कुंवर बरवाल का निधन 14 सितंबर 1947 को हुई थी। मिर्जा गालिब के प्रख्यात विशेषज्ञ राल्फ रसेल का निधन 14 सितंबर 2008 को हुई थी। आधुनिक राजस्थान के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी कवि चंद्र सिंह बिरकाली का निधन 14 सितंबर 1992 को हुई थी। तारा शंकर बंदोपाध्याय, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध बंगला साहित्यकार थे, उनका निधन 14 सितंबर 1971 को हुई थी। और हिंदी सिनेमा के जाने माने संगीतकार रामकृष्ण शिंदे का निधन 14 सितंबर 1985 को हुई थी। तो दोस्तों आइए जोहार पलामू कार्यक्रम में संगीतकार रामकृष्ण शिंदे को याद करते हुए सुनेंगे उनके बनाई हुई धुनों पर आधारित गीत। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं रामकृष्ण शिंदे के बारे में। तो संगीतकार रामकृष्ण शिंदे भारतीय सिनेमा और खासकर स्टेज बैले मतलब नृत्य नाटिका संगीत के एक अत्यंत गुणी एवं संवेदनशील संगीतकार रहे हैं। उनका जन्म 1918 में रामनवमी के दिन हुआ था और 14 सितंबर 1985 को उनका निधन हुआ था। 14 सितंबर उनकी पुण्यतिथि के रूप में हम याद करते हैं। उन्होंने 1940 और 50 के दशक की हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा और इंडियन नेशनल थिएटर INT के लिए भी यादगार संगीत रचा। उनके संगीतबद्ध किए गए कुछ प्रमुख गीतों की बात करें तो सबसे दुर्फिशानी फूलों का शमियाना, जिसे लता मंगेशकर ने फिल्म बिहारी के लिए 1948 में गाया था, वो शामिल है। इसके गीतकार थे मुंशी फारोग। जिंदगी भर का गम दे गए, ये भी लता मंगेशकर के गाए गीत है फिल्म बिहारी के लिए। आप भी वो, गए भी वो, खत्म कहानी हो गई, इस गीत को अमीराबाई कर्नाटकी ने गाया था फिल्म मैनेजर के लिए। शमशाद बेगम ने भी उनके लिए गाना गाया था। गाने के बोल थे, दिल की दुनिया उजड़ गई मेरी, ये मैनेजर की गीत थी। उन्होंने जोहराबाई अम्बेला वाली को भी डायरेक्ट किया और उन्होंने उनकी आवाज़ में एक गीत गाई, वो जाने वाले रुक जा दो घूट प्यार के पीले, ये फिल्म थी किसकी जीत, जो 1948 में आई थी। गीतकार थे कुमार शर्मा। अमीराबाई कर्नाटकी ने भी संगीतकार रामकृष्ण शिंदे के लिए गीत गाए। उन गीत के बोल थे, मतवाले नैनों वालों से दिल लगा बैठे। आशा भोसले ने गाए, दूरदेश से आ जा रे परदेशी, फिल्म का नाम था खौफनाक जंगल, जो 1955 में आई थी ये फिल्म। तो आइए दोस्तों इन्हीं में से एक गीत आपके लिए।

दोस्तों, संगीतकार रामकृष्ण शिंदे को याद करते हुए उनके पुण्यतिथि पर हमने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में रामकृष्ण शिंदे के संगीत निर्देशन में प्रस्तुत इस गीत को, जिसे हमने फिल्म बिहारी से लिया था। इसके गीतकार थे मुंशी फारूक। अब दोस्तों, आप लोगों को एक बात साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज 14 सितंबर है, यानी कि हिंदी दिवस। आकाशवाणी डाल्टनगंज के आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर 1949, ये वही ऐतिहासिक तारीख है जब स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। आज का ये पावन दिन केवल एक भाषा के सम्मान का दिन नहीं है दोस्तों, बल्कि ये उत्सव है भारत की उस साझी चेतना का, जो कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक हर भारतीय को एक अटूट सूत्र में पिरोती है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने ठीक ही लिखा था, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बीन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। जी हाँ प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, हिंदी की सबसे बड़ी ताकत उसकी सरलता, उसकी मिठास और उसकी समावेशी प्रकृति है। यह किसी चौखट में सिमटी हुई भाषा नहीं है, बल्कि एक बहती हुई पावन नदी की तरह है, जिसे गंगा जमुनी तहजीब, संस्कृत के तत्सम शब्दों, अवधि ब्रज की मिठास, उर्दू के लफ्जों और भारत की तमाम लोक बोलियों को बड़े ही अपनेपन से अपने सीने में समेटा है। श्रोताओं, आज का दौर तकनीक, डिजिटलीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का दौर है। कभी आशंका जताई जाती थी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हिंदी पीछे छूट जाएगी, लेकिन आधुनिक भारत के युवाओं ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। आज इंटरनेट, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, रेडियो और ऑडियो माध्यमों पर हिंदी की उपस्थिति पहले से कहीं अधिक मुखर और सशक्त हुई है। आज का युवा अपनी भाषा में सीखने, सोचने और संवाद करने में संकोच नहीं, बल्कि गर्व महसूस करता है। जी हाँ दोस्तों, कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, दिनकर और निराला तक हिंदी साहित्य ने हमें विचार, संवेदना और स्वाभिमान का संसार दिया है। हिंदी दिवस का ये अवसर केवल औपचारिक भाषणों या पखवाड़े तक सीमित रहने का नहीं है, यह दिन संकल्प लेने का है कि हम अपनी सहज, समृद्ध और सुंदर भाषा को अपने दफ्तरों की फाइलों से लेकर घरों की चौखट तक, अपनी बातचीत और अध्ययन तक में सहजता से स्थान दें। हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं की प्रतिद्वंदी कभी नहीं है, बल्कि बड़ी बहन है जो सबको साथ लेकर चलने का सामर्थ्य रखती है। आइए आज के दिन हम गर्व से कहें, हम हैं भारतीय और हिंदी है हमारी पहचान। जी हाँ प्यारे प्यारे श्रोताओं, आप सभी को आकाशवाणी डाल्टनगंज की ओर से इस विशेष दिन पर आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की ढेरों मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का दिन मानवीय चेतना, आत्मशुद्धि और हृदय की विशालता को एक अत्यंत पावन अवसर प्रदान करता है। आज हम मना रहे हैं विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस। दोस्तों, जैन दर्शन की अमर परंपरा में आज के दिन हर व्यक्ति बिना किसी संकोच, बिना किसी अहंकार के दोनों हाथ जोड़कर अंतर्मन से कहता है

धामयमि सब्बे जीवा खमन्तु मे मित्ति मे सब भुएसु बिरंग मजज्जु न किणई। अर्थात मेरा संसार के सभी जीवों से मैत्री भाव है, किसी से मेरा कोई बैर विरोध नहीं है, मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ और सभी जीवों को अंतकरण से क्षमा करता हूँ।

क्षमा मांगना और क्षमा करना, ये दोनों ही अत्यंत साहसिक कार्य है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि क्षमा वीरों का आभूषण है, कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। भूल करना मनुष्य का स्वभाव हो सकता है, लेकिन उस भूल का बोध होना और झुककर माफी मांग लेना देवत्व का लक्षण है। जब हम किसी के प्रति मन में गांठ बांध लेते हैं, बैर पालते हैं, तो उसका बोझ सामने वाले से ज्यादा हमारे अपने मन और स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्षमा याचना केवल दूसरों को राहत देने का नाम नहीं है दोस्तों, यह स्वयं के अंतर मन को करवाहट और ईर्ष्या के भारी बोझ से मुक्त करने की आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जो हमारा भारतीय दर्शन भी है। आज विश्व जब सीमाओं, मतभेदों और वैचारिक टकरावों से जूझ रहा है, तब भारतीय संस्कृति का ये शाश्वत विचार वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व पूरी मानवता को दिशा दिखाता है। जब हम हर प्राणी में अपना ही अक्स देखने लगते हैं, तो नफरत की दीवारें अपने आप ढह जाती है। दोस्तों आइए आज के इस पावन दिन पर हम भी हमारे तमाम श्रोता भाई बंधुओं के साथ अपने अहंकार को किनारे रखें और जाने अनजाने हमारे मन, वचन या कर्म से किसी को भी ठेस पहुंची हो तो खुले दिल से कहे मिच्छामि दुक्कड़म, और साथ ही जिसने हमारा दिल दिखाया हो उसे भी मुस्कुरा कर क्षमा कर दे। प्रेम, करुणा और बंधुत्व की यही धारा हम सभी के जीवन को महकाए। इसी मंगल कामना के साथ आज का ये खास दिन यानी कि विश्व बंधुत्व दिवस और विश्व क्षमा याचना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्यारे प्यारे श्रोताओं को। श्रोताओं आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पलामू, यह है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आगे जुड़ते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग से।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। अच्छे स्वभाव और व्यवहार वाले लोगों की जगह इस दुनिया में प्राणवायु फैलाने वाले हरे वृक्षों जैसी होती है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल और दीपांजलि पटेल के साथ दीपक पटेल, टेकलाल पटेल जी लिखते हैं। विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। 19 अगस्त को सुनने को मिला नदी का सफर, हमें और हमारे परिवार को बहुत अच्छा लगा। उसके लिए उमंग टीम को हम हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ज्ञान का खजाना है उमंग कार्यक्रम। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने लिखा है नमस्कार। ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत हमारी प्रिय हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्दों को जान सके जिनको सर्वसम्मति से पूरा विश्व ये मान्यता प्रदान करता है कि इन शब्दों की उत्पत्ति भारतीय है। जंगल, शैम्पू, पायजामा और अगले अंक में बंगला, खाकी, लूट, योग, गुरु शब्दों की मूल उत्पत्ति पर गहन साहित्यिक मालूमात हासिल हुई। कुछ दिनों पहले कुछ हिंदी शब्दों के अर्थ भी बताए गए थे, उसके लिए हम पूरी उमंग टीम का आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल, बेंगलुरु से जगदम्बिका और हमसावेनी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये और राधिका गजभिये, रेडमा डाल्टनगंज पलामू झारखंड से मिंटू दुबे, दिशानी दुबे, किसले और आनंद के साथ साथ प्रीति दुबे। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। हमारा पहला प्रश्न था, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है साथियों, साइकिल का आविष्कार जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल ड्राइस ने किया था। हमारा दूसरा प्रश्न था, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं, उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया। और हमने अगला प्रश्न पूछा था, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? इसका उत्तर है, उन्हें कुल 22 वर्षों का समय लगा। और हमारा अगला प्रश्न था, देश के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में शहीद हुए तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताइए। उन शहीदों का नाम था विनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। हमारा अंतिम प्रश्न था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का क्या नाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का नाम था ठाकुरदास बंदोपाध्याय। तो ये थे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है बैंगनी जोजो, कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित। ये कार्यक्रम एक प्यारे डॉगी के बारे में बताता है जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था और जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। पर क्यों, आइए जानते हैं इस कार्यक्रम से।
3: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
4: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
4: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
3: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
4: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
5: नहीं, मैं तो पीला हूं।
4: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं, मैं तो काला हूं।
6: गुब्बारे गुब्बारे,
4: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: नहीं, मैं

0: लाल हूं।
1: घास घास क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
0: बेचारा जोजो।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
0: आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
3: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए।
4: बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम मारिया मोंटेसरी। इस कार्यक्रम में विश्व की महान शिक्षाविद, चिंतक और शिक्षिका मादाम मारिया मोंटेसरी के जीवन और शैक्षिक जगत में उनके अमूल्य योगदान के बारे में विस्तार से बताया गया है।
3: शिक्षा का उद्देश्य मात्र तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। ये कथन है 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का।
4: आज हम बात करेंगे एक महान विलक्षण स्त्री की, जिसने बाल मनों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा शास्त्र को एक नया आयाम दिया और शिक्षण प्रणाली में सुखद और क्रांतिकारी परिवर्तन

0: इटली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एलेसेंड्रो मोंटेसरी था, जो इतालवी सरकार के वित्त मंत्रालय में एक अधिकारी थे।
1: उनकी माँ का नाम रेनिल्ड स्टोपानी था, जो बहुत ही संभ्रांत और सुशिक्षित घराने से आती थी। मारिया के जीवन पर उनकी विदुषी माता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो जीवन भर उनके साथ रहा।
0: जब वो मात्र 4 वर्ष की थी, उनका परिवार चेरावाले से रोम आ गया। 6 वर्ष की आयु में मारिया ने स्थानीय राज्य पोषित विद्यालय में दाखिला लिया। वो बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी।
1: उनके विद्यालय में सह शिक्षा थी। उन दिनों सामाजिक मान्यताओं के कारण ये स्वीकार करना आसान नहीं था कि लड़कियां लड़कों से अच्छा कर सकती हैं।
0: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 1886 में रेजियो इंस्टीट्यूटो टेक्निको लियोनार्डो दा विंची नामक तकनीकी स्कूल में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने चिकित्सा विज्ञान पढ़ने का मन बनाया। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण उन्हें बहुत हतोत्साहित किया गया
1: और आखिर आ ही गया 10 जुलाई 1896 का वो गौरवशाली दिन।
2: साथियों, आज का दिन रोम विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत हर्ष के साथ सूचित करते हैं कि मादाम मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करके इटली की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव प्राप्त किया। बधाई हो।
3: धन्यवाद,
0: बहुत बहुत बधाई हो। इटली की पहली महिला डॉक्टर, भाई वाह, कमाल है।
4: बहुत बहुत बधाई हो।
0: अठारह सौ 1897 में वो रोम विश्वविद्यालय के मनोरोग क्लिनिक द्वारा संचालित एक शोध कार्यक्रम में शामिल हुई और इस शोध कार्यक्रम के तहत वो रोम शहर और आसपास के पिछड़े इलाकों में बने बाल गृहों का दौरा करने लगी।
1: इन बाल गृहों में सामान्य बच्चों के साथ साथ आंशिक रूप से दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, लोकोमोटर बाधित और कुछ कुछ बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे भी शामिल थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके सोचने के तरीके में एक नया आयाम जोड़ दिया। एक दिन वो एक बाल गृह पहुंची। मिस्टर गैब्रियल उस बाल गृह की देखभाल करते थे।
5: आइए मारिया जी।
3: कैसे हो गैब्रियल, कैसा चल रहा है यहाँ?
5: आप
3: कुछ उदास लग रहे हो।
5: जी मैडम, अब आपको क्या बताऊं, मुझे तो लगता है कि इन दिव्यांग बच्चों की हालत दिन ब दिन और बुरी होती जा रही है।
3: और बुरी?
5: जी।
3: अब भला वो कैसे?
5: आज दोपहर के भोजन के बाद आप बच्चों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण कीजिएगा।
3: हाँ हाँ, जरूर।
5: जी
1: बच्चों की कक्षा का समय समाप्त हुआ और दोपहर के भोजन का समय हो गया। भोजन के बाद बच्चों को कुछ समय का अवकाश दिया जाता था। मारिया ने देखा कि भोजन के बाद कुछ बच्चों ने अपने बर्तनों को, भोजन की मेज की खुरदरी सतह को, खिड़कियों की जालियों को छूना और टटोलना शुरू किया।
6: देखा आपने मारिया जी, क्या ये असामान्य नहीं है? जब ये बच्चे छोटे थे तो इनकी इस तरह की गतिविधियां बहुत कम थी, लेकिन अब तो देखिए देखिए, कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं। अभी वो सड़क की गिट्टियों से खेलेंगे। वो देखिए, वो बच्चा टूटी हुई दीवार से निकली ईंटों पर उंगलियां फेर रहा है।

0: देखिए देखिए।
1: नहीं नहीं गैब्रियल, मुझे लगता है कि यह सामान्य नहीं है।
2: बाल गृह से बाहर आकर लौटते समय रास्ते में वो सोच रही थी,
3: शायद ये बच्चे चीजों को इसलिए बार बार छूते हैं क्योंकि उन्हें संवेदी उत्तेजना चाहिए, लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा करके शायद वो सीखना चाहते हैं, वो अवलोकन और निरीक्षण करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद इनके सीखने सिखाने का एक नया रास्ता मुझे मिल गया है।
4: उन्होंने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया और इस विषय पर अन्य शिक्षाविदों के विचार जाने। उन्होंने सीखने के प्रतिफल विषय पर जितना संभव हो सके पढ़ना शुरू किया और विशेष रूप से उन्होंने 19वीं शताब्दी के शुरुआती फ्रांसीसी शिक्षाविद एवं बाल शिक्षा विशेषज्ञ एडवर्ड सेगुइन के अभूतपूर्व काम का 2 वर्षों तक गंभीर अध्ययन किया।
2: उन्होंने लोम्ब्रोसो और सर्गी जैसे विचारकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि की भी जानकारी प्राप्त की।
3: मैंने अब महसूस कर लिया है कि इन बच्चों की बहुत सी समस्याओं का निदान चिकित्सा और दवा से अधिक शिक्षण विधि में निहित है। क्यों ना उनके लिए ऐसे खिलौनों और पाठ्यचर्या का विकास किया जाए जो उनकी संवेदना को उत्तेजित करे और उनमें उत्सुकता जगाए। खिलौनों को यदि एक समस्या की तरह उन्हें दे दिया जाए तो वो खिलौना ही उनका समाधान बन जाएगा।
2: बस फिर क्या था, उन्होंने बौद्धिक रूप से दिव्यांग और अन्य बाधित बच्चों की संवेदी धारणाओं और मोटर कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए व्यवहारिक उपकरण और खिलौने बनवाए जिनमें ब्लॉक्स, छिद्रों वाला तख्ता, बीट्स, कंचे, माला, गीली मिट्टी, रंग, विभिन्न अलग अलग आकारों की खुरदरी आकृतियां, वाद्य यंत्र, लकड़ी के जोड़ने वाले ब्लॉक्स और पैटर्न्स वाले खेल मुख्य रूप से शामिल थे।
4: उन्होंने बाल गृहों के रखरखाव पर भी बहुत जोर दिया और सुनिश्चित किया कि इन गृहों के वातावरण को सुसज्जित और साफ सुथरा रखा जाए। दीवारों पर अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी समतल और खुरदरी आकृतियां बनाई जाएं। 6 जनवरी 1907 को कासा देई बम्बिनी यानी चिल्ड्रन हाउस खुला।
2: इन बाल गृहों में 3 से 8 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और शर्त ये थी कि बच्चों को साफ सुथरा बिना पुस्तकों के भेजा जाए। अब सीखने सिखाने के ये बाल गृह लोगों की उत्सुकता और आलोचना का केंद्र बन चुके थे। चाइल्डहुड हाउस के कुछ फर्नीचर ऐसे भी होते थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था, इससे मोटर ट्रेनिंग भी हो जाती थी।
4: एक दिन मारिया कक्षा में आई। नव सुसज्जित स्कूल का दृश्य ही अद्भुत था। हर बच्चा अपने अपने कार्य में लगा हुआ था, कोई ज्ञानेंद्रियों तो कोई कर्मेंद्रियों से संबंधित अभ्यास में लगा था, कोई चित्र बना रहा था तो कोई कुछ और कर रहा था। सारा कक्ष रोचक गतिविधियों से भरा हुआ था।
2: ১৯০৮ की शरद ऋतु तक 5 बाल गृहों का संचालन किया गया, 4 रोम में और 1 मिलान में। इन खेल आधारित बाल गृहों में आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने

0: असाधारण प्रगति की और जल्द ही 5 साल के इन बच्चों ने लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया। मोंटेसरी के इस नए दृष्टिकोण की खबर सारे यूरोप में तेजी से फैल गई। शिक्षाविद और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और बच्चों के अभिभावक खुद ये देखने के लिए पहुंचे कि वो इस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम कैसे प्राप्त कर रहे हैं।
1: धन्यवाद डॉक्टर मारिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था कि मेरी बच्ची कभी नहीं सीख पाएगी, लेकिन अब वो लिखने और पढ़ने भी लगी है।
2: धन्यवाद
3: डॉक्टर मारिया, मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। आपने असंभव को संभव कर दिखाया। वाह, मुझे धन्यवाद के शब्द नहीं मिल रहे हैं। आपके पढ़ाने का तरीका कमाल है, बेमिसाल है।
2: धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने शिक्षा का कोई नया तरीका इजाद नहीं किया। मैंने तो बस कुछ छोटे बच्चों को उनके अनुसार जीने का मौका दिया है।
1: जी,
2: मैं सोचती हूँ कि यदि इसी खेल और अनुभव आधारित विधि का प्रयोग सामान्य बच्चों में भी किया जाए तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे।
1: जी जी, धन्यवाद
2: धन्यवाद।
0: समावेशी शिक्षा की सफल शुरुआत शायद यहीं से होती है। मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों के संदर्भ में सफलता मिलने पर मोंटेसरी ने इसी विधि का उपयोग सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए भी किया।
4: उनकी असाधारण सफलता को देखते हुए इटली की सरकार ने उन्हें बाल गृह संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मारिया मोंटेसरी ने बाल शिक्षा विषय पर अनगिनत लेख लिखे और एक पुस्तक भी लिखी, जिसे आज विश्व मोंटेसरी मेथड्स के नाम से जानता है।
0: 1939 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के निमंत्रण पर वो भारत आईं और देश भर में बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति पर व्याख्यान दिए। उन्होंने लगभग पूरे विश्व में जाकर मोंटेसरी शिक्षण विधि का प्रचार प्रसार किया।
4: आज पूरे विश्व में मोंटेसरी शिक्षण पद्धति पर आधारित अनगिनत विद्यालय हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित सीखने सिखाने के कार्य में जुटे हैं।
0: मोंटेसरी पद्धति में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बच्चों का कार्य और ज्ञान में कुशलता प्राप्त करने के भाव को ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उनकी शिक्षण विधि के मूल स्तंभ हैं बच्चों की स्वतंत्रता, स्वशिक्षा, रोचक शिक्षण, संवेदी अनुभव, प्यार और सम्मान।
4: छह मई 1952 को इस महान शिक्षा शास्त्री का हॉलैंड में निधन हो गया। मारिया मोंटेसरी को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उन्हें फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा गया और दुनिया के कई महानतम विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। आधुनिक शोध भी उनके नवाचार और निष्कर्षों की मूलभूत भावना को मान्यता देता है।
0: विश्व शिक्षा के क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए सदा ऋणी रहेगा।
5: आओ खेलें झटपट झटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं हम अक्षर।

इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। 12-13 सितंबर 2026 को आयोजित शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। ये अभियान जन भागीदारी के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा में मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवाचे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल हैं। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृह मंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत एमटीएल गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक

0: बालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
1: एकदंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि।
2: गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। पुणे के भव्य और ऐतिहासिक गणेशोत्सव का आज से शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्य 5 गणपति सहित विभिन्न गणेश मंडलों की आकर्षक सजावट, ढोल ताशों की गूंज और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अगले 10 दिन तक पुणे शहर में उत्साह और भक्ति का माहौल रहेगा। इस वर्ष कई गणेश मंडलों की ओर से सामाजिक संदेश और जन जागरण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और यातायात का नियोजन किया है। नगर निगम की ओर से स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। माधव जाय भाई, आकाशवाणी समाचार, पुणे।
1: गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि।
0: क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल उसने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला T20 एशिया कप चैंपियनशिप 2026 जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the leaders of all the BRICS member countries for making the Delhi summit of the grouping productive and outcome-oriented. A video reflecting key moments of the two-day summit was posted on the social media handles of the Prime Minister. In the video, a part of the Prime Minister's summit speech was shown, where he said, "Through BRICS, India has advanced friendship, partnership and cooperation all across."
1: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने। हमने ब्रिक्स कनेक्ट के माध्यम से स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी, विमेन इन वर्कफोर्स, सोशल सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दिया है।
0: यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज सेड दैट बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट्स इन 21 स्टेट्स विल इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिफोर 2029। Speaking to reporters in Mumbai, the Home Minister said UCC has been introduced in several states and he is confident that it will be introduced in the 21 BJP NDA rule states before 2029.
2: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड
3: वी इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन सेवरल स्टेट आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी विल इंप्लीमेंट द यूसीसी इन ऑल 21 स्टेट्स गवर्न बाय द बीजेपी लेड एनडीए बिफोर 2029 द भारतीय न्याय संहिता व्हिच हैज बीन क्रिएटेड हैज सर्व्ड टू गिव एन इंडियन फाउंडेशन टू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन मैनी स्टेट्स द कन्विक्शन रेट हैज सीन अ 30% इंक्रीज इन जस्ट अ सिंगल ईयर अ सिस्टम इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड वेयर जस्टिस कैन बी डिलीवर्ड विद
2: और तीन साल में न्याय मिल जाए ऐसी एक प्रणाली खड़ी हो रही है।
0: The festival of Ganesh Chaturthi is being celebrated today across the country with great devotion. The day marks the birth of Lord Ganesh, who is a symbol of wisdom, prosperity and good fortune. The day marks the birth of Lord Ganesh, who is a symbol of wisdom, prosperity, also known as Vinayak Chaturthi or Ganesh Utsav. The day marks the beginning of 10-day long festivities during which people place clay idols of Lord Ganesh at their homes and worship them. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings to the people on the occasion of Ganesh Chaturthi. Hindi Divas is being celebrated across the country today. It was on this day in 1949 that the Constituent Assembly adopted Hindi, written in Devanagari script, as the official language of the country. Union Home Minister Amit Shah will attend the Hindi Divas 2000.

0: बिमल रॉय एक महान फिल्मकार के रूप में उन्होंने इतनी कालजयी फिल्में हमें दी और गुरु के रूप में उन्होंने एक नई श्रृंखला बनाई उनके जैसी फिल्मों का आगे निर्माण किया लोगों ने। तो एक फिल्मकार के रूप में या एक गुरु के रूप में आप क्या मानती हैं, वो किस तरह से रहे होंगे?
1: पिताजी ने जो उनके उनके साथ जो जो काम किया, जैसे गुलजार है, ऋषिकेश मुखर्जी है, आशीष सेन है, इनको सबको उनका प्रभाव से बहुत उत्साहित किया था फिल्म बनाने के लिए, और उनको उत्साह देते थे और उनको चांस भी मिलता था कि हमारा प्रोडक्शन बिमल रॉय प्रोडक्शन में उनका फिल्म भी बनती थी। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि असली गुरु का हिसाब, जो गुरु दक्षिणा इनको देना चाहिए
0: जी,
1: सबको
0: जी। उनकी कालजयी फिल्में हैं जैसे दो बीघा जमीन है, देवदास है, परिणीता है, मधुमती है, सुजाता है, परख है और बंदिनी। इन मतलब एक एक फिल्म पर अगर हम चर्चा करें तो शायद कितने एपिसोड निकल सकते हैं, कितनी लंबी विस्तृत चर्चा हो सकती है। तो रिंकी भट्टाचार्य उस उम्र में उन फिल्मों को देखकर क्या सोचती थी?
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी,
1: सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से,
0: बिल्कुल
1: हाँ। तो इसलिए ना पिता खाली दो बीघा जमीन को लिखा था सलील चौधरी ने, तो वो फिल्म के लिए लिखा था, पिताजी के लिए लिखे थे। तो उसको जो फिल्म बनाया पिताजी, उसका कोई लिटरेरी वर्शन नहीं था,
0: जी।
1: हाँ, उनको लिखा था पिताजी के लिए सलील चौधरी ने, और उनको जो फिल्म है आज तो दो बीघा जमीन को सबसे बड़ा मान्यता मिलती है, यहाँ वहाँ फॉरेन कंट्रीज में सब में दिखाया जा रहा है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो जब बात चली है दो बीघा जमीन की, तो कैसे इस महान फिल्म की रचना हुई होगी, किस तरह की घटनाक्रम में फिल्म बनी होगी उस जमाने में?
1: ये मुझे कभी कभी लगता है कि दो बीघा जमीन तो से उनका जिंदगी इसका बहुत असर है
0: जी,
1: क्योंकि पिताजी भी जब छोटे थे उनको घर से उनका जो जमीन था ईस्ट बंगाल, हम लोग ईस्ट बंगाल के हैं ढाका के
0: जी,
1: तो वहाँ से उनको निकाला गया था, तो वो भूल वो उनका जो वो दर्द था, वो ट्रेजिडी था, हाँ, तो वो भूल नहीं सके थे। तो मुझे लगता है इससे दो बीघा जमीन में और बहुत बहुत इंटेंसिटी हो गया है। इसके लिए ना पिताजी के लिए वो जो वो दुर्घटना थी कि उनको घर से निकाला गया था,
0: जी,
1: वो भूल नहीं पाए कभी भी, हमेशा चाहते थे कि जाएं, हम जब ईस्ट बंगाल चलेंगे वो सोचते थे कि हम जाएंगे वहाँ पे। तो उसका वो ट्रेजेडी जो था वो जिंदगी भर उन्होंने उसका ये किया,
0: मन में रहा और उसी पीड़ा का परिणाम दो बीघा जमीन के रूप में उतरा।
1: जी जी
0: जी। तो जब हम उस फिल्म को देखते हैं तो बलराज साहनी और बिमल राय की जोड़ी ने जिस तरह से यथार्थ को पर्दे पर उतारा वो अद्भुत था। तो उस वक्त उस फिल्म की सफलता को घर में आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया होगा?
1: नहीं, हमारे घर में ऐसे सेलिब्रेशन कोई नहीं होते थे फिल्म विल्म को लेके, लेकिन पिताजी का ये जो दो बीघा जमीन है ना, ये मैं कहूँगी कि पिताजी का श्रेष्ठ है, लोग सोचते हैं, लेकिन मैं तो बोलूँगी सब फिल्म सुजाता, बंदिनी, सबको लेके जब लोग देखते हैं ना तभी बोलते हैं कि कैसे कहाँ से आया स्टोरी। हाँ, उनको लिटरेचर पे बहुत ये था, बहुत वो ये थे प्रभावित थे लिटरेचर, बंगाली लिटरेचर के।
0: जी जी जी। तो फिल्म दो बीघा जमीन के जो शंभू की पीड़ा थी वो आज भी कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में व्याप्त है।
1: जरूर, मैं तो बोलूँगी ये बहुत सच बात है। हमने जो फिल्म दिखाई थी वेनिस फेस्टिवल में लास्ट ईयर, तो वहाँ सब लोग खड़े होते हैं, जैसे फिल्म खत्म हुई सब लोग रो रहे थे
0: जी,
1: इतना उसका प्रभाव था।
0: हाँ,
1: एक इंडियन फिल्म, कोई स्टार नहीं उसमें, हाँ, फिर भी वेनिस फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल में उसका क्या भूमिका थी तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, आप वो देखने वाली एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ थी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं गई उनके साथ, वहाँ फेस्टिवल मैंने एक अटेंड किया, और हम लोग जब वापस आए तो मुझे बहुत बहुत बहुत मुझे प्राउड फील रहा कि इतना बड़ा काम हम लोगों ने किया है, हासिल किया है, बहुत बहुत ही बढ़िया बात है ये
0: जी। तो रिंकी जी, जब बात दो बीघा जमीन की चल रही है तो क्यों ना इसी फिल्म का एक गीत हम सुन ले, आप बताएंगे कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: जो लोरी है जिसमें मीना कुमारी ने एक छोटा सा भूमिका किया है।

0: बहुत सुंदर लोरी है ये रिंकी जी, इस लोरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगी?
1: जरूर, मैं बताना चाहूंगी कि मीना कुमारी जो मेरे पिताजी के बहुत करीब से
0: जी,
1: और पिताजी उनको बहुत स्नेह करते थे
0: जी,
1: तो उन्होंने बोला कि दादा आपने फिल्म तो बनाई लेकिन मुझे आपने रोल नहीं दिया कुछ, तो पिताजी ने बोला कि उसमें तो तुम्हारे लिए लायक कोई रोल नहीं था,
0: हाँ।
1: लेकिन ठीक है हम एक गाना डालेंगे तो उसमें तुमको मैं ले लेती हूँ
0: जी।
1: तो इसीलिए मीना कुमारी ऑन स्क्रीन मीना कुमारी सिंगिंग द लोरी।
0: और ये लोरी बहुत, हाँ आप बता रही थी,
1: लोरी बहुत, हम लोग सब गए थे रिकॉर्डिंग के लिए
0: जी,
1: कहाँ मुझे पता नहीं कौन से स्टूडियो, शायद दादरा में कोई स्टूडियो था, वहाँ बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हुए और ये लोरी का रिकॉर्डिंग हुआ 4 बजे सुबह,
0: सुबह चार बजे
1: रिकॉर्डिंग।
0: तो लता मंगेशकर की गाई हुई लोरी है, हाँ। ये तो सुबह 4 बजे इसकी रिकॉर्डिंग हुई,
1: सुबह 4 बजे रिकॉर्डिंग
0: जी जी,
1: और तब तक लता जी वहीं पे बैठी थी।
0: अच्छा,
1: नेचुरली
0: हाँ,
1: उनका ही गाना है ना,
0: तो बहुत टेक रिटेक हुई होंगे, मतलब
1: नहीं बहुत टेक नहीं,
0: हाँ।
1: वो तो एक स्पेशलिस्ट थी।
0: इस तरह के बहुत सारे गीत पर हम बात करेंगे, फिल्म देवदास पर हम आना चाहेंगे, एक ऐसी फिल्म है देवदास जो अमर हो गया ये किरदार,
1: और एक चीज, फर्स्ट टाइम साहिल लुधियानवी ने गाना लिखा था उसमें,
0: हाँ जी जी,
1: और एस डी बर्मन
0: साहब का संगीत, हाँ। है और इतना यूनिक संगीत है और गाने के बोल जो है आज भी मतलब
1: मुझे तो एक सीक्वेंस बहुत अच्छा लगता है, मितवा करके गाना है, गीत तो पसंद है ही, और ऑन स्क्रीन मीना कुमारी बहुत सुंदर लग रही है उसमें।
0: जी जी,
1: उनका जो ये है ना वो सीक्वेंस बहुत सुंदर है।
0: तो फिल्म देवदास की जैसे हमने बात की कि ये एक ऐसा कालजयी फिल्म, और एक ये जो पात्र है ये भी अमर हो गया, और क्या उस वक्त जब ये फिल्म बनाई गई थी तो क्या ये सोचकर बनाई गई थी कि ये प्रेम और विरह की कहानी है, आप क्या सोचती हैं?
1: नहीं, देवदास का क्या है, फर्स्ट देवदास जब बनी थी पिताजी उसके कैमरामैन थे।
0: अच्छा,
1: हाँ, बड़ुआ के देवदास का।
0: जब केएल सहगल साहब जिसमें
1: केएल सहगल थे, पिताजी उसका मेन ये थे, कैमरामैन थे।
0: अच्छा,
1: तो उनको तब से उनको लगता है, और पिताजी का सबसे मुझे अजीब लगता है कि पिताजी तो घर में, हमारे घर में दारू शारू का कुछ यही नहीं था, लेकिन पिताजी ने फिल्म बनाई एक पियक करके ऊपर
0: जी,
1: लेकिन ये आज भी देवदास के लिए लोग बोलते हैं कि कितना अच्छा, और गाने भी बहुत सुंदर,
0: बहुत शानदार,
1: बहुत सुंदर गाने हैं।
0: हालांकि देवदास के आज तो कई फिल्मी संस्करण निकल गए, कई फिल्में कितनी बार बन चुकी है, लेकिन बिमल रॉय की जो देवदास है वो आज भी बिल्कुल अलग लगती है।
1: जी, मैं आपसे बहुत सहमत हूँ इसके बारे में।
0: बिल्कुल, तो उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए कि क्या बिमल रॉय ऐसा मानते थे कि उस वक्त सिनेमा समाज को बदल सकता है? आप उस वक्त कितनी उम्र की थी और आपने क्या समझा होगा, क्या जाना होगा उस वक्त?
1: मेरा उम्र तो कुछ ज्यादा नहीं था, तब 15 साल की थी। तो जब देवदास बनी, देवदास का जो ये खास बात मुझे बोलना है कि देवदास के पारो का अभिनय जो है सुचित्रा सेन
0: जी,
1: उसको पिताजी ने पहले रिजेक्ट कर दिया था।
0: अच्छा।
1: दूसरा, हाँ, वो आई थी, वो हमारे घर की बहू समझा जाती थी, उनका शादी हुआ था हमारे घर में
0: जी।
1: तो जब एक दफे वो उनको फिल्म में उतरना था तो पिताजी के पास सबसे पहले आए, तो पिताजी ने बोला तुम घर की बहू हो, तुम कैसे फिल्म में काम करोगे, तो उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसी को पिताजी ने बुलाया देवदास के लिए, तो हम लोग बहुत हंसते थे कि पिताजी को और फिर से दोबारा उनको बुलाना पड़ा,
0: हाँ।
1: क्योंकि उससे बढ़िया तो कोई नहीं,
0: हाँ।
1: पारू का ये जो किया था
0: अभी नहीं था,
1: हाँ,
0: वो कोई और कर ही नहीं सकता नहीं, था ऐसा बिमल रॉय साहब का मानना
1: था,
0: नहीं
1: सकता था।
0: और वो अद्भुत सुंदर लगी है उसमें, और ये पात्र कितना जीवंत हो गया, पारो की भूमिका कितनी मतलब कालजयी एक भूमिका हो गई है, आज भी याद की जाती
1: जी,
0: है
1: जी,
0: जी। लोगों का रिएक्शन क्या रहा होगा उस वक्त देवदास फिल्म को देखने के?
1: लोग तो एकदम पूरा हाउसफुल जाता था, पूरा हाउसफुल जाता था, लेकिन मेरा हिसाब से पिताजी का देवदास जो इतना बड़ा बना है, क्योंकि उससे पिताजी उसको समझते थे, वो सामाजिक जब ये है ना समस्या
0: है, व्यवस्थाएं थी उस वक्त,
1: हाँ, उनको समझते थे, इसीलिए उसका इतना प्रभाव आज भी है। आज भी कोई, मैं तो आज भी देवदास देखने में मुझे डर लगता है कि इतना इसका जो ये है ना माहौल जो है वो बहुत बहुत एक इम्प्रेस करता है
0: जी,
1: बहुत ज्यादा
0: जी।
1: और आई थिंक मुझे लगता है कि वैजयंतीमाला भी जस्ट उसके पहले ही मधुबन किया था उन्होंने, क्योंकि वो डांसर भी थे ना, इसलिए उसमें देवदास में डांस तो है, इसीलिए
0: बहुत सुंदर है।
1: बहुत, हाँ।

0: इस फिल्म को जब निर्माण किया जा रहा था, इस फिल्म का जब निर्देशन कर रहे थे बिमल रॉय, तो उनकी दिनचर्या क्या रहती थी और आप परिवार वालों की दिनचर्या क्या उस वक्त थोड़ी बदल जाती थी?
1: नहीं नहीं नहीं, पिताजी जो काम करते काम काम को अलग ही रखते थे वो घर से। हमारा घरेलू जो ये है ना
0: वो अलग था,
1: अलग था एकदम, और काम का ये बहुत ही अलग था, तो कभी नहीं मिक्स करते थे, कोई तकलीफ नहीं थी। पिताजी बहुत डिसिप्लिन थे एज ए डायरेक्टर, और फिल्मी दुनिया में तो ऐसा इतना डिसिप्लिन मैं देखा नहीं किसी को आज तक
0: जी।
1: कि इतना डिसिप्लिन थे, उनको कहाँ पे कब जाना है क्या करना है सब उनको पता था।
0: हाँ,
1: तो इससे हमको हमारा भी बहुत प्रभाव हुआ कि हमको भी पिताजी का शायद समय बिताने को मिला। हाँ, तो इसीलिए ना कि हमको कोई ये नहीं है, कोई कंप्लेन ही नहीं है कि देवदास बनाते थे या कोई बंदिनी बनाते थे। बंदिनी तो उनकी लास्ट फिल्म है, बंदिनी के बाद तो उनका बंद ही हो गया काम
0: जी।
1: हाँ, तो ये बहुत बहुत अहम बात है कि पिताजी कभी दोनों को मिक्स नहीं करते थे
0: जी। जी, तो आप लोग क्या फिल्म हॉल में जाकर इस फिल्म को देखा था?
1: नहीं, जाते थे, देखते थे, हम लोग हॉल में भी जाते थे, लेकिन जो एडल्ट फिल्म है जैसे देवदास तो एक एडल्ट फिल्म है
0: जी,
1: तो देवदास के लिए हमारा हम लोग को जाना ठीक नहीं लगता था, तो पिताजी हमको देवदास हमने हॉल में कभी नहीं देखा।
0: अच्छा।
1: हाँ, उसमें एडल्ट सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन मैं बोलती हूँ कि उसका स्टोरी का तो एडल्ट, उसका एडल्ट इंटरप्रिटेशन है, तो इसीलिए उनके लिए जो रिलीज हुई थी मुझे तो याद नहीं कि मैं हॉल में जाके कभी भी देवदास देखा। मैंने फर्स्ट देखा दूरदर्शन में।
0: अच्छा, दूरदर्शन में आपने ही फिल्म देखी होगी। तो इस फिल्म के गानों के बारे में तो हम क्या ही आपसे कहें, एसडी बर्मन साहब का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल हैं। कौन सा गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगी जो आपकी खास पसंद होगा?
1: मेरा खास पसंद है आगे तेरी मर्जी।
0: आगे तेरी मर्जी जी, बिल्कुल।

0: तो आपके घर में बराबर पढ़ाई का माहौल रहता था, बच्चे घर में पढ़ाई करना
1: पूरा? पिताजी का ये भी था कि हमको ऑक्सफोर्ड में ले जाए पढ़ाए।
0: अच्छा।
1: हमको लेके भी गए थे लंदन
0: जी
1: दिखाने के लिए, लेकिन मैं, मुझे ठीक नहीं लगा कि हम परिवार से इतना दूर रहेंगे, इसलिए मैंने हाँ नहीं किया। नहीं तो आज मैं ऑक्सफोर्ड रिटर्न होती थी
0: जी,
1: अगर मैंने उनका इस पर
0: बात को माना था। घर से दूर जाना आपको पसंद नहीं था। तो घर में एक आपसी सब में एक तारतम्य था, सामंजस्य था, प्रेम की भावना, सब एक दूसरे से गूंथे हुए थे।
1: एकदम, एकदम, एकदम।
0: बहुत बड़ी बात होती है कि सभी लोग मिलजुल कर रहे, और
1: फिल्म दुनिया में स्पेशली
0: सबसे बड़ी बात है कि फिल्मी दुनिया में रहकर एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान करना और मिलजुल कर रहना, विश्वास करना, सबसे बड़ी बात ये रही थी।
1: और हमारे सामने हम दूसरा फिल्मी दुनिया देखते थे, फिल्मी घर आने देखते थे, मुझे लगता था कि हमारा घर इतना अलग क्यों है, क्योंकि हमारे घर में कोई माहौल ऐसा नहीं था, कोई भी माहौल नहीं था कि हम लोग कुछ पढ़ा लिखा ये सब हमको उत्साह करना। पिताजी का बहुत अहम बात था, पिताजी बहुत मानते थे, ही वॉज एक्चुअली एजुकेशनिस्ट। आपने देखा है ना पिताजी, हमारे बिमल रॉय में बिमल रॉय फिल्म्स का जो लोगो है, कौन सा है आपको मालूम है? कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे?
0: जी जी,
1: बॉम्बे यूनिवर्सिटी का जो ये है टावर है, वो उनका फिल्म का ये है
0: लोगो,
1: तो ये भी कोई सोचने लायक बात है ना।
0: जी जी, जब बिमल रॉय की बात हो और सुजाता फिल्म की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम बात करते हैं सुजाता फिल्म की। आपको अपने पिता बिमल रॉय की फिल्म जो है सुजाता के बारे में सबसे खास बात तो क्या लगती है?
1: जैसे मैंने बोला कि पिताजी तो लिटरेचर बेस्ड थे ना
0: जी,
1: हमेशा फिल्म बनाने के पहले वो सोचते थे कहाँ से लाए, बंगाली लिटरेचर से। सुजाता के बारे में मैं ये बताऊंगी, एक फेस्टिवल में मैं गई थी, फॉरेन फेस्टिवल, जहाँ पे सुजाता, पिताजी का सब फिल्म से उन्होंने सुजाता को चूज किया, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे यूरोप में कौन जात पात का कोई ये करेगा, लेकिन मैं एकदम बुद्धू बन गई सोच के। लोग बाहर आ रहे थे सब रोते रोते सुजाता देख के, उनको जो वो जो मदर डॉटर का जो है ना, मदर एंड डॉटर का जो ये है रिलेशनशिप है, उसको लेके वहाँ यूरोप में तो एकदम, और सब जो आए थे सबको, सब रो रहे थे देख के। तो मुझे ये भी खुलासा मिला कि देखो ये भी हमने सोचा नहीं था पहले।
0: इस विषय को उठाने का, सुजाता फिल्म को बनाने के पीछे क्या विचार रही होंगे आपके पिता के?
1: ये तो मैं नहीं कह सकती, मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन चूज किया उन्होंने, जरूर अच्छा लगा होगा इसीलिए चूज किया।
0: उस समय बहुत बड़ी समस्या थी, आज भी ये समस्या है, लेकिन उस वक्त इसको उठाना, इस विषय को, बहुत ही बोल्ड विषय था, और बहुत ही निर्भीक होकर उन्होंने इस बात को आवाज दी कि किस तरह से माँ और बेटी के किरदार को जीवंत किया। और इस फिल्म में उन्होंने नूतन को चुना, इसके पीछे क्या कुछ खास कारण?
1: नूतन पिताजी के सबसे फेवरेट एक्ट्रेस थे
0: जी।
1: नूतन की जो खास फिल्म है सुजाता और बंदिनी, तो पिताजी ने जब बंदिनी पिताजी ने सोचा बनाने का, तो वो नूतन को साइन करने को गए, तो नूतन ने बोला दादा मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छा लगा, लेकिन शायद मैं आपके साथ नहीं कर सकूंगी। तो पिताजी ने बोला कि वो क्या बात है
0: जी?
1: तो बोले हम प्रेग्नेंट है, तो मैं अभी कैसे, मैं प्रेग्नेंट है तो मैं फिल्म में काम नहीं करूंगी। तो पिताजी ने बोला कि तब मैं नहीं बना सकूंगी बंदिनी। तो उनका हस्बैंड जो थे उन्होंने उनको उत्साह दिया, बोला बिमलदा आप जरा जल्दी जल्दी शूटिंग कर लीजिए, तो फिर नूतन आपके साथ काम करेगी। तो वही हुआ बात
0: जी जी,
1: शी वॉज प्रेग्नेंट व्हेन शी वॉज शूटिंग बंदिनी
0: जी। और उन्होंने क्या लाजवाब अभिनय किया है, अद्भुत अभिनय किया, और उसके बाद तो वो मतलब महान अभिनेत्रियों की एक लाइन में खड़ी हो गई। आप लोग गए इस फिल्म को देखने फिल्मी पर्दे पर?
1: हम लोग गए थे हॉल में देखने के लिए, मुझे याद है यहाँ पे जो ओपेरा हाउस है ना
0: जी,
1: ओपेरा हाउस में रिलीज हुई थी और सिल्वर जुबली किया था उसे।
0: तो चलिए इस फिल्म का कोई गीत सुन लिया जाए, बताइए।
1: श्योर, जरूर।
0: चलिए तो फिल्म सुजाता का एक गीत सुनते हैं।

0: बहुत सुंदर गीत। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं रिंकी जी कि अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर कितने जागरूक थे, क्या उनकी फिल्मों में गीत और संगीत भी उतना ही मायने रखता था जितनी फिल्म की कहानी या फिल्म का किरदार?
1: ऑफ कोर्स, जरूर, क्योंकि पिताजी ने जो पिक्चराइजेशन किया है गाने को, जैसे मुझे तो अभी तक कोई इतना ये नहीं लगता है कि कोई दूसरा डायरेक्टर इतना ये करता है, मायने रखता है। बहुत ही अच्छा उन्होंने पिताजी का गाने पिक्चराइजेशन एक स्पेशल ये था, उनका टैलेंट था।
0: उनकी पसंदीदा गायिका लता मंगेशकर और ये सभी रहे
1: था। उनके पसंदीदा जो थे ना
0: संगीतकार भी एस जी बर्मन और सलील चौधरी साहब।
1: संगीतकार सलील चौधरी, एस जी बर्मन।
0: बहुत सारी फिल्में, ज्यादातर फिल्में सलील चौधरी साहब ने उनकी जो है संगीत में ढाली है, और एस जी बर्मन साहब का तो खैर संगीत हम सुन ही रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिल्म बंदिनी का जिक्र हम आपसे सुनना चाहते हैं। जब फिल्म बंदिनी उन्होंने बनाई तो आप क्या कहना चाहेंगी, फिल्म कैसे बनी और इस फिल्म की कोई शुरुआत कैसे हुई होगी, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, मुझे नहीं याद है, लेकिन मैंने जब सुना कि पिताजी इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं, वो एक इससे था, एक लिटरी बंगाली लिटरेचर से था
0: जी।
1: तो मैंने जाके मैं उसको रीड किया पहले।
0: अच्छा,
1: हाँ, मुझे

0: उसको कहानी उसकी कहानी को, तो मुझे लगा कि हाँ इससे अच्छा बढ़िया बन जाता है। ये कल्लानी का स्टोरी है, वो जो है ना जो लिटरेरी जो ये है वो लिखा है जरासंध करके, इनका नाम था जरासंध, पेन नेम हाँ, तो उन्होंने लिखा था, तो उनको जो ये स्टोरीज कलेक्शन था उसमें कल्लानी का स्टोरी पिताजी ने चूज किया था।
1: तो उस वक्त तो उनको ये फिल्म बनाने का विचार इसीलिए आया क्योंकि उस समय एक एक कहानी थी, घटना थी। तो आपके पिता जब कलाकारों के साथ काम करते थे तो उनके काम करने की प्रक्रिया क्या रहती होगी, कलाकारों के साथ क्या संबंध रहते होंगे, किस तरह का व्यवहार रहता होगा, किस तरह से समझाना होता होगा एक डायरेक्टर के तौर पर?
0: हाँ, पिताजी कभी भी एक्टिंग नहीं दिखाते थे किसी को।
1: अच्छा,
0: जैसे राज कपूर है ना, राज कपूर हर भूमिका को एक्टिंग करके अपना स्टार को दिखाता है, पिताजी ने बहुत बहुत डिस्टेंस से उनको ये था। उनका एक डायलॉग राइटर था जो बहुत हिंदी एंड बंगाली जो जानता था, उनको पिताजी ने बताया था कि तुम जाके बोलो एक्ट्रेस को इस नूतन का है तो इतना इतना ये करे, हाँ ये ऐसा करना है ऐसा करना है, तो वो डिस्टेंस से करते थे, वो कभी एक्टिंग नहीं दिखाता था
1: जी। तो बंदिनी फिल्म की जो कल्याणी किरदार था नूतन जी का, तो बिमल रॉय ने जिस गहराई से इसे पिरोया ये बहुत लाजवाब था गुलजार का।
0: हाँ, ऐसा हुआ कि गुलजार प्रोडक्शन में था, बिमल रॉय प्रोडक्शन में ऐसे असिस्टेंट था, तो एक गाने का कहीं जरूरत हुआ तो शैलेंद्र नहीं लिख पाए उसको, तो गुलजार ने उसको लिख दिया, ओपनिंग सॉन्ग ऑफ बंदिनी मोरा गोरा आंगलेला। अच्छा, तो सुन, तो फिर मैंने पिताजी ने बोला कि तुम गाना भी लिखते हो क्या, तो उन्होंने बोला ऐसे हाँ लिखता हूँ कभी कभी दादा, तो बोले अच्छा तुम एक काम करो, तुम अभी वो सब जहाँ वो काम करते थे मैकेनिक गैराज, गाड़ी का गैराज में, तो बोले तुम गाड़ी का गाड़ी वो सब छोड़ो, तुम आ जाओ हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन में, तुम गाना लिखोगे। तो गुलजार का फर्स्ट गाना पिताजी हमारे प्रोडक्शन में था, हाँ वो था नॉट मोरा गोरा एंगले, वो गाना का रिकॉर्डिंग उन्होंने किया फिर, दैट इज हिज फर्स्ट सॉन्ग फॉर विमल रॉय प्रोडक्शंस। हाँ, पिताजी का बोलने पर फिर वो छोड़ भी दिए, फिर एकदम से ज्वाइन कर लिए।
1: चलिए, तो बंदिनी फिल्म का गीत हम सुन लेते हैं।

0: उन्होंने जब ये चूज़ किया स्टोरी कल्याणी की स्टोरी बांधने के लिए, तब मैं पढ़ने को गई तो मुझे भी लगा कि हाँ ये बहुत अहम बात है कि ऐसा कोई एक स्टोरी है जिसमें किसी ने जेल से आके लिखा है, उसका केस एक केस हिस्ट्री था, ये रियल केस हिस्ट्री। हाँ, तो इसीलिए बहुत इसका बहुत माने रखता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उस वक्त ये एक बहुत सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बनाई गई थी। तो वही हम मधुमति के बारे में भी बस यही जानना चाह रहे थे कि पुनर्जन्म से संबंधित ये फिल्म थी।
0: मधुमति का अलग ही बात है, क्योंकि मधुमति का जो मधुमति लिखा गया था खाली पिताजी प्रोडक्शन के लिए लिखा गया था, वो कोई लिटरेरी वे नहीं था।
1: जी बिल्कुल,
0: उसको क्लेम करते हैं ऋतिक घटन ने लिखा था, पता नहीं, लेकिन वो लिखा था पिताजी के लिए।
1: लेकिन वो बहुत उस जमाने की सुपर डुपर हिट फिल्म थी।
0: वो तो है, बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, बिकॉज ऑफ ऑल द कास्टिंग, दिलीप कुमार, वैजयंती माला, प्राण, बहुत बढ़िया। ये पिताजी ऐसे बनाए थे क्योंकि हमारा प्रोडक्शन हाउस तभी फाइनेंशियली थोड़ा डाउन था, तो किसी ने बोलता है कि दादा आप इतना फिल्म बना रहे हैं लेकिन आप प्रोडक्शन का नहीं देख रहे, तो प्रोडक्शन ये हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि आप इतना खर्चा, पिताजी खर्चे का देख नहीं थे, देख भी नहीं थे कि क्या था। तो जब उन्होंने बोला तो पिताजी ने बोला से ठीक है, मैं ऐसा फिल्म बनाऊंगा जिसमें सब कुछ है, कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, गाने हैं, डांस है, सब कुछ है, विलेन, हीरो, हीरोइन, हाँ
1: वो तो, सब था जो एक फिल्म में होना चाहिए,
0: वो जो था वो सब फिल्म में होना चाहिए। तो मधुमति उसी हिसाब से बना गया
1: जी। तो वो जो गाने पूरे इतने सुपर डुपर हिट हुए, घर घर में वो गाने बजने लगे, क्या आपके घर में भी रेडियो था उस वक्त? आप गीत संगीत तो सुन सकते थे, ये माहौल तो था घर में। तो चलिए हमारे श्रोता उन्हें गीत हम सुना देते हैं, आप कहें।

0: बहुत ही सुंदर गीत हमने सुने। और रिंकी जी, आप उनकी बड़ी पुत्री हैं, आपने पिता को बचपन से फिल्मकार के रूप में देखा है, फिल्में बनाते हुए देखा है, एक पुत्री होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, इस विरासत को आप किस ढंग से संभाल रही हैं आज तक?
1: मैं इस तरह से संभाल रही हूँ कि मेरे पिताजी का जो फिल्म है उसको रीइशू
0: जी,
1: उसको रिस्टोर करना, तो मैंने काफी एक यहाँ पे है रिस्टोर कर रहे हैं, तो हमने 4 फिल्में तो अभी रिस्टोर करने के लिए दे दिया है, वो भी अभी न्यू DVD बन के आ जाएगी अभी। तो हो गया है 4 फिल्म की
0: जी
1: बात है।
0: कौन कौन सी फिल्में हैं वो?
1: मधुमती, देवदास
0: जी,
1: बंदिनी और 2 बीघे जमीन
0: जी,
1: ये 4। इधर है एक जो रिस्टोरर है शिवेंद्र डूंगरपुर करके,
0: अच्छा,
1: तो शिवेंद्र ने इसको ये किया है, रिस्टोर किया है, 4 फिल्में। नेक्स्ट ईयर समटाइम ये सब फिर से दोबारा आ जाएगी, DVD नया DVD आ जाएगी।
0: अच्छा,
1: सबकी हाँ
0: जी, बहुत बड़ी एक इस विरासत को आपने संभाला है और इसे जीवंत बनाए रखा है आज तक। तो रिंकी जी, आपको अपने पिता की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी?
1: ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है
0: जी।
1: मुझे तो अभी भी मधुमती देख, कभी भी मैं देखती हूँ ना मधुमती, तो मुझे लगता है कि देखते ही रहूँ, यू नो, इतना उसका असर है, और एकदम मैं ऑडियंस ही बन जाती हूँ। हाँ, ये तो मधुमती के साथ है। 2 बीघे जमीन देखने को थोड़ा कष्ट होता है क्योंकि ट्रेजिक है
0: जी।
1: हाँ, लेकिन जैसे ये दोनों फिल्म तो मुझे बहुत पसंद है, मधुमती और 2 बीघे जमीन दोनों।
0: हाँ, कभी आपको लगा कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलती और आगे चलकर एक बहुत बड़ी फिल्मकार बनती और बहुत सारी फिल्मों का निर्माण या निर्देशन करती जैसे मेरे पिता ने उस वक्त किया?
1: नहीं नहीं, ये कभी नहीं आया, बल्कि मैंने सोचा ही नहीं था कि हम फिल्म बनाएंगे, इसीलिए इसी डर से कि मेरे को कोई कंपेयर करेगा पिताजी से।
0: अच्छा।
1: इसीलिए मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं बनाना है फिल्म, और जो बनी है वो एक्सीडेंटली बन गई है
0: जी। तो उन फिल्मों के बारे में आप हमें बताइए जो जो आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है।
1: मैंने दो ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, एक है डोमेस्टिक वायलेंस पे, क्योंकि मैंने औरतों के साथ बहुत सारा काम किया है NGO के साथ
0: जी,
1: तो उसको बनाया है बिहाइंड क्लोज डोर्स करके, और बस ये एक फिल्म है मैं जिसके बारे में बोलना चाहूँगी
0: जी,
1: कि बिहाइंड क्लोज डोर्स है, वो वेरी बिग डॉक्यूमेंट्री, वो फेस्टिवल्स में भी गई है और इसको लेके लोग देखते भी हैं, अभी भी देखते हैं, DVD में है वो।
0: इस फिल्म में जो महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है उसके हाँ, बारे में आपने हाँ, काफी और आपने बहुत सारी महिलाओं के साथ काम किया है हाँ, काफी लंबे समय तक आप सोशल वर्कर के रूप में काम करती रही हैं
1: हाँ,
0: बहुत सारी किताबों का लेखन भी किया है, तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे आपकी किताबें कौन कौन सी थी, आपने किन किन विषयों पर ये किताबें लिखी?
1: मैंने ज्यादातर किताबें लिखी और वुमेन्स इश्यूज को लेके, और दो एक पिताजी पे लिखा है, दो एक मेरे पास दो किताबें हैं, जो एक तो है मधुमती खास, मधुमती का क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके ऊपर मैंने एक किताब लिखी है
0: जी,
1: वो पब्लिश हुआ है, और एक किताब है जिसके डोमेस्टिक वायलेंस के बोला ना मैं बिहाइंड क्लोज, ये दोनों बहुत खास है।
0: इनका रिएक्शन आपको कैसा मिला जब ये किताबें दुनिया के समक्ष गई लोगों की, खासतौर से महिलाओं का?
1: बहुत अच्छा, इट इज़ वेरी बिग, ये लोग पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन भी हो जाए इसका
0: जी, हिंदी भाषाओं में,
1: हाँ कई भाषाओं में ट्रांसलेशन है।
0: आपको कहीं ना कहीं ये दबाव रहता होगा कि पिता से कंपेयर करेंगे, तो क्या ऐसी मानसिक स्थिति में भी आप दबाव में रही?
1: नहीं नहीं, मैं दबाव में नहीं थी, मैंने बोला ना, इसीलिए मैंने कॉन्शियसली मैंने ऐसे किया कि मैं फिल्म नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लोग तो मुझे कंपेयर करेंगे ही ना पिताजी से, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए फिल्में, तो एक डोमेस्टिक वायलेंस पे था, वो मुझे करना ही था, क्योंकि उसके लिए मेरे फंडिंग मिली, गवर्नमेंट फंडिंग,
0: अच्छा
1: हाँ, फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, तो इसीलिए मुझे पैसा भी मिला था बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने बनाया, और नहीं तो मैं फिल्म के लिए मैं कुछ आग्रही नहीं थी इतना। मैं कॉन्शियसली पिताजी का जो आइडियल्स है, उनका जो ये है फिलोसफी है, उसको फॉलो करने का मैं कोशिश करती हूँ।

0: अगर आपको अपनी पूरी रचनात्मक यात्रा, जिसमें पत्रकारिता है, किताबें हैं, सिनेमा है और बिमल रॉय की विरासत है, को एक वाक्य में देखना हो तो आप क्या कहेंगे कि आप वास्तव में किसकी आवाज दर्ज कर रही हैं? फिल्म की, स्त्रियों की, परिवार की, या उन लोगों की जिनकी आवाज को दबा दिया जाता है?
1: आपने जो कहा ये बहुत सही बात है, जो जिसका आवाज दबा दिया गया है, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट देम, जो वॉइसलेस है उनके बारे में मैं, मेरा ये हमेशा कोशिश रहा कि मैं उसी को वो ये करूँ
0: जी। और उसमें आप लगी भी हैं आज भी, उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी आप लगातार अपनी इस यात्रा को बनाए हुए हैं। रिंकी भट्टाचार्य जी, आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग मी।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्मकार बिमल रॉय की सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उनकी यादों के अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
5: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
6: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देवता भगवान गणेश को नमन करते हुए हमने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की है इस गीत के साथ। फिल्म का नाम था दर्द का रिश्ता, आवाजें ए हरिहरन और साथियों की थी। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने। आज का ये रंग तरंग कार्यक्रम गणपति बप्पा बोरिया मोरिया के नाम। कहते हैं जहां गणपति का स्मरण होता है वहां शुभता अपने आप चली आती है, और हर नई शुरुआत से पहले जिनका नाम लिया जाता है वे हैं हमारे प्रिय गणपति बप्पा। तो आइए भक्ति और श्रद्धा से भरे इस सफर में अब सुनते हैं कार्यक्रम का ही अगला गीत।

गाने वाले कलाकार हैं शंकर महादेवन और साथी। गीतकार और संगीतकार डॉक्टर विजय भावे। गणेश

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये आवाजें थी तृप्ति शाकिया और साथियों की। आपने इनकी आवाज में ये गणेश वंदना सुनी। आइए सुनते हैं अगला गीत।

समूह स्वरों में अभी आप सुन रहे थे ये स्तुति, गणेश स्तुति। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला भक्ति गीत। आवाजें हैं अभिजीत सावंत और राहुल वैद्य की।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाजों में अभी आपने ये गणपति वंदना सुनी। इसे चंद्रशेखर पांडे ने लिखा और धुन बनाई थी श्याम सागर ने। आइए सुनते हैं ये अगला भक्ति गीत, आवाजें जोनिता गांधी और साथियों की।

0: लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य अकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे

0: 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम में अब सुनिए अगला भक्ति गीत, आवाजें दिव्या कुमार और साथियों की। इसे मुकेश मिश्रा ने लिखा है और तर्ज बनाई है काशी कश्यप ने।

रंग तरंग कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर, सुरेश वाडकर, शब्बीर कुमार और हेमलता की आवाजों में फिल्म मरते दम तक का ये गीत। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: इस गाने के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम गणपति बप्पा मोरिया को समर्पित था।
1: रंग तरंग
0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तिरुकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनॉम घेब्रियासिस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं फिल्मकार जीपी सिप्पी को। आज इस कार्यक्रम में हमने चुने हैं उन्हीं की फिल्मों के कुछ गीत। ये पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है सजा। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था सजा। और आइए अब सुनते हैं ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और गीता दत्त की, फिल्म का नाम 12 O'Clock।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्मकार जीपी सिप्पी के कुछ फिल्मों से गीत सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और साथियों को। फिल्म का नाम है मरीन ड्राइव, गीतकार कमर जलालाबादी और संगीतकार एन दत्ता।

0: वो लिखती है रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती है सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती है मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मोहम्मद रफी की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राज का गीत। शब्दकार शमीम जयपुरी और संगीत दिया है कल्याण जी।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने फिल्म राज का ये गीत सुना। आइए सुनते हैं एन दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये दो गाना। स्वर मोहम्मद रफी और गीता दत्त के। फिल्म का नाम है भाई बहन।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ब्रह्मचारी से युगल स्वर मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के।

0: फिर भी मोरे जिया राम चमके, अरे थम थम कोई बिजुरिया।
1: वाह वाह वाह, तुहार जवाब नहीं

में होले से पास कभी आई के जो बिछवा पर जाई दे गोरी छम से कसम से।

0: मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर, सुषमा श्रेष्ठ और प्रतिभा को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था अंदाज। इसे हसरत जयपुरी ने लिखा था और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। इससे पहले आपने मुकेश की आवाज में फिल्म बंधन का गीत सुना था। शब्द अनजान के थे और धुन कल्याण जी आनंद जी की थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के।

0: एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
1: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने फिल्म शान का ये गीत सुना। इसे आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने।

और ये है इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म का नाम है पत्थर के फूल, आवाजें लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की।

इस युगल गान के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको फिल्मकार जीपी सिप्पी की फिल्मों से कुछ गीत सुनवाए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग की स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स की विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Barney, the news read by Valsa Williams. Union Home Minister Amit Shah has said the presence of multiple languages in India is the biggest strength of the country. Sharing a video message on Hindi Divas today, he said, Hindi language is not the competitive language of any other language, but an important connecting thread of national unity.
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: Hindi Divas is being celebrated across the country today. It was on this day in 1949 that the Constituent Assembly adopted Hindi written in Devanagari script as the official language of the country. Home Minister Amit Shah has said BJP-led NDA governments in 21 states will introduce Uniform Civil Code UCC before 2029. Speaking to reporters in Mumbai, the Home Minister said UCC has been introduced in several states. And he is confident that it will be introduced in the 21 BJP NDA ruled states before 2029. Mr. Shah said triple talaq has been abolished, giving Muslim women equal rights. He said the government has strengthened the country's criminal justice system through the Bharatiya Nyaya Sanhita and claimed that several states have recorded a 30% increase in the conviction rate in a single year. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the leaders of all the BRICS member countries for making the Delhi summit of the grouping productive and outcome-oriented. A video reflecting key moments of the two-day summit was posted on the social media handles of the Prime Minister. In the video, a part of the Prime Minister's summit speech was shown where he said, through BRICS, India has advanced friendship, partnership and cooperation all across. India hosted the BRICS summit on the 12th and 13th of this month, and it was attended by the leaders of the 11 member countries and 10 partner countries of the grouping, besides some international organizations. Mr. Modi also held 15 sit-down bilateral meetings with heads of states or heads of government in the last 3 days on the sidelines of the summit. The government has said the security situation in Jammu and Kashmir remains firmly under control due to the relentless efforts of the army. In its latest annual report 2025-26, the Defence Ministry said these efforts have led to a significant decline in violence, a reduction in protests, and zero incidents of stone pelting. According to the report, the situation within Jammu and Kashmir and along the line of control had significantly altered during Operation Sindoor. The festival of Ganesh Chaturthi is being celebrated today across the country with great devotion. The day marks the birth of Lord Ganesh, a symbol of wisdom, prosperity and good fortune. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings to the people on the occasion of Ganesh Chaturthi. The Indian Meteorological Department has issued an orange colour warning for very heavy rainfall over Gujarat for the day. Heavy rainfall is also expected over Haryana, Chandigarh, Punjab, East Rajasthan, Odisha and Bihar till tomorrow. Similar weather conditions are expected over Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya during the next 2 days. State Minister for Foreign Affairs Humayun Kabir has said Bangladesh wants to move towards a new relationship with India through bilateral discussions rather than multilateral forums. Speaking to reporters at the Ministry of Foreign Affairs in Dhaka, Mr. Kabir said Bangladesh needs to move beyond what he described as an excessive preoccupation with India and deal with New Delhi on the basis of mutual interests. World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus has called for stronger health cooperation, innovation, resilience and sustainable financing. In a social media post, Dr. Tedros said the four themes of the BRICS Leaders Summit are directly relevant to global health. In tennis, Germany's Alexander Zverev has won the men's singles title of the US Open, beating American Ben Shelton in New York last night. This marks Alexander Zverev's second major title of 2026 following his French Open victory in June. And with that, we end this news bulletin.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी, युवाओं से अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करने की अपील की। मुंडारी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। झारखंड समेत 5 राज्यों के प्रतिनिधियों ने बैठक में जनजागरण अभियान चलाने का लिया निर्णय। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, विधायकों के विशेषाधिकार का दायरा बढ़ाने की मांग की। SIR के तहत दावा आपत्ति की कल अंतिम तिथि। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी पात्र युवाओं से मतदाता सूची में जुड़ने की अपील की। और राज्य में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव को लेकर बनाए गए कई भव्य पंडाल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। आज हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। श्री शाह ने युवाओं से अपनी मातृभाषा के बारे में जानने और घर पर बातचीत के दौरान इसका इस्तेमाल करने का आग्रह किया।
1: युवाओं से एक बात मैं करना चाहता हूं, दुनिया की जितनी भाषाएं सीख सके जरूर सीखे, पर अपनी भाषा को छोड़िए मत। मैं देश के सभी अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बात करने का आप आग्रह रखिए। भाषा ही हमें अपनी माँ से, अपने मिट्टी से, अपने इतिहास से और अपनी संस्कृति से जोड़ती है। आइए इस अवसर पर संकल्प ले कि हिंदी और सभी भारतीय भाषा को हम 2047 तक विकसित भारत बनाने की इस यात्रा का सशक्त माध्यम बनाएंगे।
2: राजभाषा दिवस पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने लोगों से हिंदी को जन जन की भाषा बनाने की दिशा में भागीदारी का संकल्प लेने की अपील की। मुंडारी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग को लेकर रांची में मुंडारी भाषा समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें झारखंड समेत 5 राज्यों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने मुंडारी भाषा को आदिवासी समाज की अस्मिता, समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक बताते हुए इसके संवैधानिक संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में मुंडारी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए देशव्यापी जनजागरण अभियान और आंदोलन चलाने का सर्वसम्मत संकल्प लिया गया। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधायकों के विशेषाधिकार का दायरा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो को पत्र लिखकर विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली में ऐसे प्रावधान जोड़ने का सुझाव दिया है, जिसके तहत विधायकों के साथ जानबूझकर अपमानजनक या अशिष्ट व्यवहार करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की जा सके। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने एग्रीको स्थित अपने आवास के समीप हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना में पिता और पुत्र की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों में लगातार लोगों की जान जा रही है, लेकिन इसके बावजूद नो एंट्री के दौरान भारी वाहनों के परिचालन पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल नो एंट्री व्यवस्था को सख्ती से लागू करने और दुर्घटना संभावित इलाकों में सड़क सुरक्षा के ठोस इंतजाम करने की मांग की। पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन एसोसिएशन पासवा की ओर से रांची में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें करीब 2500 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ उनके भविष्य और देश के अच्छे नागरिक के रूप में निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि पासवा ने शिक्षकों के सामाजिक और आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए अभियान जारी रखने की बात कही। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। SIR को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों विशेषकर युवाओं से अनुरोध किया है कि जो अभी भी मतदाता सूची के ड्राफ्ट में शामिल नहीं हैं, वे ECI नेट अथवा BLO से संपर्क कर फॉर्म 6 व घोषणा पत्र अवश्य भरें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दावा आपत्ति के लिए कल अंतिम तिथि है।
3: 15 सितंबर सबको आवेदन देने के लिए अंतिम तिथि है। किसी का नाम SIR में दर्ज करना है ना तो किसी के ऊपर में आपत्ति है, आपका बूथ में परिवर्तन चाहिए, आपका नाम में कोई परिवर्तन चाहिए, कुछ सुधार करना है, आपका फॉर्म 8 बनाना है, इसलिए आपका 15 सितंबर तक संबंधित फॉर्म 6, 7, 8 जरूर भरा दीजिए, ताकि आपको SIR करना रोल में नाम आना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि SIR का रोल का नाम होती है वो परमानेंट रिकॉर्ड होती है।
2: इधर दुमका जिले में अब तक लगभग 12,500 फॉर्म भरे जा चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतिम 2 दिनों में फॉर्म भरने की प्रक्रिया तेज की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा योग्य नागरिक मतदाता सूची से जुड़ सके।
4: दुमका जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यह प्रक्रिया 15 सितंबर को समाप्त हो जाएगी। अब तक जिले में लगभग 12,500 फॉर्म भरे जा चुके हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया तेज की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा योग्य नागरिक मतदाता सूची से जुड़ सके। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
2: रांची में आयोजित प्रिवेंट हार्ट समिट 2026 में देश भर से आए हृदय रोग विशेषज्ञों ने हृदय रोगों की रोकथाम से लेकर आधुनिक उपचार तक पर विस्तार से चर्चा की। सम्मेलन का आयोजन कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया झारखंड चैप्टर की ओर से किया गया। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश झा ने जीवन शैली में बदलाव और युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों पर विशेष चिंता जताई। विशेषज्ञों ने कहा कि आधुनिक हृदय चिकित्सा का उद्देश्य केवल बीमारी होने के बाद उपचार करना नहीं, बल्कि जोखिम कारकों की पहचान कर बीमारी को रोकना भी है।
5: 300 कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियंस इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोगों में हार्ट की डिजीज को रोक सकते हैं डेवलप होने से पहले ही, उसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा की जाए। यंग पॉपुलेशन जो यंग हार्ट अटैक हो रहा है उसके ऊपर कैसे उसको रोका जा सके, किस तरह से लाइफस्टाइल में चेंज करके अदरक हो जा रहा है तो उसको किस तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं।
2: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,42,000 रुपए प्रति किलो है। गणेश चतुर्थी पर रांची समेत राज्य भर में गणेश उत्सव का उत्साह है। सरायकेला खरसावां जिले में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक विभिन्न स्थानों पर भगवान गणेश की आकर्षक प्रतिमाएं स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। पाकुड़ जिले में रेलवे मैदान, हिरणपुर एवं महेशपुर प्रखंड मुख्यालय सहित दर्जनों स्थानों पर गणपति की भव्य प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। झारखंड समेत देश भर में आज हरितालिका तीज का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सोशल मीडिया संदेश में हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी के जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना की। रांची के खेलगांव स्थित सिद्धुकानू वेलोड्रोम में 2 दिवसीय खेलो इंडिया स्मिता ट्रैक साइकिलिंग स्टेट लीग 2026 का समापन हुआ। दूसरे दिन कैरिन जूनियर में निकिता सोरेंग, एलीट में सबिना कुमारी, परस्यूट जूनियर में शीला बारा और स्क्रैच एलीट में सिंधुलता हेम्ब्रम ने स्वर्ण जीता। लीग में राज्य के 15 जिलों की बालिका और महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी। युवाओं से अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करने की अपील की। मुंडारी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग झारखंड समेत 5 राज्यों के प्रतिनिधियों ने बैठक में जनजागरण अभियान चलाने का लिया निर्णय। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा।

पत्र, विधायकों के विशेषाधिकार का दायरा बढ़ाने की मांग की। एसआईआर के तहत दावा आपत्ति की कल अंतिम तिथि। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी पात्र युवाओं से मतदाता सूची में जुड़ने की अपील की। और राज्य में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही हरितालिका तीज और गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव को लेकर बनाए गए कई भव्य पंडाल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

एक श्रोता ने लिखा है कि संगीत जो हमें एक दैवीय शक्ति से बांधता सा लगता है, जैसे ही किसी जंगल में आप प्रवेश करते हैं जंगल की आवाज अलग अलग संगीत पैदा करती है। नदियों के पानी में अलग संगीत होता है, कल कल का संगीत बहुत मीठी मीठी है। संगीत बनने की कहानी रात के बहते हुए खामोश दरिया में चांद की किरणें खेलती रहती है और मन के बियाबान तारों में कुछ धुन यूं ही बजने लगती है। जो कोई हुक हो जी मैं तो गूंज उठेंगे, ये विरही सुर कोशिशों साधे नहीं जाते। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है, आज गीत की धुन के साथ विविध आवाजें भी अपने अस्तित्व का परिचय करवाएंगी। इस अनोखी सुंदर थीम को आज

गणपति बप्पा का आशीर्वाद भी है, गणराज रंगी नाच। तो इस मराठी गीत में बाल गणेश जी ने पैरों में पहनी यानी घुंघरू की रुनझुन रुनझुन, ये बेहद सुरीली आवाज दिल को मोह लेती है। और आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र भी किया है, हो सकता है आपकी पसंद हमारी आज की लिस्ट में शामिल हो। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बिल्कुल नवीन है लेकिन बहुत ही रोचक है। गीतों में संगीतकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोग, उनकी कल्पनाशीलता जिससे गीत शानदार हो गए, तरह तरह की बीट्स के प्रयोग ने गीत को कर्णप्रिय बना दिया है। ऐसे ही बहुत सारे गीतों का जिक्र आपने भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे चिड़िया या कोई भी गीत में पक्षियों की आवाज बहुत प्यारी लगती है, जैसे कोयल बोली, दिल कहे रुक जा रे रुक जा, पंछियों की आवाजें और चुन चुन करती आई चिड़िया, इस तरह की आवाजें इन्हें बहुत पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत में सभी तरह के वाद्य यंत्रों के साथ ही आसपास मौजूद आवाज का प्रयोग कर गीतों की प्रस्तुति को लाजवाब बनाया गया है। पंख होते तो उड़ाती रे गीत में पंछी की मधुर आवाज के साथ पंछी की तरह उड़ते हुए पंख फैलाते हुए किया गया नृत्य बहुत ही आकर्षक भी लगता है। साथ ही संगीत का लाजवाब धुन आसपास के वातावरण को गुंजायमान भी कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सफर में आज गीतों में छुपे एहसास और दिल में भावों को जगाते हुए उन आवाज को सुनना, जैसे हवा की सरसराहट, दरवाजे की आवाजें, सांसों की धड़कन, कुछ मंदिरों की घंटियां, बांसुरी की, समुद्र की डरावनी लहरी, लहरों की आवाजें और धीरे धीरे गुनगुनाने की आवाजें, ये सभी आवाजें मन के हर भाव को जीवंत कर देती हैं। जीवन का सुख दुख, हंसना रोना, डरना सहम जाना आदि सभी नवरसों जो जीवन में समाहित है वो सभी हमारे साथ है और ये सभी हमें प्रभावित करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इन गीतों के साथ हम भी खो जाते हैं उन खास संगीत की ओर जो हमारे संगीतकारों ने प्रयोग के तौर पर डाले होते हैं। जैसे कि अगला गीत हम सुनने वाले हैं फिल्म शोले से किशोर कुमार की आवाज में, और इनका साथ दे रही हैं हेमा मालिनी, जब वो कहती हैं चल धन्नो। तो अब आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और राहुल देव बर्मन का संगीत है। इस गाने में आपको चाबुक की आवाज, घोड़े की टापों की आवाज, धर्मेंद्र के गिरने पर साइकिल की आवाज, साइकिल की घंटी की आवाज, बहुत सारे प्रयोग इस गीत में किए गए हैं और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी इन गीतों में ये सभी धुनें सुनाई देंगी।

ना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब

जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब स्टेशन से गाड़ी छूट जाती है तो फिर 1, 2, 3 हो ही जाती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको जाना है कहीं और आप भागते दौड़ते स्टेशन पहुंचे हैं और आपके सामने से ट्रेन निकल गई है? और वही हुआ जो इस गाने में कहा जा रहा है कि 1, 2, 3 हो जाती है। हमारे सवाल एक बार फिर से, हमने आपसे पूछा था कि आपकी पसंद के वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, जो रूटीन के वाद्य यंत्र हैं, जैसे कि अगर आप हारमोनियम, तबला और बांसुरी, बहुत सारे माउथ ऑर्गन, सितार, गिटार, बांसुरी, क्या क्या पसंद करते हैं, अगर आप बजाते हैं या बजाना पसंद करते हैं, संगीत के शौकीन हैं तो। लेकिन इसके अलावा कई बार हर आदमी अपने जीवन में जब कोई गाना गाना पसंद करता है, बाथरूम में, कमरे में, एकांत में, तो टीन कनस्तर, जो हाथ में आता है बाल्टी, झाड़ू, उसे भी वाद्य यंत्र बनाकर हम गाना गाने लगते हैं। भाई हमने तो ऐसा कई बार किया है कि टीन कनस्तर बजाकर ही ताल मिला ली है और गाना गा दिया है। तो आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। याद कीजिए उन पलों को, या आपके बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो वो बात हमें बताइए, कम से कम शब्दों में लेकिन रोचक तरीके से। और हाँ, जब बात चली है ध्वनियों की, तो आपको अपने आसपास की कौन सी ध्वनियाँ प्रभावित करती हैं, यानी कौन सी ध्वनियाँ जो पसंद आती हैं और कौन सी ध्वनियाँ आपको परेशान करती हैं आपके घर के आसपास की? हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने बहुत ही खूबसूरत विषय उठाया है, संगीत में आवाजों की मौजूदगी को महसूस करने का। गीत की दुनिया में सुर और साज की अपनी खूबसूरती है, लेकिन कभी कभी कोई अनघट सी जानी पहचानी आवाज भी गीत को ऐसी आत्मीयता दे जाती है कि वो बरसों तक दिल में बसी रहती है। कदमों की आहट हो, घोड़े की टाप हो, या रेल की छुक छुक, घड़ी की टिक टिक हो, या पायल की रुनझुन, जब ये ध्वनियां किसी धुन में शामिल होती हैं तो गीत सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। हर आवाज अपने साथ कोई दृश्य, कोई मौसम, कोई स्मृति ले आती है। संगीत केवल वाद्य यंत्रों से नहीं बनता, वो तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के शोर में भी कहीं चुपचाप सुर तलाशता रहता है। बस उसे पहचानने के लिए कान नहीं, एक संवेदनशील दिल चाहिए। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय सिनेमा के संगीतकारों की ये सबसे बड़ी खूबी रही है कि उन्होंने स्टूडियो की चारदीवारी से बाहर निकलकर हमारे दैनिक जीवन के शोर को सुर में तब्दील कर दिया। जब किसी गीत में कोई सहज आवाज, चाहे वो खेल की हो, रसोई की हो, किसी वस्तु की हो, शामिल होती है तो वो केवल एक धुन नहीं रहती बल्कि दृश्य को श्रोता के जहन में जीवंत कर देती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी शॉप रोड टच है तो पूरा दिन वाहनों की आवाजाही रहती है, तो आवाजें आती है, अच्छा भी लगता है। हमें रेडियो सुनने का शौक नहीं है तो पूरा दिन वाहनों की आवाज से हम तंग आ जाते हैं। और अच्छा, आपका कहना है कि आपके आसपास जो ये शोर आता है उससे आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल होते हैं इस शोर से हम परेशान। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीत संगीत केवल सुरों का संगम नहीं बल्कि हमारे आसपास की जीवंत ध्वनियों का खूबसूरत विस्तार है। फिल्मों में संगीतकारों ने अपनी अद्भुत कल्पनाशीलता से घड़ी की टिक टिक, खेल के मैदान की हलचल, या कदमों की आहट जैसी रोजमर्रा की आवाजों को धुनों में ऐसा पिरोया कि वे गीत की धड़कन बन गई। चाहे वो टिक टिक टिक मेरा दिल बोले हो, या दिल की धड़कन बना हुआ कोई गीत, घड़ी की आवाज हो, या ढल गया दिन, हो गई शाम में बैडमिंटन की रैकेट, शटल की लय, ये ध्वनियां संगीत से अलग नहीं।

बल्कि उसका प्राण महसूस होती हैं। सच ये कि संगीत सिर्फ वाद्य यंत्रों से नहीं हमारे परिवेश की हर धड़कन में छुपा है, बस उसे महसूस करने वाले कान और सुनने वाले बुनने वाले दिल की जरूरत है। बहुत सुंदर इबारत हमारे श्रोताओं ने लिखी है, तो चलिए सुनते हैं ऐसा ही गीत जिसका जिक्र हमने भी अपनी इबारत में किया था और अभी अभी इन श्रोता ने भी किया है। फिल्म हमजोली का गीत है, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है और इस गीत में क्या है ये आप जानते हैं। रैकेट और शटल की आवाज, टिक, है ना, सुना है आपने कितने तरीके से संगीतकार ने इस गाने में इस धुन को पिरोया है।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि संगीत में साज तो कई तरह के होते हैं, लेकिन जब रोजमर्रा की कोई साधारण सी आवाज किसी गीत में ताल बन जाती है तो गीत यादगार बन जाते हैं। आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और वही बात आपने भी कही है कि पूरा दृश्य चलने लगता है और सच्ची धुनें बाहर से नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की रोजमर्रा की टिक टिक, छुक छुक और छम छम से ही छुपी होती है। बस उन्हें सुनने और महसूस करने के लिए एक संगीत प्रेमी दिल और दिमाग चाहिए होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि नित्य नवीन विषय निर्मात्री का नवीनतम अध्याय प्रशंसनीय, उल्लेखनीय और विचारणीय है। सुरीला सफर मंदाकिनी जी के निर्देशन में नई ऊर्जा से संचालित हो रहा है। नियमित श्रोताओं को स्फूर्तिवान रखने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। चित्र विचित्र वस्तुओं के ध्वनियों से गूंजती आज की सुरीला सफर का संगीतमय आनंद बना रहेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय हिंदी फिल्मों के संगीत में अलग अलग संगीतकारों ने पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों के अलावा दूसरी अलग अलग चीजों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को अपनी संगीत रचनाओं में इस तरह पिरोकर ऐसा तिलिस्म रचा जो कि कालजी रचनाओं में शामिल हो गया। आपने भी कुछ गानों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी ये पंक्तियां संगीत को देखने का एक बेहद जादुई और अलौकिक नजरिया देती हैं। ये इबारत हमें एहसास कराती है कि महान संगीतकार केवल वाद्य यंत्रों के मोहताज नहीं थे बल्कि वे हमारे आसपास बिखरी रोजमर्रा की आम आवाजों में भी संगीत ढूंढ लिया करते थे। घड़ी की सुइयों के टिक टिक को दिल की धड़कन बना लेना या खेल के मैदान की टुक टुक को धुन में ढाल देना उनकी अद्भुत कल्पनाशीलता और रचनात्मकता की पराकाष्ठा है। संगीत सिर्फ कानों से सुना नहीं जाता बल्कि वो हमारी जिंदगी की हर हलचल में छुपा होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि महान संगीतकार ओपी नैयर साहब ने अपने बनाए बहुत से गीतों में घोड़ों की टापों की आवाजों को शामिल किया और वो प्रयोग भी कामयाब रहा। और आर डी बर्मन साहब ने तो कंगी, टिन का डिब्बा, शीशे का गिलास, झाड़ू सभी बजाकर मधुर संगीत का निर्माण किया और वो भी सफल हुए। जितना हमें पता है वो सब आप सभी से साझा किया। अब देखना यह है कि आप अपने पिटारे में से कौन सी जानकारियां लेकर आती हैं। भाई हमारी भी जानकारी वही है जो आपकी है, लेकिन हाँ हम इधर से आप तक पहुंचा रहे हैं और आप उधर से हम तक पहुंचा रहे हैं। तो चलते हैं अगले गीत की ओर। मन्ना डे की आवाज, फिल्म का नाम सफर, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन और यहाँ पर आपने देखा होगा चप्पू की आवाज आती है, पानी की आवाज, किस तरह से नाव चल रही है और ये आवाज हमें साफ साफ सुनाई देती है इस गीत के जरिए।

श्रोता लिख रहे हैं कि आज की उद्घोषिका मंदाकिनी जी और सभी को नमस्कार। आज का विषय बिल्कुल नवीन लेकिन बहुत ही रोचक है, हमें पसंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमने बचपन में परात को डफली बनाकर डफली वाले डफली बजा गीत की नकल की जब मम्मी घर में नहीं होती थी, बस एक प्यारी सी दोस्त और हम होते थे। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही होता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि डीजे की आवाज मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। अच्छा, एक श्रोता कहते हैं हमारे घर के पास ही दुर्गा मंदिर है, सुबह सोकर उठने से पहले ही मंदिर की घंटियां हमें जगा देती हैं। बहुत ही मधुर स्वर में घंटियों की आवाज आती है और हम उठते ही ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर, यानी हमारे सवालों का जवाब हमारे श्रोता दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि चाय के होटल पर पहले बैठते थे तो चाय आने में समय लगता था, तो टेबल बजाना चालू कर देते थे और उसके साथ गीत भी गाना शुरू हो जाता था। बिल्कुल ये होता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो दो डब्बे रख कर तबला बजा लेते हैं, वीणा के तंतुओं द्वारा उत्सव उत्पन्न झंकृत ब्रह्मांडनीय नाद अति सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि ढोलक बजाना आए या न आए, पर ढोलक देखने के बाद तो दो चार थाप हम भी लगा ही लेते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पूरब और पश्चिम फिल्मों में ओम जय जगदीश हरे आरती में घंटी और शंख ध्वनि, ये आवाज हमें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बांसुरी की आवाज मुझे हमेशा से बहुत अच्छी लगती है, उसमें न जाने कैसी सादगी और मिठास है कि मन को बिना कुछ कहे छू जाती है। जब बांसुरी बजती है तो लगता है जैसे हवा भी कोई मीठी सी धुन लेकर हमारे पास से गुजर गई हो। उसकी आवाज में एक अपनापन सा है, न कोई शोर न कोई बनावट, बस कुछ सुर और ढेर सारा सुकून है। शायद इसलिए बांसुरी की धुन सुनते ही मन कुछ पल के लिए ठहर जाता है और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। बहुत सुंदर बात आपने अपने मन की हम तक पहुंचाई है। एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो अकॉर्डियन विशेषकर इन्हें पसंद आता है, माउथ ऑर्गन भी, और ये बजाते भी हैं। मैंडोलिन इन्हें पसंद है, सुरजीत और कई सारे वाद्य यंत्रों का आपने जिक्र किया है और आपने विविध भारती के कार्यक्रमों में इन वाद्य यंत्रों को बजाया भी है, इसका भी जिक्र आपने किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के प्रोग्राम में बहुत ही कर्णप्रिय गाने जो अलग अलग वाद्य यंत्रों का प्रयोग मन को आह्लादित करने वाले हैं सुनाई दे रहे हैं। राहुल देव बर्मन साहब ने तो बहुत ज्यादा प्रयोग किए, कहीं चम्मच से भी लाजवाब संगीत उन्होंने बनाया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि हमें थाली चम्मच और मेज ये वाद्य यंत्र बहुत पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट बहुत अच्छी लगती है, स्वाभाविक भी है, ये चहचहाट तो सभी को मधुर लगती है, लेकिन ये मधुरता कब तक हमें मिलेगी पता नहीं, जब तक मिले भगवान जी को समर्पित और नमन करूंगी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गली मोहल्ले के छोटे मोटे फंक्शन में ढोलक एक आम बात हुआ करती है और कुछ लेडीज एक इकट्ठी होकर भजन कीर्तन या अन्य किसी प्रकार का कार्यक्रम करती हैं, ढोलक उसमें जरूर बजती है, उसमें मन भी लग जाता है और ढोलक बजाने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही हमारे रोजमर्रा के वाद्य यंत्र भी होते हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप अपनी बाइक पर गए हो या गाड़ी में गए हो, दोपहिया वाहन पर गए हो या साइकिल पर गए हो और टायर पंचर। तो ऐसा ही गीत आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं फिल्म टैक्सी ड्राइवर से, जहां किशोर कुमार और साथियों ने इस गीत को गाया है। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, सचिन देव बर्मन की धुन है, और इसमें यही होता है कि टायर पंचर होता है और फिर उसमें हवा भरी जाती है। बहुत ही ध्यान से जब आप इस गीत को सुनेंगे तो ये संगीत भी आपको

0: तेरे की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ,
2: किक किक किक किक,
1: ट्रेडनिंग पहिया, अरे पंपिंग।

जी तो ये मस्ती भरा गीत अभी आपने सुना। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि वैसे तो हमें प्रॉपर ढोलक बजाना नहीं आता, लेकिन फिर भी हम तबला और डोर बजा लेते हैं, ढोलक बजा लेते हैं। इसके अतिरिक्त कुकर की जब सीटी आती है या टॉवल से भी गिटार बजाने का अभिनय कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि इन्हें गिटार और बांसुरी जो है बहुत पसंद आती है। वही एक श्रोता को हारमोनियम, ढोलक, तबला, मजीरा मंदिर में सत्संग में बहुत साल तक बजाया है। अभी ही 2 महीने पहले रामकथा का आयोजन किया था, तब स्टेज पर पूरे 9 दिन पखावज मंजीरे बजाई, क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे बांसुरी और सैक्सोफोन वाद्य यंत्र बहुत पसंद है। और एक श्रोता को मुझे सभी वाद्य यंत्र पसंद है, लेकिन सैक्सोफोन और सितार को जिस तरह हमारे फिल्मी गानों में बजाया गया है तो वो कालजयी बन गए हैं और सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे गानों में बांसुरी की आवाज बहुत अच्छी लगती है। पक्षियों का कलरव बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जब ज्यादा चींची करती है तो गुस्सा भी आने लगता है, अरे क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मैं हारमोनियम बजाता हूँ, चूंकि ये रीड वाला वाद्य यंत्र है अतः इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड भी बजाता हूँ। वैसे मुझे संतूर की आवाज भाती है, दिल दिमाग को झंकृत कर देती है। वही एक श्रोता को घोड़े की टापों की आवाज अच्छी लगती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बांसुरी की आवाज और टेबल को बजा के हम यूं तो गीत गा लेते हैं, और कभी कभी ढोलक की आवाज के साथ भजन भी हम गाते हैं जो कि अच्छे लगते हैं। एक श्रोता को प्रकृति को सुकून देने वाला संगीत सुनना है तो सुबह 5 बजे उठकर बाहर चले जाइए, वहाँ बहुत सारे पेड़ और चारों तरफ हरियाली होगी, पानी से भरा तालाब, फिर नदी होगी, तो आपके मन को कितनी शांति मिलेगी। ऐसा जानते हुए जब आप संगीत सुनेंगे तो उस संगीत का तो कहीं उदाहरण दूसरा मिलेगा ही नहीं, ऐसा आप लिखती हैं। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम पाकीज़ा, गीतकार कैफी आजमी हैं, संगीतकार गुलाम मोहम्मद साहब हैं। इस गाने के अंत में जो गाड़ी की आवाज है यानी सीटी जो बजती है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है और दिल को एक अलग ही भाव पैदा कर देती है हमारे दिल में।

दोस्तों, समय अभाव के कारण ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाए और इसी कारण गाने के अंत में जो ट्रेन की आवाज हमें सुनाई देती है वो आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं। फिलहाल सुरीला सफर कार्यक्रम का अब वक्त खत्म हो चला है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान। देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। एक रिपोर्ट।
1: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान लोगों के विकास और ग्लोबल साउथ के हितों को विशेष महत्व दिया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि सम्मेलन के पहले ही दिन सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना था। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स नेताओं ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान करने की अपील की। वहीं आम लोगों और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी दिया गया। इसके अलावा सभी नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने पर भी सहमति बनी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने त्रिक्कुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को त्रिक्कुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स की विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि सेना के अथक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। विरोध प्रदर्शनों में भी गिरावट आई है और पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है। रिपोर्ट में चीन के साथ समग्र स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। वास्तविक नियंत्रण रेखा LSC और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10 संयुक्त शस्त्र ब्रिगेड के आकार के बल तैनात किए गए हैं। भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है जिससे स्थिरता आई है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना

0: चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। श्री शाह ने हिंदी दिवस के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया।
1: हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकन अंशुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है, वो सभी को मैं मन पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
0: गृहमंत्री ने वंदे मातरम को देश का गौरव बताया।
1: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागृत किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोह में गाने का काम किया।
0: दो दिन के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से नवी मुंबई में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदी और महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपराओं के बीच संबंध को उजागर करना है। सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों, संगठनों, बैंकों और मंत्रालयों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
2: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को जोड़े। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिय को सूल। इस हिंदी दिवस पर आइए हिंदी को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें, बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें, क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। आकाशवाणी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के जल विद्युत अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे नेपाल के घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई है। राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनावों की वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 10 नगर निगमों में से भाजपा जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित 6 में आगे है, जबकि कांग्रेस पाली और बीकानेर में बढ़त बनाए हुए है। भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार भूमि मालिकों की जानकारी के बिना किए जाने वाले फर्जी भूमि पंजीकरणों को रोकने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू कर रही है। यह संपत्ति पंजीकरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। केंद्रीय विद्युत और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका पहुंच गए हैं। ऊर्जा प्रचुरता पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक 14 से 16 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के अनेक जिलों में आज तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड इन पांच तटीय और अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, भावनगर और सूरत समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट प्रभावी है। इन दौरान 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में मानसून की नई बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है, जिससे किसानों में खुशी की लहर छाई है। राज्य के 35 बांध अपनी पूरी क्षमता से भरने के कारण हाई अलर्ट पर है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में भी तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 2 दिन तक बारिश जारी रह सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भगवान गणेश की पूजा की।
4: गणेश चतुर्थी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी, उत्साह, उत्सव रहे, इसकी कामना करता हूं। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।
0: गणेश चतुर्थी की वजह से आज घरेलू शेयर बाजार बंद है। कमोडिटी बाजार में आज सुबह के सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन शाम 5 बजे से कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराया। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान और देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल।
5: दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।
7: छलके।

0: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुना। स्वर मोहम्मद रफी का था, फिल्म आरजू के लिए। यह आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीत शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।
1: आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है, बाहों में बाहें ना डालो मुझे कुछ होता है, बाहों में बाहें ना डालो मुझे कुछ होता है। आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो।

निकालो मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है। आंखों में आंखें ना

0: मैं संभालू मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है। आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हम आपको शैलेंद्र का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम संगम, आवाज मुकेश की।

0: पुरस्कार भी मुझे मिला राजस्थान साहित्य अकेडमी युवा का।
1: क्या बात है।
0: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
2: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
0: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: बिल्कुल।
2: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत राजा मेहदी अली खां का लिखा हुआ, संगीत में ढाला है मदन मोहन ने, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है आपकी परछाइयां।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गाना मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आरती से हमने लिया है। इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन रोशन की।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। ब्रिक्स समिट 2026 की सफलता पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति को सराहा। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम के विजन और दिल्ली घोषणा पत्र से आतंकवाद को बड़ा झटका लगा है। सभी देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वसुधैव कुटुंबकम, इतनी बड़ी कूटनीति, आप देखो दिल्ली डिक्लेरेशन जो हुआ वो अद्भुत था। आतंकवाद के खिलाफ सभी ब्रिक्स के देश एक स्वर में कहा कि जो पहलगांव की निर्मम घटना हुई थी वो घृणित थी, पूरी तरह ये आतंकवाद के खिलाफ एक जबरदस्त प्रहार था।
0: ब्रिक्स समिट 2026 पर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी रांची में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि

0: सम्मेलनों में बातें तो बड़ी होती हैं, लेकिन देखना होगा कि उन पर कितना अमल होता है। श्री ठाकुर ने उम्मीद जताई कि अगर सरकार कथनी को करनी में बदलेगी तभी देश को इसका वास्तविक फायदा मिलेगा।
1: देखिए, जब भी कोई इस तरह की समिट होती है तो उसके जो बाद बयानात आते हैं उससे ये लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं अगर उस तरह की बातें धरातल तक उतर गई तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। लेकिन जो पिछला हम लोगों का अनुभव रहा है, प्रधानमंत्री जी बातें ज्यादा करते हैं काम कम करते हैं, तो वो किस हिस्से में जा रहा है वो तो आने वाला समय बताएगा।
0: में भाजपा नेता सीता सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता की उम्मीदें निराशा में बदल चुकी हैं। राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और आम जनता बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी आंदोलन करने को मजबूर है।
2: अलग राज्य बने तो 26 साल हो गए पूरा, और झारखंड की जो जनता है उपेक्षित रह गए। कई आशाओं की नजरों से सरकार को देखें, लेकिन जो आशाएं हैं आशाई रहे हैं, जो बदलाव होना था वो बदलाव कहीं नजर नहीं आया। और आज के डेट में जो हम देख रहे हैं कि जो रफ्तार होनी चाहिए थी पूरे तरह से मतलब घट चुकी है सभी विभागों में।
0: झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स FJCCI चुनाव में पलामू के जिला परिषद सदस्य अमित कुमार जायसवाल ने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद पर शानदार जीत दर्ज की है। रांची में हुए इस चुनाव में उन्होंने प्रतिद्वंद्वी को 29 मतों के अंतर से हराया। इस सफलता के बाद उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू से मुलाकात की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। JLKM के विधायक जयराम महतो ने राज्य के ईमानदार अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि उनके काम को नमस्कार है, लेकिन जनता के साथ गलत करने वालों के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा।
3: झारखंड राज्य के लोगों की लड़ाई तीन जगह जाकर दम तोड़ देती है, थाना में, एक अंचल में, एक ब्लॉक में। डीसी और एसपी तो झारखंड के लोग अभी भी नहीं समझते वो क्या होते हैं, और सबसे ज्यादा करप्शन तो खैर पूरे राज्य में है, लेकिन जनता जहाँ से प्रभावित ज्यादा हो रही है तीन जगह है, और वहाँ शुरुआत हम लोग वहीं से करेंगे। तो वहाँ जो लोग ईमानदार है फिर आपके माध्यम से उनको मेरा नमस्कार रहेगा, लेकिन जो लोग वहाँ बैठकर संवैधानिक पदों पर बैठकर अगर जनता के साथ धोखाधड़ी करेंगे तो अब उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की हो रही अनदेखी पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पाकुड़ में पुलिस ने अवैध लॉटरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर थाना क्षेत्र के तलबा डांगा गांव में छापेमारी कर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1900 अवैध लॉटरी टिकट और एक मोबाइल फोन जब्त किया है। हिंदी दिवस के अवसर पर आकाशवाणी रांची में एक विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि और नामकुम स्थित संस्थान के पूर्व मुख्य तकनीकी अधिकारी डॉ. अंजेश कुमार ने विश्व पटल पर हिंदी बढ़ता दायरा बढ़ता प्रभाव विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर हिंदी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। मौके पर केंद्र प्रमुख DC हेम्ब्रम सहित आकाशवाणी के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्वागत के लिए शहर में जगह जगह भव्य और आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए हैं। राज्य में आज हरतालिका तीज भी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: की सहेली
1: सभी सखियों को सभी सहेलियों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और दीपा आपको भी नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां।
2: जी बिल्कुल, आपकी शुभकामनाएं स्वीकारते हैं और अपनी सभी सखियों को श्रोता भाइयों को और चंचल आपको भी नमस्कार, हेल्दी नमस्कार।
1: हाँ,
2: बहुत सारी शुभकामनाएं क्योंकि बहुत खास दिन है आज।
1: बिल्कुल, मुझे इंतजार था कि आपका हेल्दी नमस्कार क्यों नहीं आया।
2: वो कैसे छूट सकता है, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। सब चीज चलती रहेंगी, मतलब हर चीज परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, कभी खुशी वाले दिन होंगे जैसे आज का दिन है।
1: हाँ,
2: त्योहार आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन
1: और इनमें सेहत बड़ी जरूरी है, इसीलिए आपके हेल्दी नमस्कार का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। तो चलिए विषय बताते हैं आज के। आज कथा सुधा में हमारी सखियां और सखा सुनेंगे कहानी बड़े भाई साहब, इसका पहला भाग
2: जी।
1: इसके अलावा आज प्रादेशिक व्यंजनों में हम कश्मीरी व्यंजन की बात करेंगे, नदरी यखनू यानी कमल ककड़ी, उसे कश्मीरी भाषा में नदरी यखनी नदरू यखनी कहा जाता है। तो इससे क्या क्या बन सकता है, इसके क्या क्या व्यंजन बनते हैं, हमारी सखियां हमारे साथ जरूर साझा करेंगी। और खुशी का दिन है भाई, स्पेशल दिन है, खास दिन है, वो क्या है ये आप बताइए।
2: देखिए आज है हिंदी दिवस। और सुबह से हमारे सभी श्रोता सुन भी रहे हैं कुछ खास हिंदी के, हिंदी से, शुद्ध हिंदी से भरपूर वाले जी, शब्दों से भरपूर वाले गीत हम भी यहाँ पर कुछ आपके लिए प्रस्तुत करेंगे और जानेंगे कि क्या इसकी विशेषता है। और साथ में और भी एक खास बात है जो सारी दुनिया
1: भाई पूरा देश
2: हाँ रहा है,
1: क्योंकि आज बहुत खास दिन है ना दीपा, और ये मेहमान तो हम सबके घर में आते हैं, लेकिन आज जो आने वाले हैं वो सबसे खास मेहमान है, क्योंकि वो है विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति, हमारे गणपति बप्पा, आज उनके आगमन का दिन है।
2: बिल्कुल, और चंचल सच कहूं तो गणपति उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो पल है जब हम अपने घर में सिर्फ बप्पा की मूर्ति नहीं लाते हैं, हम लाते हैं खुशहाली, तो वो जो हंसी पूरे साल घर में दी रहती है, हम लाते हैं मंगल कि हमारा घर, हमारे अपने, हमारे रहें, सलामत रहें, गणपति उत्सव में हम खुशहाली और मंगल कामनाएं घर पर लेकर आते हैं।
1: बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो एक रीति रिवाज जिसे हम कहें कि सब लोग छोटी छोटी सी मूर्तियां अपने घर में लेकर आते हैं
2: जी।
1: और बप्पा आते हैं तो सिर्फ उनकी एक मूर्ति नहीं आती है, घर में खुशियों की रोशनी आती है, भरोसा आता है कि अब जो होगा सब ठीक होगा, बप्पा सारी कहते ना कि तकलीफों को परेशानियों को हर लेंगे।
2: बिल्कुल,
1: आंगन में रोशनी आती है, दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाता है बप्पा के आने से।
2: ये बात तो
1: बच्चों की जो हंसी है वो थोड़ी तेज हो जाती है, और फिर भाई बच्चों की हंसी या खुशी है या हम सब बड़ों की भी, वो इसलिए भी तेज होती है कि रसोई से मोदक की खुशबू आने लगती है, और ये कह सकते हैं कि एक खासियत है इस पर्व की और असली रोशनी भी है। तो हम सभी बोले ना, दिल से सब मिलकर बोलते हैं ना, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।
2: और बप्पा के आने का मतलब सिर्फ दिए या लाइटें, मतलब कि घर में रोशनी है, सिर्फ ये नहीं, जब मन रोशन होता है ना चंचल, तब हमारी पुरानी नाराजगी भी हम भूल ही जाते हैं कहीं, है ना, सही बात। और जब पूरा परिवार एक साथ आरती में खड़ा होता है या हमारे सोसाइटी में जब सब एक साथ खड़े होते हैं, तो सच में ऐसा लगता है बप्पा हमें यही सिखाने आए हैं कि शुरुआत करने से कभी मत डरो और हर नया काम शुभ है अगर आपकी नीयत साफ है।
1: तो बस बप्पा के आज का जो दिन है इसमें हमने घर को तो खूब सजाया ही है, क्यों ना अपने मन का भी कोना हम थोड़ा सा साफ कर लें, उसे सजा लें प्रेम की भावना से, अच्छाई से, और पुराने जितने भी मतभेद हैं उसे भुलाकर हम भी इस खुशी के उत्सव में शामिल हो जाएं। और महाराष्ट्र में तो 11 दिन तक ये उत्सव चलने वाला है, हम भी शामिल होते हैं।

0: पे। तो ये तो हुआ गणपति उत्सव के रंग में डूबा हुआ गीत, और अब बारी है कार्यक्रम में कथा सुधा की। तो सुनते हैं कहानी।
1: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।
3: मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द का वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिनमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कभी कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर वार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहां थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रोष मिश्रित शब्दों में मेरा सत्कार करें।
4: अरे इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, एरा गैरा नथु खैरा सभी अंग्रेजी में विद्वान हो जाते हैं, यहां रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं तुम कितने घोंगा हो भाई कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, तुम अपनी आंखों से देखते हो मगर नहीं देखते जो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहा हूं, उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूं। फिर तुम कैसे आशा कर सकते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो दो ही तीन साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो?
3: मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा, छटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेलकूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे हाथ मुंह धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वो दांव घात, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आपकी वो घोर तपस्या कहां गई, मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में प्रथम भी हूं। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई। और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हां, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी ससहमत बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक

0: भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े।
1: देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजों को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया, कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी जो चाहे करे पर अभिमान न करे, इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा, उसे यह अनुमान था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो, अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा, जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं, आठ आठ हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी सातवें की जगह हेनरी आठवां लिखा और सब नंबर गायब, सफाचट, सिर्फ भी ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है, इन अभागों के नाम भी ना जुड़ते। एक ही नाम के पीछे दोयम, तेयम, चहारम, पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिरपिर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा? इस रेखा पर वो लंब गिरा तो आधार लंब से दुगना होगा, पूछिए इससे प्रयोजन? दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना तो ये सब खुराफात याद रखनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। और जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे चार पन्ने में लिखने की जरूरत, मैं तो इसे हिमाकत समझता हूं। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि दुरुपयोग है, व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया। हम जो चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपके पन्ने चार रंगने पड़ेंगे चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है, उल्टी बात या नहीं? मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं, संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे।
0: स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर भी यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है।
2: कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: छोटे भाई जयंत पात्रिकर, बड़े भाई साहब जी श्याम, संकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनु

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: इस संदेश से पहले सखियों आपने कथा सुधा में सुना बड़े भाई साहब की पहली कड़ी और अब एक अंतराल का समय हो चुका है।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और इस अंतराल से पहले हमने सुनी कहानी, और उससे पहले हमने बात की गणपति उत्सव की। बहुत सारे संदेश हमारे सखियों ने भी भेजे हैं
1: जी, बहुत सारे आए हैं
0: तो उनके संदेश भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक गीत सुन लें।
1: चलिए।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत और वैसे ही खूबसूरत संदेश भी हमें मिले हैं अपनी
1: बहुत
0: सखी।
1: सारे संदेश, और पुनः हम सभी अपनी सखियों को, श्रोता भाइयों को गणेश चतुर्थी और ये आने वाले 10 दिनों तक जो आप हर्षोल्लास के साथ मनाने वाले हैं इस त्योहार को, उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। और पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं कि गणपति की स्थापना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि घर आंगन में खुशियों, शांति और समृद्धि के आगमन का शुभ अवसर है। बप्पा के स्वागत के साथ वातावरण भक्ति और उल्लास से भर उठता है, और साथ में ये भी लिखते हैं कि उनके आगमन से परिवार में प्रेम, एक उत्साह की नई रोशनी फैलती है। और आइए श्रद्धा और विश्वास का हम स्वागत करें इसी भावना के साथ, बहुत सारे संदेश।
0: हाँ, और हमारे एक श्रोता भाई ने या सखी है, उन्होंने ये भी लिखा है कि महाराष्ट्र में ये उत्सव बड़े हर्ष उल्लास से, जोरों शोरों से और बहुत बहुत विशाल तरीके से मनाया जाता है। बड़े बड़े पंडालों में गणपति की मूर्ति स्थापित की जाती है, लोग अपने परिवारों के साथ इस मंडप में भी जाते हैं, दर्शन करते हैं और पूरे परिवार के लिए मंगल कामनाएं मांगते हैं। और हमारे एक संदेश में हमारे शोधा बहन लिखती हैं कि हमारे बेटे बहू ने भी गणपति महाराज की स्थापना की है, गणपति भगवान सभी की मनोकामना पूरी करें।
1: और इसी की बातों के साथ एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि बहुत जरूरी है कि हम सब इको फ्रेंडली गणपति का इस्तेमाल करें और जितना हो सके इस बार अपने घर को इको फ्रेंडली अपने घर पर लेकर आए उनकी मूर्ति, और उसी तरह से सजावट भी करें। तो भाई ये बात पे ध्यान रखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
0: तो आपने बात पर ध्यान देने की बात की, मेरा ध्यान गया एक ऐसे संदेश पर जिसमें लिखा गया कि पिछले कई सालों से गणेश चतुर्थी के दिन हम घर पट्टी लाकर गणपति जी की मूर्ति बनाते हैं।
1: क्या बात है।
0: और अजमेर के श्रोता भाई हमारे श्रोता हैं और इन्होंने बताया है कि पूजा के रूम में उनको विराजमान करते हैं, 11 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है, मोदक का भोग लगाया जाता है और पूरे विधि विधान से अनंत चतुर्दशी के दिन उनका हम घर में ही अपने बगीचे में विसर्जन भी करते हैं।
1: कितनी अच्छी बात है। देखिए हमारे ही बीच में अगर एक कोई बात समझा रहा है तो एक और हमारे घर सखी है या श्रोता है जो हमें उस बात को करके भी दिखा रहे हैं। तो अपना परिवार इसी तरह से सखी सहेली का समृद्ध परिवार है।
0: और लगभग ये मिली जुली बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है कि घर में हर्षोल्लास का माहौल रहता है, सकारात्मकता आती है, नई ऊर्जा आती है। तो इसी ऊर्जा के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की तरफ।

0: कितने अच्छे शब्द थे इस गीत के और बहुत सुंदर हिंदी का लालित्य इसमें देखने को मिला। और आज 14 सितंबर है और ये सिर्फ एक तारीख नहीं होती दीपा कि बस कैलेंडर पे हमने जो तारीख देखी उस तरह से नहीं है, बल्कि अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को याद करने का भी बहुत सुंदर अवसर होता है। और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं।
1: बिल्कुल, हिंदी यानी एक ऐसी भाषा जिसमें अपनापन है, भावनाओं की गर्माहट है और दिल की बात को सहजता से कह देने की ताकत भी होती है।
0: बिल्कुल,
1: कभी ये माँ की लोरी बन जाती है और अपने कानों में उतरती है, कभी कविता बनकर मन को छू जाती है और कभी किसी कहानी के किरदारों में हमें अपना जीवन दिखाई देने लगता है, या कभी किसी गीत के बोल जैसे सीधे अपने दिल को उतर जाते हैं ना, बस कुछ ऐसी ही है ये भाषा।
0: और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इस ऐतिहासिक दिन की याद में ही हर साल 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में हम मना लेते हैं। और हिंदी बहुत खूबसूरती सिर्फ उसके इतिहास में नहीं है इसकी, बल्कि उसकी क्षमता में है जो अलग अलग लोगों को एक दूसरे से जोड़ देती है।
1: बिल्कुल, और हिंदी ने दूसरी भारतीय भाषाओं से बहुत कुछ ग्रहण भी किया है और बदले में उन्हें भी अपने शब्दों और अभिव्यक्तियों से समृद्ध किया है। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है चंचल, कि यहाँ भाषाएं अलग हो सकती है लेकिन भावनाएं हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहती है।
0: और हिंदी का रिश्ता पता है हमारे फिल्मी गीतों से भी बड़ा गहरा है।
1: हाँ।
0: अभी जो हम गीत सुन रहे थे उसमें बड़ा अच्छा लालित्य था कविता का। और रेडियो पर जैसे ही कोई पुराना गाना बजता है, चाहे उसमें प्रेम हो, विरह हो, जीवन की उम्मीद हो, मतलब हर भावना को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने परोसा जाता है और बहुत मधुर संगीत होता है। बरसों पुराने गीत जब हम सुनते हैं ना, तो हमें हमेशा अपने से लगते हैं।
1: बिल्कुल, ये बात तो
0: क्योंकि मिट्टी से जुड़े हुए लगते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हिंदी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है चंचल, दुनिया के बहुत सारे देशों में हिंदी बोली पढ़ी और समझी जाती है। इंटरनेट हो या सिनेमा, टेलीविजन या सोशल मीडिया ने हिंदी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में एक नई भूमिका इन सब ने निभाई है।
0: तो देखो एक कितना सुंदर संदेश हमें मिला है, हिंदी महज भारत की नहीं बल्कि दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी भारत की पहचान भी है और सम्मान भी है। और जो अन्य भारतीय अन्य देशों में बजे बसे हुए हैं उनको जोड़ने का एक काम करती है। वैसे तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन उन्होंने 10 जनवरी गलत तारीख लिखी है। आगे लिखते हैं कि लेकिन भारत में हिंदी दिवस को एक खास दिन तय किया गया है। भारत में 22 भाषाएं और 72,507 लिपि हैं। बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, उन्होंने लगभग कि हम कह सकते हैं कि ऐसा है। और इतनी सारी भाषाओं की विविधता के बीच हिंदी ऐसी भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ देती है।
1: ये बात तो बिल्कुल सही है। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि इस दिन हिंदी भाषा के सम्मान, उसके प्रचार प्रसार और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए ये दिन समर्पित है। शिक्षण संस्थाओं में इस दिन हिंदी दिवस पर भाषण होते हैं, निबंध लेखन, वाद विवाद और कविता पाठ जैसी प्रतियोगिताएं ये आयोजित की जाती हैं संस्थानों में, और भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं।
0: और दीपक, कोई भी भाषा तब तक जीवित या समृद्ध रह सकती है तब तक उसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में सम्मान के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दूसरी भाषाएं सीखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अपनी भाषा से जुड़े रहना ये बहुत जरूरी चीज है।
1: बहुत ज्यादा जरूरी है। हम विदेश की भी कई भाषाएं सीखते हैं क्योंकि काम काज के चलते आजकल वैसे भी जरूरत हो गई है, लेकिन बाहर जो देश के विदेश में रहते हैं हमारे परिवार के कोई जन, तो ये देखा सुना है कि वो लोग घर में हमेशा कहते हैं कि नहीं, हमारी जो भाषा है, जो हमारे घर की जो भाषा है हिंदी भाषा, वो अपने बच्चों को आना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, हमारी स्मृतियां होती हैं और हमारे संस्कार होते हैं। और देखिए संदेश भी बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। कितनी सुंदर दो पंक्तियां लिखी हैं हमारे किसी श्रोता ने। निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय की सूल। और आगे उन्होंने सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। बहुत सारे संदेश हैं, लेकिन पहले एक गीत सुन लेते हैं जो इसमें भी हिंदी का बड़ा सुंदर लालित्य देखने को मिलता है।
1: चलिए

0: हमारे आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो भाई अब हम थोड़ी सी व्यंजन की बात कर ले, खाने पीने की बात हुई, मोदक की बात अलग हुई, लेकिन कुछ अलग व्यंजन भी तो होना चाहिए। और क्योंकि अभी श्रृंखला कश्मीरी व्यंजन की है तो कश्मीर में ना कमल ककड़ी बहुत होती है,
0: बहुत होती है और बहुत प्रकार से वो बनी जाती है।
2: हाँ,
0: लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं
2: मतलब इसका सूप भी बना सकते हैं, पकौड़े भी बना सकते हैं, इवन सब्जियां भी बहुत सारे तरह से लोग बनाते हैं अपने अपने तरीके से।
0: और खासतौर पर चंचल जिनको जिनके घर में प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता है, नहीं पसंद कर रहे या किसी कारण से कुछ दिनों के लिए बंद है, तो वो नदरू यखनी बना सकते हैं
2: जी।
0: ये जो कश्मीरी का बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है, ये दही की ग्रेवी में बनाया जाता है जो कि बिना प्याज लहसुन के, जैसे अभी हमने आपको बताया। क्या लेना है इसमें, 500 ग्राम आप नदरू यानी कमल ककड़ी लीजिए, दही लेना है 500 ग्राम अच्छा सा फेटा हुआ, घी या तेल ले सकते हैं 3-4 बड़े चम्मच, हींग लेना है थोड़ा सा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, हरी इलायची, ये सब दो तीन, लौंग 4-5, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, सौंठ का पाउडर लेना छोटा सा चम्मच 1, और सौंफ पाउडर अगर आपको पसंद है तो 2 बड़े चम्मच ले लीजिए, बेसन 1 बड़ा चम्मच, दही को फटने से बचाने के लिए, जो दही को हमें फटना है ना तो फटे ना इसलिए हमें उसमें डालना है। अब बनाने की विधि यूं
2: और
0: है,
2: जो भी हम सामग्री हमने बताई है अपने स्वाद के अनुसार अब इसे थोड़ा सा
0: घटा बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। अब सबसे पहले नदरू को साफ करना होता है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है।
2: हाँ।
0: तो इसको छील करके अच्छे से धो लीजिए और इसे तिरछा या गोल टुकड़ों में अगर काटते हैं ना तो पूरी अंदर तक की मिट्टी जो
2: उसके छेद में अंदर तक मिट्टी घुस जाती है, चिकनी मिट्टी होती है,
0: चिकनी होती है, तो वो सब बाहर निकल
2: आसानी से निकल जाएगी।
0: अब उबालना है इसे, तो कटे हुए नदरू को पानी में 10 मिनट तक उबाल लें, इसके बाद इन्हें पानी से निकाल कर छान लेना है। अब एक कुकर या कढ़ाई में घी गर्म करें, इसमें हींग और सारे खड़े मसाले जो आपके घर में पसंद किए जाते हैं वो सब डाल लीजिए। फिर मसाला मिलाना है तो उबले हुए नदरू को घी में डालें और 2 मिनट तक भून लीजिए। अब इसमें सौंठ पाउडर, सौंफ पाउडर और थोड़ा सा नमक मिलाकर अच्छी तरह चला लीजिए। थोड़ा पानी डालकर कुकर की 2-3 सीटी आने तक बनाएं, पका लीजिए, या तब तक कि जब तक कि कमल ककड़ी थोड़ी
2: नरम ना हो जाए
0: जी। जो दही का मिश्रण अब तैयार करना है, 1 कटोरे में फैटा हुआ दही और बेसन को थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छी तरह फैट लेना ताकि कोई गांठें उसमें ना पड़े। उसके बाद ग्रेवी बनानी है तो कुकर का प्रेशर जब खत्म हो जाए तो ढक्कन खोल लीजिए और गैस को धीमा करें या चालू रखें और लगातार चलाते हुए दही का मिश्रण इसमें धीरे धीरे कढ़ाई में या कुकर में, अगर आप बना रहे हैं तो कुकर में ही डालना है, लगातार चलाते रहना है ताकि दही इसमें फटे ना। और जब ग्रेवी में उबाल आ जाए और ऊपर घी या तेल ऊपर तैरने लगे तब 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर और पकने दीजिए, आपकी नदरू यखनी तैयार है।
2: एक और कश्मीरी व्यंजन हमारे पास आई है विधि इसकी, इसमें बताया गया है कि कमल ककड़ी एक
0: इंग्लिश में लोटस स्टेम भी बोलते
2: हैं। हाँ, और वहां की ये पारंपरिक शाकाहारी डिश है और इसे दही की ग्रेवी में पकाया जाता है अक्सर। इसको पकाने के लिए 2 से 3 कप कटी हुई ताजी दही, 1 कप सरसों, लगभग उसी तरह की ये विधि इन्होंने बताई है। और इन्होंने बताया है कि मध्यम आकार के टुकड़े काटकर उबाल लें और फिर 10 मिनट तक पानी में उबाल लें, जैसा कि पिछली रेसिपी में भी था, लेकिन इसमें ये बताया गया कि ये खासतौर पर घी या सरसों के तेल में से पकाया जाता है, उससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और जैसा कि इसमें पहले आपने बताया कि बेसन इसलिए मिलाना है ताकि दही ना फट जाए, तो अगर कमल ककड़ी आपको बनानी है तो इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा क्योंकि हमारे पास रेसिपी सिर्फ सब्जी की आई है, आप कमल ककड़ी के बहुत स्वादिष्ट पकौड़े भी बना सकते हैं, इसका कमल ककड़ी का सूप भी बन सकता है। तो ये तो ही कमल ककड़ी के अलग अलग व्यंजन की बात।
0: कमल ककड़ी और चने की दाल, उसको मिला के दाल भी बनती है।
2: हाँ, तो अलग अलग संयोजन से अलग अलग एक स्वाद तैयार हो जाता है। इसी तरह से हमारी बातें, रेसिपी, श्रोताओं के संदेश और गीतों को मिलाकर हमारे जो प्रोग्राम का जायका है वो बन जाता है। तो गीत सुन ले
0: चलिए।

0: ही थी ना, तो मुझे याद है कि आज हिंदी दिवस है और हमने भी कोशिश की कि हम कुछ ऐसे गीत बजाएं जिसमें हिंदी का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया, ऐसा ही ये गीत था।
1: बिल्कुल
0: और गोपाल दास नीरज ने बहुत सारे गीत ऐसे लिखे हैं ना जिसमें हिंदी की इतनी सुंदर शब्द रचना है और बाद में उन शब्द रचनाओं के, यानी कि जो भी उनके लिखे गीत थे या कविताएं थी, उन्हें इतने सुंदर तरीके से गीतों में ढाला गया ना, वो गीत आज भी यादगार बन गए
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और नीरज जी के साथ और भी फहरिस्त में लंबी लंबी फहरिस्त है, जैसे कि भरत व्यास, पंडित नरेंद्र शर्मा, कवि प्रदीप, शैलेंद्र, वसंत देव, ये सारे वो गीतकार हैं जिन्होंने हमारी हिंदी फिल्मों के लिए सुंदर रचनाएं दी हैं। चंचल,
0: तो भाई इन रचनाओं को तो हमने सुना, और इतना समय नहीं कि बहुत सारी रचनाएं हम सुना सके, लेकिन कुछ चुनिंदा गीत हमने शामिल किए और बहुत सारी बातें करते, गीत सुनते, कार्यक्रम का समय पूरा हो गया और घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि हमारे जाने का समय हो गया। तो बस लेते हैं विदा,
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
0: और चंचल वर्मा का
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: सेहतनामा।
1: जताया कि तीन तलाक की समाप्ति के बाद अब इन राज्यों में यूसीसी भी समय सीमा से पहले प्रभावी कर दी जाएगी। खान एवं खनिज विकास संशोधन अधिनियम 2026 के कानूनी रूप लेने से झारखंड को बड़ा झटका लगा है। इस नए कानून के बाद केंद्र पर राज्य सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपए का कोयला रॉयल्टी बकाया दावा समाप्त हो गया है। साथ ही राज्य अब खनिजों पर कोई सेस भी नहीं लगा पाएगा। इस दोहरी क्षति के खिलाफ अब हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस नई जिम्मेदारी के बाद उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात कर आभार जताया। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे सुखदेव भगत ने इसे छत्तीसगढ़ की जनता और कार्यकर्ताओं के प्रति सेवा और संकल्प का बड़ा अवसर बताया है। गणेश उत्सव पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पहुंचकर भगवान गणपति की पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने आरती कर राज्य की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। दोनों नेताओं ने देशवासियों को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। झारखंड चैंबर ऑफ

0: कॉमर्स एफजेसीसीआई चुनाव में पलामू के जिला परिषद अध्यक्ष अमित कुमार जायसवाल ने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद पर शानदार जीत दर्ज की है। रांची में हुए इस चुनाव में उन्होंने प्रतिद्वंद्वी को 29 मतों के अंतर से हराया और राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा रांची में हिंदी दिवस पर विशेष व्याख्यान तथा काव्य पाठ समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभागीय सचिव प्रवीण टुप्पो ने कहा कि सुशासन की असली पहचान सरल हिंदी, सुगम प्रक्रियाएं और पारदर्शी व्यवस्था है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आहार के ऊपर बातें करनी हो ताकि लोगों को आहार के बारे में और आहार के महत्व के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और उनको ये पता चले कि कहाँ और किसके पास जाना है सही जानकारी मिलने के लिए, ये इस चीज़ के लिए हम ये पूरा सप्ताह इस्तेमाल करते हैं। ये हम कई सालों से कर रहे हैं, मगर पिछले कई सालों से पोषण माह ज्यादा करके मनाया जाता है जो कि सितंबर का पूरा महीना होता है। इसका मतलब अब हम एक हफ्ता नहीं पूरा महीने भर हम कुछ करते रहते हैं, जैसे कुछ छोटा मोटा कुछ भी हो जो जनरल पॉपुलेशन या लोगों के लिए फायदेमंद हो, ये हम ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देते हैं।
2: जी बिल्कुल, भारत सरकार की ओर से एक मुहिम चलाई जाती है, बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं क्योंकि बहुत सारा वर्ग कुपोषण का शिकार है आज भी, तो उन्हें पोषक तत्व मिले और कुपोषण से रहित अपना देश हो जाए, ये एक मुहिम है। और अब हमें बताइए कि ये जो वर्किंग वुमेन होती है और जो हाउसवाइफ होती है, तो उनके लिए किस तरह के पोषक तत्व जरूरी हैं, किस तरह के न्यूट्रिशन उन्हें लेने चाहिए?
1: अगर हम पोषण के बारे में बात करें और औरतों के बारे में बात करें, तो मेरी हमेशा एक बड़ी शिकायत होती है कि औरतें जो होती हैं वो सबका करने में इतनी मशरूफ हो जाती है, वो हमेशा खुद को भूल जाती है। भले आप हाउसवाइफ हैं या भले आप जॉब करते हैं, दोनों तरीके से आप बहुत ज्यादा काम करते हो।
2: जी जी,
1: कोई भी किसी से कम नहीं होता। बहुत बार हमें लगता है अरे ये कुछ नहीं कर रहे, ये तो हाउसवाइफ है, इनको घर संभालना है। नहीं, अगर आप देखें कई बार हाउसवाइफ जो है पूरे दिन में इतना काम करते हैं, उनको अलग से वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
2: जी बिल्कुल।
1: और दोनों के लिए अपना सही वक्त पे खाना, सही मात्रा में खाना बहुत जरूरी हो जाता है।
2: जी,
1: अगर आप वर्किंग हैं तो अक्सर ये दिक्कत आती है कि सुबह उठे डब्बा बनाया तो अपना नाश्ता भूल गए, तो अपने नाश्ते का समय निकाल के फुर्सत से बैठ के नाश्ता करना जरूरी है। फिर उसके बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा सही है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। और पूरे दिन में पानी के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वैसे ही घर की जो औरतें हैं जो घर संभालती हैं, उनको ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो वक्त पे खा रही हैं, या क्योंकि वो किचन में काम कर रही है बहुत बार छोटा मोटा खाया जा रहा है और उसके वजह से भी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि हमें चखने की तो बहुत आदत होती है। चलो ये खा लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, इसमें दिक्कत हो जाती है।
2: जी बिल्कुल।
1: तो औरतों को अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, उनको ये देखना जरूरी है कि क्या उनको 7 से 8 घंटे नींद मिल रही है, 2 से 3 लीटर उनका पानी दिन का जा रहा है, क्या उनका शारीरिक काम हो रहा है, जैसे चलना हो गया, जिम जाना जरूरी नहीं है बट कोई तो एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो भले 10-15 मिनट हो मगर खुद के लिए वक्त निकालना उतना जरूरी है। और उसके अलावा सही वक्त पे खाना और संतुलित खाना, जहां पे वो ध्यान दे कि उनके खाने में प्रोटीन हो, फाइबर हो, आयरन युक्त जैसे मोरिंगा हो गया या फिर हलीम या अलीव के बीज हो गए या फिर अनार हो गए, ये थोड़ी सी चीजें आपको खाने में होनी चाहिए, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद ठहरता है।
2: जी आपने कहा पानी पीना चाहिए प्रचुर मात्रा में, कुछ लोगों को देखा पानी एक साथ गट गट गट गट पी लेते हैं, एक बोतल या 2-3 गिलास पानी, तो ये तरीका सही है? थोड़ा तरीका भी बताइए किस तरह से पीना चाहिए पानी।
1: कुछ लोग बहुत जल्दी में पानी पी लेते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के पानी पी लेते हैं और पूरा दिन पानी नहीं पीते। हमारा शरीर इस तरीके से काम नहीं करता।
2: जी सही,
1: उसको सही वक्त पे पानी की जरूरत होती है। आपको प्यास लग रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, मतलब पानी की मात्रा

0: आपके शरीर में कम हो गई है। प्यास लगने तक राह ना देखिए,
1: बिल्कुल
0: धीरे धीरे थोड़े थोड़े वक्त पे थोड़ी थोड़ी घूंटों में पानी पीजिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ पानी हमेशा ग्लास में लेकर पीजिएगा,
1: जी जी
0: ना बॉटल से। आप बैठ कर पियो, खड़े रहकर पियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्लास में इसलिए ताकि आपको एक क्षण की क्यों ना हो थोड़ी सी एक पॉज मिल जाए, एक ठहराव मिल जाए, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है भागदौड़ की जिंदगी में, कि आप वो एक दो सेकंड का काम है कि थोड़ा सा रुक लो, थोड़ा ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दो, आप किस तरीके से पूरे दिन में सांसें अंदर बाहर कर रहे हैं, थोड़ा सा ठहराव आने दो, पानी पी लीजिए और फिर अपने काम पे आगे बढ़ जाइए। कहीं अगर हम देखें तो अगर हम 2-3 लीटर की बात करें पूरे दिन में, तो आपको एक ग्लास एक घंटे में धीरे धीरे करके पी लेना चाहिए, धीरे धीरे, ये जरूरी है। गर्म पानी पिए, ठंडा पानी पिए, वो आपके ऊपर है। आप बैठकर पियो, खड़े रह के पियो, वो आपके ऊपर है, मगर धीरे धीरे पीना बहुत जरूरी है।
1: जी, बहुत भ्रांति थी, बहुत बड़ी आपने दूर की। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
0: जी

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज एक बहुत बड़ी समस्या और है, डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं और थायराइड की समस्या ज्यादातर हो रही है, तो क्या आहार के जरिए, सही न्यूट्रिशन के जरिए क्या इस पर नियंत्रण किया जा सकता है?
1: अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो अगर आपके फैमिली में या आपके परिवार में माता पिता को, चाचा चाची को, जो इमीडिएट फैमिली होती है, तुरंत आपके माता पिता, भाई बहन, किसी को भी डायबिटीज़ है, आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको ये जानकारी है तो आपको आपके आहार या पोषण का ध्यान पहले से रखना शुरू कर देना चाहिए। आपके खाने में क्या होना चाहिए ये आप समझ गए तो आप अपने ब्लड शुगर को आराम से मैनेज कर पाओगे, आपको डायबिटीज के लेवल पे आप पहुंचोगे नहीं। अगर आप प्री डायबिटीज के लेवल पे किसी वजह से पहुंच गए, सही आहार से आप उसको रिवर्स कर सकते हो। अगर आपका लेवल डायबिटीज में चला गया और आपको डॉक्टर ने डायग्नोस कर लिया कि आपको डायबिटीज है या आपको शक्कर की बीमारी लग गई है, तो उस वक्त के बाद से आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब वो चला जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। उस लेवल के बाद से आप बस वो शक्कर की मात्रा को कंट्रोल में रख सकते हैं। तब भी आपको आहार की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो टाइप का आपको डायबिटीज है, भले वो जेस्टेशनल डायबिटीज जो कि प्रेगनेंसी में होता है, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, उसके हिसाब से और आपको कौन सी दवाएं दी जा रही है और आपका करंट ब्लड शुगर कितना है, उस हिसाब से आहार को डिजाइन किया जाता है, ताकि आपका जल्द से जल्द शुगर कंट्रोल में आए, आपको दवाइयां कम लेनी पड़े, या अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो वो अच्छे से आपके ऊपर काम करे कम से कम डोज में। तो आहार इतना हेल्प कर सकता है कि आपका 16-15 ऐसा HbA1c है तो वो 7-6 पे भी ले आ सकते हैं 3-4 महीने में।
0: जी बिल्कुल।
1: बट लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट दवाई ले लेंगे अगर खाना नहीं छोड़ेंगे और यहाँ पे दिक्कत आती है। बिना खाने को ठीक किए आपकी दवाई काम नहीं करने वाली है या कम काम करेगी।
0: बिल्कुल सही बात है, मतलब कि हमारे जीवन में सही और संतुलित आहार का बहुत महत्व है,
1: बहुत महत्व है।
0: अदिति जी, हमें बताइए कि सप्लीमेंट की कितनी जरूरत होती है पोषक तत्वों के साथ साथ? कई बार लोग खाना पीना तो ठीक ठाक रखते हैं, उसके बावजूद उन्हें विटामिन्स की कमी होती है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो सप्लीमेंट किससे लेना चाहिए और कितना इसका महत्व है और कितनी हानि है?
1: सप्लीमेंट कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, कुछ लोगों के लिए वो जरूरी नहीं है। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं, आपका रहन सहन सही है, नींद ठीक है, पानी ठीक है, आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो अक्सर आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं या आपके रिपोर्ट्स में आ गया कि आपको कोई विटामिन या मिनरल की कमी है, तो कभी कभार आपको वो लेने पड़ते हैं।
0: जी,
1: जो भी आप सप्लीमेंट ले वो हमेशा डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से ले, और डाइटिशियन आपको दवाई नहीं दे सकते हैं, डाइटिशियन आपको विटामिन मिनरल के बारे में जरूर बता सकते हैं, मगर ये विटामिन और मिनरल भी एक समय के लिए लेना चाहिए, एक उसका विशिष्ट रूप होता है जिस तरीके से लेना चाहिए, और विटामिन मिनरल्स ऐसी चीज है जिसका कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है सप्लीमेंट में, तो वो पेशेंट की जरूरत के हिसाब से हम देते हैं, बिना किसी की सलाह के, बस इसलिए क्योंकि विटामिन मिनरल मिल रहा है और किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने बता दिया आपको विटामिन ये लेना है, कैल्शियम ये लेना है, आपको वो अवॉइड करना चाहिए। अगर सलाह दी है तब भी ले लीजिए, और उतने वक्त के लिए ही लेना जितना बताया गया है।
0: बिल्कुल,
1: वो सही वक्त पे लेना, सही तरीके से लेना जरूरी है। अभी कौन से विटामिन मिनरल ज्यादातर लगते हैं? अगर आपकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, मतलब आपके शरीर में कोई भी विटामिन या मिनरल की कमी बहुत ज्यादा है, तब आपको सप्लीमेंट की जरूरत लगती है। उसके साथ साथ आपको आहार को भी आपके ठीक करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो रोज का आहार है वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी जरूरतें पूरा करेगा। सप्लीमेंट जो कि आपका बैकलॉग है, जो कि आपके शरीर में ऑलरेडी कम है, वो चीज को भरेगा, तो वो सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही जैसे विटामिन डी की बात करें, तो विटामिन डी का मेन तो धूप से मिलता है, मगर हम आजकल धूप में ज्यादातर जाते नहीं
0: जी,
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: या फिर हम पूरे कपड़े पहनते हैं, या ऐसे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स या कुछ भी शरीर पे, जिससे विटामिन डी अब्जॉर्ब नहीं होता।
0: अच्छा
1: और खाने में विटामिन डी की मात्रा कम है तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप विटामिन डी बहुत, क्योंकि कम है, सबको कम होता है, हम हर रोज लेंगे या हर हफ्ते लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि

0: विटामिन डी फैट सॉल्यूबल है, उससे आपकी बॉडी में विटामिन डी स्टोर हो सकता है और आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो बिना सलाह किए कभी भी उनको नहीं लेना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: दूसरी चीज, आप कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या कोई डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, एक चिट्ठी पे लिख के उन डॉक्टर को थमा दीजिए कि मैं ये ऑलरेडी ले रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है, आप एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी कैल्शियम दिया, किसी और ने भी कैल्शियम दिया, और आपने उनको बताया नहीं, तब भी ज्यादा हो सकता है आपके लिए। तो सप्लीमेंट कभी भी कितने भी आसानी से मिले, कितने भी करीबी रिश्तेदार ने आपको बताए हो, बिना जांच पड़ताल या बिना कोई प्रोफेशनल सलाह के नहीं लेने चाहिए।
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर,
0: जी,
1: कौन सा गाना आपके पसंद का?
0: आजकल तेरे मेरे प्यार।
1: जब सेहत सही रहती है तो भाई जाहिर सी बात है मन ठीक रहता है,
0: हाँ जी,
1: मन में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो प्यार की भावना भी उपजती है। सुनते
0: एब्सोल्युटली।
1: हैं ये गाना।

0: अदिति जी, हमें बताइए कि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने से पहले एक गिलास पानी पी लो, खासतौर से वो लोग जो वजन घटाने की मुहिम चला रहे होते हैं, और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने के बीच बीच में पानी पीते जाओ थोड़ा थोड़ा, और कुछ लोग ये मानते हैं कि खाने से पहले ना तो पानी पीना है, ना खाने के दौरान, ना खाने के बाद। ये जरा स्पष्ट कीजिए, क्या करना चाहिए?
1: इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है और मैं वही सोच रही हूँ कि सही अल्फाज क्या है इसके लिए, थोड़ा स्पष्टीकरण देने के लिए, क्योंकि ये सब विचारधारणा है, ये किसी किसी को आप अप्लाई कर सकते हो, हर किसी के लिए नहीं है। सीधी बात है, आपको पानी लगता है आप पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाने के पहले एक गिलास पानी पियोगे, क्या हो जाएगा, आपके खाने पे असर पड़ेगा,
0: भूख कम हो जाएगी।
1: आपकी भूख कम तो हो जाएगी, मगर ऐसा भी हो सकता है आप कम भूख के कारण खाने की कोई विशिष्ट चीज जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है आप उसी को निकाल दो।
0: जी जी

0: भूख कम हो गई तो आपने रोटी सब्जी कर ली, दाल छोड़ दी, तो आपको दिक्कत देगा। अगर आप कर रहे हो तो उसके पीछे का शास्त्र समझ लो कि आप पानी पी रहे हो ताकि आपकी थोड़ी भूख कम हो जाए। मगर ऐसा करने के बाद अगर आपको 4 बजे बड़ी जोर की भूख लग रही है तो फिर क्या ही फायदा उस चीज का।
1: बिल्कुल।
0: वैसे ही आप पानी आधा घंटे पहले मत पियो, आधा घंटे बाद मत पियो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। पानी किसको संभाल के पीना चाहिए? कुछ लोग जो होते हैं ना, जो खाना खाने के वक्त पे कम चबाते हैं या उनको चबाना पसंद नहीं आता, तो ऐसे लोग जो है थोड़ा चबा लेते हैं खाना, बाकी पानी पी के उसको थोड़ा सा गटक लेते हैं। मुझे उसका सही अल्फाज नहीं पता, बट उसको पूरा स्वॉलो कर लेते हैं।
1: जी जी जी।
0: तब आपके खाने की मात्रा बहुत कम हो जाती है और आप पानी से ही आपके खाने को अंदर ढकेल रहे हो। ये आपको तकलीफ देगा और बहुत ज्यादा तकलीफ देगा, आपके डाइजेशन के हिसाब से भी तकलीफ देगा और आपको भूख के हिसाब से भी तकलीफ देगा। ऐसे वक्त पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सिप सिप करके पानी पी रहे, घूट घूट लेके पानी पी रहे खाने के दौर में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
1: जी बिल्कुल। और एक सवाल और है, वो ये कि एक वक्त में 2 अनाज खाएं, एक अनाज जैसे कि या तो दाल चावल खाएं या फिर रोटी सब्जी खाएं, रोटी सब्जी शाम को खा लें, दिन में दाल चावल खा लें, ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूरी थाली, जैसे पुराने जमाने में पूरी थाली सजा के खाई जाती थी, तो आपका क्या कहना है
0: इसमें? सीधी सी बात है, धान धान होता है, आपको आखिर में देखना है धान की मात्रा आपकी थाली में कितनी है। आप अगर रोटी भी कर रहे हैं और चावल भी कर रहे हैं और आपकी आधी थाली उसी से भर रही है तो उसमें दिक्कत है। हमने क्या बात की थी कि थाली में 1/4 धान होना चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप रोटी सब्जी अलग करें, दाल चावल अलग करें या साथ में करें। प्रॉब्लम ये आती है या दिक्कत ये आती है जब आप उसका प्रमाण बदल देते हो। अगर आपकी थाली में रोटी सब्जी है मगर आप सब्जी को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, और दाल चावल है मगर आप दाल को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो कम मात्रा में,
1: जी जी,
0: तब आपकी थाली का संतुलन बदल जाता है। और 90% लोगों का यही इशू होता है कि उनकी थाली में आधे से ज्यादा धान होता है, एक छोटी मात्रा में सब्जी होती है और बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है।
1: जी, खाने का सही तरीका बहुत जरूरी है, और जिसको पित्त की समस्या, एसिडिटी की समस्या हो तो उसे तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत गलत फहमी है लोगों में कि कब क्या खाएं, दो भोजन के बीच में कितना गैप होना चाहिए।
0: इसका कोई एक सरल फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। किसी किसी को दिन में 3 बार खाने की आदत होती है, किसी को 5 बार खाने की आदत होती है। मुझे ऐसे लगता है, और मैं हमेशा पेशेंट्स को भी यही बताती हूँ कि आपकी जो जिंदगी है, आपका जो रूटीन सेट है, आप उस तरीके से काम करो। अगर आप 3 बार खाते हो 3 बार खा लीजिए, मगर ये देखिए कि वो आहार संतुलित हो। अगर हम बात करें भूख की, दिक्कत ये है शहर में आजकल लोगों को यही समझ नहीं आता भूख कब लग रही है और प्यास कब लग रही है। बस 1 बज गया है तो अभी लंच करने जाना है, ये समझ में आता है। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को समझना जरूरी है कि मुझे भूख कब लग रही है, मुझे प्यास कब लग रही है।
1: तो क्या जब भूख लगे तभी खाना चाहिए?
0: ऐसा जरूरी नहीं है, शरीर को जरूरत है उसकी समझे, और आप अपना रूटीन सेट करें उस हिसाब से। मैं ये कहूंगी पहले तो रूटीन सेट करिए और उस वक्त पे आपके बॉडी को ट्रेन करिए कि आपको उस वक्त पे भूख लगे। मगर भूख लगना उस वक्त पे जरूरी है, बस 1 बजा है इसके लिए मुझे खाना है ये नहीं होना चाहिए। मुझे 1 बजे भूख लगनी चाहिए क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ये होना चाहिए। जब आपको भूख लगेगी वही अनाज वही थाली आपको अच्छे से शरीर आपका उसको एब्जॉर्ब करेगा। आपके 2 खाने के बीच में कितना गैप होना चाहिए ये निर्भर करता है आप कितनी मात्रा में खाते हो। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्वांटिटी में ज्यादा खाते हैं, खाने की मात्रा उनकी ज्यादा होती है, और कुछ लोग होते हैं जो एक वक्त पे 1 रोटी या 2 रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। जो कम खाते हैं उनको कई बार थोड़े थोड़े अंतर पे खाना जरूरी है, तो 2-3 घंटे के अंतर पे आप थोड़ा थोड़ा खा लेंगे अच्छा रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी खाने की मात्रा ज्यादा है तो आप दिन में 3 बार खा लोगे आप ठीक रहोगे। अगर आपको जैसे एसिडिटी या गैस की दिक्कत है तो आपको थोड़ा थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। आपको ब्लड शुगर की इश्यू है तब भी आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए ताकि आपका शुगर स्टेबल रहे। अगर आप दिन में 3 बार खा रहे हो, जस्ट इसलिए कि अभी ट्रेंड चल रहा है दिन में एक बार खाने का, आप डायरेक्टली 3 से 1 पर आ गए, वो दिक्कत करेगा।
1: जी जी, अभी 2 टाइम का भी
0: बहुत ज्यादा
1: कि सिर्फ 2 टाइम खाना खा रहा है। यहाँ पर एक जरूरी बात जहन में आई है, वो ये कि कई बार लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो सलाद भी रख लिया, दही भी रख लिया, फल भी रख लिया काट के, और पूरी थाली भी। तो क्या फल और खाना एक साथ खाना चाहिए या उसे बीच में गैप देना चाहिए?
0: हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि फल ऐसी चीज है जो हमारे पूरे खाने में, हम उसे बिना पकाए खाते हैं।
1: जी जी,
0: तो उसे ऐसे वक्त पे खाएं जहां आप उसका मजा अलग से ले पाए।
1: जी,
0: जहां पका हुआ खाना जा रहा है वहां पे वो होना चाहिए। सलाद आपके खाने में जा सकता है, वो कच्चा होता है, मगर सलाद हर किसी को सूट करता है ऐसा नहीं है। इसका मतलब कच्चा खाना सबके लिए है नहीं।
1: जी जी बिल्कुल,
0: आपकी सेहत के हिसाब से, आपके पेट कैसा काम कर रहा है उस हिसाब से आपका सलाद पका हुआ हो या कच्चा होना चाहिए, ये देखना आपको जरूरी होता है। फल आपको हमेशा अलग से ही खाने होते हैं, और कभी भी फल के साथ आपके नट्स जाने चाहिए। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि नॉर्मली लोग 8-9 बजे नाश्ता कर लेते हैं, 1 बजे खाना खाते हैं, और जो रात का खाना होता है वो अक्सर 8-9-10 बजे चला जाता है, तो आपके दोपहर के खाने और रात के खाने में बहुत बड़ी गैप हो जाती है। तो ऐसे वक्त पे इसके बीच में वहां पे फल और आपका जो नट्स है वो बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। अभी आपको ये भी देखना है कि 5 से 7 के बीच में ही आपको समोसे चाट की जरूरत पड़ती है, तो वो भूख लगने के पहले और आपके दोस्त आपको बताने के पहले कि चलो हम जाके समोसा खाते, उस वक्त पे आपका फल और नट्स खा लीजिए। हाँ। और आपकी सेहत बढ़िया रहेगी।
1: जी जी, एक गाना सुने।
0: जी,
1: कौन सा?
0: क्यों ना ये जीवन है पिया का घर।
1: जी, इस जीवन का यही है रंग रूप।

0: कुछ लोगों का ये भी मानना है रोटी के मामले में कि गेहूं की रोटी नहीं पचती है, देर से पचती है, और मोटा अनाज ज्वार बाजरा और नाचनी, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
1: अगर हम गेहूं की बात करें, एक ट्रेंड चल रहा है जहां पे लोग बोलते हैं कि गेहूं बहुत बुरा है। गेहूं हर किसी के लिए बुरा नहीं है। अगर आपको एलर्जीज हैं या IBS IBD जैसे कोई मेडिकल कंडीशन है, तब आपको, या आप गेहूं जब भी खाते हो आपको थोड़ी बहुत डाइजेशन की इश्यू होती है, गैस की इश्यू होती है, तब गेहूं दिक्कत दे रहा है आपको, और तब आपको उसको अवॉइड करना चाहिए।
0: तो वहां
1: मतलब
0: पर
1: आपकी थाली में गेहूं नहीं होना चाहिए या कम मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि वो आपको तकलीफ दे रहा है। बाकियों को गेहूं से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। कि आप गेहूं कौन से तरीके का यूज कर रहे हो ये देखिए,
0: जी जी
1: जिसमें आपके पास खपली गेहूं है जो सबसे बेहतर है, उसके बाद आपके पास अलग अलग तरीके के गेहूं हैं, आप कौन सी वैरायटी यूज कर रहे हो ये भी देखिए, और उसमें आप जो गेहूं के ऊपर का छिलका होता है, ब्रान होता है, वो इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं खाने में, रोटी में, ये देखिए, आप सही रहोगे। रोटी गलत नहीं है, रोटी हर किसी को तकलीफ देती है ऐसा भी नहीं है। अगर हम ज्वार बाजरा की बात करें, मिलेट्स बहुत ज्यादा चर्चा में है एक दो
0: बिल्कुल
1: सालों से, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मिलेट्स हम पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश में, आज उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है, मगर लोगों को उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आज भी नहीं आता है। ये जो मिलेट है या मोटे अनाज है, ये बहुत बार आप देखोगे थोड़े सूखे या ड्राई टेंडेंसी के होते हैं। ये कम खाएंगे तब भी आपको एकदम ऐसे लगेगा कि भरा भरा पेट लग रहा है, या पेट बहुत टाइट हो रहा है, या आप और एक ज्वार की रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। अच्छे हैं, मगर वो भी सही मात्रा में आपके दिन में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको थायराइड जैसा इश्यू और आप पूरी तरीके से मिलेट्स पे रह जाए, आपको दिक्कत होगी। तो एक संतुलन गेहूं और मिलेट्स के बीच में रखना, चावल के बीच में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो संतुलन जमा लिया तो आपका पेट सही रहेगा। दूसरी चीज मुझे ये हमेशा दिखती है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, आंकड़ों के पीछे पड़े रहते हैं। इसका
0: जी
1: मतलब क्या होता है कि उनके प्लेट में उनको या थाली में उनको दो रोटी चाहिए होती है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो गेहूं की है, ज्वार की है, बाजरा की है। अभी ये दिक्कत है कि एक फुल्का या एक रोटी जो है 20 से 30 ग्राम आटे की बनती है, और एक ज्वार की रोटी जो है 50 से 60 ग्राम आटे की बनती है।
0: बिल्कुल
1: तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने ज्वार बाजरा जो भी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिया, जहां कि आप रोटी एकदम हल्के फुल्के में काम चला लेते हैं।
0: तो पाचन पर असर पड़ेगा।
1: जी, तो ये लोग सोचते ही नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं है। तो ये आपको देखना जरूरी है कि आपकी पाचन क्रिया कैसी है, आपका पेट कैसा है, क्या आप मिलेट्स को डाइजेस्ट कर पा रहे हो, और अगर आप मिलेट्स को आपके खाने में, रोजमर्रा की जिंदगी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो या डालना चाहते हो, आप किस तरीके से डाल रहे हो।
0: जी
1: आप अगर मिलेट्स बिल्कुल भी नहीं खा रहे तो तुरंत से पूरे हफ्ते मिलेट्स ना करें, हफ्ते में एक दो बार करें, फिर 3-4 बार करें, धीरे धीरे मिलेट्स की आदत लगाएं। और ज्वार बाजरा नाचनी के आगे भी हमारे पास धान है, उसका
0: जी
1: भी इस्तेमाल करें, जैसे कोड़ हो गया, कांग हो गया, पोर्सो हो गया, महाराष्ट्र में वरी हो गया, ये सारे भी तो धान हैं, वो भी तो
0: जी
1: इस्तेमाल कर सकते हैं। सूडो मिलेट्स हैं जैसे कि किनवा हो गया, कुट्टू हो गया, बकवीट जिसे बोला जाता है। किनवा को तो हिंदी मराठी नाम है नहीं, किनवा को किनवा ही बोलते हैं।
0: सावा
1: नहीं,
0: अच्छा
1: सामा है जो कि होता है महाराष्ट्र में वरी, बार्नयार्ड मिलेट।
0: जी जी
1: तो ये
0: जी
1: सारी चीजें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमें सिर्फ रोटी और उसके आगे ज्वार बाजरा नाचने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है, हमें बस कुछ चीजें पता नहीं है और कुछ चीजें हमें इस्तेमाल करनी नहीं आती। तो आप सही तरीका सीख लो तो हो जाएगा। जब भी आप मोटे धान की बात करें, और आप अगर अक्खा धान यूज कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से 4 से 6 घंटे भिगो के रखना बहुत जरूरी है, और सही मात्रा में पानी डाल के उसको पकाना बहुत जरूरी है। उसके साथ आप किस तरीके की सब्जी खा रहे हो, अगर आप मोटा धान इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ जो सब्जियों में पानी का अंश ज्यादा होता है, जैसे दूधी हो गया, कद्दू हो गया, पेठा हो गया, इसका इस्तेमाल ज्यादा करें, तो वो आपका सूखी रोटी और उसके साथ गीली सब्जी, ये थोड़ा सा बैलेंस आपके पेट के लिए बहुत अच्छा ठहरता है।
0: अच्छा क्या बात है
1: तो
0: ये
1: ये
0: तो।
1: थोड़ा संतुलन आपको समझना चाहिए और आपको धीरे धीरे अपने खाने को उस तरीके से बदलना जरूरी है।
0: एक गाना सुने
1: जी।
0: कौन सा
1: आप भी बता दीजिए कोई गाना।
0: सुनते हैं ये गाना।
1: एक बार

0: जो आप धान की बात कर रही थी, धान में ये सारी चीजें आती हैं। धान में सिर्फ वो चावल जो हम रोज खाते हैं वो नहीं, हाँ। बल्कि कुदो और जो नाम
1: बहुत ज्यादा है। और आप अगर चावल की ही बात करें तो भारत ऐसा देश है जहाँ हमारे पास 150-200 तरीके के चावल है।
0: बिल्कुल,
1: मगर हम एक ही चीज जानते हैं,
0: खुशबूदार
1: सफेद चावल
0: बिल्कुल,
1: खुशबूदार चावल, बासमती चावल, इतना ही जानते हैं। थोड़ा हमारे जो चावल के अनाज है जो हमारे पास है, जैसे अंबे मोहर है, मट्टा है केरला का, या असम का ब्लैक राइस है, जो आपके यहाँ है, या कृष्ण कमोद है, आप वो चावल का इस्तेमाल करें। ब्राउन राइस आता है, मगर उससे अच्छा हमारे पास बहुत सारे चावल है। अनपॉलिश्ड वैरायटी का चावल इस्तेमाल करें या सेमी पॉलिश्ड वैरायटी इस्तेमाल करें। बहुत खुशबूदार, बहुत फ्लेवरफुल चावल आते हैं हमारे पास। सफेद चावल में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं रहता है।
0: अच्छा।
1: उसका सब कुछ निकाला हुआ होता है, बस हल्का सा बी विटामिन आपको मिल जाएगा, बाकी सब वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट है।
0: क्या बात है, बहुत सही जानकारी आपने दी है। पहले ग्रामीण इलाकों में आज भी
1: वही
0: धान को उबाल कर चावल बनाया जाता है, वो उसको उसना चावल कहते हैं।
1: हाँ, हमारे यहाँ उकड़ा तांदूल बोलते हैं। हाँ। महाराष्ट्र में जहाँ हम वही राइस को यूज करते
0: जी,
1: हैं
0: जी, जी।
1: जिसमें अच्छा ब्रान भी होता है, वाइटामिन भी होते हैं। हाँ। वो मोटा होता है तो आप कम भी खाते हो।
0: अदिति जी, बहुत जरूरी मुद्दा है आजकल तेल के बारे में, कि पुराने जमाने में तो हम सबको याद है कि सरसों का तेल सब्जियों में इस्तेमाल होता था, और कुछ जगहों पर नारियल का तेल, साउथ में खासतौर से, अलग अलग जगहों पर। और आजकल तरह तरह के तेल हैं, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर, राइस ब्रॉन, तो बताइए कि कौन सा तेल सब्जियों के लिए सही होता है इस्तेमाल करना।
1: आप जिस जगह रहते हो उस जगह आपके आजू बाजू में कौन से पेड़ ज्यादा है, उस हिसाब से उस इलाके में वो तेल ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की बारे में बात करें तो वहाँ पे आपको सरसों का इस्तेमाल ज्यादा मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें या साउथ की बात करें तो नारियल का तेल ज्यादा मिलेगा। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है तो ये सारे तेल अभी हम सबको मिल रहे हैं। कोई तेल बुरा हम नहीं बोल सकते, हर तेल अपने तरीके से सही है। किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है, किसी के लिए वो बुरा हो सकता है। मुख्य क्या होता है कि आपके खाने में तेल की मात्रा कितनी है। आप अगर आपके खाने में, जैसे एक इंसान को पूरे दिन में तेल की मात्रा 3 से 4 चम्मच रखनी चाहिए।
0: ओहो हो।
1: छोटे चम्मच, 5 ml के चम्मच, उसके ऊपर नहीं
0: जी।
1: मगर हम कभी गिन के थोड़ी ना तेल इस्तेमाल करते, अंदाजे से। भिंडी की सब्जी को थोड़ा ज्यादा तेल डाल दिया, कोई पत्ते की सब्जी है तो उसमें कम तेल डाल दिया, हम स्वाद अनुसार तेल इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अगर हम तेलों की बात करें कि कौन सा सबसे अच्छा होता है, सबसे पहले आप देखिए कि आपको मेडिकल इश्यूज है या नहीं। कुछ मेडिकल इश्यूज में कुछ तेल हम मना कर देते हैं, बाकी केस में अगर आपको कोई इश्यूज नहीं है, आप सेहतमंद है, आपको बस आपके तबियत का ख्याल रखना है, तो इसका सिंपल तरीका यह है कि आप पारंपरिक तौर से आप जो तेल खा रहे हो उसका इस्तेमाल करें, बाकी तेल भी अपने रूटीन में रखें, उसको थोड़ा सा साइकिल करें। मतलब अगर एक महीना आप सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा फिर राइस ब्रैन को लेकर आए, फिर आप सरसों पे चले जाए, फिर सनफ्लावर का इस्तेमाल करें, ऐसे थोड़े आप बदलाव लेकर आ सकते हैं। आखिर में आपकी तेल की मात्रा कितनी है ये मायने रखता है
0: जी।
1: कुछ तेल होते हैं जिनको बहुत बुरा नाम पड़ा है, जैसे पाम ऑयल है, क्योंकि ये ज्यादा करके पैकेज फूड, बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल किया जाता
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: तो हाँ, ये बुरा है क्योंकि उसकी जो गुणधर्म है वो आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पैकेज फूड और प्रोसेस फूड कितना खा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: आखिर में गिन के आप पूरे दिन में तेल कितना खा रहे हो। और तेल भी दो तरीके से हम देखते हैं, नॉर्मल लोग सिर्फ तेल को गिनते हैं, हम डाइटिशियंस दो तरीके से देखेंगे। विजिबल सोर्सेस जो कि दिखते हैं, मतलब आपका तेल, घी, बटर, चीज, और दूसरा होता है इनविजिबल सोर्सेस, मतलब दूध में से आने वाला फैट, आपके नट्स में से आने वाला फैट, ये भी तो जरूरी है
0: जी जी।
1: तो अगर आप पूरे दिन में 2 मुट्ठी ड्राई फ्रूट ही खा रहे हैं और आपकी सब्जी तेल में तैर रही है,
0: बिल्कुल,
1: तो आप ज्यादा तेल खा रहे हो, आपको तकलीफ होने ही वाली है। आखिर में तेल की मात्रा कितनी है वो ज्यादा मायने रखती है। और अपने तेल को बदलते रहिए, कौन सा तेल अच्छा है, क्या केमिकली रिफाइंड तेल अच्छा है, फिजिकली रिफाइंड अच्छा है, वुड प्रेस्ड अच्छा है, कोल्ड प्रेस अच्छा है, तो फिजिकली रिफाइंड या घानी, वुड प्रेस, कोल्ड प्रेस ये अच्छे हैं। जितना हो सके केमिकल जो फिल्टर्ड होता है वो थोड़ा सा दूर रखें। अगर शहर में रह रहे हैं या आपको दिक्कत है, आपको एक्सेसिबिलिटी या फाइनेंस का इशू है, तो आप जो भी तेल मिल रहा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली अफोर्डेबल है तो घानी का तेल, कोल्ड प्रेस ऑयल, वुड प्रेस ऑयल, इसकी तरफ थोड़ा सा मुड़ जाइए। वो तेल थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, तबीयत के लिए भी अच्छा होता है और उसमें गुणधर्म भी अच्छे खासे होते हैं।
0: जी जी,
1: तो वो इस्तेमाल आप कर सकते हो।
0: जी बिल्कुल, घानी का तेल यानी जो कोल्हू के बैल से निकाला जाता है ताजा तेल, सरसों का तेल खास तौर से होता है। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
1: जी।

0: और घी के बारे में भी बताइए। घी के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां, लोग चुपड़ के घी खाते हैं कुछ लोग, कुछ लोग कहते हैं कि अरे इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी खाते ही नहीं। तो घी क्या है बताइए।
1: घी भी फैट का एक ही रूप है। आप तेल खाओ, घी खाओ, बटर खाओ, चीज खाओ, उसके रूप अनेक है।
0: अच्छा।
1: आखिर में मात्रा आपकी मैटर करती है। जो कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि दिन में आपकी 3 से 4 चम्मच तेल होना चाहिए, उसमें घी भी आता है। आप 4 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो या उसमें से 1 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्या घी खाने से फायदा है? हाँ, पेट के लिए अच्छा है, तबीयत के लिए अच्छा है। आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हो तब भी आपको फायदेमंद ठहरेगा। अगर आपको ब्लॉकेज इश्यूज है, हार्ट इश्यूज है, या आपको कोई मेडिकल बाकी के कंडीशन है, तो आपको घी को थोड़ा कंट्रोल में रखना जरूरी है। अगर आप घी नहीं खाते हो, क्या आपको कोई नुकसान है? नहीं, बिना घी खाए भी आप अच्छे खासी जिंदगी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको घी खाना जरूरी है जिंदगी में। तो आखिर में आप कितनी मात्रा में खा रहे हो, ये महत्वपूर्ण है।
0: जला हुआ घी नहीं खाना चाहिए
1: नहीं
0: पराठे के रूप
1: जी,
0: में, पूड़ी और पराठे के
1: बहुत
0: रूप
1: ज्यादा।
0: में। अदिति जी, घी तेल सब कुछ शामिल हो गया, और हर खाने में मिठाई भी शामिल होता है। कुछ लोगों के साथ तो ये दिक्कत है कि हर खाने के बाद उनको मीठा चाहिए, तलब होती है। तो ये मिठाई के खाने के बारे में बताइए कि खाने के बाद, खाने के साथ खाना जरूरी है, खाने से पहले या बाद में, या नहीं खाना चाहिए?
1: अगर आप मिठाई खाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिठाई की जरूरत नहीं है। शक्कर कम खाने से आपकी शक्कर कम नहीं होने वाली। मिठाई भी शक्कर का ही एक अलग रूप है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। अगर आपके पूरे दिन में आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण बहुत ज्यादा है, तो मिठाई उसे और बढ़ाएगा। और मिठाई जो है, छोटा बम बड़ा धमाका है। छोटे से बाइट में बहुत ज्यादा कैलोरीज होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फैट भी होता है, और उतनी ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाते हैं। तो क्या मिठाई जरूरी है? नहीं। अगर आप मिठाई हर खाने के बाद खाना चाहते हो, तो ये आपको कम करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आपकी तबीयत के हिसाब से। तो एकदम से अचानक से अगर आप बंद नहीं करना चाहते, पहले तो दिन में एक ही बार कर लीजिए, और फिर उसी मिठाई के थोड़े से हेल्दी रूप थोड़े से देख लीजिए। जैसे आपको खजूर मिल जाएगा, या आपने थोड़ा चना और गुड़ ले लिया, या आपने छोटा चिक्की चिक्की का टुकड़ा ले लिया, आप

0: इसका इस्तेमाल करें, ना कि गुलाब जामुन या और कोई तली हुई मिठाई, मावा जलेबी, इसका इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा, आखिर में पूरे दिन में आपने कार्बोहाइड्रेट कितने खाए हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग जो है खाने में भी शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो मतलब आप चाय में शक्कर गुड़ खा रहे हैं, आपके खाने में गुड़ और शक्कर जा रहा है, और फिर आपकी मिठाई में भी शक्कर है। तो आपने यहाँ फॉर्मूला बना लिया आपका ब्लड शुगर बढ़ाने का।
1: जी जी।
0: इससे आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा क्योंकि आप हर जगह पे मिठाई खा रहे हो। अभी कुछ लोग बोले मैं तो ब्लड शुगर नहीं है, हम तो जिंदगी भर खा रहे हैं। बात है, हो गए, आपकी तबीयत उतनी अच्छी है, हो गया, मगर क्या ये हर कर सकता है? नहीं, किसी को तकलीफ दे सकता है।
1: जी।
0: तो मिठाई भी आखिर में आपको ये देखनी है कि ये मेरे को देने वाली है। आज के टाइम में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मिठाई आ रही है जो कि आपकी तबीयत को भी संभाल सकती है और मीठे की क्रेविंग को भी संभाल सकती है। जैसे डार्क चॉकलेट हो गया, या आप छेना इस्तेमाल करो, रसगुल्ले का छेना वो आप यूज करो,
1: खीर घर में बना के।
0: खीर भी आखिर में दूध और शक्कर ही आई, और उसमें अगर आपने साबुदाना डाल दिया तो खत्म। तो आपने एकदम एकदम ऐसा फॉर्मूला बना दिया जहाँ पे शक्कर बढ़ जाएगा। तो ये कितने मात्रा में है, दिन में कितनी शक्कर गुड़ जा रही है, और ओवरऑल आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है, इस पे निर्भर करेगा कि क्या आप मिठाई खा सकते हो या नहीं। दूसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा मीठा खाने से ना कुछ लोग कई सालों तक उनको आदत होती है मीठा मीठा खाने की, कार्बोहाइड्रेट खाने की, इसी वजह से उनकी टेस्ट बड्स जो वो भी थोड़े चेंज हो गए। उनको हर चीज उस तरीके से टेस्ट नहीं आती, तो जब वो मिठाई थोड़े दिन के लिए निकल लेते हैं तब उनको वही मिठाई कितनी मीठी है वो पता चलेगी। जैसे कुछ लोग जो मिठाई बिल्कुल नहीं खाते हैं वो फटक से बोलेंगे आपकी एक चम्मच शक्कर भी बहुत ज्यादा है। वो क्यों बता पा रहे? क्योंकि उनके टेस्ट बड अभी वापस ट्रेन हो गए कि जो निसर्ग में जो चीजें जैसी है वो उनके फ्लेवर्स का मजा उस तरीके से ले ले। तो हमें उस चीजों पे ज्यादा ध्यान दे।
1: मतलब ये भी है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम खाना कम खा ले, मिठाई ज्यादा खा ले।
0: हाँ।
1: तो वो भी ठीक नहीं है।
0: ठीक नहीं है,
1: क्योंकि मीठा तत्व तो आपके हाँ। शरीर में जा रहा है जो
0: हानिकारक। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, डाइट भी कर रही हूँ, मगर वेट लॉस नहीं हो रहा है या मेरी शक्कर कम नहीं हो रही है, तभी भी अक्सर गुनहगार वो मिठाई ही होती है।
1: बिल्कुल। तो अब इस मिठाई के साथ ही मीठी मीठी बातों को हम विराम दे रहे हैं। अदिति जी, बड़ी ढेर सारी जानकारी आपने साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। एक गाना
0: जी।

पोषण माह के उपलक्ष में सेहतनामा कार्यक्रम में आज आपने सुना न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा सारा साथ होगा।
0: छाया गीत आप सुनेंगे।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। डुमरी के विधायक जयराम महतो को धनबाद की एमपी एमएलए विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने बरवाड्डा थाना मामले में जयराम महतो सहित चार लोगों की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। उन पर थाना प्रभारी से कथित गाली गलौज, धमकी देने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप थे, जिसके बाद पुलिस एसोसिएशन ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। धनबाद पुलिस ने वासीपुर के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के भाई बंटी खान को पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि हत्या और रंगदारी सहित दर्जन भर मामलों का आरोपी बंटी फर्जी पासपोर्ट के सहारे दुबई भागने की फिराक में था। सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा सफर की सराहना की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक राज्यभर में सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अभिलाष साहू का निलंबन वापस ले लिया गया है। इसके बाद आज रांची में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में सुधार के लिए आंदोलन कर रहे प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो की आज अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 24 जिलों की भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा पूरी करने के बाद उन्हें तेज बुखार, उल्टी और दस्त की शिकायत थी। लोहरदगा जिले में गणेशोत्सव को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। बरवाटोली, पतराटोली और गुदरी बाजार सहित विभिन्न चौक चौराहों पर आकर्षक पूजा पंडाल स्थापित किए गए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अफसोस के नगमे, उदास नगमे, क्यों अच्छे लगते हैं सबको ये उदास नगमे? क्यों मुकेश की उदास आवाज हमारी तन्हाइयों की साथी है? क्यों हम तन्हाई में थाम लेना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज का दामन? दो उदास नगमे, दो उदास मौसम।

एक चेहरा, एक मिजाज, एक शख्सियत कैसे बयां करें कुछ अल्फाज में। शब्दों के मायने छोटे लगने लगते हैं और हर बार हमें लगता है पूरी तरह हम नहीं कह पा रहे अपनी बात।

दो अलग अलग छोर, अलग अलग में लोग बने होते हैं एक दूसरे के लिए। कितनी अजीब बात है, कहते हैं जिंदगी में इत्तेफाक होते हैं और बहुत खुशनुमा इत्तेफाक होते हैं।

छह गीत में आज थे दो संस्करणों वाले गाने। इन गानों को हमने किसी मोड़ पर आपस में जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम आपको बता दें।

0: दूल्हा दुल्हन इंदीवर कल्याण जी आनंद जी
1: चंदन सबदन चंचल चितवन
0: सरस्वती चंद्र इंदीवर कल्याण जी आनंद जी
1: कभी कभी मेरे दिल
2: ख्याल आता है
0: कभी कभी साहिर लुधियानवी खयाम आज का छाया गीत इतना ही इजाजत दीजिए यूनुस खान को नमस्कार

हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली तमाम श्रोता बहनों को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है बहनों आज के इस कार्यक्रम में। बहनों आज का ये दिन कई मायने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हम अपनी तमाम बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देंगे हरितालिका तीज पर्व की, साथ ही ढेर सारी शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी पर्व की, जो आज से प्रारंभ होकर 10 दिनों तक चलने वाला ये काफ़ी उत्साहवर्धक पर्व है। सभी लोग अपने जीवन की मंगल कामना लिए इस पर्व में उत्साह एवं उमंग के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बहनों हम बता दें कि आज है 14 सितंबर। 14 सितंबर का दिन होता है हिंदी दिवस का, जो 15 दिनों तक चलता है। हिंदी का महत्व क्यों है, क्यों ये हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में चुनी गई, इस पर हम विस्तार से बातें करेंगे। लेकिन इसके पहले बहनों हम सुनेंगे एक प्यारा सा गीत।

तो चलिए बहनों, इस गीत के बाद अब हम आते हैं चर्चा पे, राष्ट्रभाषा हिंदी। तो बहनों, हम बता दें कि 14 सितंबर का दिन हम सभी भारतीयों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, भावनाओं और संस्कृति को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों में हिंदी भाषा के प्रति सम्मान जताना, प्रेम और जागरूकता बढ़ाना, हिंदी को अधिक से अधिक व्यवहार में लाने और इसके महत्व को समझने के लिए इस दिन विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। वैसे देखा जाए बहनों, तो हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, बोलियां हैं, और यह हमारी विविधता और समृद्ध संस्कृति की पहचान भी है। हिंदी इन अनेक भाषाओं के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। देश के अलग अलग राज्यों के लोग हिंदी के माध्यम से एक दूसरे से आसानी से जुड़ते हैं। हिंदी हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। हम घर में, बाजार में, विद्यालय में, कार्यालय में और समाज में हिंदी का प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं बहनों, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, साहित्य, सिनेमा और इंटरनेट के माध्यम से भी हिंदी करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरलता और सहजता है। हिंदी में हम अपनी बात को आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए हिंदी जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यहाँ तक कि किसान तक कृषि संबंधी नई तकनीक, मौसम की जानकारी, सरकारी योजनाओं और खेती किसानी से जुड़ी सलाह भी पहुंचाने में हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तरह से महिलाओं, युवाओं और बच्चों तक शिक्षा और जागरूकता का संदेश पहुंचाने में भी सरल हिंदी बहुत उपयोगी है। हिंदी दिवस मनाने का अर्थ केवल हिंदी में कठिन शब्दों का प्रयोग करना ही नहीं है, बल्कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम ऐसी हिंदी बोलें और लिखें जिसे हर व्यक्ति आसानी से समझ सके। तो आज का समय डिजिटल तकनीक और इंटरनेट का समय है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यम पर हिंदी का प्रयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। बच्चे और युवा हिंदी में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और अपनी रचनात्मकता को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। हमारी लोक कथाएं, कविताएं, कहानियां, मुहावरे और लोकगीत हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। हिंदी साहित्य ने समाज को नई सोच देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार से बहनों, हम देख सकते हैं कि हिंदी किस प्रकार से हमारे जीवन में रचा बसा है और इसके बिना हम अधूरे हैं। तो चलिए बहनों, इस जानकारी के बाद हम फिर से सुनवाते हैं आपको एक और प्यारा सा गीत।

0: और बहनों, इस गीत के बाद हम आपको सुनवाएंगे एक वार्ता, राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति और महत्व। वार्ताकार होंगी नैन्सी कुमारी।
1: भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ अनेक भाषाएं और बोलियां प्रचलित हैं। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य, इतिहास, संस्कृति और सामाजिक महत्व है। ऐसी विविधता वाले देश में शासन प्रशासन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जिसका प्रयोग केंद्र सरकार के आधिकारिक कार्यों में किया जा सके। इसी संदर्भ में राजभाषा की अवधारणा सामने आती है। भारत के संविधान ने हिंदी को देवनागरी लिपि के संघ की राजभाषा स्वीकार किया है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं की गई है। संविधान में राष्ट्रीय भाषा के रूप में किसी भाषा का उल्लेख नहीं है। हिंदी को संघ की राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा शब्द दो शब्दों से बना है, राज प्लस भाषा। राज का अर्थ शासन या सरकार तथा भाषा का अर्थ विचारों और भावों को व्यक्त करने का माध्यम है। अतः जिस भाषा का प्रयोग किसी सरकार द्वारा अपने शासकीय एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा को एक समझ लेना उचित नहीं है। राष्ट्रभाषा की अवधारणा किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक या राष्ट्रीय पहचान से जुड़ी हो सकती है, जबकि राजभाषा का संबंध मुख्यतः शासन प्रशासन से होता है। भारत के संदर्भ में हिंदी को संघ की राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि केंद्र सरकार के शासकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग के लिए संविधान द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। राजभाषा का उद्देश्य किसी दूसरी भाषा को समाप्त करना नहीं होता। इसका उद्देश्य प्रशासन और नागरिकों के बीच संचार को अधिक प्रभावी बनाना है। इसलिए भारतीय राजभाषा व्यवस्था में हिंदी के विकास के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं के सम्मान और संरक्षण की भावना भी दिखाई देती है। हिंदी को राजभाषा का स्थान अचानक नहीं मिला। इसके पीछे स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान निर्माण की लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों के

करी है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने यह भी समझाया कि तत्कालीन प्रशासन में अंग्रेजी का व्यापक प्रयोग होता था, इसलिए संविधान ने अंग्रेजी के प्रयोग को एक निश्चित अवधि तक जारी रखने की व्यवस्था की। बाद में संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया, जिसके माध्यम से हिंदी के साथ अंग्रेजी को प्रयोग की भी निर्धारित शासकीय कार्यों में जारी रखा गया। हिंदी की संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए अनुच्छेद 351 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि अनुच्छेद 343 हमें बताता है कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, तो अनुच्छेद 351 हमें बताता है कि हिंदी का विकास किस दिशा में होना चाहिए। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रसार और विकास करे, ताकि हिंदी भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अब प्रश्न है कि राजभाषा हिंदी का हमारे जीवन में महत्व क्या है। हिंदी प्रशासन और जनता के बीच संवाद का माध्यम बन सकती है। सरकारी योजनाओं, नीतियों और सेवाओं की जानकारी यदि सरल भाषा में जनता तक पहुँचे तो नागरिक उन्हें बेहतर ढंग से समझ और उपयोग कर सकते हैं। हिंदी लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करने में सहायक हो सकती है। लोकतंत्र में नागरिकों को शासन की जानकारी अपनी समझ की भाषा में मिलना आवश्यक है। हिंदी हमारी संस्कृति और साहित्य की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है। हिंदी साहित्य, पत्रकारिता, सिनेमा और जनसंचार ने भारतीय समाज के विभिन्न रूपों को व्यापक स्तर पर अभिव्यक्ति दी है। आज डिजिटल युग में हिंदी की भूमिका और भी बढ़ गई है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल सेवाओं में हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। इसलिए हिंदी को केवल बोलचाल या साहित्य की भाषा न मानकर ज्ञान, विज्ञान और तकनीक की भाषा के रूप में भी विकसित करना आवश्यक। हालांकि हिंदी के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। अंग्रेजी का व्यापक प्रभाव, तकनीकी और वैज्ञानिक सामग्री की आवश्यकता तथा अत्यधिक कठिन कार्यालयी भाषा, इसलिए हमें ऐसी हिंदी का प्रयोग सम्मान और सहजता के साथ करें। हिंदी में ज्ञान और तकनीकी सामग्री को बढ़ावा दें और साथ ही भारत की अन्य भाषाओं का भी सम्मान करें। हिंदी का विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हिंदी का प्रयोग सम्मान और सहजता के साथ करें। हिंदी में ज्ञान और तकनीकी सामग्री को बढ़ावा दें और साथ ही भारत की अन्य भाषाओं का भी सम्मान करें। राजभाषा हिंदी की चर्चा जब हम करते हैं तो सामान्यतः हमारे सामने संविधान, अनुच्छेद और सरकारी कार्यालयों का चित्र उभरता है, लेकिन राजभाषा का वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। किसी भी भाषा की सफलता केवल इस बात से निर्धारित नहीं होती है कि उसे संवैधानिक या कानूनी मान्यता प्राप्त है, बल्कि इस बात से होती है कि वह व्यवहार में कितनी प्रभावी, सरल और उपयोगी है। एक जागरूक नागरिक वही है जिसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी हो। आज सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन केवल योजना बनाना पर्याप्त नहीं है। नागरिक को यह पता होना चाहिए कि योजना किसके लिए है, उसका लाभ कैसे किया जा सकता है और उसके लिए क्या प्रक्रिया है। यहाँ भाषा की भूमिका सामने आती है। यदि जानकारी सरल और स्पष्ट भाषा में उपलब्ध होगी तो नागरिक अधिक आत्मविश्वास के साथ सरकारी व्यवस्था से जुड़ सकेगा। इसलिए हिंदी को केवल कार्यालयों की भाषा न मानकर नागरिक सशक्तिकरण की भाषा के रूप में भी देखा जा सकता है। हिंदी के भविष्य की चर्चा युवाओं के बिना अधूरी है। आज की युवा पीढ़ी तकनीक, सोशल मीडिया और वैश्विक संचार से जुड़ी है। वह एक साथ कई भाषाओं का प्रयोग करती है। ऐसे में हिंदी को युवाओं से जोड़ने के लिए उसके आधुनिक स्वरूप को स्वीकार करना आवश्यक है। हिंदी को केवल अतीत की गौरवशाली भाषा के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय उसे भविष्य की भाषा के रूप में भी प्रस्तुत करना होगा। युवाओं को हिंदी में साहित्य के साथ साथ विज्ञान, तकनीक, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और शोध और आधुनिक विषयों की सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। जब युवा यह महसूस करेगा कि हिंदी उसके भविष्य और उसके ज्ञान से जुड़ी हुई है, तब हिंदी का प्रयोग स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। अंततः कहा जा सकता है कि हिंदी को प्राप्त संवैधानिक और कानूनी स्थान उसका अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि एक आधार है। वास्तविक सफलता तब होगी जब हिंदी व्यवहार में प्रभावी, सरल और उपयोगी बनेगी। राजभाषा हिंदी की शक्ति उसके आधार में नहीं, बल्कि उसकी जनोपयोगिता में है। यदि हिंदी जनता को शासन से जोड़े, शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाए, ज्ञान को सरल बनाए और भारत की विविध भाषाओं एवं संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करे, तो उसका राजभाषा के रूप में महत्व वास्तव में सार्थक होगा। इसलिए आज आवश्यकता केवल यह कहने की नहीं है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की है कि हिंदी जनता के काम। यही राजभाषा हिंदी का सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जब हम हिंदी शब्द सुनते हैं तो हमारे सामने केवल कुछ शब्द या वाक्य नहीं आते, बल्कि एक पूरी सांस्कृतिक दुनिया हमारे सामने दिखाई देती है। हिंदी में हमारी मिट्टी की खुशबू है, हमारे लोक जीवन की मिठास है, हमारे साहित्य की समृद्धि है
और हमारी भावनाओं की

0: सहज अभिव्यक्ति है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग प्रदेशों में अनेक भाषाएं और बोलियाँ बोली जाती हैं। हर भाषा की अपनी विशेषता, अपनी परंपरा और अपना इतिहास है। इस भाषाई विविधता के बीच हिंदी एक महत्वपूर्ण संपर्क भाषा के रूप में लोगों को जोड़ने का कार्य करती है। अलग अलग क्षेत्रों के लोग हिंदी के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हैं और अपने विचारों तथा अनुभवों को साझा करते हैं। हिंदी का महत्व भारतीय साहित्य के क्षेत्र में भी अत्यंत व्यापक है। हिंदी साहित्य की परंपरा बहुत समृद्ध रही है। कबीर ने अपने दोहे के माध्यम से समाज को सच्चाई और मानवता का संदेश दिया। तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में आम आदमी के जीवन, संघर्ष और सामाजिक समस्याओं को आवाज़ दी। महादेवी वर्मा, सुमिता नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर जैसे साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की। हिंदी केवल साहित्य की भाषा नहीं है, यह शिक्षा, पत्रकारिता, सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न और जनसंचार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेडियो की बात करें तो हिंदी ने देश के करोड़ों लोगों तक समाचार, शिक्षा, मनोरंजन और जागरूकता का संदेश पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज भी रेडियो पर हिंदी कार्यक्रम बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचते हैं और लोगों को जानकारी तथा मनोरंजन प्रदान करते हैं। हिंदी हमारी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारी लोक कथाएं, लोकगीत, कहावतें, मुहावरे और पारंपरिक ज्ञान भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। यदि हम अपनी भाषा से दूर होते जाते हैं तो धीरे धीरे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी दूर हो सकते हैं। इसलिए हिंदी को आगे बढ़ाना हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना भी है। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। इस बदलाव के साथ हिंदी ने भी स्वयं को नए रूप में प्रस्तुत किया है। आज वेबसाइट, ब्लॉग, ऑनलाइन समाचार, यूट्यूब, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हिंदी की सामग्री आसानी से उपलब्ध है। हिंदी में डिजिटल शिक्षा और जानकारी का विस्तार भी लगातार हो रहा है। इसका अर्थ है कि आधुनिक तकनीक के युग में हिंदी का महत्व कम नहीं हुआ, बल्कि उसके प्रयोग के नए अवसर पैदा हुए हैं। लेकिन हिंदी के विकास की बात करते समय हमें यह भी समझना चाहिए कि किसी भाषा का सम्मान करने का अर्थ दूसरी भाषाओं को छोटा समझना नहीं है। भारत की शक्ति उसकी भाषाई विविधता में है। हमें हिंदी के साथ साथ सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। अलग अलग भाषाएं हमें अलग अलग संस्कृति और विचारों को समझने का अवसर देती है। आज हिंदी के सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं। बदलते समय में युवाओं के बीच अंग्रेजी और नई भाषाओं का प्रभाव बढ़ रहा है। कई बार लोग हिंदी बोलने में संकोच महसूस करते और हिंदी को आधुनिकता से जोड़कर नहीं देखते। हमें इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। हिंदी में बोलना या लिखना पिछड़ापन नहीं, बल्कि अपनी भाषा के प्रति सम्मान और आत्मविश्वास का प्रतीक है। हमें हिंदी को केवल हिंदी दिवस या हिंदी सप्ताह तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हिंदी का वास्तविक सम्मान तभी होगा जब हम इसे अपने दैनिक जीवन में सहजता से प्रयोग करेंगे, बातचीत में, लेखन में, अध्ययन में और अपने विचारों की अभिव्यक्ति में। नई पीढ़ी को हिंदी से जोड़ना भी हमारी जिम्मेवारी है। बच्चों और युवाओं को हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्हें यह समझाना जरूरी है कि हिंदी केवल परीक्षा के विषय नहीं, बल्कि ज्ञान, विचार और रचनात्मकता की एक समृद्ध दुनिया है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं और अनुभवों की अभिव्यक्ति है। यह हमारी संस्कृति की आवाज़ है, हमारे साहित्य की पहचान है और हमारे सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए हम हिंदी को केवल बोलने की भाषा ना माने, बल्कि इसे अपनी अभिव्यक्ति और अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में अपनाएं। हिंदी का सम्मान करें, दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें और भारत की भाषाई विविधता को भी अपनी शक्ति बनाएं, क्योंकि भाषा केवल शब्दों से नहीं बनती, भाषा भावनाओं से बनती है और हिंदी हमारी भावनाओं की एक खूबसूरत आवाज़ है।
1: बहनों, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, इसलिए लोकतंत्र देश की क्या विशेषताएं हैं ये हम सभी को अवश्य जानना चाहिए। और हम बता दें बहनों कि हर वर्ष 15 सितंबर को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें लोकतंत्र के महत्व, नागरिकों के अधिकारों और समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा भागीदारी की भावना को मजबूत करने की याद दिलाता है। लोकतंत्र का सरल अर्थ है जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता द्वारा शासन। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने, अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुनने और देश के विकास में

0: लेने का अधिकार होता है। लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है बहनों, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है समाज के प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़ सुनी जाए और सभी के साथ समान व्यवहार हो। इसमें नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी समस्याएं रखने और शासन में भागीदारी करने का अवसर मिलता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के मूल्यों को अधिकार दिया है।
1: हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे मुख्य प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ में पूनम केरकेट्टा। आरबीआई ने साइबर धोखाधड़ी पर रोक के लिए नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके तहत संदिग्ध लेन देन होने पर बैंक पूरे खाते की बजाय केवल विवादित राशि पर ही अस्थायी रोक लगा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तैयार यह नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगा। नए प्रावधानों के अनुसार ग्राहकों को संदिग्ध लेन देन का औचित्य साबित करने के लिए 20 दिनों का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान यात्रा चलाएगी। रांची में पत्रकारों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जन सेवा के 25 सफल वर्ष पूरे किए हैं। राज्य में एसआईआर के तहत दावा आपत्ति और नए मतदाता पंजीकरण के लिए कल आखिरी दिन है। राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 के माध्यम से 4,70,542 आवेदन मिले हैं। वहीं सुधार के लिए फॉर्म 8 के जरिए 2,98,871 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर रांची जिला प्रशासन के नए नियमों के तहत पूजा पंडालों का निर्माण बिजली के तारों और ट्रांसफार्मर से सुरक्षित दूरी पर करना होगा। प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। और हिंदी दिवस के अवसर पर आकाशवाणी रांची में एक विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि और नामकुम स्थित संस्थान के पूर्व मुख्य तकनीकी अधिकारी डॉ. अंजेश कुमार ने विश्व पटल पर हिंदी का बढ़ता दायरा बढ़ता प्रभाव विषय पर अपना व्याख्यान दिया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हमारे श्रोता सुन रहे थे मुख्य प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम खेती बाड़ी।
2: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में और साथ ही ढेर सारी शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी पर्व एवं हरि तालिका तीज पर्व की। श्रोताओं पर्व चाहे कोई भी हो, हमारी मनसा होती है कि हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशियाँ बरकरार रहे। जी हाँ श्रोताओं, इसी मंगल कामना से जीवन में सुख समृद्धि तभी आएगी श्रोताओं जब हमारे किसान भाई सुखी होंगे, समृद्ध होंगे और खेत खलिहान अन्न से भरा होगा। लेकिन माटी ही प्रदूषित हो तो वहाँ उसमें उपजा हुआ अन्न कैसे शुद्ध होगा भला। इसीलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले मिट्टी में सुधार लाई जाए और मिट्टी को सुधारने के लिए

0: सबसे ज़्यादा कारगर तरीका है श्रोताओं, हरी खाद का प्रयोग। हरी खाद किस प्रकार से मिट्टी को अधिक उपजाऊ एवं टिकाऊ बनाते हैं, तो चलिए जानते हैं विस्तार से। किसान भाइयों, हम बता दें कि खेत की मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और रासायनिक खादों पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए हरी खाद एक बहुत ही उपयोगी उपाय है। हरी खाद के लिए ऐसी फसलों को खेत में उगाया जाता है जिन्हें उचित अवस्था में हरा रहते ही मिट्टी में पलटकर मिला दिया जाता है। इससे मिट्टी में जैविक पदार्थ और पोषक तत्व बढ़ते हैं और मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। अब हम देखेंगे कि हरी खाद के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो हरी खाद के मुख्य दो प्रकार होते हैं श्रोताओं। खेत में उगाकर मिट्टी में मिलाई जाने वाली फसलें प्रमुख होती हैं, जैसे कि ढाँचा। सबसे प्रचलित हरी खाद फसलों में ढाँचा होता है। सनई कम अवधि में अच्छी हरी खाद तैयार हो जाती है। लोबिया दलहनी फसलों होने के कारण मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाने में ये सहायक होता है। और यदि मूंग और उड़द की बात करें तो कुछ परिस्थिति में हरी खाद के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। बरसीम आदि का भी विशेष परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है हरी खाद के तौर पर। और दूसरी प्रकार से हरी खाद तैयार करने की विधि इस प्रकार से है श्रोताओं कि पेड़ पौधे के पत्तियों से तैयार की जाती है हरी खाद। खेतों में उपलब्ध पेड़ पौधे की कोमल पत्तियों टहनियों को एकत्रित करके खेत में मिला दिया जाता है। इसे हरी खाद या हरी पत्ती खाद कहते हैं। हमारे बहुत सारे किसान भाई इस तरीके का भी प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम बातें करते हैं ढाँचा की खेती कैसे करें हमारे किसान भाई। तो श्रोताओं, ढाँचा हरी खाद के लिए बहुत ही उपयोगी फसल है और इसकी खेती सामान्यतः गर्मी या वर्षा की शुरुआत में की जाती है। खेत की नमी और स्थानीय मौसम के अनुसार इसकी खेती की जाती है। खेत की तैयारी इस प्रकार से होनी चाहिए श्रोताओं। खेत को अच्छी तरह से तैयार करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें। खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। बहुत अधिक पानी जमा रहने से फसल की पैदावार भी प्रभावित हो सकती है। ढाँचा की बुआई छिड़काव या कतार विधि से की जा सकती है। बीज की मात्रा, क्षेत्र, बीज की गुणवत्ता और बुआई की विधि के अनुसार डालनी होती है। और बुआई के बाद खेत में पर्याप्त नमी भी बनाए रखना जरूरी होता है। हरी खाद की फसल को सामान्यतः बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन समय समय पर खेत का निरीक्षण भी करते रहना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं या फिर सिंचाई की आवश्यकता हो तो सिंचाई भी करनी चाहिए। अब बातें आती है कि हरी खाद को खेत में कब मिलाई जाए। तो श्रोताओं, हम बता दें कि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हरी खाद की फसल को फूल आने से पहले या फूल आने की प्रारंभिक अवस्था में जब पौधे कोमल और हरे भरे हों उसी समय मिट्टी में उसे पाटा चलाकर मिला दिया जाता है। बहुत अधिक पुरानी और रेशेदार फसल को सड़ने में अधिक समय लग सकता है, इसीलिए उचित समय पर ही फसलों को मिट्टी में मिला देना चाहिए और खेत को जो है पलटने के लिए मोल्ड बोर्ड हल या डिक्स हैरो या अन्य कृषि यंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। पलटने के बाद मिट्टी में पर्याप्त नमी रहने पर हरी जैविक सामग्री जो है वो तेजी से सड़ती है और इसका जो उर्वरक जो तैयार होती है उसकी बढ़वार भी अच्छी होती है। हरी खाद प्रयोग करने के श्रोताओं क्या क्या लाभ है आइए देखते हैं कि यह मिट्टी में जैविक पदार्थ को बढ़ाता है। दलहनी हरी खाद फसलें मिट्टी में जैविक नाइट्रोजन बढ़ाने में मदद करती है। मिट्टी की जल धारण क्षमता में सुधार होता है। मिट्टी भुरभुरी और खेत के लिए अधिक अनुकूल बनती है। सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ जाती है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में सहायता मिलती है। लंबे समय में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता और लागत को कम करने में भी मदद मिलती है। इतना ही नहीं, अगली फसल को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में भी ये सहायता प्रदान करता है। तो हरी खाद की फसल को खेत में मिलाने के बाद तुरंत अगली फसल की बुआई ना करें हमारे किसान भाई, बल्कि स्थानीय फसल प्रणाली और हरी खाद के सड़ने की अवस्था के अनुसार उचित अंतर जरूर रखें। खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें, यह बहुत जरूरी है। हरी खाद के लिए बीज की मात्रा, बुआई का समय और मिट्टी में मिलाने की अवस्था, स्थानीय जलवायु, मिट्टी और अगली फसल के अनुसार कृषि विशेषज्ञ की सलाह से तय करना जरूरी होता है। खेत की मिट्टी हमारी खेत की असली पूंजी है श्रोताओं। ढांचा सनई और अन्य उपयुक्त हरी खाद फसलों को फसल चक्र में शामिल करके हम मिट्टी की सेहत सुधार सकते हैं, मिट्टी को टिकाऊ बना सकते हैं। और यदि मिट्टी की सेहत सुधरती है तो निश्चय ही हमारी सेहत में भी सुधार होगा, पर्यावरण को भी लाभ होगा। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि हरी खाद के महत्व को समझें और अपने खेतों में अधिक से अधिक इस खाद का प्रयोग करें। और इस जानकारी के बाद श्रोताओं, हम आपको सुनवाते हैं एक वार्ता। मृदा में पोषक तत्व का महत्व, इस पर जानकारी देंगी संध्या चंद्रा। तो आइए बहनों श्रोताओं, सुनते हैं ये वार्ता।
1: फसलों की अच्छी पैदावार के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटैश के अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या 8 है। जस्ता, तांबा, लोहा, मैग्नीज, बोरान, मॉलिब्डेनम, निकल एवं क्लोरीन। इनमें जस्ता, लोहा एवं बोरान का प्रमुख स्थान है। साधारणतः इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी अधिक उपज देने वाली फसलों के प्रभेदों का फसल चक्रों में समावेश, गहन खेती, रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग एवं जैविक खादों की उचित मात्रा मृदा में नहीं डालने के कारण हो रहा है। फसल उत्पादन में 4 बिंदुओं पर मुख्यतः नगद खर्च की आवश्यकता होती है। सिंचाई, उर्वरक, बीज एवं पौध संरक्षण। सिंचाई के बाद अधिकतम खर्च उर्वरक पर किया जाता है। उर्वरा शक्ति का निर्धारण मृदा फसलोत्पादन में 4 बिंदुओं का मुख्यतः नगद खर्च की आवश्यकता होती है। सिंचाई, उर्वरक, बीज एवं पौध संरक्षण। सिंचाई के बाद अधिकतम खर्च उर्वरक पर किया जाता है। उर्वरा शक्ति का निर्धारण मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्र, फसलों द्वारा मृदा में पोषक तत्वों का ह्रास एवं पौधों में पोषक तत्वों की अदृश्य शुद्धता, कमी एवं अधिक की जानकारी से प्राप्त होता है। अब देखते हैं पोषक तत्वों का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुख्य पोषक तत्वों का पौधों पर प्रभाव एवं कमी के लक्षण। नाइट्रोजन, यह पौधों के तने, शाखाओं एवं पौधों पत्तों के स्वास्थ्य एवं वृद्धि में सहायक है। मृदा में इसकी अधिकता से पौधे बढ़कर गिर जाते हैं, रोगों एवं कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, दाने कम लग पाते हैं तथा विलंब से पकते हैं। इसकी कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। हल्के हरे रंग के नीचे के पत्ते पपीते पीले रंग से लेकर भूरे रंग के हो जाते हैं। डंठल एवं तना छोटे और पतले हो जाते हैं। फास्फोरस, यह पौधों की जड़ों की वृद्धि में सहायक है एवं दोनों को पुष्ट करता है। फास्फोरस आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन के हानिकारक प्रभावों को भी दूर करता है तथा कीटों एवं रोगों के प्रकोपों को रोकता है। फसलें समय पर पकती है। इसकी कमी से गहरे हरे रंग का पौधा बैंगनी रंग, जो बाद में स्याही युक्त तथा लाल रंग में बदल जाता है। पोटैश की मात्रा, यह पौधों में चीनी एवं स्टार्च बनाने की प्रक्रिया में सहायक होता है। इसके साथ ही उनमें प्रतिकूल मौसम एवं कीटों तथा व्याधियों से बचने की क्षमता में वृद्धि लाता है। इसके अलावा पौधों में तना एवं डंठलों को मजबूत बनाता है। इससे पौधों में जलधारण की क्षमता बढ़ जाती है। इसकी कमी के कारण नीचे के पत्तों पर निर्जीव रेशे के धब्बे, चितकबरे या पीले होते हैं या फिर इनमें हरेपन की कमी होती है। इन मुख्य पोषक तत्वों की आपूर्ति जैविक खादों एवं रासायनिक उर्वरकों द्वारा की जाती है। पक्के फसल के लिए अलग अलग मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जस्ता, यह पौधों के अंदर इंडोल एसेटिक एसिड नामक हार्मोन का निर्माण करने एवं उनकी वृद्धि में सहायक करता है और प्रोटीन की मात्रा को भी बढ़ाता है। इसकी कमी के लक्षण कुछ प्रमुख फसलों में इस प्रकार से है, जैसे धान रोपाई के 15 से 20 दिनों बाद सबसे पहले ऊपर से तीसरी पत्ती पर लाल भूरे रंग के बिंदु प्रकट होते हैं। ये तुरंत आपस में मिलकर बड़े भूरे रंग के धब्बे बना लेते हैं और अंत में पूरी पत्ती को ढक लेते हैं। इसे धान के खैरा रोग के नाम से भी जाना जाता है। और अब देखते हैं मक्का। जस्ते की कमी के लक्षण सबसे पहले नई पत्तियों पर प्रकट होते हैं। नवीन पत्ती मतलब नए पत्ते के आधार के तंतु मध्य शिरा के दोनों तरफ से सफ़ेद पीले रंग में बदल जाते हैं और धीरे धीरे पत्ती के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। इससे तने की दो गांठों के बीच की दूरी काफी कम हो जाती है और पौधों का आकार छोटा दिखता है। गेहूं में जस्ते की कमी के लक्षण कल्ले निकलने समय दिखाई देते हैं। सबसे पहले ऊपर से तीसरी पत्ती के मध्य शिरा एवं किनारों के बीच के भागों में हल्के पीले रंग की धारी बन जाती है और आगे चलकर भूरे रंग में बदल जाती है। पत्ती बीच से सिकुड़ने लगती है और सूख जाती है। चना एवं मसूर में जस्ते के अभाव में पौधों के बीच के भाग की पत्तियों का हरा रंग लाल भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है और बाद में ये पत्तियां सूखने लगती है। पौधों की वृद्धि रुक जाती है, शाखाएं कम निकलती है और पत्तियां आकार में छोटी दिखती है। प्याज जस्ते की कमी होने से पौधे का विकास रुक जाता है, ऊपरी पत्तियां टेढ़ी हो जाती है और आगे चलकर सिकुड़ना एवं सूखना प्रारंभ कर देती है। प्याज की गांठें आकार में काफी छोटी हो जाती है। जस्ते के अनुप्रयोग की विधि कैसे करते हैं? मृदा उपचार विधि फसल की बुआई या रोपाई के समय 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से मृदा में मिला दिया जाता है। इसका असर चूना युक्त मृदा में 4 तथा अन्य मृदाओं में 6 फसलों तक रहता है। मृदा में 50 क्विंटल कंपोस्ट और 12.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर देने की सिफारिश की जाती है। इससे काफी लाभ होता है। अब देखते हैं छिड़काव की विधि क्या है। किसान भाई, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का 2.5 किलोग्राम लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर 15 दिनों के अंतराल पर दो छिड़काव कर देने से जस्ते की कमी के लक्षण दूर हो जाते हैं। इसमें फसलों की उपज में 30-40% तक वृद्धि हो जाती है। लौह तत्व में, जैसे पौधों की पत्तियों में हरे रंग के उत्पादन में लौह तत्व का महत्वपूर्ण योगदान है। चूना युक्त मृदा में धान की पौध को लौह तत्व की कमी से काफी नुकसान पहुंचाता है। लौह तत्व की कमी होने पर सबसे पहले सबसे ऊपर की पत्ती का रंग पीला सफेद होने लगता है और बाद में पूरी पत्ती सफेद रंग में बदल जाती है तथा सूखने लगती है। तो आइए देखते हैं लौह तत्व की अनुप्रयोग विधि। मृदा अनुप्रयोग, जैसे मृदा में लौह तत्व की कमी को पेफरस सल्फेट 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या पाइराइड 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर डालकर पूरा किया जाता है। फेरस सल्फेट को बुआई के समय अन्य उर्वरकों के साथ मिलाकर मृदा में डाल देना चाहिए, लेकिन पाइराइड को बुआई से 25 दिन पहले मृदा में डाल देना चाहिए जिससे रासायनिक क्रिया पूरी हो सके। साथ ही किसान भाई, पत्तियों पर फेरस सल्फेट घोल का छिड़काव किस तरह से करते हैं, आइए देखते हैं। लोहे की कमी 1-2% फेरस सल्फेट का पानी में घोल बनाकर 10 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव से पूरी हो जाती है। साथ ही बोरान में यह पौधों का एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है और पौधों के भीतर शर्करा के स्थानांतरण को बढ़ाता है। बोरान परागण तथा प्रजनन क्रिया एवं कोशिका विभाजन में मदद करता है। यह पौधों में पुष्प फल तथा बीज बनने की क्रिया को संपादित करता है। बोरान की कमी को बोरेक्स या सुहागा द्वारा पूरा करते हैं। चूना युक्त तथा भारी मृदाओं में बुआई के समय 15-16 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से मृदा में मिलाकर बीजों की बुआई करनी चाहिए। चूना रहित हल्की बलुई मृदा में 10-15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोरेक्स का अनुप्रयोग करना चाहिए। इससे फसलों की उपज में वृद्धि होती है। अधिकांश फसलों को 15-16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोरेक्स की आवश्यकता होती है। किसान भाई, पौधों के सामान्य विकास एवं वृद्धि के लिए कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से किसी एक पोषक तत्व की कमी होने पर पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और भरपूर फसल नहीं मिलती। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को पौधे हवा एवं जल से प्राप्त करते हैं। साथ ही नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम को पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इनकी पौधों को काफ़ी मात्रा में ज़रूरत रहती है। इन्हें प्रमुख पोषक तत्व कहते हैं। आइए देखते हैं तिल में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन से हैं। तेल के लिए उगाई जाने वाली यह दुनिया की सबसे पुरानी फसल है। जिन कठिन परिस्थितियों में दूसरी फसल नहीं होती वहाँ भी तिल को उगाया जा सकता है। दुनिया का सबसे अधिक तिल एक्सपोर्ट करने वाला देश हमारा देश है। जापान इसका सबसे अधिक आयात करने वाला देश है। तिल का तेल तथा साबुत तिल खाना बनाने में बहुत काम लिया जाता है। इससे अच्छे स्वास्थ्य का एक कारण हो सकता है। तिल में प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें कॉपर प्रचुर मात्रा में होता है। मैग्नीज का भी यह अच्छा स्रोत है। साथ ही किसान भाई, मिट्टी में डाले जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व कौन से हैं? पौधों के सामान्य विकास एवं वृद्धि हेतु कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों को पौधों की आवश्यकता के अनुसार इसे कुछ प्रकार में विभाजित किया जाता है। मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटैश। गौण पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक। सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरान एवं क्लोरीन। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम को पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इनकी पौधे को काफ़ी मात्रा में ज़रूरत रहती है। इन्हें प्रमुख पोषक तत्व कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि करेले सब्जी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। करेला अपनी कड़वाहट के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन इसके गुण इसकी कड़वाहट में ही छिपे होते हैं। गुणकारी होने के कारण ही करेला सब्जियों में एक विशेष स्थान रखता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर होते हैं। यह खनिज से भरपूर होता है। इसमें पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज पाए जाते हैं। विटामिन सी, विटामिन ए इसमें प्रचुरता में होते हैं। विटामिन बी समूह के कॉलेट, थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड आदि भी इसमें इसके उपयोग से मिलते हैं। अब आइए देखते हैं मिट्टी में डाले जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व तो कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रेट। नाइट्रोजन का वह रूप जो पौधों का उपयोग करता है। पौधे की पत्ती के विकास को प्रभावित करके पत्ते को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह क्लोरोफिल उत्पादन की मदद से पौधों को उनका हरा रंग देने के लिए भी प्रभावशाली है। फास्फोरस, फास्फोरस जड़ों और फूलों की वृद्धि के साथ सहायता के लिए जिम्मेदार है। फास्फोरस पौधों को पर्यावरणीय तनाव और कठोर सर्दियों का सामना करने में भी मदद करता है। किशन भाई, गेहूं में भी वे सारी खूबियां हैं जो एक भोजन में होना चाहिए। यह भरपूर ऊर्जा का स्रोत है। 100 ग्राम गेहूं के आटे में करीब 339 किलो कैलोरीज ऊर्जा, 72 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 14 ग्राम प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, खनिज आदि समेत जीवन के कई आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। गेहूं की रोटी का ग्लाइसेमिक करीब 62 के आसपास होता है, तो इस तरह से वह काफ़ी फायदेमंद और इस तरह मृदा में पोषक तत्व भरपूर पाए जाते हैं और इसकी उपयोगिता भी काफ़ी होती है।
0: श्रोताओं, आइए चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे सब्जियों में लगने वाले मुख्य रोगों पर, क्योंकि अभी जो बरसात का समय है इसमें सब्जियों पर विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता पड़ती है। यदि ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उस सीलन से या बोले कि नमी से सब्जियों में ज़्यादा बीमारियां लग सकती हैं और उसमें आद्र गलन की भी शिकायत हो सकती है। तो हमारे किसान भाइयों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि इन साग सब्जियों की रखरखाव पर विशेष ध्यान दें। तो श्रोताओं, चलिए हम सबसे पहले बातें करेंगे टमाटर की। तो इसमें जो सबसे मुख्य रोग होते हैं वो है फल बेधक। युवा सुंडियां कोमल पत्तियों से भोजन ग्रहण करती हैं, जबकि वयस्क सुंडियां फल में वृत्ताकार छेद कर घुस जाती हैं और फल का भीतरी भाग खाते रहती हैं। उसी प्रकार से सफ़ेद मक्खी भी लग सकते हैं। वयस्क मक्खियां जो होती हैं पतली की निचली सतह से रस चूसती हैं और पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती है, अंततः पौधे जो है मुरझा जाते हैं। और इस प्रकार से चेपा भी टमाटर में देखा जाता है। श्रोताओं, टमाटर में चेपा का यदि प्रकोप हो जाता है तो यह शुष्क एवं बादल छाए जब मौसम होते हैं उसमें विशेष रूप से देखा जाता है। चेपा कोमल प्ररोह एवं पत्तियों की निचली सतह पर रस चूसते हैं, जिससे कि पौधे के विकास की प्रक्रिया रुक जाती है। इसमें होने वाले प्रमुख रोग है आद्र गलन। यह रोग फफूंद, राइजाक्टोनिया एवं फाइटोफिथेरा कवकों के मिले जुले संक्रमण से होता है। इससे प्रभावित पौधे का निचला तना गल जाता है, पौधे अचानक ही मुरझा जाते हैं और ज़मीन पर गिरकर नष्ट हो जाते हैं। संक्रमित पौधे भूरे जल अवशोषित क्षति के साथ पीले हरे रंग के दिखाई देते हैं और इसी प्रकार से देखा जाए तो अगेती झुलसा भी रोग पाया जाता है, और इस रोग से ग्रसित पौधे के पत्तियों के किनारे के भाग पर छोटे काले गोलाकार धब्बे होते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, एवं जब धब्बे बढ़ते हैं तब संक्रमित पत्तियां मुरझाकर गिर जाती हैं, और इस रोग का प्रकोप पौधे के सभी भागों पर देखा जाता है। उसी प्रकार से टमाटर में प्रमुख रोग है पछेती झुलसा। इसमें पौधे के किसी भी भाग पर भूरे, बैंगनी अथवा काले रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। ये धब्बे तेजी से बढ़कर भूरे हो जाते हैं और पत्तियों के निचले सतह के संक्रमित क्षेत्र के किनारे के समीप अथवा तने पर एक सफ़ेद फफूंदी का आकार ले लेते हैं, यहाँ तक कि फलों के डंठल भी संक्रमित होकर काले पड़ जाते हैं। टमाटर में एक और रोग देखा जाता है श्रोताओं, जीवाणु धब्बा। इसमें लक्षण के रूप में पत्ती पर पानी से भीगे धब्बे हरित पीले रंग के आवरण के साथ दिखाई देते हैं। बाद में ये धब्बे भूरे रंग के व विकृत रूप से दिखाई देते हैं। पके हुए फलों पर ये धब्बे गहरे पानी से भीगे हुए भूरे रंग से काले भूरे रंग के दिखाई देते हैं। बाद में इन धब्बों पर दरारें भी होने लगती है। यदि हम बातें करें पर्ण कुंचन की, तो इसमें जो है लक्षण इस प्रकार से पाए जाते हैं। संक्रमित पौधे की पत्तियां मुड़ जाती हैं तथा पौधे की वृद्धि रुक जाती है, और रोग का अधिक संक्रमण होने पर इसमें फल की उत्पादकता ना के बराबर होती है। तो इस रोग से बचने के लिए, हमारे इन सभी तमाम रोगों से बचने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि आर्द्र गलन रोग की रोकथाम के लिए अच्छी जल निकास की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। इसके लिए जमीन से 10 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाना लाभकारी होता है। साथ ही 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा की सक्षम स्ट्रेन को 3 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाएं और 7 से 14 दिनों के संवर्धन के लिए छोड़ दें, व उसके पश्चात 3 वर्ग मीटर क्यारी में ट्राइकोडर्मा संवर्धित खाद को मिट्टी में मिला देना चाहिए। इससे काफ़ी हद तक उस पर नियंत्रण हो जाता है। आद्र गलन के नियंत्रण के लिए 10 ग्राम प्रति बीज ट्राइकोडर्मा या कैप्टन 70 WP के साथ की दर से बीज उपचार करें तो उसमें भी इसमें काफ़ी राहत मिलती है। श्रोताओं, अभी हमारे बहुत सारे जो किसान हैं वो बंदा गोभी या फूल गोभी की फसलें बुआई कर रहे हैं, तो हमारे किसान भाइयों को उस पर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ही इसमें ज़्यादा रोग और कीट लगने की संभावना होती है। तो हम बता दें कि कीट में डायमंड बैक मॉथ जो है वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसमें मादाएं पत्तियों पर हल्के पीले रंग के एकल अंडे देती हैं। इलियां हल्के पीले हरे रंग की होती हैं और वयस्क छोटा व हल्के भूसर रंग का पतंगा होता है। नवजात लार्वा पत्ती के ऊतकों को खुरच कर उसका भोजन करते हैं, परंतु विकसित लार्वा पत्तियों को काटकर उनमें छेद बना देते हैं। बंद गोभी इस कीट का सबसे पसंदीदा पोषक है और फसल को होने वाली क्षति मुख्यतः पछेती शरद ऋतु में अधिक देखा जाता है। जो किसान भाई पछेती में बुआई करते हैं बंद गोभी की, वो उसमें ये प्रकोप ज़्यादा देखा जाता है। तंबाकू की इल्ली या कीट बरसात के मौसम में उगाई जाने वाले फूलगोभी बंद गोभी की फसल में सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है। ये पत्तियों का हरा पदार्थ खुरच डालते हैं और इस प्रकार पत्ती पर केवल बाहरी परत रह जाती है तथा पत्ती जालीदार दिखाई देती है। विकसित लार्वा मुलायम पत्तियों तथा पौधे के नए भागों को बहुत तेजी से खाते हैं। लार्वा कालापन लिए हुए धूसर से लेकर गहरे रंग का भी हो सकता है और इसके शरीर के दोनों ओर गहरी लंबवत पट्टियां होती हैं। उसी प्रकार से तना भेदक भी देखा जाता है। पतंगा हल्का धूसरपन लिए हुए भूरे रंग के होते हैं। इलियां आरंभ में पत्तियों को छेद बनाती हैं, बाद में ये इलियां तने में छेद करती हैं तथा अनेक प्ररोह बन जाते हैं, और इसके स्वरूप संक्रमित पौधे पार्श्व प्ररोह बनाते हुए मर जाते हैं और उसमें गोभी का फूल फिर नहीं बन पाता है। उसी प्रकार से गोभी का चेपा भी प्रमुख रूप से देखे जाते हैं। गोभी में चेपे का प्रकोप पछेती शरद ऋतु में गंभीर रूप से देखा जाता है। उत्तकों से रस चूस लेने के कारण पौधे की बढ़वा रुक जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप गोभियाँ घटिया गुणवत्ता वाली होती हैं। गहन संक्रमण होने पर पौधे की तरह सूख जाते हैं। चेपा शहद जैसा एक पदार्थ उत्पन्न करते हैं और इसके कारण फफूंद विकसित होते हैं, जिससे कि संक्रमित पौधे पर एक काली परत जम जाती है। परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण तथा पौधे की वृद्धि में बाधा पहुंचती है। गोभी के प्रमुख रोग भी पाए जाते हैं श्रोताओं, जैसे कि डैम्पिंग ऑफ। इस रोग के परिणाम स्वरूप फसल के पौधे की संख्या कम हो जाती है तथा कभी कभी क्षति इतनी गंभीर होती है कि फसल की पुनः बुआई करना पड़ सकता है। और इसके लक्षण जो है इस प्रकार से होते हैं, पौधे का ना उभरना, इसके परिणाम स्वरूप बीज या पौधे सड़ जाते हैं अथवा नए युगे भी पौधे अचानक से मर जाते हैं। मृदु रोमिल फफूंदी या कीट बंद गोभी तथा फूलगोभी में पाए जाते हैं। इस रोग का प्रमुख लक्षण है पत्तियों के निचली सतह पर बैगनी पन लिए हुए भूरे रंग के धब्बे। पत्तियों की निचली सतह पर सामान्यतः सफ़ेद धूसर मृदु रोमिल बढ़वार दिखाई देती है। आगे चलकर पत्ती कागज के समान होकर सूख जाती हैं और परिपक्व बंद गोभी पर मृदु रोमिल फफूंद गोभियों पर गहरे धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। यदि हम बातें करें अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग, तो यह बरसात के मौसम में फूलगोभी बंद गोभी का सर्वाधिक सामान्य कवकीय रोग है। पत्तियों पर छोटे व पीले रंग के धब्बेदार क्षेत्र दिखाई देते हैं और कवकीय संक्रमण के परिणाम स्वरूप फूलगोभी के सीड्स पर भूरे रंग की विरंजिकता उत्पन्न होती है। जब तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है तो ऐसे गर्म मौसम में रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से श्रोताओं, हम देख सकते हैं कि चाहे कोई भी सब्जियां हो, सब्जियों में निरंतर निरीक्षण करते रहना चाहिए और जब भी किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत उसका निराकरण कर लेना चाहिए। वैसे भी किसान भाइयों को कोशिश करनी चाहिए कि वे अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का प्रयोग करें, क्योंकि जैविक खाद के प्रयोग करने से रोग और कीट कम लगते हैं। और दूसरी बात, जल निकास की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। यदि जल निकास की व्यवस्था नहीं होगी तो पौधे सड़ने गलने लगते हैं। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें और सब्जियों से आप अधिक से अधिक तभी लाभ कमा पाएंगे। तो श्रोताओं, अब हमें दे इजाज़त कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। नमस्कार। ग्रामीण सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, कृषि क्षेत्र है वो सदा जोखिम से भरा होता है। कभी मानसून विपरीत हो सकते हैं या भी कीट रोग इत्यादि के आक्रमण से फसल जो है वो नष्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से इन संकटों से ग्रामीण सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, कृषि क्षेत्र जो है वो सदा जोखिम से भरा होता है। कभी मानसून विपरीत हो सकते हैं या कभी लहलहाते फसलों में कीट रोग लगकर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को इन सब से निपटने के लिए चाहिए कि वे अन्य व्यवसाय को भी अपने दिनचर्या में शामिल करें, ताकि उन्हें अतिरिक्त आय का स्रोत मिलता रहे और अतिरिक्त कमाई के द्वारा उनकी जो रोजी रोटी है वो चलता रहे। तो अतिरिक्त कमाई के लिए यदि हम मछली पालन की बात करें तो ये बेहद आसान होता है और बेहद सरल भी होता है। बहुत अधिक पूंजी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और कम पूंजी में अधिक मुनाफा देने वाला ये व्यवसाय साबित हो सकता है। चलिए श्रोताओं, आज हम मछली पालन में एक नई तकनीक की बातें करेंगे और वो तकनीक है बायोफ्लॉग तकनीक। जी हाँ श्रोताओं, बायोफ्लॉग तकनीक एक आधुनिक व वैज्ञानिक तरीका है। बायोफ्लॉग तकनीक से किसान बिना तालाब की खुदाई किए एक टैंक में मछली पालन कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई हमारे किसान भाइयों के लिए जिनके पास तालाब पोखर नहीं है या जगह की कमी है, वे एक टैंक में भी मछली पालन कर सकते हैं। और इस तकनीक द्वारा टैंक सिस्टम में मौजूद बैक्टीरिया मछलियों के मल और अतिरिक्त भोजन की प्रोटीन सेल में बदलकर मछलियों के खाने में बदल देते हैं। श्रोताओं, हम बता दें कि बायोफ्लॉग एक तकनीक है जो पानी में मौजूद विषैले पदार्थों को मछलियों के चारे के रूप में परिवर्तित कर देता है। यह चारा मछलियों का भोजन बन जाता है और इसके अतिरिक्त इस तकनीक से पानी में मौजूद कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात को भी संतुलित रखा जाता है, जिससे वातावरण अच्छा रहता है और मछलियों का जो विकास है वो तेजी से होता है। बायोफ्लॉग तकनीक मछली पालन में नई नीली क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। आधुनिक दौर में मछली पालन के इस नई तकनीक को ज़्यादातर हमारे किसान भाई अपना रहे हैं और इस तकनीक के द्वारा कम लागत कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा मछलियों का पालन किया जा रहा है। यह एक आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीका है जिसमें मत्स्य पालन से सिर्फ न रोजगार मिलता है बल्कि इसके माध्यम से किसान तालाब की बिना खुदाई किए केवल एक टैंक में मछली पालन कर सकते हैं। जितना उत्पादन 50 डिग्री के तालाब से होता है उतना उत्पादन सिर्फ एक बायोफ्लॉग टैंक से भी किया जा सकता है। तो इसमें कम भूमि पर अधिक मत्स्य पालन की जा सकती है। और सबसे जो खास बात है श्रोताओं की, इस तकनीक में कई प्रजातियों की मछलियां एक साथ पाली जा सकती है जिनकी की बाज़ार में ज़्यादातर मांग होती है। तो श्रोताओं, ये भी जानना ज़रूरी है कि बायोफ्लॉग तकनीक में पालने वाली मछलियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो मछलियां हैं वो इस प्रकार से हैं: पंगेशियस, तिलापिया, देशी मांगूर, सिंधी, पाबदा, कॉमन कार्प, साथ ही एमूर कार्प। बायोफ्लॉग शैवाल बैक्टीरिया प्रोटोजुआ और कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है जिसमें 20-25% प्रोटीन पाया जाता है और इसके साथ ही 5-10% वसा भी होती है। तो इस प्रकार से जो है काफ़ी देखा जाए तो बहुत कम जगह में और बहुत ही ज़्यादा मुनाफा देने वाला ये व्यवसाय साबित हो रहा है। और इस तकनीक में बिजली की भी ज़रूरत होती है। इस तकनीक में 24 घंटे बिजली होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रहे श्रोताओं। इसमें एक एरोबिक बैक्टीरिया पलता है जिसे जीवित रखने के लिए हमेशा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस सिस्टम में बिना बिजली के मछली पालन नहीं की जा सकती। और बायोफ्लॉग के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वो इस प्रकार से है श्रोताओं। इसमें एक सीमेंट का टैंक होना चाहिए, तारपोलिन टैंक होना चाहिए और एरिशियन सिस्टम जो है वो भी होनी चाहिए। बिजली की उपलब्धता होनी ही चाहिए। प्रायोटिक और मत्स्य बीज ये सभी होनी चाहिए। तो इस तकनीक के द्वारा यदि मछली उत्पादन की जाती है तो इससे लाखों रुपया बहुत ही आसानी से कमाई जा सकती है। और यदि 10,000 लीटर का टैंक है तो इसमें निर्माण में लगभग 40,000 रुपये की लागत आती है जो 5 से 6 साल तक ये टैंक काम करती है। और लेकिन इसका एक बार हमारे किसान भाई एक बार इस टैंक को ले लेते हैं तो कई सालों तक इसका लाभ भी लेते रहते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है श्रोताओं कि इसमें लागत कम लगती है, साथ ही पानी की बचत होती है, सीमित जगह में अधिक मछली पालन की जा सकती है, श्रमिकों की लागत कम आती है और साथ ही साथ इसमें जो है मछलियों में होने वाले संक्रमण की भी खतरा कम होती है। तो हमारे किसान भाई इस ज़रूर अपनाएं इस बायोफ्लॉग तकनीक को और उसका लाभ लें। चलिए श्रोताओं, इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता। शीर्षक है पशु आहार में हरे चारे का महत्व, जिसमें जानकारी देंगे आदर्श ग्राम पदाधिकारी पलामू से डॉक्टर प्रमोद कुमार और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार।
2: किसान भाइयों, कार्यक्रम के अंतर्गत आज सर्वप्रथम हम बातें करेंगे आपसे हरे चारे की, और हरे चारे हम किस प्रकार उगाएं, कौन कौन से हरे चारे हमारे पशुओं के लिए काफ़ी उपयुक्त हैं और उससे क्या लाभ है, इन तमाम बातों पर जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिला लातेहार जिला के बरवाडी प्रखंड के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
3: नमस्कार
2: सर। प्रथम तो सर ये बताया जाए कि पशुओं के लिए हरा चारा का क्या महत्व है।
3: मैं पशुपालक भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि हरा चारा जो है वो प्राकृतिक चारा है। हमारे पशुओं को जो पेट है, जो जुगाली करते हैं, उनका इसी के लिए बना हुआ है। हम अपने फायदे के दृष्टिकोण से जरूर उनको अनाज खिलाते हैं, लेकिन मैं पशुपालकों को ये कहूँगा कि हरा चारा उससे काफ़ी सस्ता होता है, उससे मुनाफा बढ़ता है। दूसरा ये फायदा है कि हरे चारे में जो हरा रंग होता है वही विटामिन ए का पैदा करती है गाय खुद से, और उससे अपने बछड़े को विटामिन ए सप्लाई करती है, तो बछड़ा जो है उसका अंधा नहीं होता है। अगर हरा चारा शहर में नहीं देने पर पशुओं को देखा गया है कि जो गायें जन्म देती हैं अपने बछड़े को, उनके बछड़े अंधे होते हैं और वो आधे बछड़े 10 दिनों के अंदर मर जाते हैं। दूसरा ये देखते हैं कि शहर में जो गायें रहती हैं वो 6 बार 7 बार पाल दिलाने पर भी नहीं गर्भवती होती है, उन्हें गाँव पर भेजने पर देखा गया है कि वो वहाँ पर गर्भवती हो जाती हैं। तो दूसरे फायदे ये हैं। तीसरा ये कि आप हरा चारा देते हैं तो आपका आपकी गाय जो है वो 90 दिन के अंदर गर्म हो जाती है, तो सालों साल बच्चा देती है, तो आपकी गाय बहुत कम बिस्की रहती है और आपको ज़्यादा दूध उत्पादन होता है और ज़्यादा फायदा होता है। तीन सभी दृष्टिकोण से देखें तो हमको पशुओं के लिए कम से कम जितना भी उसकी आवश्यकता है उसका 40% या 35 से 40 किलो ग्रास अगर हम किसी तरह से भी उसको उपलब्ध कराते हैं तो हमारी गाय स्वस्थ रहेगी और अधिक दूध देगी, हमको अधिक मुनाफा होगा जी। तो अब आते हैं हम लोग कि कौन सा हरा चारा हम लगाएं। तो मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि हरा चारा जो है हमारे पास झारखंड में पलामू जिले में 3 ऋतुएं होती हैं, उन्हीं के हिसाब से हम लोगों को काम करना होता है। तो हमारे यहाँ रब्बी है, भदई है और गर्मा है। तो आप अभी हमारा रबी का सीजन शुरू हो रहा है, इसमें आप जो हरे चारे का राजा कहा जाता है बरसीम घास को, तो आप उसे अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में लगा सकते हैं। और अगर लेट होता है धान के काटने में, खेत खाली होने में, तो आप लूसर्न का इस्तेमाल नवंबर में अच्छा कर सकते हैं
2: जी।
3: दूसरी बात कि जब आप हरे चारे लगाते हैं तो आप सभी को जानकारी है पशुपालक भाइयों को कि झारखंड की भूमि में फॉस्फोरस की कमी है, तो आप लगाने के पहले निश्चित रूप से अपने खेत में सिंगल सुपर फॉस्फेट या डायमोनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल करें। दूसरा कि यहाँ पर कार्बनिक रसायन की कमी है, तो निश्चित रूप से किसान भाइयों के पास खुद की गाय है तो वो कंपोस्ट या गोबर गैस प्लांट से जो निकलता है सलरी हम लोग बोलते हैं उसे, या केचुआ खाद का इस्तेमाल जरूर करें। यहाँ की झारखंड की ज़मीन में ये आम्लीय होती है, इनका पीएच जो है वो 7 से नीचे है, तो उस आम्लीय पीएच को सही करने के लिए और पोटास की कमी को दूर करने के लिए आप पोटेशियम की कमी को दूर करने के लिए पोटास जरूर डालें। इन तीनों चीज़ को डाल को खेत को तैयार करने के बाद अगर लूसर्न और बरसीम लगाते हैं तो ये आपको 50 से 55 दिन के बाद ये तैयार हो जाते हैं। कहीं कहीं पर पौधे जो है फूल देने लगते हैं, तो आप उनको 50 से 55 दिन के बाद काट करके अपने पशुओं को खिलाएं। पशुओं को खिलाने में एक सावधानी जरूर किसान भाइयों को बरतनी चाहिए कि ये जो बरसीम या लूसर्न घास है इसमें पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, और आप इसकी कटिंग करने जा रहे हैं दिसंबर जनवरी माह में, तो उस समय आप एक दिन अगर उसको खेत में काट के छोड़ देते हैं तो धूप में रह करके इसका 10 से 15% तक इसका वजन घट जाएगा, मतलब पानी सूख जाएगा। पानी सूख जाने के बाद अगर पशुओं को आप देते हैं तो उन्हें पतला दस्त नहीं होगा। दूसरी बात कि कभी भी पशु को एक दिन में आप 50 किलो 60 किलो बरसीम नहीं दें, धीरे धीरे पहले 5 किलो, दूसरे दिन 7 किलो, फिर 10 किलो, इस तरह से 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर उन्हें पूरा का पूरा दे सकते हैं। बरसीम एक ऐसा हरा चारा है कि आप अगर 70-80 किलो बरसीम काट कर करके और एक दिन खेत में छोड़ देते हैं और दूसरे दिन अपने पशुओं को खिलाते हैं, मात्र 1 किलो खल्ली अगर खिलाएंगे सरसों की खल्ली तो आपको गाय 10 किलो दूध देगी। तो आप जोड़ के देखिए कहाँ 6 किलो अनाज और कहाँ 1 किलो अनाज, तो आप 5 किलो अनाज का जो पैसा है आप देखेंगे तो जितना लगता है उसका 20% भी हमको हरा चारा उगाने में नहीं लगता है। लेकिन हमारी एक धारणा बन गई है कि सभी लोग गाय को मकई, गेहूं, बादाम की खल्ली, सरसों की खल्ली खिलाते हैं, उससे मेरा कॉस्ट बढ़ने लगता है। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इस तरह से खिलाएं तो उनको अच्छा होगा। दूसरा, जब आप बरसीम का बीज खरीदने जा रहे हैं बाजार में, तो कभी भी सस्ता बीज ना खरीदें या किसी किसान से उधार बीज ना लें।
2: अच्छा अच्छा।
3: क्योंकि वो हाइब्रिड बीज जब आप थोड़ा महंगा होता है, लेकिन आपका उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा। आपने खुद और चीज़ों में भी देखा होगा कि धान वगैरह में कि हाइब्रिड धान लगाइएगा तो दूसरे साल अगर उस हाइब्रिड धान को घर का बीज लगाइएगा तो आपको वो उत्पादन नहीं होता है। तो ये बरसी में भी देखा गया है। तो ये में सबसे बढ़िया है कि आप बरदान नाम का एक वैरायटी है, उसे आप खरीद सकते हैं। बुंदेल बरसीम 3 भी है।
2: अच्छा।
3: JHB 17-1 भी है, JHB 17-2 है। अगर इन वैरायटीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। साथ में पशुपालक इसके बाद रबी के बाद जो है हमारा गर्मा शुरू होगा, तो गर्मा में आप सुडान ग्रास, MP चेरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में हम किसान भाइयों को देख रहे हैं पाटन इलाके में कि वो MP चेरी और सुडान ग्रास को लगा रहे हैं। उसमें सिर्फ आपको सावधानी ये बरतना चाहिए कि 50 से 55 दिन के पहले सुडान MP चेरी को ना खिलाएं, और 50 से 55 दिन के बाद ही तब खिलाने लगें। तो एक बार जरूर खेत में जाएं और देख लें कि आपका जो पैर है अगर उसे ज़मीन में धस रहा है तो यानी कि पानी की मात्रा सही है, तो आप उसको काट के खिलाएं। अगर ज़मीन पूरा सूख गया है या किसी कारण पानी की कमी हो रही है तो पशुओं को वो चारे न खिलाएं, क्योंकि उनके ऊपर हाइड्रोसाइनिक एसिड पौधे के ऊपर टॉप्स में आ जाते हैं, जो आपको खिलाने पर पशुओं के लिए ये जहर का काम करता है और पशुओं की तत्काल मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में पशुपालक भाइयों को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर MP चेरी और सुडान ग्रास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी की मात्रा को सही बनाए रखें। इसके बाद आपका भदई आता है, तो वही जो गर्मा में MP चेरी और सुडान है उसको लगाने का, तो वो आप लगा सकते हैं। जैसे अभी वर्तमान में सभी किसान भाई जो हैं अपने घर खेतों में जो लगाए हुए हैं MP चेरी, उससे खिला रहे हैं पशुपालकों को और दूध ले रहे हैं। इसके बाद एक तीसरा चारा भी है जिसको सालों साल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे चारे में सबसे आसान आपके लिए है कि मूंगा का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, या सहजन भी उसको कहते हैं, तो उसकी पत्तियों को भी पशुओं को खिलाने के लिए। लेकिन ये जब आप 50-100 की संख्या में पौधे लगाएंगे तब भी आपको फायदा होगा। दूसरा सुबबुल भी है किसान भाइयों के पास, उसे लगाएं और उसे खिलाएं। तीसरा एक अभी जो है कैक्टस, जो कांटा होता है जो आपने देखा होगा मोटा मोटा पत्ती उसकी, तो अभी एक ऐसे कैक्टस प्लांट का वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया जिसमें कांटे नहीं है। आप लाल मिट्टी में जहाँ आपका खेत खाली है वहाँ उस पौधे को लगाइएगा, तो उस कैक्टस को भी आप चारा मशीन में काट करके अपने पशुओं को खिला सकते हैं। इसके बाद एक और है एजोला घास। शहर में जिनके पास जमीन नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि हम अपने पशुओं को खिलाएं, तो एजोला घास एक काई है जो कि आप तालाब में देखते हैं जमा हुआ रहता है
2: जी।
3: उसी टाइप से एक एजोला होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि जमीन में गोबर का घोल बना दिया, उसमें DAP डाल दिया, पोटाश डाल दिया, यूरिया डाल दिया, और उस घोल में उस घास को डाल देते हैं। वो पानी पर छहलते रहता है और वो 3 दिन में दुगना हो जाता है। तो आप जितना एरिया में चाहें तो एजोला घास डालते हैं, शहर में, गढ़वा में भी, लातेहार में भी, और गव्य विकास जहां भी दूध कलेक्शन सेंटर्स है वहां पर आप संपर्क करें, ये एजोला घास आपको मिल जाएगा। इसको नीचे प्लास्टिक लगा करके आप ऐसा कर सकते हैं। उसमें थोड़ा गोबर कंस होने के कारण घास को अच्छी तरह से धो करके तभी पशुपालकों को दें, तो पशुओं को दें तो आपको पशु खाएंगे चाव से, नहीं तो अत्या गोबर कम होने के कारण वो नहीं खाते हैं
2: जी जी।
3: तो इस तरह से आप शहर में हैं तो एजोला घास का इस्तेमाल करें, गांव देहात में हैं तो आप हमारा मुनगा है या हाथी घास है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: सर ये तो दुग्ध उत्पादन के लिए बातें हुई, और इससे हमारे पशु के स्वास्थ्य पर, उसके बाढ़ बयान पर क्या असर पड़ता है?
3: आप अगर पशुपालक भाई अपने पशुओं को हरा चारा दे रहे हैं तो सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा आपको कि जो क्रॉसब्रेड नस्ल की हमारी बाछी है, जो अभी हम लोग शहर में देख रहे हैं कि 3-4 साल लग जाता है उसे गर्म होने में, उन्हें 12-13 महीने में निश्चित उससे गर्म होना चाहिए। तो हरा चारा देंगे तो वो गर्म होगी, जितना जल्दी गर्म होगी तभी उसका उत्पादन शुरू होगा। गायों में इसी तरह से है कि आप अगर हरा चारा खिलाते हैं तो 3 महीने के अंदर आपकी गाय गर्म हो जाती है तो सालों साल बच्चा देगी। तो ये काफ ईयर प्रोग्राम जो है हमारा सक्सेसफुल होगा, तो गाय कम बिछेगी तो हमको कम खर्च करना पड़ेगा और ज़्यादा मुनाफा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप हरा चारा देते हैं तो गायों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक रहती है, तो उनसे कोई बीमारी नहीं होती है, तो हमारा वहाँ भी जो बीमारी होने पर जो इलाज करने पर खर्च है उसकी भी कमी आती है। तो इस तरह से पशुपालन में हरे चारे के बिना पशुओं को रखना हमारे समझ से बहुत फायदे का सौदा नहीं हो सकता है। इसी तरह से बकरी अगर कोई रखे हुए हैं तो उनके लिए भी हरा चारा, तो ये सभी चारे बकरियों के लिए भी है कि अगर हम किसी कारण से उन्हें ग्रेजिंग पर नहीं ले जा पा रहे चराने के लिए, तो उन्हें घर में ही हम हरा चारा दे करके उनको रखें तो उससे भी हमारा मांस उत्पादन बढ़ सकता है। सुअर में भी हम बरसीम घास का या थोड़े पौधे छोटे होते हैं तो उनको भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि आंशिक रूप से हरे चारे पर, आंशिक रूप से अनाज के ऊपर सुअर पालन को किया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है।
2: सर, एक सवाल हमारे सामने आता है कि जहाँ पर हरा चारा प्राप्त करना मुश्किल सा कार्य है, नगण्य स्थिति है, तो उस परिस्थिति में

0: और दूसरा ये कि आप सभी जानते हैं या कुछ किसान भाई इस्तेमाल भी करते होंगे मिनरल मिक्सर।
1: अच्छा
0: आप सभी किसान भाई को, पशुपालकों को ये जानकारी है कि 16 तरह के खनिज होते हैं और 3-4 टाइप के विटामिन्स होते हैं जो गायों के लिए जो आवश्यक है। जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये 4 विटामिन जो हैं ये उनके प्रजनन क्षमता को सुधार के लिए ये जरूरत है। साथ में दूध बढ़ाने के लिए सभी पशुपालक भाइयों को मालूम रहता है कि कैल्शियम के साथ अगर फॉस्फोरस और विटामिन डी न दिया जाए, सिर्फ कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो वो मिनरल मिक्सर अगर 50 से 100 ग्राम दे रहे हैं तो इसके आंशिक रूप से पूर्ति हो सकती है।
1: और हमारे ग्रामीण भाई बहन को आप क्या कहना चाहेंगे संदेश?
0: संदेश के रूप में मैं किसान भाइयों को यही कहूंगा कि आप जहाँ कहीं से भी हो, अगर आप पशु रखे हुए हैं तो हरे चारे जरूर लगाएं और अपना मुनाफा बढ़ाएं, और इस तरह से देश जो हमारे झारखंड में दूध का उत्पादन कम है वो राष्ट्र का जो औसत है उसके स्तर तक पहुंच सके, और इस तरह से झारखंड का विकास देश का विकास है और आपका विकास साथ में निहित है। तो मैं ये कहूंगा अंतिम में कि आप हरा चारा जरूर लगाएं, ऐसी कोई कठिनाई होती है तो आप अपने प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी से, जिला पशुपालन पदाधिकारी से पता कर सकते हैं कि हरे चारे के उपलब्ध सीड कहाँ पर उपलब्ध है, हमें क्या करना चाहिए, तो आपको अच्छी जानकारी मिल सकती है।
1: और ये मुफ्त वितरण भी होगा?
0: अभी कुछ चारे जो आ रहे हैं वो दूध संग्रहण केंद्र जो आपका है, जहाँ पर आप दूध मेधा डेयरी को आप दे रहे हैं, वहाँ से संपर्क करने पर आपको इसकी भी उपलब्धता है। बट विभाग में अभी जिला पशुपालन कार्यालय में इसकी उपलब्धता अभी नहीं है। ये डाल्टनगंज में किसी भी खाद दुकान, बीज दुकान में आप संपर्क करें, लेकिन ब्रांडेड वैरायटीज जब भी लें तो ब्रांडेड वैरायटीज लें, अधिक उत्पादन होगा, यही मैं कहना चाहता हूँ।
1: आप थे लातेहार जिला के बरवाड़ी प्रखंड के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। आप कार्यक्रम से जुड़े सर, और पशु चारा से संबंधित विस्तृत जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसमें भेंट वार्ताकार थे आदर्श ग्राम पदाधिकारी पलामू से डॉक्टर प्रमोद कुमार, और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। श्रोताओं, हम बता दें कि अधिक से अधिक उत्पादन लेने के चक्कर में हमारे किसान भाई अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग धड़ल्ले से करते चले जा रहे हैं, और जिसका जो परिणाम है वो हम सब देख ही रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि इसमें यदि हमारे किसान भाई बिना मिट्टी परीक्षण के उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो इससे उन्हें हानि भी उठानी पड़ सकती है। वैसे देखा जाए तो मिट्टी में 17 पोषक तत्व होते हैं, जिसमें कुछ मुख्य होते हैं और कुछ का बहुत ही सूक्ष्म रूप से प्रयोग होता है, लेकिन इनकी कमी होने पर भी पौधे में इसका असर देखा जाता है और बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी आवश्यकता पड़ती है। हाँ जी, हाँ श्रोता, हम बातें कर रहे हैं जिप्सम की। तो जिप्सम का उपयोग क्यों, कब और कैसे करें, आइए जानते हैं विस्तार से। तो हमारे किसान भाई फसल उगाने के लिए सामान्यतः नेत्रजन, फास्फोरस और पोटाशियम का उपयोग करते हैं, कैल्शियम एवं सल्फर का उपयोग नहीं करते हैं, जिससे कैल्शियम एवं सल्फर की कमी की समस्या धीरे धीरे विकराल रूप धारण करती है, और इसकी कमी सघन खेती वाले भूमि, हल्की भूमि तथा अब क्षरणीय भूमि में अधिक होता है। कैल्शियम एवं सल्फर संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के लिए मुख्य अवयवों में से एक है, इनकी पूर्ति के अनेक स्रोत हैं जैसे कि जिप्सम। तो रासायनिक रूप से जिप्सम कैल्शियम सल्फेट है, और जिससे 23.3% कैल्शियम एवं 18.5% सल्फर होता है। जब यह पानी में घुलता है तो कैल्शियम एवं सल्फेट आयन प्रदान करता है, और तुलनात्मक रूप से कुछ अधिक घनात्मक होने के कारण कैल्शियम के आयन मृदा में विद्यमान विनिमय सोडियम के आयनों को हटाकर उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं।
1: किसान भाई बहन, आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण सभा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर।

0: वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
1: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
0: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हर ब्रांड के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
3: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
2: सीकेवाईसी मतलब?
3: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
2: वाह, आरबीआई कहता है
3: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
4: बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
5: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, चार पैसे जोड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
4: जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान।
6: भविष्य की खुशियां प्लान कीजिए, थोड़ा

0: सोच के बच्चा पैदा कीजिए तो बनेगा एक खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
1: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: तुम खेत पर काम कर रहे हो?
4: हाँ भाई, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
3: पिछले हफ्ते ही तो तुमने एनएसबी कराई है।
4: अरे इससे कोई कमजोरी नहीं होती, न चीरा न टाका, मात्र 10 मिनट का काम। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं होती है। अरे अरे अरे कहाँ चल दिए?
5: एनएसबी कराने।
4: पुरुष नसबंदी यानी एनएसबी की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: जिंदगी की रोज
7: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, वर्ष 2029 से पहले देश के 21 राज्यों में लागू होगी समान नागरिक संहिता। राज्य में एसआईआर के तहत दावा आपत्ति और नए वोटर पंजीकरण का कल आखिरी दिन। अब तक 7,69,000 से अधिक आवेदन प्राप्त। राज्य भर में गणेश चतुर्थी की धूम। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पर की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को दी बधाई। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रदेश भाजपा चलाएगी 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सभी जिलों और बूथ स्तर पर आयोजित किए जाएंगे 14 सेवा कार्यक्रम। और हिंदी दिवस पर राज्यभर में कई समारोह आयोजित। सुशासन और राष्ट्रीय एकता के लिए सरल हिंदी अपनाने पर दिया गया जोर। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा और एनडीए समर्थित 21 राज्यों में 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की बात कही। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि 3 तलाक की समाप्ति के बाद अब इन राज्यों में यूसीसी भी समय सीमा से पहले प्रभावी कर दी जाएगी।
8: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
7: खान एवं खनिज विकास संशोधन अधिनियम 2026 के लागू होने पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे काला कानून बताते हुए निंदा की और कहा कि इस कानून से राज्य को दोहरी क्षति हुई है, जिससे केंद्र पर 1,36,000 करोड़ रुपए का कोयला रॉयल्टी दावा समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।
9: विधानसभा में जो भी विषय उठाए जाएंगे वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, यही विशेषाधिकार। मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है कि जितने भी विधायक गण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो विधानसभा के अंदर के अतिरिक्त विधानसभा के बाहर भी जनहित की बातों को करते हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है। वो जनता से वोट लेकर के आते हैं और उनके साथ कुछ कमिटमेंट भी होता है, जो जेन्युइन डिमांड है।
7: राज्य में एसआईआर के तहत दावा आपत्ति और नए मतदाता पंजीकरण के लिए कल आखिरी दिन है। राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 के माध्यम से 4,70,542 आवेदन मिले हैं। वहीं सुधार के लिए फॉर्म 8 के जरिए 2,98,871 आवेदन प्राप्त हुए हैं। राज्य भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस बीच राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पहुंचकर भगवान गणपति की पूजा अर्चना और आरती की। राज्यपाल ने भगवान गजानन से राज्य की सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हुए सभी को बधाई दी।
10: पूरे प्रदेश और देश की मंगल कामना की बात करते हैं और भगवान को इसीलिए स्मरण करते हैं और किसी रूप में भी करें, यहाँ के बाद महाराज सही देश के अधिकार है, इसका एक लंबे तरीके से पूजन होता है, तो मेरी आपके माध्यम से सभी जुड़े हुए साथियों को शुभकामनाएं।
7: इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पावन अवसर पर समस्त राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर भगवान गणेश की स्तुति करते हुए मुख्यमंत्री ने विघ्नहर्ता से प्रार्थना की कि वे समाज में प्रेम, शांति और आपसी सद्भाव बनाए रखें और सभी के जीवन से बाधाओं को दूर करें। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर रांची जिला प्रशासन ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत पूजा पंडालों का निर्माण बिजली की तारों और ट्रांसफार्मर्स से सुरक्षित दूरी पर करना होगा। प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही सुरक्षा के लिए पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाना और अग्निशमन विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान यात्रा चलाएगी। रांची में पत्रकारों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनसेवा के 25 सफल वर्ष पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन सेवा का उनका 25 वर्ष पूरा कर रहे हैं। ये 7 तारीख को पूरा हुआ, 7 अक्टूबर, तो इसलिए पार्टी ने तय किया है कि 17 सितंबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पूरा एक महीना सेवा संकल्प अभियान यात्रा।
7: डुमरी के विधायक जयराम महतो को धनबाद की एमपी एमएलए की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने बरवाड़ा थाना मामले में जयराम महतो सहित 4 लोगों की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। उन पर थाना प्रभारी से कथित गाली गलौज, धमकी देने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप थे, जिसके बाद पुलिस एसोसिएशन ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड की कोडाकेल पंचायत में आज राष्ट्रीय पोषण माह के तहत पंचायत स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिला परिषद सदस्य दयामणि मुंडू और स्थानीय मुखियाओं ने ग्रामीणों को बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार का महत्व समझाया। वक्ताओं ने फास्ट फूड से बचने और स्वच्छता अपनाने की अपील की। धनबाद पुलिस ने वासेपुर के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के भाई बंटी खान को पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि हत्या और रंगदारी सहित दर्जन भर मामलों का आरोपी बंटी फर्जी पासपोर्ट के सहारे दुबई भागने की फिराक में था। धनबाद लाए जाने के बाद पुलिस ने उसका परेड भी कराया।
6: बंटी खान गिरफ्तार हुआ है, अभी डिटेल्ड पूछताछ चल रही है बैंकमोड़ थाना में, बहुत सारे राज इसने उगला है। अभी पुलिस इसको ले जाके कुछ ऐसा जगह बताया है जहां कुछ संदिग्ध सामान छुपे होने की भी सूचना है और उसके बाद जो जो चीज ये बताया है उसके ऊपर कार्रवाई हम लोग करेंगे और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत आज इसको जेल भेजा जाएगा और फिर हम लोग रिमांड पर ले जाकर फिर विस्तृत पूछताछ करेंगे।
7: राज्य में हिंदी दिवस के अवसर पर कई राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रांची के दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलीय राजभाषा कार्यालय में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि हिंदी पूरे देश को एक सूत्र में पिरोती है और यह देश की एकता और अखंडता की सशक्त अभिव्यक्ति है। इसी क्रम में कार्मिक विभाग के समारोह में सचिव प्रवीण टोप्पो ने सुशासन के लिए सरकारी कार्यों में सरल हिंदी अपनाने पर जोर दिया, जबकि आकाशवाणी रांची की कार्यशाला में डॉ. अंजेश कुमार ने हिंदी के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को रेखांकित किया। और अब मौसम। राज्य में 18 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में कहीं कहीं आंधी और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 1 जून से अब तक 870 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 5% कम है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, वर्ष 2029 से पहले देश के 21 राज्यों में लागू होगी समान नागरिक संहिता। राज्य में एसआईआर के तहत दावा आपत्ति और नए वोटर पंजीकरण का कल आखिरी दिन। अब तक 7,69,000 से अधिक आवेदन प्राप्त। राज्य भर में गणेश चतुर्थी की धूम। राज्यपाल संतोष गंगवार ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पर की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी

0: प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रदेश भाजपा चलाएगी एक महीने का सेवा संकल्प अभियान। बाबूलाल मरांडी ने कहा सभी जिलों और बूथ स्तर पर आयोजित किए जाएंगे 14 सेवा कार्यक्रम। और हिंदी दिवस पर राज्यभर में कई समारोह आयोजित, सुशासन और राष्ट्रीय एकता के लिए सरल हिंदी अपनाने पर दिया गया जोर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
2: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
1: RBI कहता है जानकार बनिए,
2: सतर्क रहिए।
3: अरे छुटकी तो 10 साल की हो गई है, उसका लगन जल्दी करना अच्छा होगा।
4: ठहरिए, कम उम्र की लड़की का शरीर माँ बनने के लिए तैयार नहीं होता।
3: 20 साल से अधिक उम्र में बच्चा होने से माँ और शिशु की मृत्यु का खतरा कम रहता है।
4: माँ में बच्चे के पालन पोषण की समझ रहती है।
3: 18 वर्ष से पहले और 35 वर्ष के बाद गर्भ धारण करने से माँ और बच्चे के लिए खतरा बढ़ जाता है।
4: गर्भ का निश्चित होते ही आंगनबाड़ी केंद्र जाएं और अपना नाम गर्भवती माताओं के रजिस्टर में लिखाएं।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: मैंने कहा ना, मैं अपनी बिटिया की शादी अभी नहीं करूंगी। अरे उसकी उम्र अभी कच्ची है।
4: जी हाँ, कानून भी यही कहता है, शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
3: शादी के लिए सही शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास जरूरी है।
4: सही उम्र में शादी होने से लड़की अपना वैवाहिक जीवन बेहतर बना सकती है।
3: याद रखें, लड़की की शादी की सही उम्र 18
4: और लड़के की 21 वर्ष है।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
7: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता।
1: लोहरदगा जिला में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न मतदान केंद्रों में दावा एवं आपत्ति से संबंधित सुनाई प्रक्रिया जारी है। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने जिला के सभी मतदाताओं से अपील की है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका निभाएं। लोहरदगा जिला प्रशासन की विशेष पहल अखिल एड़पा बेहतर शिक्षा की ओर के तहत जिले के पदाधिकारियों को विद्यालयों की जिम्मेवारी दी गई है, जिसके तहत पदाधिकारियों के द्वारा अपने अपने आवंटित विद्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। इस क्रम में पदाधिकारियों ने विद्यालयों में शैक्षणिक एवं आधारभूत आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त कर विद्यार्थियों से संवाद करते हुए पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों की पढ़ाई कराई। यह कार्यक्रम नियमित रूप से चलता रहेगा। लोहरदगा जिला में बॉक्साइट डंपिंग यार्ड के मजदूरों के हक एवं अधिकार की मांगों को लेकर मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व नगर परिषद अध्यक्ष अनिल उराव के द्वारा किया गया। इस मौके पर अनिल उराव ने कहा कि
2: आज यहां के स्थानीय मजदूर जो कि डंपिंग यार्ड में काम करते थे, उनकी संख्या लगभग हजारों है, वो यहां डंपिंग यार्ड के हटने से बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि डंपिंग यार्ड नाम के लिए हटा, एक्चुअल में जो है रोपवे का डंपिंग यार्ड चालू है। तो आज मजदूरों का यही मांग है, हमारा जो है रोजगार छीन लिया गया है तो फिर ये रोपवे क्यों चला। तो इस रोपवे को हम लोग बंद कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और एक दिवसीय आज रोपवे बंद रहेगा। साथ ही साथ आज मजदूरों का जो डिमांड है कि हमारा मजदूरी के साथ यहाँ स्थानीय लेवल पर जो है स्वास्थ्य की जो है व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए।
1: झारखंड में नियुक्ति घोटाला को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोहरदगा समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। मौके पर पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने कहा कि
3: लोहरदगा के बहुत बच्चे
1: नेशनल यूथ फेस्टिवल के आयोजन को लेकर लोहरदगा में युवाओं को भी प्रेरित किया जा रहा है। युवा कार्य विभाग के अजय कुमार सैनी ने बताया कि यह आयोजन 10 से 12 जनवरी 2027 तक नई दिल्ली में होगा और इसमें लोहरदगा जिला के युवा भी भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि
4: हमारे लोहरदगा के जो यूथ हैं उनके साथ हम डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं। अभी नेशनल यूथ फेस्टिवल का 30वां संस्करण स्टार्ट हुआ है जो कि 10 से 12 जनवरी तक नई दिल्ली 2027 में ऑर्गेनाइज होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो लोहरदगा का यूथ है वो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 की जर्नी में हमारा साथ दे।
1: लोहरदगा जिला में गणेश पूजा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले में हर तरफ उत्साह एवं भक्ति का माहौल देखा जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा।
0: अभी आप सुन रहे थे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

नमस्कार नमस्कार बिहार वालों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? पूरा बिहार इसलिए हमने कहा क्योंकि ये जो बुनियाद कार्यक्रम है, जी हाँ, इस कार्यक्रम का नाम है बुनियाद और इसे हम लेकर आते हैं पूरे बिहार के रेडियो स्टेशन। 6 रेडियो स्टेशन है अपने पूरे बिहार में, पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सासाराम और पटना विविध भारती। ये 6 स्टेशन से इस कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है वर्षों से और हमारी मंशा ये है कि आप लोगों को प्रेरित करें टेक्निकल पढ़ाई के लिए, टेक्निकल पढ़ाई विशेषज्ञता हासिल करने के लिए, जिससे आपको करियर में कोई परेशानी ना हो। कहते हैं टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, अगर आप टेक्निकल पढ़ाई करोगे अच्छे से तो पढ़ते पढ़ते ही रोजगार मिल जाएगा और पढ़ने के बाद अगर चाहिए तो ज्यादातर टेक्निकल पढ़ाई में स्वरोजगार भी आप कर सकते हैं। जी हाँ, ढेर सारी बातें होंगी अभी, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि ये बुनियाद कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय। जी हाँ, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। उनका मानना है कि कल को कोई युवा ये ना कहे कि टेक्निकल पढ़ाई करनी थी, इसकी जानकारी तो हमको है ही नहीं है, तो हम जानकारियां पहुंचा रहे हैं आप लोगों तक इस कार्यक्रम के माध्यम से, अंतिम युवा तक, करोड़ों लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंच रहा है और आज की तारीख में हम गर्व से कहते हैं

0: लो भैया, उसको आराम से कर लो। नंबर नोट कीजिए 9431899002, 9431899002, और एक टोल फ्री नंबर भी है 1800121005 1800121005। और एक वेबसाइट का पता भी बता रहा हूं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का, वहां जाकर के आप पता तो कर लीजिए कम से कम। एडमिशन लेना ना लेना आपकी मर्जी, ये हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व तो है कि जानकारियां हम आप तक पहुंचाएं। नंबर तो बता दिया और अब वेबसाइट का पता है gnsu.ac.in gnsu.ac.in, इस पर आप जाकर के पता कर लें। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने किसी विशेषज्ञ को नहीं बुलाया था, बातचीत करवाई थी युवतियों से, लड़कियों से, छात्राओं से जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही थी, हाँ, या कर रही हैं, जो कहना चाहिए आप कह सकते हैं। लेकिन इसका असर हुआ, ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के फोन कॉल्स आए, कुछ गार्जियंस के भी फोन कॉल आए जिन्होंने जानकारी चाही कैंपस के विषय में, एग्रीकल्चर में करियर के विषय में, ढेर सारा हाँ जानकारियां दी गई। मतलब हमने कहा ना कि ये कार्यक्रम बुनियाद अपनी विश्वसनीयता बना चुका है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। हमने और भी लड़कियों के अलावा लड़कों से भी बातचीत की थी, हम उसके आज अंश सुनवाएंगे। प्रेरित करने की कोशिश करेंगे कि ये बच्चे जब आ सकते हैं तो आप भी आ सकते हैं। मन में किसी तरीके की कुंठा नहीं पालनी है और हाँ, जरूरत से ज्यादा अभी नहीं सोचना, 10 साल बाद क्या होगा उसके विषय में अभी नहीं सोचना है। एक बात और कहना चाहते हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें कही जाती हैं लेकिन सत्यता की जांच पड़ताल आवश्यक है। बहरहाल आइए चलते हैं और एग्रीकल्चर पढ़ रहे इस लड़के ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं।
1: सर, मेरा नाम विनायक जायसवाल होगा, हम एक अमाओं गांव से बिलोंग करते हैं, मेरा डिस्ट्रिक्ट कैमूर भभुआ होगा। सर, घरेलू माहौल कृषि का भी है और सर बिजनेस भी है। यस सर, BSc एग्रीकल्चर। सर, हम FO का क्षेत्र में जाना चाहते हैं। सर, एग्रीकल्चर फूड ऑफिसर का एक नौकरी होता है जो हम उसको परचेज करना चाहते हैं। तैयारी अभी सर सही चल रही है, हम थर्ड सेमेस्टर में हैं सर। और हाँ सर, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में सर पढ़ाई होता है, टीचर हमारे यहाँ मतलब फील्ड से लेकर के थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज देते हैं और हमारे टीचर डीप में नॉलेज स्टूडेंट को देते हैं। नहीं जानते हैं कि एग्रीकल्चर मतलब कि एग्रीकल्चर में कितना स्कोप है, अगर गांव से बाहर आते हैं तो उनको पता चलता है कि नहीं, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे स्कोप हैं। एग्रीकल्चर करके ब्लॉक ऑफिसर, BO, SO लोग बन सकते हैं। सर, नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस में सर हमारे यहाँ के जो टीचर हैं सारे जो हैं एक मतलब कि डीपली एक स्टूडेंट मतलब टीचर जो है क्वालिफाई हैं, PhD होल्डर हैं सर। और हमारे जो जितने भी मतलब टीचर जो हम लोग को शिक्षा देते हैं वो डीपली जा कर के एकदम शिक्षा देते हैं। जो लोग अभी घर में बैठे हैं अगर सोच रहे हैं कि हम आगे कुछ करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर फील्ड चूज करके और अपना कैरियर बना सकते हैं।
0: तो सुना आपने, हाँ, अगर जो लोग सोच रहे हैं वो एग्रीकल्चर को करियर ऑप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा कहना है इनका। और आपने बातचीत सुनी, हाँ, लेकिन एक बात है, चाहे ये ना बोल पा रहे हो ठीक से, चाहे ना कुछ कर पा रहे हो, लेकिन इनका जज्बा बहुत ऊपर है और निश्चित रूप से ईश्वर करे ये आगे जाएं। अभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं लेकिन इन्होंने करियर के प्रति बहुत ही जागरूक एटीट्यूड दिखाया है और इन्होंने एडमिशन लिया एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। एक बात और बताएं, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, इसके अलावे आज तो अपॉर्चुनिटी इतनी बढ़ गई है कि आप अपनी मर्जी का क्षेत्र चुन सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं टेक्निकल के, हाँ, जैसे अगर आपने बायोलॉजी के साथ ही इंटरमीडिएट किया है तो पैरामेडिकल के कोर्स हैं, ANM GNM का कोर्स है, नर्सिंग

0: का कोर्स है, फार्मेसी का कोर्स है, ढेर सारे कोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर तो ऑब्वियसली है ही है, इसके अलावा भी अगर टेक्निकल पढ़ाई करनी है, मैनेजमेंट है, लाइब्रेरी साइंस है, जर्नलिज्म है, अब तो इंटीग्रेटेड 5 ईयर लॉ हो चुका है, बहुत ही वाइब्रेंट है, आपके लिए रोजगार दिलाने में सक्षम होगा अगर तरीके से आप पढ़ें। और ये सारी पढ़ाई जो है ना वो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में होती है। एक बात और बता दें, पैसे का भी नहीं रोना रोइएगा, हाँ, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे जितना पैसा मिले, एक सपोर्ट तो हो सकता है ना। नंबर नोट करें, नंबर है 9431899002, 9431899002, और एक टोल फ्री नंबर है 1800121051, 1800121051, और एक वेबसाइट भी है gnsu.ac.in, इस पर जाकर आप अधिक जानकारियां ले सकते हैं, विस्तार से यूनिवर्सिटी के बारे में जान सकते हैं, कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। और हर सप्ताह आपका राजेश आता ही है बुनियाद कार्यक्रम लेकर पूरे बिहार में, और इसमें जो नंबर देते हैं उस पर भी जानकारियां ले सकते हैं, यानी कहीं से कोई कमी नहीं है जानकारियों में, मर्जी आपकी है। आइए सुनते हैं एग्रीकल्चर पढ़ रहा ये स्टूडेंट क्या कह रहा है।
1: मेरा नाम कृष्ण कुमार है और मैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे फैमिली में शुरू से सिखाया जाता है अन्न ही देवता है, अन्न ही माता है, अन्न ही देवता है, यही सिखाया जाता है। हमारे पापा खुद ही एक किसान हैं, उन्होंने बोला कि किसानी के बारे में तुम अच्छा जानना है अगर, तो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट है, क्योंकि हमारे घर के नज़दीक भी है, हमारे घर से सबसे बिहार का टॉप प्राइवेट कॉलेज गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी ही है। हम यहाँ पर जिस दिन एडमिशन करने आए थे तो हमारे सारे टीचर फैकल्टी मेम्बर्स से सबसे मुलाकात हुआ, जिससे हमारा मतलब मेरे पापा और हमको ऐसा लगा कि ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट है और सेफ इन्वायरमेंट है, जिससे हमारा जो कोर्स है, जो आगे करने का जो हौसला है वो बुलंद रहेगा। सर, हम जब फर्स्ट ईयर में आए थे, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो हम बहुत ज़्यादा नर्वस थे, तो यहाँ के टीचर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जैसे कि हमारे कुछ टीचर हैं, शिवम सर, प्रशांत सर, संदीप मौर्य सर, जिन्होंने बताया कि देखो आप घबराओ मत, हम लोग आपके साथ जीरो से लेके एकदम पिक तक हैं, आपको प्लेसमेंट से लेके आपको जॉब तक करवाना वो हमारा जिम्मेदारी, लेकिन मेहनत आपका होगा, सिर्फ हम रास्ता दिखाएंगे आपको। नौकरी के बाद अगर हमको कोई बिजनेस का एटीट्यूड, जैसे हम बी कीपिंग करना चाहते हैं, या हमको डेयरी साइंस करना है, या डेयरी फार्मिंग करना है, पोल्ट्री फार्मिंग करना है, और साथ साथ नौकरी भी करना है, क्योंकि सर आज के जनरेशन में 1 जॉब इज नॉट इनफ, कम से कम साइड बिजनेस तो होना ही चाहिए। हमारे यहाँ भी टीचर सब यही सिखाते हैं कि अगर आप सरकारी जॉब आपका है गुड एंड वेल, लेकिन आपके साथ आपको साइड बिजनेस करना कंपल्सरी है। हमारे यहाँ फील्ड इक्विपमेंट भी हैं बहुत सारे, अभी हमारे यहाँ अकोरी गोला में बहुत बड़ा एग्रीकल्चर फार्म बन रहा है 40 एकड़ में, जो हमारे बिहार में सबसे बड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे करवंदिया डैम में भी विजिट करवाया गया है, डेयरी साइंस सुधा डेयरी में भी, डिहरी में भी विजिट करवाया जाता है, और हमारा अभी लास्ट विजिट अभी हम लोग का हुआ था सॉइल इंजीनियरिंग में करवंदिया डैम के पास। सर यूथ कन्फ्यूज है मेडिकल साइंसेज में और एग्रीकल्चर में, ये नहीं जानते हैं कि मेडिकल साइंसेज इज द मतलब सबके लिए मेडिकल ज़्यादा अभी अफोर्डेबल नहीं है, कृषि है वो सबके लिए अफोर्डेबल है। हम यही कहना चाहते हैं जो घर बैठे हैं, जो सुन रहे हैं हम लोग को, बस आप आँख बंद करके एग्रीकल्चर की तरफ कदम बढ़ाइए, और बिना किसी हिजक के, बिना किसी डर के, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी आपके साथ है, आपके जीरो से लेके पिक लेवल तक आपके साथ है गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी। और एक बार आप विजिट करिए गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी और नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में। सब आप सर एक बार सब पॉजिटिव ही सब क्राइटेरिया है हमारे यहाँ, पॉजिटिव ही वेल एंड गुड इन्वायरमेंट भी है, और जॉब फैकल्टी प्लेसमेंट वगैरह जितने भी डाउट है, जितने भी जो डाउट सेशन है वो भी आपके यहाँ हमारे यहाँ क्लियर हो जाएंगे ओरिएंटेशन लेवल पे।
0: बाप रे बाप, जो करियर के बारे में सोचते हैं, कितना एनालिसिस करते हैं, सुन रहे हैं बिहार वालों, युवा साथियों जो घर बैठे हैं अभी तक ये सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। देखिए गांव का लड़का कितना ज्यादा सोच रहा है, कितना विश्लेषण कर रहा है कि करियर को कैसे सजाया जा सकता है, एग्रीकल्चर पढ़ के खेती के साथ साथ साइड बिजनेस क्या कर सकता है, नौकरी कर सकता है। और GNSU जैसे संस्थान से उसे क्या मिलेगा टीचर।

0: इसका नाम भी लिया उसने, माय गॉड यही फ्यूचर है हमारा। जी हाँ, हमें गर्व है अपने अपने अपने भविष्य पर कि निश्चित रूप से ये लोग इतना सोच रहे हैं कि हमें आगे क्या करना है। बहरहाल बुनियाद कार्यक्रम में हम टेक्निकल पढ़ाई के बारे में बताते हैं और आज भी बता रहे थे, युवा साथियों से बात करवा रहे थे जो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर का करियर बहुत ही वाइब्रेंट है, उसका चुनाव करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल चलने का वक्त हो रहा है। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम की तरफ से ये हम कार्यक्रम आपके लिए हर सोमवार को लेकर आते हैं और आएंगे भी, क्योंकि हमें अपने भविष्य की चिंता है। नोट करें, अगर कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। 9431899002 9431899002 और 1800120051। तो आज के लिए राजेश को दीजिए इजाजत। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम हमें लेकर आने का मौका दिया। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म याराना के गाने। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी के तहत आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। विषय है खट्टी डकार भी बीमारी का लक्षण। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर अविनाश कुमार झा और भेंट करता है संजीव कुमार लाल।

मित्रों नमस्कार। मित्रों जब हम भोजन करते हैं तो डकार भी लेते हैं, और जब खट्टी डकार आती है तो इसको हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए।

0: हो सकता है कुछ बीमारियों का संकेत दे रहा हो। जब हम खाना खाते हैं तो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि खाना हमें पेट तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो क्या कारण है, और जब डकारे आ रही हैं, जो आपका भोजन है ऐसा लगता है कि वो मुंह तक आ रहा है, तो इसका कारण क्या है, उपचार कैसे करें, सावधानियां अपने जीवन में किन किन बातों का रखें, और इसका लक्षण क्या है कि कौन सी बीमारियों को ये बताने जा रहा है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं लैप्रोस्कोपी एवं गैस्ट्रोसर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार झा। डॉक्टर साहब स्वागत है।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब। खाना खाने के बाद खट्टी ढकारें आना किस बात का संकेत देता है?
1: आज के दिन में अक्सर हम मरीज हमारे पास आते हैं और ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें अनपथ सा लगता है, खाना जैसे लगता है कि वापस मुंह में आ रहा है, खट्टी डकार आती है, सीने में जलन होता है, सीने में दर्द होता है। इसे साइंटिफिक टर्म में GERD GERD GERD या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। नॉर्मल जो हम लोग खाना खाते हैं ये हमारे मुँह के बाद एक नली के रास्ते हमारे स्टमक में जाती है। इस नली को हम इसोफेगस कहते हैं, और स्टमक में पहुंचने के बाद वो खाने छोटे छोटे टुकड़े में टूटते हैं, उसके बाद वो खाना छोटी नली में जाता है, तत्पश्चात वो हमारी बनी आंत में जाता है, और आंत के रास्ते बाद वो मल के रास्ते बाहर आता है। जब खाना हमारे स्टमक में पहुंचने के बाद आगे ना जाकर वापस हमारे खाने की नली यानी कि ऊपर वाले नली में आए, जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, ऐसे कंडीशन को GERD कहा जाता है। इसके कई सारे कारण होते हैं। जब ये खाना जो हमारे इसोफेगस से स्टमक में पहुंचता है तो दोनों जहां मिलते हैं वहां पर एक वाल्व होता है जिसे हम लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर कहते हैं। कई मर्तबा ऐसा होता है कि वहां का प्रेशर इतना कम हो जाता है कि स्टमक का प्रेशर बढ़ा रहता है और खाना ऊपर आ जाता है। जैसे कि आज की ज़िंदगी में लोगों को स्मोकिंग की आदत, शराब पीने की आदत, कॉफ़ी चाय पीने की आदत है, ये सब चीज़ें हमारे स्फिंक्टर वाल्व को कमज़ोर करती हैं, जिसके कारण होता है कि कभी भी हमारा प्रेशर अगर पेट के अंदर बढ़ता है तो वो खाना आगे ना जाकर वापस इसोफेगस में आ जाता है, तब GERD की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा कारण होता है कि स्टमक जो है वो वहाँ एसिड बनता है, मेनली वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये हमारे फूड के जो भी हम भोजन खाते हैं उसको पचाने में काफ़ी सहायक होता है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि ये एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि शराब पीने से, सिगरेट का सेवन करने से। कई बार लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, कहीं शरीर में दर्द हुआ, बुखार हुआ, तुरंत वो दवा खाते हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें एसिड का ज़्यादा बनना होता है। जैसे कि एक रेयर बीमारी है जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम या गैस्ट्रिनोमा, ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें एसिड का प्रोडक्शन या बनना ज़्यादा होता है। तीसरे चीज़ होती है कि जो पेट का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, जैसे कि ओबेसिटी मोटापे के कारण, प्रेगनेंसी के कारण, या हम कहें कि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, कहीं भी हम पार्टी में गए या कहीं भी किसी फंक्शन में गए तो खाना बहुत ज़्यादा खा लिया, वैसे कंडीशन में पेट का प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है और वो खाना वापस इसोफेगस में आने लगता है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि खाना आगे नहीं जाता है, पेट में वो मूवमेंट नहीं हो पाता है। जैसे कि आम जिंदगी में कहें हम डायबिटीज़ पेशेंट में अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो स्टमक का मूवमेंट नहीं होता है, उसे हम गैस्ट्रोपेरेसिस कहते हैं, जिसमें कि खाना आगे ना जाता है, खाना स्टमक में ही जमा रहता है। ऐसे

0: का हिस्सा खींच के ऊपर चला जाता है और उसे हम हाइटस हर्निया कहते हैं। तो स्टमक का जो भी कंटेंट होता है, पेट का जो भी कंटेंट होता है, फूड पार्टिकल्स, वो इसोफेगस में आ जाता है और हार्ट बर्न की शिकायत होती है, खाना बार बार मुंह में आता है।
1: तो ये जब बीमारियां आपके शरीर में उत्पन्न हो जाती है तो फिर क्या क्या लक्षण दिखने लग जाते हैं, हम सावधान हो जाएं और उपचार शुरू कर दें?
0: सही कहा आपने, मोस्ट कॉमन जो लक्षण होता है वो मरीज ये शिकायत लेके आते हैं कि सर हमारे सीने में काफ़ी जलन, हमेशा जलन जैसा रहता है, कहेंगे कि खाना खा लिया, जैसे लेटने जाते हैं लगता है खाना वापस मुंह में आ गया। ये स्पेशली खाना खाने के बाद या लेटते वक्त उत्पन्न होता है। दूसरा होता है कि सीने में दर्द होना, कहेंगे वो बताएंगे कि सीने के बीच में दर्द होता है। कई बार ये लक्षण हार्ट की जो बीमारी होती है, हृदयाघात का भी होता है, कई बार होता है कि वो बोलेंगे कि हम जो खाना खाते हैं, खाना निगलने में उन्हें काफ़ी दर्द होता है या तकलीफ़ होती है। कई बार उन्हें बिना दर्द के ही खाना जाता है लेकिन तकलीफ़ होती है, और कई बार उसके साथ साथ दर्द भी होता है। इसे हम डिसफेजिया या ऑर्डिनोफेजिया कहते हैं। अगर लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं तो पेट का, जैसा मैंने कहा कि वो एसिड बनता है स्टमक में, वो बार बार अगर इसोफेगस में आए तो वो अल्सर बना देता है। अल्सर के कारण खून का प्रसाव होता है और मरीज कई दिनों बाद ये कह के आते हैं कि सर हमें बहुत हमेशा कमजोरी लगती है, हमारे शरीर में जान नहीं लगता, हम ज़्यादा चल भी नहीं सकते, हमेशा तकलीफ़ रहती है। और आगे चल के 10 साल 15 साल बाद अगर लोग अब इसका प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, एहतियात नहीं बरतते हैं और इसको नज़रअंदाज करते हैं तो ये कैंसर का भी रूप ले सकता है।
1: कैसे इसका उपचार किया जाता है, कौन कौन से जाँचें की जाती है और मरीज कितना प्रतिशत ठीक हो जाता है, क्या मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है या उसे बहुत सारी सावधानियां अपने जीवन में रखनी
0: पड़ती हैं? आपने बिल्कुल सही जवाब कहा। जांच मुख्यतः जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होता है एंडोस्कोपी, ये रूटीन प्रोसेस है, इसमें हम एक दूरबीन का रास्ते पाचन क्रिया को हम देखते हैं, पाचन के लिए ये जो इसोफेगस होता है उसे देखा जाता है। ये डे केयर प्रोसेस है, आप जाके दो घंटे में सारा जाँच करा के आ सकते हैं। बार बार अगर मरीज ये कहते हैं कि हमारे सीने में जलन हो रहा है तो ये देखा जाता है कि ये स्टमक का जो एसिड है वो कितनी मर्तबा आता है आपके इसोफेगस में। इसके लिए हम 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग करते हैं, कोई एसिड कितना स्ट्रांग है या कितने देर तक वो एक्सपोज होता है, इसको हम साइंटिफिकली मेजर करते हैं पीएच से। हमारे स्टमक के अंदर जो पीएच है वो होता है 3 to 5, 3 से 5 के बीच में होता है, और हमारे इसोफेगस का जो पीएच होता है वो इनसे ज़्यादा होता है। जब बार बार गैस्ट्रिक जूस हमारे इसोफेगस में आता है तो इसको हम पीएच मॉनिटरिंग से देखते हैं कि इसमें पीएच कितना चेंज हो रहा है, और ये पीएच आमतौर 2 से 4 के बीच में पाया जाता है इस बीमारी में। तो इससे हम 100% श्योर हो जाते हैं कि मरीज को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, तब हम उन्हें बताते हैं कि आपका इलाज कैसे कैसे हो सकता है और आपके लिए बेहतर इलाज क्या है। अगर मरीज को लक्षण बहुत कम है, प्रायः ये जो रिफ्लक्स डिजीज़ है मरीज की डाइट लाइफस्टाइल से पर निर्भर करता है। आज के समय में लोग अक्सर लोग स्मोकिंग, शराब का सेवन करना, कहीं पर भी खाने पे कंट्रोल नहीं होना, मसाला ज़्यादा यूज करना, ये सब करते हैं। तो हम मरीज को पहले समझाते हैं कि आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की आवश्यकता है, आपको इन चीज़ों को, बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो सिंपल एंटासिड्स या दवा होती है गैस की वो देते हैं और उनको 15 दिन पे हम बुलाते हैं देखने के लिए कि ये सब चेंज करने के बाद उनमें कितना बदलाव आया है। जो मरीज शुरुआती लक्षण में ही डॉक्टर से संपर्क करते हैं वो प्रायः ठीक हो जाते हैं। फिर इस बात का देखना पड़ता है कि मरीज जैसे कि मोटापे से ग्रसित है या और कोई बीमारी उनको है, डायबिटीज़ है, कब्जियत की शिकायत है, तो हम उनको इनके साथ साथ जो एसोसिएटेड बीमारी हो उसको भी ठीक करने की का परामर्श देते हैं कि सिर्फ दवा खाने से ये नहीं होगा, जिस जो रूट कॉज है इसका, जो बीमारी का कारण है, उसे भी ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ये होती है। सर्जरी की ज़रूरत बहुत कम मरीजों में होती है, जैसा कि मैंने कहा कि हाइटल हर्निया किसी को अगर होता है, ऐसे मरीजों को ही हम सर्जरी का सुझाव देते हैं, नहीं तो मरीज जो है सो दवा से और अपने लाइफस्टाइल चेंज करने से ही ठीक हो सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब क्या कहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को, जो बदलती जीवन शैली है, जो बिगड़ता खान पान है और खाते जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे खान पान में किन किन चीज़ों का समावेश करें और संतुलित भोजन का सेवन करें ताकि आप स्वस्थ रहें और इस तरह की बीमारियां हैं आप तक नहीं पहुंचे।
0: बीमारी को समझने के लिए या तो आपका जागरूक होना ज़रूरी है या बीमारी को ठीक होने के लिए भी आपको जागरूक होना ज़रूरी है। किसी भी बीमारी का इलाज उसके रूट कॉज में ही है। अगर हम उस कॉज

0: कारण को दूर करते हैं तो हम बीमारी को भी अपने से दूर कर रहे हैं। आज के समय में आपका लाइफस्टाइल, खान पान का शैली, इसे अगर आप सुधारते हैं, सिगरेट पीना, शराब का सेवन करना, ज़्यादा पेन किलर खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, इन चीज़ों पर आप कंट्रोल करते हैं, तेल मसाला का सेवन कम करना और एक बार में खूब नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा खाएं, दो तीन घंटे के अंतराल पर खाएं, जिस हिसाब से आप खाते हैं उस हिसाब से आपका फिजिकल एक्टिविटी भी हो, आप व्यायाम करें, इन चीज़ों पर अगर ध्यान दें तो आप बेहतर हो सकते हैं।
1: तो मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, संतुलित आहार जब आप खाएंगे तो आप खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, और आप जब खुश रहेंगे तो पूरा परिवार आपका खुशहाल रहेगा और एक स्वस्थ समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अविनाश कुमार झा, लेप्रोस्कोपी एवं गैस्ट्रो सर्जन, आज आप इस कार्यक्रम में। और मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, कल एक फिर नई जानकारी के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार और आज का दिन आपका शुभ एवं मंगलमय हो।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी और इसके तहत भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर अविनाश कुमार झा रांची से, भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल, विषय था खट्टी डकार भी बीमारी का लक्षण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। सर्वप्रथम अपने तमाम श्रोताओं को हम हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और अब प्रस्तुत है हिंदी दिवस के अवसर पर विशेष काव्य गोष्ठी। प्रतिभागी हैं अवकाश प्राप्त प्राचार्य उत्कृष्ट बालिका उच्च विद्यालय गढ़वा से डॉक्टर नसीम रियाजी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी की सहायक प्रवक्ता गढ़वा डॉक्टर भारती सिंह और पलामू से मोहम्मद नसीम रियाजी। संचालन करता हैं प्रतिमा वर्मा, प्रस्तुति सहयोग संतोष कुमार, संयोजनकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता हैं प्रशांत गौरव। आइए सुनते हैं हिंदी दिवस के अवसर पर यह विशेष काव्य गोष्ठी।

श्रोताओं, हिंदी दिवस के अवसर पर प्रस्तुत है विशेष कवि गोष्ठी। कार्यक्रम संचालन करता है प्रतिमा वर्मा, प्रस्तुति सहयोग संतोष कुमार की, कार्यक्रम संयोजन करता एवं प्रस्तुत करता है प्रशांत गौरव।

0: आप तमाम साहित्य प्रेमियों, प्रबुद्ध साहित्यकारों एवं श्रोता मित्रों को प्रतिमा वर्मा का सप्रेम नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, कवि गोष्ठी की उजाला लेकर हम आप सबों के बीच उपस्थित हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। श्रोताओं, हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदी साहित्य की साझी विरासत और परंपरा को रेखांकित करना है एवं आपको हिंदी के करीब लाना है। पूरे विश्व में हिंदी अकेली ऐसी भाषा है जो सदियों से अपने समय से संचालित, प्रेरित एवं अनुशासित होती रही है और इसलिए हिंदी साहित्य पर अपने युग विशेष की अमिट छाप मौजूद होती है। श्रोताओं, भारत विश्व का सातवां बड़ा देश होने के नाते शेष एशिया से अलग है। इसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की है। उत्तर में बृहद पर्वत श्रृंखला हिमालय, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमा निर्धारित करते हैं और इस भारत की सदियों पुरानी जुबान का नाम हिंदी है। अतः हमारी भाषा हिंदी अनहद है, अहर्निश है और लोकधर्मिता की भाषा है। इसे समूचा विश्व आज पढ़ता है। मत भुलाना तुम मुझे भाषाओं के नुमाइश घर में, मत भुलाना तुम मुझे भाषाओं के नुमाइश घर में, हर पपीहा जहां हिंदी का पता देता है। आइए आज की इस अपनी साहित्यिक यात्रा का सफर तय करने से पहले हमारे स्टूडियो में आयोजित कवि गोष्ठी के प्रस्तुतकर्ता प्रशांत गौरव।
1: स्वीकार करें प्रशांत गौरव का नमस्कार। श्रोताओं, साहित्य का आधार जीवन है और भारतीय हिंदी साहित्य का आदर्श उसका उत्सर्ग है। किसी भी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसके साहित्यिक आदर्श होते हैं। हमारे जीवन से साहित्य को पृथक नहीं किया जा सकता। अतः हमारा कर्तव्य है कि हिंदी साहित्य की गरिमा और उसकी मर्यादा का पालन करें। कार्यक्रम कवि गोष्ठी में आज हमारे स्टूडियो में पलामू एवं गढ़वा जिले के कविगण पधारे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आएगा। धन्यवाद।
0: श्रोताओं, काव्य, कविता या पद्य हिंदी साहित्य की वह विधा है जिसमें मनोभावों को कलात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है। कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंद की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। साहित्य दर्पणाकार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस की अनुभूति करा देने वाली वाणी काव्य है। श्रोताओं, कविता हमारे मनोभावों को उच्छ्वासित कर हमारे जीवन में एक नया बीज डाल देती है। कविता एक ऐसी भागीरथी है जिसकी अमृत धारा में अवगाहन कर संसार का समस्त ताप मिट जाता है। श्रोता मित्रों, हिंदी दिवस के पावन अवसर पर साहित्य एवं कविता को तीर्थ कराने के लिए पलामू एवं गढ़वा जिले से कविगण आज हमारे स्टूडियो में पधारे हुए हैं। हम इनकी पावन उपस्थिति का विशेष सम्मान करते हैं और अब आज की इस काव्य गोष्ठी का शिखर कलश आपके बीच रखते हुए सर्वप्रथम शगुन के तौर पर एक ऐसे कलमकार, एक ऐसे साहित्यकार को हम आमंत्रित करते हैं जो सहजता के साथ हिंदी एवं उर्दू दोनों ही भाषाओं में अपनी कविता की प्रस्तुति करते हैं, आनंद बांटते हैं। आप हैं गढ़वा जिला के मशहूर शायर एवं कवि तथा उत्कृष्ट बालिका उच्च विद्यालय के अवकाश प्राप्त प्राचार्य डॉक्टर रियाज अहमद।
2: दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपने कई बड़े मुशायरों का संचालन एवं कवि सम्मेलनों में भाग लेकर अदबी दुनिया का नाम रोशन किया है। आपकी अगवानी में चार पंक्तियाँ आपको समर्पित करती हूँ। अपनी जिंदगी जो औरों के नाम करता है, अपनी जिंदगी जो औरों के नाम करता है, उसे ही सारा जहाँ एहतराम करता है। किसी की प्यास बुझाने में बुझ गई जो खुद, उसी एक बूंद को सागर भी सलाम करता है। डॉक्टर रियाज अहमद, अपनी रचनाओं के साथ
2: तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: स्वागत।
2: कि हिंदुस्तानी अवाम के नाम मैं एक गजल पेश कर दूं। हिंदुस्तानी अवाम के नाम हिंदी का पैगाम, हिंदी साहित्य का पैगाम मैं पेश कर रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ।
0: स्वागत।
2: कि खुशी की बज़्म सजा ओ बहार आएगी, खुशी

0: आएगी। नजर झुकाओ न मुंह मोड़ कर सलाम करो।
1: आजकल थोड़ी सी बात होती है तो लोग नजर झुका के चले जाते हैं।
0: नजर

0: मायूस इस जमाने से।
1: वाह वाह।
0: रियाज तुम न हो मायूस इस जमाने से, खुदा।

0: बहार आएगी।
1: वाह, बहुत खूब। श्रोता मित्रों, हिंदी दिवस की तर्ज पर आधारित आज के इस विशेष कवि गोष्ठी के सफर में अब आइए हम एक ऐसी कवित्री को आमंत्रित करते हैं, एक ऐसी प्रांजल स्वर को आमंत्रित करते हैं जो अपने शब्दों से, शब्दों के नुकीलेपन से पहचानी जाती है। आप गढ़वा जिले से हमारे बीच पधारी हैं। वर्तमान में आप नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालय के हिंदी विभाग की सहायक प्राध्यापिका हैं। आप हैं आज के इस कार्यक्रम की आबरू, डॉक्टर भारती सिंह।
2: बहुत शुक्रिया।
1: श्रोता मित्रों, जब कविता खुद कविता पढ़े तो वो नाम भारती सिंह का ही हो सकता है। इन्होंने अपने साहित्यिक सफर में कई कविताएं रच डाली, अनगिनत कवि सम्मेलनों में एक मुख्य हिस्सा बनी। आपकी अगुवानी में चार पंक्तियां आपको समर्पित करने का निवेदन चाहती हूं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
1: ख्वाबों का शर्माया आंखें, आंखों का शर्माया ख्वाब। ख्वाबों का शर्माया आंखें, आंखों का शर्माया ख्वाब। किन आंखों में आना तय था, किन आंखों में आया ख्वाब। एक वहम तो यह भी है कि तुम ही एक हकीकत हो, एक वहम तो यह भी है कि तुम ही एक हकीकत हो, एक हकीकत यह भी है कि सबने तुम्हें बताया ख्वाब।
2: बहुत शुक्रिया सरिता।
1: डॉक्टर भारती सिंह, अब आपके साथ।
2: जो मुझे बहुत प्रिय रही और बहुत सहज लगी, मैं उसी कविता का यहाँ पाठ कर रही हूँ।
1: स्वागत।
2: कविता का शीर्षक है बारिश। मौसम भी है, माहौल भी है, स्थिति भी है। अब बारिश नहीं आती मिलने, अब बारिश नहीं आती मिलने, अब वो इंतजार में तकसीम हो गई है। आंखें टकटकी लगाए बादलों से गुहार लगाती हैं, और जैसे वह भी रूठ गए हो। आंखें टकटकी लगाए बादलों से गुहार लगाती हैं, और जैसे वह भी रूठ गए हो। प्यासी धरती, प्यासी फसलें, हल्के पैनों पर बारिश को फिसलते देखा है, और धरती ने भर अंजुरी भीतर पसरी प्यास को अमृत पान कराया हो। जैसे किसान के आंखों का भाव पिता साहो उठता है, किसान के आंखों का भाव पिता साहो उठता है, वह विवल हो पैनों पर बूंदों को भर लेना चाहता है। जैसे कि अभी हमने देखा भी होगा कि पिछले कुछ महीने से बारिश नहीं थी अपने मौसम के अनुरूप, और खेतीहर लोग और किसान जिस तरीके से विचलित थे, जो फिलहाल कुछ दिनों से बारिश जब हो रही है तो एक उम्मीद जगी है कि चलो फसलें बच जाएंगी। खासतौर से ये जो पंक्तियाँ हैं वो हमें उसको संदर्भित करती हैं कि किसान के आँखों का भाव पिता सा हो उठता है, वह विवल हो पैनों पर बूंदों को भर लेना चाहता है। कहता है गांव का बूढ़ा पीपल, आती थी जब मेघ की बेटियाँ अपने पीहर। कहता है गांव का बूढ़ा पीपल, आती थी जब मेघ की बेटियाँ अपने पीहर। सारा गाँव उत्सव मनाता, बारिश की अटकेलियों को ओढ़ मुंडेरों से सरकती बूंदों को बच्चे अपने नन्ही हथेलियों में ओढ़ लेते, और चेहरे पर दो स्वप्नों की खेती को सींच लेते। खेती से मतलब है दो स्वप्नों से जो उनकी आंखों में है, जो पलते। बारिश अपने लिए नहीं आती, वह आती है रेत के लिए, घास की फुनगियों पर अपनी बूंदों को तौलती हुई। बत्तियों के कंठ को तर करती, बारह सिंहा के सिंहों पर मचलती हुई खिलखिलाती थी। इंद्रधनुष को गले लगाकर मोर के पंखों पर न्यौछावर होती, और उसे प्यार है फूलों से तो फिर वह मित्रता रखती है नागफनी के कांटों से भी। बारिश किसी के साथ दो तरफा व्यवहार नहीं करती, वो कांटों पे भी बरसती है, वो पत्तियों पे भी पशु पक्षियों को भी तर करती है। मोर के पंखों पर न्यौछावर होती है, उसे प्यार है फूलों से तो फिर वह मित्रता रखती है नागफनी के कांटों से भी। उसके भीतर उतर कर दूध का रंगत पाती, गिलहरियों की आंखों में चमक बनती है, क्योंकि उसके प्यास के पात्रों तक पहुंचती है। बारिश अब पीहर नहीं आती। शुक्रिया आप सभी का।
1: धन्यवाद। हिंदी दिवस पर आधारित आज के इस कवि सम्मेलन को पुष्पित करते हुए हम अब अलौकिक होते हैं पलामू जिला की मिट्टी से प्रेरित एक ऐसे कलमकार जिनके एक एक शब्द किसी कलाकार की तरह थिरकते हैं, एक एक बोल भावनाओं के सागर की तरह बहते हैं। कवि सम्मेलनों की कामयाबी का हिस्सा बनते हैं आप। आप हैं मोहम्मद नसीम रियाजी। शायर मोहम्मद नसीम रियाजी साहब,
3: शुक्रिया।
1: स्वागत। बहुत बहुत

0: जो हमारी मोहब्बत के दुश्मन रहे उनसे की दोस्ती आपने आपने
1: क्या बात है,
0: बख्श दी रोशनी आपने।
1: शेर में तो भाई नसीम साहब आपने कलेजा निकाल के रख दिया है, क्या बात।
0: शुक्रिया।

0: बख्शी शायरी आपने आपने आपने आपने। और मक्ता सुन लें,
1: इनायत होता हो भाई।

0: मुझको पहचान दी आपने,
1: रियाज़े से रियाज़ी है इसलिए शायर आपका दुरुस्त है। क्या
0: पहचान दी
1: वाह वाह वाह वाह
0: आपने,
1: वाह वाह, क्या बात।
0: तेरी दूर की आपने आपने।
1: क्या बात है,
0: शुक्रिया,
1: क्या बात।
2: बहुत धन्यवाद। श्रोता मित्रों, कविता हिंदी साहित्य की पद्य लेखन विधा है। साहित्य दर्पण में महादेवी वर्मा ने कविता का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। जयशंकर प्रसाद ने सत्य की अनुभूति को ही कविता माना है। वास्तव में कविता आत्मा का मौलिक एवं विशिष्ट सबगीत है जो मानव में संस्कार रोपती है। श्रोताओं, आज हिंदी दिवस के पावन अवसर पर चंद पंक्तियां आपको भेंट करने की अनुमति चाहती हूँ। संस्कृत से संस्कृति से शोभित ये हिंदी की पहचान है भारत की शान। संस्कृत से संस्कृति से शोभित ये हिंदी की पहचान है भारत की शान। अवधपुरी में रघुनंदन की अवधी बोली हिंदी, ब्रजमंडल में कान्हा के स्वर की बोली भी हिंदी, बुंदेलों के स्वर में शामिल होकर रौब दिखाती हिंदी, काशी जाकर घाट घाट पर करे ठिठोली हिंदी, ये हिंदी की पहचान है भारत की शान। ऋषि मुनियों वेद पुराणों की भाषा का भान, हिंदी ही तो अपनापन है, यही एकता का दर्पण है, ये हिंदी की पहचान है भारत की शान।
1: क्या
0: शुक्रिया,
1: बात, बहुत उम्दा।
2: जी हाँ श्रोताओं, अब आइए कार्यक्रम को पल्लवित करते हुए हम पुनः आमंत्रित करते हैं रचनाकार डॉक्टर रियाज अहमद जी को। इन्हें सुनिए और डूब कर सुनिए, रुक कर सुनिए, मन मिलाइए तो मन जुड़ जाएगा, अन्यथा ये है पखेरु बोलियां बोलकर उड़ जाएंगे। डॉक्टर रियाज अहमद अपनी रचनाओं के साथ।
1: हिंदी ने समाज को क्या दिया, इसमें क्या अहमियत है इसकी, इन तमाम चीजों पर मैंने 5 शेर कहा है और ये 5 शेर मैं पढ़ रहा हूँ।
2: स्वागत।
1: सबके दिलों में प्यार जगाया हिंदी ने। बहन डॉक्टर भारती बहन, सबके दिलों में प्यार जगाया हिंदी ने। हिंदी उर्दू दोनों सगी बहने हैं
3: जी, बिल्कुल।
1: उर्दू के अशार हैं लेकिन हिंदी का नाम है, चूंकि ये मिक्सचर हो गया कि सब

हिंदी ने बेअदबों को राह पे लाया, हिंदी ने बेअदबों को राह पे लाया, हिंदी ने बेअदबों को अदब सिखाया, हिंदी ने बेअदबों को अदब सिखाया, हिंदी ने। और ये दूसरा शेर है, मुझको सच्चा राह दिखाया हिंदी ने, अरे मुझको सच

और बेअदबों को अदब सिखाया हिंदी ने, बेअदबों को अदब सिखाया हिंदी ने। और ये मक्ते का शेर है कि जो रखते हैं इंसानों से हसद रियाज, हसद जलन को कहते हैं, जो

0: सबको उल्फत का पैगाम दिलाया हिंदी ने। धन्यवाद
1: धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
2: रियाज सर ने समा बांध दिया।
1: श्रोता मित्रों, आज की शाम हम अलौकिक हो रहे हैं रचनाकारों की कृतियों से, और अब आइए हिंदी दिवस पर आधारित आज के इस काव्य रथ को गति देते हुए एक बार फिर से हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर भारती सिंह जी को।
2: एक छोटी सी है रचना मेरी, तुम आना तो कुछ ऐसे आना, शीर्षक ही है इसका। तुम आना तो कुछ ऐसे आना, जब बहुत गहरा अंधेरा हो तब मेरी देहरी पर एक जुगनू रखाना। जब बहुत गहरा अंधेरा हो तब मेरी देहरी पर एक जुगनू रख आना। जब ख़त्म हो दुनिया की नियामतें और सूख जाए रिश्तों का चनाव, कयामत की बिखरी सैलाब में मेरी यादों की एक कश्ती उतार लाना।
1: वाह वाह
3: वाह वाह वाह वाह,
4: बहुत अच्छे।
2: तुम आना तो कुछ ऐसे आना, न हिज्र थी न सब्र था। बहुत शुक्रिया सर। तुम आना तो कुछ ऐसे आना, न हिज्र थी न सब्र था, जो साथ था तो बस वसल था। तुम सब एक उधार लाना, तुम आना तो कुछ ऐसे आना, रकीबों को मना आना, हबीबों से तुम मिल।

0: आना, रकीबों को मना आना, हबीबों से तुम मिल आना, न फिक्र हो अजियतों का, संग अपने तुम खुदा को ले आना, तुम आना तो कुछ ऐसे आना, न अदावतें हो न बगावतें हो साथ अपने तो हिदायतें ही, न तंगी थी न तंगहाल हम, फिर भी थे कुछ परेशान से हम, तुम साथ रियायतें ले आना, तुम आना तो कुछ ऐसे आना, न खिजा जवान न खिजा का रंग, न बहारे गुल न दरख्ते छां, लिहाज था तो बस गम का था, तुम साथ दुआएं ले आना, तुम आना तो कुछ ऐसे आना, तुम आना तो कुछ ऐसे आना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर।
1: श्रोताओं, गीत साहित्य की एक लोकप्रिय विधा है जिसमें एक मुखड़ा और कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतरे के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है, गीत को गाया भी जाता है। अपनी रचना के साथ एक बार फिर आपके बीच हैं मोहम्मद नसीम रियाजी।
2: हिंदी दिवस के मौके पर एक गज़ल लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस गज़ल की खास खूबी या विशेषता कही है कि इसके तमाम जो काफिया जो हैं वो हिंदी शब्द के हैं, और ये गज़ल भी हिंदी, आप कह सकते हैं हिंदी गज़ल इसको कह सकते हैं आप। वजह यह है कि हिंदी और उर्दू ये तो दोनों अपनी सगी बहन हैं, बड़ी बहन हिंदी, तो दोनों जब मिल करके जब एक जगह हम लोग बात करते हैं दोनों शब्दों को, दोनों भाषाओं को मिला करके, तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। और ये इसी मद्देनज़र रख करके हमने
3: इनायत हो
2: तो गजल का मतलब पहले आप सुन लें।
1: स्वागत।
2: दाग है कितने दामन में,
3: वाह वाह वाह वाह,
2: और

0: क्या बात है मेरे भाई भाई, क्या बात है।
1: रिम झिम रिम झिम,
0: इस उम्र में इतनी चाशनी है आपके जबान में।
1: शुक्रिया
0: कि हम लोग दोबारा सुने। वाह वाह।
1: और ये शेर जो सुनाने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा इससे हट करके है।

0: और देख ले मन के दर्पण में।
1: स्वागत श्रोताओं, अपनी रचना के साथ एक बार फिर आपके बीच है डॉक्टर रियाज अहमद। शुक्रिया सर।
2: तो मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ, पहले एक दो शेर पेश करता हूँ कि हिंदी जो है जबान वो प्यारी जबान है। देशक, देशक।

गुलिस्तान है। अब मैं चार पांच शेर जो है आपको पेश कर रहा हूँ। हिंदी का वकार, हिंदी का महत्व किस कदर है, उसके बारे में मैंने लिखा है। किस दर्जा पुर वकार है हिंदी की रोशनी, हिंदी की रोशनी किस

की रोशनी। और ये दूसरा शेर जो है बहुत मार्केबल शेर है कि गीता का दर्स मिलता है कुरान का सबक। गीता

रोशनी तालीम का मेयार है हिंदी की रोशनी, हिंदी की रोशनी। और ये शेर, ज्योतिष नगाने इल्म को सैराब कर सके, ज्योति

0: धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अपनी रचना के साथ एक बार फिर आपके बीच है मोहम्मद नसीम रियाजी।
1: गजल छोटी बहर की है, मतला समाज कर ले। अरे चाहे जो भी सजा दीजिए,
2: वाह वाह वाह,

0: दीजिए। और ये शेर राजभाई
1: जी अनायत हो।
0: तिरगी तिरगी अंधेरा डार्कनेस, तिरगी दूर हो जाएगी,
1: यकीनन
0: तिरगी दूर हो जाएगी।

0: खुद से मायूस हूँ क्या करूँ, खुद से मायूस हूँ क्या करूँ, मुझको जीना सिखा दीजिए।
1: 70 साल के बाद
0: मुझको जीना सिखा दीजिए,
1: दीजिए
0: क्या खता है। और ये शेर

हिंदी दिवस की इस पावन बेला में आप सभी रचनाकारों ने अपने सानिध्य से आज के इस कवि गोष्ठी को अलौकिक किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, नमस्कार और शुक्रिया सभी का। श्रोताओं, आज हिंदी दिवस की शुभ बेला में आप सुन रहे थे काव्य गोष्ठी। आज के इस कवि गोष्ठी में हमारी कोशिश थी हिंदी साहित्य का हमारे जीवन से संबंध एवं उसके सौंदर्य को आप तक पहुंचाने की। इसी के साथ हमारा आज का ये काव्य गोष्ठी संपन्न होता है। दीजिए हमें कार्यक्रम से आज्ञा, नमस्कार।

0: संचालन करता थी प्रतिमा वर्मा, प्रस्तुति सहयोग संतोष कुमार की, कार्यक्रम के संयोजनकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता थे प्रशांत गौरव।
1: श्रोताओं, हिंदी दिवस के अवसर पर विशेष काव्य गोष्ठी का प्रसारण अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब मैं प्रस्तुत करती हूँ आप सभी के लिए हिंदी दिवस पर अपनी कुछ भावनाएं। शर्म नहीं संस्कार है हिंदी, अपमान नहीं सम्मान है हिंदी, प्यार की भाषा है हिंदी, मनुहार की भाषा है हिंदी, एकता का आधार है हिंदी, व्यवहार और संस्कार है हिंदी, शक्ति है हिंदी, देशभक्ति है हिंदी, मन के भावों का उद्गार है हिंदी, तोतली बोली में बच्चों का मासूम सा प्यार है हिंदी, नन्हे अधरों से निकला वह पहला शब्द माँ है हिंदी, प्रेम की पहली स्वीकारोक्ति हाँ है हिंदी, दिल से दिल को जोड़ने वाली स्नेहिल तार है हिंदी, इनकार भी है हिंदी, इकरार भी है हिंदी, तकरार भी है हिंदी, प्रतिकार भी है हिंदी, दोस्ती का पैगाम है हिंदी, भारतीयता की पहचान है हिंदी, परदेश में भी आत्मा की पुकार है हिंदी, दूर रहकर भी अपनेपन का मीठा एहसास है हिंदी, माँ की मीठी झिड़की है हिंदी, पिता की स्नेहिल फटकार है हिंदी, खास अपनों से संवाद की सबसे सहज भाषा है हिंदी, देश की प्रगति की आशा है हिंदी, राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की एक सशक्त अभिलाषा है हिंदी, माधुर्य है हिंदी, तात्पर्य है हिंदी, भावार्थ है हिंदी, शब्दार्थ है हिंदी, आकाशवाणी की मधुर आवाज है हिंदी, दूरदर्शन की सशक्त पहचान है हिंदी, जिस पर गौरवान्वित हो हम भारतीय का मन वह अपनी सबसे प्यारी मातृभाषा है हिंदी, हिंदी हमारा अभिमान है, हिंदी हमारा स्वाभिमान है, जिस पर करते हैं गर्व हम वह अपनी हिंदी महान है, मेरे हृदय के धड़कनों में, मेरी वाणी के स्पंदन में, मेरी अनुभूतियों के शब्दों में बसती है मेरी हिंदी। हिंदी केवल भाषा नहीं, हमारी पहचान है, हमारे संस्कारों की सुगंध, हमारे मन का मान है। आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज पर अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचारों का प्रसारण।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की, कहा भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। अमरीकी विश्लेषक ने कहा दिल्ली घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता को दर्शाता है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं, गहरे मतभेद हैं और विभिन्न देशों के विचारों तथा हितों में काफी टकराव है। इसके बावजूद हम ऐसे वक्तव्य पर सहमति बनाने में सफल रहे जिस पर सभी ने सहमति जताई। इस वक्तव्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, दीर्घकालिक आपसी समझ, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू प्रवाह, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति तथा नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का आह्वान किया गया है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद समूह में भारत के नेतृत्व की कई सदस्य देशों ने तारीफ की है। भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 2 दिन का सम्मेलन कल संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स में 11 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% हिस्सा हैं। ब्रिक्स देशों ने शनिवार को सम्मेलन में एकमत से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित दुनिया के नेता शामिल हुए। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत की अध्यक्षता की तारीफ की गई और सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार और लोगों की प्रशंसा की गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने बेहद सफल सम्मेलन आयोजित किया है। चीन की सरकारी मीडिया और नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को ग्लोबल साउथ देशों के बीच बेहतर गुणवत्ता के सहयोग और एकजुटता के लिए सकारात्मक कदम बताया। रूस ने ब्रिक्स सहयोगी देशों के साथ समावेशी विकास उन्मुखी साझेदारी के लिए मॉस्को के समर्पण की फिर से पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने भी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की तारीफ की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नई दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ की है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार

0: वो इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति को स्वीकृति दी गई है। एक रिपोर्ट।
1: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
4: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
5: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। आज राज्य के 10,245 वार्डों के लिए मतगणना हुई। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। भाजपा ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि अलवर में वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस को बहुमत मिला है और अजमेर तथा पाली में पार्टी आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन ने भारत और मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति प्रकट की। ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। परिषद ने कहा है कि सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाना मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परिषद ने आरिफ अब्बासी पर किसी भी आरोप को पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का आह्वान किया और कहा कि यदि उनकी हिरासत के लिए कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है तो उन्हें बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात ने मिस्टी योजना के अंतर्गत कच्छ में 27,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव पौधे लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण मंत्री ने जाखौ स्थित वैज्ञानिक नर्सरी का भी दौरा किया। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और चीता परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के लिए 33 निगरानी और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अब बात मौसम की। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
3: राज्य में भावनगर के वल्लभीपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि आनंद के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच वाहन चालकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में सीजन की औसत 80% बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण राज्य के 35 डैम हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर बारिश के कारण लंबे ब्रेक के बाद खरीफ की फसल को नया जीवन मिला है। मनोज सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी कल इसी तरह के मौसम की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से गणेशोत्सव पारंपरिक तरीके से मनाने और प्रदूषण कम से कम करने की अपील की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने प्रार्थना, आरती, भक्ति गीतों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया। मुंबई में लालबाग सराजा, गणेश गली, तेजुकाया और GSB जैसी मशहूर मूर्तियों के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस, रेलवे और बेस्ट ने खास इंतजाम किए हैं। कई जिलों में एक गांव एक गणपति पहल को अपनाया गया। इस साल शोर शराबे वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी कुदरत दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज़ एट 9.

0: सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के कामयाब इनेकाद की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत ने कायल करने की जबरदस्त सलाहियत का मुजाहरा किया है। आलमी रहनुमाओं ने भी तरक्की पजीर मुल्कों में इश्तराक को मुस्तहकम करने और आलमी खित्ते जुनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने पर ब्रिक्स सरबरा मीटिंग की सताइश की है। अमरीका में मुकीम तज्जिया निगार ने कहा है कि नई दिल्ली एलामिया इत्तेफाक राय पैदा करने की भारत की सलाहियत की अक्कासी करता है। भारत ने पनबिजली पैदा करने के बहरान के दौरान सैलाब से मुतासरा नेपाल को दिसंबर के आखिर तक 18 घंटे बिजली फराहम करने को मंजूरी दी है। इंसानी हकूक से मुतालिक पाकिस्तान की काउंसिल ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में तवील अरसे से जारी मुजाहिरों और बदमनी पर तशवीश का इजहार किया है। और गणेश चतुर्थी का त्यौहार मुल्क भर में अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबरा मीटिंग 2026 के कामयाब इख्तिताम की सताइश की। उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारत की मौसर सिफारतकारी और क़यादत का बखूबी मुशाहिदा किया, क्योंकि ज़्यादातर ममालिक के सरबराहान अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी के लिए मीटिंग में मौजूद थे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये समझना ज़रूरी है कि ब्रिक्स सरबरा मीटिंग ऐसे वक्त मुनक़िद हुई जब दुनिया में इख्तलाफात और ग्रुपबंदी मौजूद है। इसके अलावा दुनिया में दो बड़े तनाज़ात के साथ बड़े पैमाने पर इख्तलाफ राय और मफादात भी कारफरमा हैं। उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक अमन व सलामती, इस्तेहकाम, तवील मुद्दती बाहमी मफाहमत, आलमी तिजारत में आसानी, सप्लाई चेन तवानाई और शहरियों नीज सिविलियन बुनियादी ढांचे के तहफ्फुज़ के हवाले से एक मुश्तरका बयान पर इत्तेफाक करने में कामयाब रहे। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि मीटिंग में 32 वफूद शरीक हुए, जिनमें 11 रुकन ममालिक, 10 शराकत दार ममालिक, 4 इलाकाई तंजीमें और 7 बैनुल अक्वामी तंजीमें शामिल थीं। वजीर खारजा ने कहा कि ब्रिक्स ममालिक इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई एक मुजरिमाना अमल है। उन्होंने मजीद कहा कि ब्रिक्स ने वाज़ेह तौर पर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को नाकाबिल कबूल करार दिया। नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के कामयाब इनेकाद पर कई रुकन ममालिक ने भारत की ब्रिक्स क़यादत की तारीफ की है। भारत की सदारत में मुनक़िद हुई दो रोज़ा सरबरा मीटिंग गुज़श्ता रोज़ कौमी राजधानी में इख्तिताम पज़ीर हुई। इस दौरान हफ्ते के रोज़ ब्रिक्स ममालिक ने मुत्तफ़िका तौर पर नई दिल्ली एलामिया 2026 अपनाया। इस सरबरा मीटिंग में रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग समेत कई आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के दौरान जनूबी अफ्रीका, रूस, चीन, ब्राज़ील और मुत्तहिदा अरब इमारात ने ब्रिक्स में इश्तराक मुस्तहकम करने और आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने की भारत की कोशिशों का खैर मकदम किया। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने भारत की ब्रिक्स सदारत की तारीफ करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने कामयाब तरीके से सरबराह मीटिंग की मेज़बानी की और इत्तफाक राय पर पहुंचने से मुतालिक खदशात के बावजूद नई दिल्ली आलामिये पर रुकन ममालिक को आमादा करने पर कामयाब रहा। चीन के सरकारी मीडिया और क़यादत ने नई दिल्ली आलामिये को आलमी खित्ते जनूब के मुल्कों में आला दर्जे के इश्तराक और यकजहती से मुतालिक मुस्बत कदम करार दिया। रूस ने आलामिये पर मास्को के अज़्म को दोहराते हुए ब्रिक्स हलीफ मुल्कों के साथ शमूलियाती और तरक्की पर मरकूज साझेदारी के तई अहदबस्तगी का इजहार किया। अमरीका में मुकीम तज़िया निगार ने 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग की भारत की मेज़बानी को कामयाब करार देते हुए कहा कि नई दिल्ली आलामिये से मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल मुल्कों के दरमियान इत्तफाक राय कायम करने की नई दिल्ली की सलाहियत की अक्कासी होती है। न्यूज़ डेस्क से स्वाति की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा बुध के रोज़ नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 के 5वें एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। इस प्रोग्राम में 600 से ज़्यादा नुमाइशकार, 300 बैनुल अक़वामी कंपनियां और 40 से ज़्यादा ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। नुमाइश में 6 ममालिक के पवेलियन, 12 रियासती हुकूमतों के पवेलियन के अलावा एक खसूसी स्टार्टअप पवेलियन भी होगा। सेमिकॉन इंडिया भारत की सबसे अहम सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस और नुमाइश है, जिसका इनेकाद मुश्तरक तौर पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत और सेमी करते हैं। ये प्रोग्राम आलमी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इको निज़ाम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का अहम जरिया है, ताकि तआवुन, जिद्दत तराजी, मैन्युफैक्चरिंग, सरमायाकारी और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत तैयार करने को फ़रोग दिया जा सके। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में आला सतह के कलीदी खुतबे, पैनल मुबाहसे और हिकमत अमली से मुतालिक अहम इजलास होंगे। इनमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में उभरते हुए रुझानात और अहम मौजूआत, खसूसी तौर पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये प्रोग्राम भारतीय और बैनुल अक्वामी कंपनियों को कारोबारी शराकत दारी, सरमायाकारी के मौके, टेक्नोलॉजी में ताउन और सप्लाई चेन के रवाबित दरियाफ्त करने का अहम मौका फराहम करेगा। इससे भारत की हैसियत एक काबिल एतमाद आलमी सेमीकंडक्टर शराकत दार के तौर पर मजीद मुस्तहकम होगी। हुकूमत ने नेपाल बिजली अथॉरिटी को इस साल 31 दिसंबर तक रोजाना 18 घंटे बिजली बरामद किए जाने की मंजूरी दी है। वजारत बिजली के मुताबिक नेपाल को मुजफ्फरपुर धलकेबर लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और तनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक बिजली फराहम की जाएगी। हालिया सैलाब से नेपाल के पन बिजली बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके बायस मुल्क के अंदर बिजली पैदा करने की सलाहियत कम और बिजली की इजाफी जरूरत पैदा हो गई है। वजारत ने कहा कि इस मंजूरी से नेपाल को मुश्किल हालात में अपनी बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के दरमियान देरीना तवानाई ताउन मजीद मुस्तहकम होगा। वजारत ने मजीद कहा कि भारत नेपाल की मदद के लिए और तवानाई के शोबे में दोतरफा ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि भारत की सकाफत और अदब कमल के फूल की मानिंद है, जिसकी हर पंखड़ी मुल्क की मुख्तलिफ इलाकाई जबान की नुमाइंदगी करती है। उन्होंने कहा कि अगर एक भी पंखड़ी ज़ाये हो जाए तो पूरे कमल की खूबसूरती कम हो जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदी को मरकजी रोल अदा करना चाहिए, ताहम तमाम इलाकाई जबानों को भी मुनासिब इज्जत, वक़ार और एहतराम दिया जाना चाहिए। जनाब शाह नवी मुंबई में दो रोज़ा हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि अगरचे भारत में बहुत सी जबानें और बोलियां हैं, लेकिन भारत का जज्बा और मुल्क की आवाज एक रहनी चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और वियतनाम के उनके हमनसब ली हुई ट्रुंग ने आज नई दिल्ली में मुश्तरक तौर पर 19वें भारत वियतनाम मुश्तरक कमीशन मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया के नतायज पर मरकूज इस मीटिंग में भारत और वियतनाम के सियासी, दिफाई और सलामती से मुतालिक ताउन को मजबूत बनाने और भारत में तैयार करदा दिफाई साजो सामान की फराहमी बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया गया। परिकैन ने तिजारत, सरमायाकारी और सप्लाई चेन के उमूर पर भी तामीरी बातचीत की और बाजार तक रसाई को मजीद वसत देने के बारे में तबादले ख्याल किया। दोनों ममालिक की समंदरी मसनूआत, जरई मसनूआत और अद्वियात के शोबों में भी ताउन और बाहमी तिजारत पर तबादला ख्याल किया गया। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल और जमहूरिया यूरोगुए के वजीर खारजा मारियो लुबेटकिन ने भारत और मरकोसुर के दरमियान तरजीही तिजारती समझौते को वसत देने के लिए मुजाकरात शुरू करने का ऐलान किया। दोनों वजीरों ने मौजूदा समझौते को बाहमी दिलचस्पी के मजीद शोबों तक वसत देने पर इत्तेफाक किया। इसका मकसद भारत और मरकोसुर के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात को मजीद वसत देना और दोनों फरीकों के निजी शोबों के लिए ज्यादा फवायद और नए मौके फराहम करना है। राजस्थान में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने रियासत में होने वाले शहरी मुकामी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में मजमूई तौर पर बरतरी हासिल कर ली है। आज रियासत के 10,245 वार्डों के लिए वोटों की गिनती हुई। शहरी मुकामी बल्दियाती इदारों में 10 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 47 म्यूनिसिपल काउंसिल और 252 म्यूनिसिपैलिटीज शामिल हैं। बीजेपी ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भिलवाड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वाजे अक्सरियत हासिल कर ली है, जबकि अलवर में भी वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस ने वाजे अक्सरियत हासिल की है, जबकि अजमेर और पाली में भी कांग्रेस आगे है। भरतपुर में आजाद उम्मीदवारों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। आजाद उम्मीदवारों ने 65 में से 38 वार्ड में जीत हासिल की है। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर POJK की इंसानी हकूक काउंसिल ने खित्ते में खासतौर पर रावलकोट और पुंछ और सुधनूती जिलों में तवील अरसे से जारी एहतजाज और बदमनी पर तशवीश का इजहार किया है। इंसानी हकूक काउंसिल ने कहा कि मुजाहिरों को अब 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, जिससे गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है और पूरा खित्ता मुतासर हो रहा है। काउंसिल ने खबरदार किया कि बामानी मुजाकरात में मजीद ताखीर से अवाम में मायूसी पैदा हो सकती है। नीज अदम एतमाद اور عدم استحکام مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ کونسل نے پاکستانی حکام اور تمام متعلقہ فریقوں سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات شروع کریں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور پرامن و جمہوری حل تلاش کریں۔ حکومت نے کہا ہے کہ فوج کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے جموں کشمیر کی سیکیورٹی کی صورتحال پوری طرح قابو میں ہے۔ 2025-26 کی اپنی حالیہ سالانہ رپورٹ میں وزارت دفاع نے کہا کہ فوج کی ان کوششوں کی وجہ سے تشدد اور مظاہروں میں کمی آئی ہے اور پتھراؤ کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آپریشن سندور کے دوران جموں کشمیر اور لائن آف کنٹرول کی سیکیورٹی کی صورتحال میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ گنیش چترتھی کا تہوار آج ملک بھر میں عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ بھگوان گنیش کی پیدائش کی یاد میں منایا جانے والا یہ تہوار دانائی، خوشحالی اور نیک بختی کی علامت ہے۔ اسے ونائک چترتھی یا گنیش اتسو بھی کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر 10 روزہ تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کے دوران لوگ بھگوان گنیش کی مورتیاں اپنے گھروں میں نصب کرتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے گنیش چترتھی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اس دوران مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے لوگوں سے آلودگی کم کرتے ہوئے روایتی انداز میں گنیش اتسو منانے کی اپیل کی ہے۔ جناب فڑنویس ممبئی میں اپنی سرکاری رہائش گاہ ورشا میں بھگوان گنیش کی مورتی نصب کرنے اور اس کی پوجا کرنے کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کر رہے تھے۔ ممبئی سمیت مہاراشٹر بھر میں 10 روزہ گنیش اتسو آج سے شروع ہو گیا ہے۔ تفصیل ہمارے ممبئی کے نامہ نگار سے۔
1: مہاراشٹر بھر میں 10 روزہ گنیش اتسو آج سے شروع ہو گیا ہے۔ عقیدت مند بھگوان گنیش کا خیر مقدم کر رہے ہیں اور بھکتی گیتوں کے ساتھ ان کی پوجا آرتی کر رہے ہیں۔ پولیس، ریلویز اور بیسٹ کی جانب سے بھیڑ اور ٹریفک کو منظم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پورے مہاراشٹر میں گھروں اور عوامی مقامات پر ہزاروں گنیش مورتیاں نصب کی جا رہی ہیں۔ گنیش اتسو کے دوران صحت کیمپ، خون کے عطیے کے کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں اور ثقافتی تقریبات کے ساتھ ساتھ فلاح و بہبود کے پروگرام بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ممبئی سے مادھوری پنگے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: بھارتی محکمہ موسمیات نے پوری گجرات ریاست میں آج مطلع ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ ریاست کے 250 تعلقوں میں آج موسلادھار بارش ہوئی، جس سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے سوراشٹر کے چند ضلعوں میں آج شدید بارش سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: گجرات میں آج شدید بارش ہوئی۔ بھاونگر کے ولبھ پور میں آج 6 انچ بارش درج کی گئی۔ وہیں آنند ضلع کے بورسد میں 5.5 انچ اور احمد آباد میں 3.5 انچ بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی۔ موسلادھار بارش کی وجہ سے کئی نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا۔ گزشتہ 2 دن کے دوران گجرات میں بارش کے پورے موسم کے دوران ہونے والی بارش کی 80% برسات ہوئی ہے۔ بارش کی وجہ سے ریاست کے 35 ڈیمز کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ دوسری جانب لمبے وقفے کے بعد اس بارش سے خریف کی فصلوں میں دوبارہ جان پڑ گئی ہے۔ احمد آباد سے میور سولنکی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
0: اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے کل اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کیرلا، ماہے، پنجاب، کرناٹک کے جنوبی اندرونی علاقے، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں بھی کل اسی طرح کے موسمی حالات رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ آئندہ 2 سے 3 دن کے دوران انڈمان و نکوبار جزائر، بہار، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور راجستھان میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑ سکتے ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کے کامیاب انعقاد کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے قائل کرنے کی زبردست صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ عالمی رہنماؤں نے بھی ترقی پذیر ملکوں میں اشتراک کو مستحکم کرنے اور عالمی خطے جنوب کی ترجیحات کو آگے بڑھانے پر برکس سربراہ میٹنگ کی ستائش کی ہے۔ امریکہ میں مقیم تجزیہ کار نے کہا ہے کہ نئی دلی اعلامیہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی بھارت کی صلاحیت کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت نے پن بجلی پیدا کرنے کے بحران کے دوران سیلاب سے متاثرہ نیپال کو دسمبر کے آخر تک روزانہ 18 گھنٹے بجلی فراہم کرنے کو منظوری دی ہے۔ اور گنیش چترتھی کا تہوار ملک بھر میں آج عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
4: آج کی فنکار کاریکرم آپ سنیں گے کچھ ہی پلوں کے بعد۔

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह।
4: कभी इस पग में

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज के फनकार।

0: ये सच है कि हमारी और आपकी दोस्ती इतनी पक्की है कि जिसे हम कभी तोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन ये गाना हमारी दोस्ती के नाम नहीं है, बल्कि उस शख्सियत के नाम है जिस पर केंद्रित है आज के फनकार कार्यक्रम। जरा ये संवाद सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
1: कितने आदमी थे?
2: सरदार,
1: दो आदमी थे। दो आदमी। सुअर के बच्चों, वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों, धिक्कार है। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?
3: पूरे 50,000।
1: सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो मां कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये तीन हरामजादे, ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितनी गोली है इसके अंदर?
2: हाँ?
1: कितनी गोली है?
2: 6 सरदार,
1: 6 गोली, 6 गोली है इसके अंदर, 6 गोली और आदमी 3। बहुत बेइंसाफी है ये। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब इसके 3 खानों में गोली है, 3 खाली। अब हम इसको घुमा ही दिए। अब कहां गोली है कहां नहीं हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। इस पिस्तौल में 3 जिंदगी 3 मौत बंद है, देखें किसे क्या मिलता है। बच गया साला।

0: क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब गोली खा। कमाल हो गया।
2: तीनों बच गए, ये तीनों आरामजादों को गोली नहीं लगा।

अब आपको लग रहा होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज उस शख्सियत पर केंद्रित है जिसका फिल्म शोले से कुछ ना कुछ तो ताल्लुक है। सोचते रहिए, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: भाई आज के फनकार कार्यक्रम में अगर कोई पहेलियां बुझाए तो जाहिर है कि आप पसोपेश में पड़ जाएंगे, आप चक्कर में पड़ जाएंगे, आप सोच में भी पड़ जाएंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि बहुत देर हो गई, पहेली को सुलझा लिया जाए और आपको बता दिया जाए कि आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक बहुत बड़े और बहुत ही कामयाब निर्माता निर्देशक पर, जिनका नाम है जीपी सिप्पी।
1: हवा के साथ साथ,
2: अरे रे रे।
1: घटा के संग संग,
2: संभालना।
1: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग।

0: जीपी सिप्पी का नाम हिंदी सिनेमा उद्योग के इतिहास में केवल एक फिल्म के लिए याद किया जाएगा, लेकिन उस फिल्म का पता तो आपको भी है और वो फिल्म है 70 mm वाली शोले। लेकिन जीपी सिप्पी ने सिर्फ शोले ही नहीं बनाई और वो सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं थे, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शुरुआत बतौर डायरेक्टर हुई थी और वो भी साल 1955 में। फिल्म थी मरीन ड्राइव।
1: बट

उसके बाद उन्होंने एक बड़ी ही कामयाब फिल्म का निर्देशन किया। इस फिल्म के गाने आज तक संगीत के कदरदान गुनगुनाते हैं। ये फिल्म थी अदले जहांगीर।

साल 1956 में जीपी सिप्पी की निर्देशित फिल्म आई श्रीमती 420। साल 1959 में उन्होंने बनाई भाई बहन, इस फिल्म के निर्देशक थे वो। अब जरा आपको ये भी बता दिया जाए कि जीपी सिप्पी प्रोड्यूसर बने थे सन 1951 में फिल्म सजा के जरिए। फिल्म सजा के गाने हम आज भी गुनगुनाते हैं।

सन 1958 में उन्होंने एक सस्पेंस फिल्म बनाई 12 o'clock। उसके बाद सन 1955 में आई गुनगुनाती हुई कामयाब फिल्म मेरे सनम के प्रोड्यूसर भी जीपी सिप्पी ही थे।

जिनका जन्म 14 सितंबर 1914 को हुआ था, और वो दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जाने जाते हैं। ज्यादातर लोगों को उनकी फिल्म शोले का पता है, इससे आगे या पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। फिल्म शोले के निर्देशक तो थे उनके बेटे रमेश सिप्पी, लेकिन जीपी सिप्पी ने शोले के पहले और बाद में कई नामी फिल्में बनाई हैं। शोले से पहले ही वो सन 1968 में ब्रह्मचारी जैसी कामयाब फिल्म बना चुके थे।

दूसरी तरफ सन 1971 में उन्होंने बनाई थी फिल्म अंदाज, सन 1975 फिल्म शोले, और शोले के ठीक बाद सन 1980 में आई थी फिल्म शान। सन 1985 में रमेश सिप्पी के निर्देशन में जीपी सिप्पी की प्रोड्यूस फिल्म आई थी सागर।

सन 1985 के बाद से जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस का ग्राफ थोड़ा सा नीचे हुआ था। दरअसल इसके बाद आने वाली फिल्में कामयाबी की वो कहानी नहीं रच पाई जो शोले या उसके पहले और बाद की फिल्मों ने रची थीं, और जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस को फिल्म संसार का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनाया था। सन 1991 में सलमान खान के अभिनय वाली पत्थर के फूल फिल्म आई,

की कामयाबी की कहानी शुरू होती है। संघर्ष के दौर में शाहरुख खान जीपीसीपी के दफ्तर में अपनी तस्वीरें लेकर बैठे हुए थे और राजू बन गया जेंटलमैन के निर्देशक अजीज मिर्जा ने जीपीसीपी से कह रखा था कि इस लड़के में हीरो बनने का जबरदस्त पोटेंशियल है। जब जीपीसीपी ने शाहरुख खान को देखा तो उन्होंने फौरन ये फैसला किया कि उनकी इस अगली फिल्म में राजू शाहरुख खान ही बनेंगे।

0: इसके बाद आई आतिश। सन 1997 में जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस की आखिरी बड़ी फिल्म आई थी हमेशा। आपको बता दें कि जीपी सिप्पी के बेटे रमेश सिप्पी एक कामयाब निर्देशक के बाद एक कामयाब प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं। रमेश सिप्पी के बेटे रोहन सिप्पी परिवार में सिनेमा की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये फिल्म है दम मारो दम।
1: तेरी बातों की शराब, तेरे पापों के हिसाब, तेरे स्विस बैंक अकाउंट, टोल टोल मोल काउंट, तेरे गली गली यार, पूरी गोली बार बार, पहले यारी में मिली फिर बिकी बार बार, तेरी होगी सरकार, तेरा होगा दस बार, पर रहेगी नहीं कमजोरी हर बार, जाएंगे जाएंगे जाएंगे बारी बारी,
2: आपकी सेवा में जनहित में जा रही है।
0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अजीमुशान निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
3: आज के फनकार।

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं। अब लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गाने। फिल्मी थी दिल है कि मानता नहीं, कुर्बान, राधा का संगम, प्यार भरा दिल, साथी, दिल, आशिकी और बहार आने तक। इन्हीं गानों के साथ रजनीगंधा कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी की घड़ी में इस समय रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में। प्रतीक्षा करें।

0: सभी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से
2: मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में दो दिन के हिंदी दिवस और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
4: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
3: राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रूपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। पिछले सप्ताह हमले में क्षतिग्रस्त हुई सऊदी अरब की एक महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन मरम्मत के लिए 3 से 5 सप्ताह तक बंद रह सकती है। 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन ले जाने वाली ये पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए लाल सागर के रास्ते तेल निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सऊदी अरब ने गुरुवार के हमले के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन हमलों को जिम्मेदार ठहराया है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का सबूत है। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के तहत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीत लिया है। टोक्यो में उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Renuka. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today lauded the successful conclusion of BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as the most of the heads of state were present to represent their countries. Talking to the media, Dr. Jayashankar said that it is important to recognize that this BRICS summit was taking place in a very polarized world.
6: BRICS summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts where there are very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, Middle East conflict. We were able to get out a statement to which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of global trade, of supply chains, energy, and of the protection of civilians and civilian interests.
5: The minister stated that the BRICS countries were very clear that any act of terrorism is a criminal act, and it also explicitly recognized the unacceptability of the Pahalgam attack. Condemning the terrorism, Dr. Jaishankar said that BRICS emphasized zero tolerance for terrorism and rejected double standards in countering it. India's leadership of BRICS has won praise from several member countries following the successful conclusion of the 18th BRICS summit in New Delhi. The two-day summit held in the national capital under India's chairmanship concluded yesterday. BRICS comprises 11 major emerging economies representing nearly half the world's population and around 40% of global GDP. The BRICS countries unanimously adopted the New Delhi Declaration 2026 at the summit on Saturday, with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping among the world leaders attending. The New Delhi Declaration also commended India's chairship and expressed appreciation to the government and people of India for hosting the summit. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the people of Rajasthan following the BJP's victory in the urban local body elections. In a social media post, the Prime Minister said the party's win is a testament to the triumph of truth over the echo of lies. Mr. Modi said the people of Rajasthan have once again made it clear that they fully support the policies of good governance and development under the double engine government. This will not only propel the state to new heights of progress, but also strengthen the government's resolve to bring prosperity to the lives of every individual, he added. Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah has said that Chhatrapati Shivaji Maharaj made Swaraj, Swadharma and Swabhasha, self-rule, one's faith and one's own language, the fundamental elements of Swaraj. Addressing Hindi Divas 2026 and the 6th All India Official Language Conference in Mumbai today, the Union Home Minister highlighted Maharashtra's rich linguistic and cultural heritage. He said, Shivaji Maharaj gave Marathi prominence in administration and created a strong repository of terminology in the language, which became an important foundation of governance during the era of Hindavi Swaraj. Greeting people on Hindi Divas and Ganesh Chaturthi, Mr. Shah described their celebration on the same day as a Manikanchan Yog, an auspicious coincidence. The festival of Ganesh Chaturthi is being celebrated today across the country with great devotion. The day marks the birth of Lord Ganesh, who is a symbol of wisdom, prosperity and good fortune. Also known as Vinayaka Chaturthi or Ganesh Utsav, the day marks the beginning of 10-day-long festivities during which people place clay idols of Lord Ganesh at their homes and worship them. President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings to the people on the occasion of Ganesh Chaturthi. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Modi today attended the Ganesh Chaturthi celebration at the residence of Union Minister Piyush Goyal in New Delhi. The government has approved export of power for 18 hours a day to Nepal Electricity Authority till the 31st of December this year. In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second T20 International at the Arun Jaitley Stadium in Delhi tomorrow. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. And with that, we end this news bulletin.